अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियाँ बहुत प्रचंड रूप अपना ले चुकी हैं। बारिश भी है, लेकिन गर्मियों ने अपना पूरा प्रारूप दिखाई दिया है। तो आइए गर्मियों में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम हमेशा से आपके लिए लेते आए हैं और आपको बताते आए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि गर्मियों में हम अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखें, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, हम अपने मूड को किस तरीके से अच्छा रखें। तो सबसे पहले तो जितना हम सर्दियों में खा लेते हैं, पी लेते हैं, वही उसका जो असर है ना, वो गर्मियों में निकलता है। मैं बताऊं कैसे। सर्दियों में हम जितना गर्म चीजों का सेवन करते हैं, उसी का असर उतनी ही स्वेटिंग हमें गर्मियों में होती है। लेकिन गर्मियों में हमने जितना पानी पी लिया होता है, सर्दियों में अगर हम पानी नहीं भी पीते हैं तो काम चल जाता है। आपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे आपने ऊंट के बारे में सुना होगा, ऊंट को कहा जाता है कि वो एक महीना लगातार पानी पीने के बाद में वो 3 महीने पानी नहीं पीता है, यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 महीने तक उस पानी को स्टोर करके अपने अंदर रह सकता है। इसीलिए उसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों में भी ये चीज पाई गई है। सर्दियों में अधिकतर लोगों को प्यास कम लगती है, सर्दी के कारण से या फिर ज्यादा ऑयली खाने से। लेकिन गर्मियों में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पानी की प्यास बहुत लगती है, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है। इसका मतलब होता है कि हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो हमने खाया होता है गर्मियों में गर्म चीजें, वो पसीने के रूप में निकलती हैं। लेकिन जो हमने पानी पिया होता है, वही पानी स्टोर हो करके हमें सर्दियों में हाइड्रेट रहने के लिए काम में आता है। इसीलिए गर्मियां हैं तो पानी का महत्व आज हम आपके लिए बताने आए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और खनिज तत्व जैसे मिनरल बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय में पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाता है। योग और सही मात्रा में पानी का सेवन मिलकर शरीर को अंदर से संतुलित रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है, उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवा रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 की लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है, तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल न पिए, थोड़ा सा बचे। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिए। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योगासन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन। शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है, जो पाचन में

मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें। ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिट से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए। जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में सुबह रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें। जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारे पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें।
ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल न पिएं। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं, जबकि हमारे मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक अहम टॉपिक है, या हम ये कह सकते हैं कि आज हर घर में एक दूसरा व्यक्ति इस प्रॉब्लम को जूझ रहा है, इस प्रॉब्लम के साथ में अपने आप को जी रहा है। कई ऐसी बातें हैं जिसे हम अपने किसी खास के साथ ही उसे शेयर कर पाते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। धीरे धीरे अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं, हमारे जीवन के आगे भी ये लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। उसी को कहते हैं हमारी मानसिक स्थिति को संभालना, सोचना और झेलना। हर एक व्यक्ति को लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे जैसे होगा, हम जैसा सोचते हैं वैसा होगा, लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जब हमारे हाथ में नहीं होती हैं और मजबूरन हमें सोचना पड़ता है। ज्यादा सोच, टेंशन और इन्हीं सब का कारण बन जाता है मानसिक स्थिति खराब। अब हम यूं कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति खराब का होना शायद लोगों का दूसरा सोचना हो जाता है कि ये एक बच्चा या बच्ची या एक लड़का या लड़की पागल होने की स्थिति पर है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मानसिक स्थिति खराब होने का सीधा असर पागलपन से नहीं होता है, वो ऐसा एक धीमा जहर है जो आपको धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं दोस्तों, ये मानसिक स्थिति को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाई के और बिना किसी भी एक लंबे इलाज से। अब आप सोचेंगे कि एक सोच को सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बिना दवाइयों के या फिर किसी प्रिकॉशन के कैसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब कोई परिस्थिति खुद पर बीतती है तभी हमें उस चीज को ठीक करने का अनुभव ज्यादा होता है, या हम यूं कह लें सीधे शब्दों में कि कहीं ना कहीं उस परिस्थितियों को हमने भी महसूस किया है, हमने भी झेला था। तो आज कहीं जाकर के इन सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए हम बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हैं जो हमें रोजमर्रा दिखती और मिलती हैं। छोटी सी कहावत है, या ये हमने कहीं सुना पढ़ा होगा, या आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमें कल की चिंता थी लेकिन आज ही मर गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब कल की चिंता है, हमें पता ही नहीं है कि कल होने क्या वाला है, उसकी चिंता अगर हम आज से ही करेंगे तो कल देखा जाएगा, लेकिन आज हमारा जो नुकसान होगा उससे हमारा शरीर, हमारी मनोवृत्ति और हमारा सब कुछ खराब होने लगेगा। इसीलिए कल को कल पर ही छोड़ दें, हमें सबसे पहले अपने वर्तमान को ही सुरक्षित करना है, और वर्तमान को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाना है। कैसे बेहतर बनाना है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। जो महसूस हो रहा है उसे दबाने के बजाय समझने की कोशिश करें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना ये आपके लिए सबसे अच्छा साबित होता है। इससे आपका मन भी हल्का होता है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं। तो कोई भी अगर आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान है जिसे आप अपने मन की, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं और लगता है कि वो आपकी बातों को कहीं भी इधर से उधर नहीं करेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा या समझेगी, तो आप अपनी भावनाओं को उनके साथ साझा करें। दूसरा पॉइंट, जो कि सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था, ध्यान और श्वास अभ्यास। रोज 5 से 10 मिनट बैठकर गहरी लंबी सांस लेना, प्रार्थना और ध्यान करना, मन को स्थिर करना सबसे अच्छा ये प्राणायाम माना जाता है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति के साथ साथ हमारी शारीरिक स्थिति भी सुधरती है।
थोड़ा समय प्रकृति और शरीर को दें। हल्की वॉक करना, योग, खुली हवा में समय बिताना और अपने मूड को चिल करना। कहते हैं ना कि आजकल सभी लोग बाहर घूमने क्यों जाते हैं? अरे मूड को चिल करने जा रहे हैं। अपने काम से 2 से 3 दिन की छुट्टी लेकर के अपने आप को रिलैक्स मोड में जाना। यानी कि ऐसा नहीं है, हम प्रेशर में हैं, हमारी मानसिक स्थिति जितनी भी उलझी हुई है, लेकिन हम काम करे जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है धीरे धीरे हमारी मानसिक स्थिति को खराब करने में। फिर आता है अच्छी चीजें पढ़ें और सकारात्मक संगति करें। बिल्कुल दोस्तों, पॉजिटिव सोच वाले लोगों से आपकी दोस्ती होना, ये आपकी मानसिक स्थिति को सबसे और जल्दी बेहतर करता है और आपकी बहुत सारी चीजों को जो कि खराब हो चुकी हैं, उन्हें ये हील करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। अच्छे विचार, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक बातें आपको और आपके मन को मजबूत बना देती हैं। 5th पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है नींद और भोजन का ध्यान रखना। कम नींद और अनियमित खानपान का असर हमारे मन स्थिति पर तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ हमारी मानसिक स्थिति भी खराब करता है। एक दिन में 8 घंटे की नींद लेना और पर्याप्त गहरी नींद लेना सबसे अच्छा माना गया है। खानपान की बात करें तो आज की न्यू जनरेशन सिर्फ और सिर्फ बाहर के खाने की ओर ज्यादा भाग रही है, लेकिन अगर हम हल्का और जो जल्दी पचने वाला खाना अगर खाते हैं तो हमारे पेट को भी राहत मिलती है और हमारा मन भी और मूड भी अच्छा होता है। मन की बातों को लिखना, अपनी कोई भी चिंता, भावनाएं और दिन की सबसे अच्छी बातों को एक डायरी में लिखना मन को शांत करने जैसा होता है। साथ ही साथ ये आपको उस ओर लेके जाता है जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, कुछ ऐसे चिड़चिड़ेपन हो, आपकी जो भी फीलिंग्स हो आप एक डायरी में उसे उतार देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। फिर आता है पॉइंट, कृतज्ञता का अभ्यास करें। रोज ऐसी 3 चीजों को याद करें जिसके लिए आप आभारी हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य, उसके बाद ईश्वर। सबसे पहले हम ईश्वर को भी धन्यवाद कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने स्वास्थ्य के लिए हम अपने ईश्वर को भी आभार व्यक्त कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने माता पिता के लिए भी ये आभार व्यक्त कर सकते हैं कि जिन्होंने हमें ये सुंदर जीवन दिया और हमें ये सुंदर जीवन देखने का अनुभव प्राप्त कराया। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जो बताने जा रहे हैं वो है आपकी मानसिक स्थिति, तनाव और मन को स्थिर रखने के लिए छोटे मोटे ऐसे योग प्राणायाम, जिसकी मदद से हम अपने आप को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5 से 10 मिनट करें, मन को शांत करके और श्वासों को संतुलित करने में मदद करता है। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। 5 बार से शुरू करने के बाद में इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं, मन की बेचैनी, तनाव में राहत महसूस कर सकते हैं। उसके बाद कर सकते हैं बालासन, शरीर और मन को आराम देने वाला ये आसन होता है। फिर हम कर सकते हैं एक छोटा सा रूटीन जिसमें आता है 5 मिनट की गहरी श्वास, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट भ्रामरी, 10 मिनट ध्यान और अंत में शवासन। ये सारे प्राणायाम आपकी मन की स्थिति को तो ठीक करते ही करते हैं, साथ ही साथ आपको ये फील कराते हैं कि यस, हम ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस दिन आप अपने मन से हार जाएंगे, यानी कि आप सब कुछ हार जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है मन के जीते जीत और मन के हारे हार, इसीलिए मन से कभी भी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह योगशाला में भी आज मैं जो आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ वो है समय सारणी, मतलब योग की समय सारणी। अब आप सोच रहे होंगे कि योग की समय सारणी क्या होती है। समय सारणी का मतलब होता है कि किस समय कितना और कौन से प्राणायाम को करना है और उसका लाभ भी एक साथ हम आज आपको बताएंगे। प्राणायाम के साथ साथ आसन और सूक्ष्म आयाम,
सूक्ष्म व्यायाम हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले बैठने की विधि, सभी प्राणायाम सिंहासन, सुखासन और पद्मासन में ही करना चाहिए। यदि इन आसन में बैठने में परेशानी हो तो अपनी सुविधा अनुसार आसन में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहला आसन जो होता है वो है भस्त्रिका प्राणायाम, 5 मिनट और बच्चों के लिए 2 मिनट। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर मुंह बंद रखकर नासिका से लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरें तथा उसी गति से नासिका से श्वास को छोड़ें। फेफड़ों में जब हम श्वास भरेंगे तो उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम आपको बता दें भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ। दमा, अस्थमा व फेफड़ों से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। साथ ही साथ में आज हम आपको सूक्ष्म व्यायाम भी एक बार ये कराते रहेंगे। उसका कारण पता है आपको, एक प्राणायाम के बाद में एक सूक्ष्म व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए, हमारी मानसिक स्थिति के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। सूक्ष्म व्यायाम, श्वास भरते हुए गर्दन को 5 बार ऊपर नीचे, 5 बार दाएं बाएं, 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यानी कुल मिलाकर के ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये हमें सर्वाइकल में बहुत ज्यादा आराम देता है। जिन लोगों को गर्दन में अकड़न रहती है, गर्दन के आसपास एरिया में दर्द रहता है, आप एक जगह काम करते हैं काफी घंटे बैठकर, तो ये देखा गया है कि गर्दन में और पीठ में यानी रीढ़ की हड्डी में अकड़न हो जाती है। जिन लोगों को ये चीजें होती हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सूक्ष्म व्यायाम ये वाला कर सकते हैं जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाना है। दूसरा समय सारणी में आता है कपालभाति, यानी कपालभाति प्राणायाम। समय लगातार 5 मिनट 1 सेकंड में 1 बार। प्रथम चक्र जो है वो हम आगे करते हैं। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर पेट को ढीला रखकर पेट को पीठ की तरफ झटका देना व छोड़ना है। नासिका से श्वास स्वतः बाहर निकलेगी और अंदर जाएगी। मुंह बंद रहेगा। मध्यम शक्ति व मध्यम गति से इस प्राणायाम को करना है। साथ ही साथ में जो इसका एक सूक्ष्म व्यायाम है वो है अपने हाथों पैरों को एक जगह पर रखने से हाथों पैरों में कंपन सी होने लगती है। तो आइए सूक्ष्म व्यायाम में पैरों और हाथों को चलाने का व्यायाम। पैरों को सामने खोलकर व हाथों को पीछे टिकाकर पैरों की उंगलियां चलाना, पंजे चलाना और आगे पीछे दबाना। पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना व दोनों तलवे मिलाकर बटरफ्लाई की स्थिति में आना और बटरफ्लाई करना। यानी कि जब आप इस आसन को, जब इस प्राणायाम को आप करेंगे तो तितली नुमा एक आकार बन जाता है। कपालभाति प्राणायाम प्रथम चक्र की भांति 5 मिनट ही करना चाहिए। आइए अब चलते हैं कपालभाति के दूसरे चक्र पर, यानी सूक्ष्म व्यायाम का दूसरा चक्र। हाथों को सामने कंधे की सीध में खोलकर मुट्ठी खोलना एवं बंद करना। कभी अंगूठा अंदर करना है तो कभी बाहर। उंगलियां आधी मोड़ना और छोड़ना। पंजों को कलाई से ऊपर नीचे करना। मुट्ठी बंद करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। कोहनी को निरंतर मोड़ते रहना है। दोनों हाथ कंधे के

नमस्कार श्रोताओं, उगते सूरज की सुनहरी किरण के साथ आपका स्वागत है पहली किरण में। आज का ये विशेष अंक समर्पित है न्याय के देवता, कर्म फलदाता, अनुशासन और सत्य के प्रतीक शनि देव को। कहते हैं सूर्य प्रकाश देते हैं लेकिन शनि दिशा देते हैं, सूर्य जीवन देते हैं लेकिन शनि जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर शनि देव क्यों डर नहीं बल्कि सुधार का संदेश है, क्यों उनकी दृष्टि इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। शनि देव दंड नहीं देते, वे केवल हमारे कर्मों का आईना दिखाते हैं। जिस दिन इंसान अपने कर्म सुधार लेता है उस दिन शनि भी कृपा बरसाने लगते हैं। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा और आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो यानस्ली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है पहली किरण। चलिए आज की किरण को और ऊर्जावान बनाएंगे शनि की कृपा के साथ में। फिलहाल बढ़ते हैं एक प्यारे से भजन की ओर।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं शनि देव की। शनि यानी वो शक्ति जो कि न्याय प्रिय है, वो शक्ति, वो सत्ता जो कि हमारे कर्मों का फल हमें देती है। फिलहाल कुछ और मैं आपसे कहूँ उससे पहले मैं एक कहानी आपसे साझा करना चाहूँगी। एक बार शनि देव को अपने बल और प्रभाव पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने सोचा कि संसार में कोई भी उनकी दृष्टि से बच नहीं सकता। वे पहुँचे हनुमान जी के पास और बोले, अब आपकी राशि पर मेरी 7.5 आने वाली है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जो प्रभु राम का नाम लेते हैं उसका क्या बिगड़ेगा। शनि देव नहीं माने। तभी हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी और शनि देव उसमें फंस गए। जैसे जैसे पूंछ लंबी होती गई, शनि को कष्ट होने लगा। आखिरकार उन्होंने क्षमा मांगी और वचन दिया कि जो सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करेगा उस पर उनकी कठोर दृष्टि थोड़ी सी कम होगी। यानी यहाँ से ये सीख मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, भक्ति और अच्छे कर्म सबसे बड़ा कवच है। शनि देव न्याय प्रिय हैं, शत्रु नहीं, और जो भी हम करते हैं वो हमारे कर्म के अनुसार ही हमें प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है इन्हें कर्म फलदाता शनि देव।

दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं कि शनि भारी है, लेकिन सच तो ये है कि जब इंसान गलत रास्ते पर चलने लगे तब शनि उसे रोकते हैं, कभी परिस्थितियों से, कभी संघर्षों से और कभी अकेलेपन से, ताकि इंसान फिर से अपने असली रास्ते पर लौट सके। और अगर जीवन के संदेश की बात करें तो हमारे कर्म से ही, हमारे कर्म के फल के रूप में ही हमें कई सारे संदेश देते हैं शनिदेव। जैसे गरीब और ज़रूरतमंद की सहायता करें ताकि आपके कर्म अच्छे हों और आप अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ सकें। बुजुर्गों का सम्मान करें ताकि जब वो आपके साथ रहें तो वो एक छांव की तरह आपको उस जीवन के संकट में धूप से बचा सकें जो हर किसी के जीवन में एक ना एक दफ़ा ज़रूर आता है। मेहनत और ईमानदारी को जीवन का हिस्सा बनाएं, किसी का हक ना मारें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट होता है हमारी लाइफ में। और कहते हैं ना कि हम किसी से उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, फिर जब हमारा उम्मीद टूटता है तो हमें सबसे ज़्यादा चोट होती है। और उम्मीद हम वहीं लगाते हैं जहाँ हम कर्म करते हैं, और कर्म का फल प्राप्त करना हमारा हक हम समझते हैं। और इसी तरह से बस यही इतना कहेंगे कि किसी का हक आप ना मारें और कर्मों को शुद्ध रखें, क्योंकि शनि देव मंदिर से पहले मनुष्य के व्यवहार को देखते हैं। आप मंदिर जाके कितना भी चढ़ावा चढ़ाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर्म भूमि पे हैं, ये पृथ्वी आपकी कर्म भूमि है और आप कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपने मनुष्य का तन पाया है। तो कर्म आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए और आप अपने कर्मों पे फोकस रहिए ताकि आपके कर्म अच्छे हों और आपका जीवन सुगम हो सके।

जी हाँ श्रोताओं, आप शो सुन रहे हैं भूरे भूरे का आध्यात्मिक शो यानी कि पहली किरण। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और आज हम बात कर रहे हैं जीवन के उस पक्ष की जो कि हर इंसान की लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि कर्म। कर्म से जुड़े हुए हमारे देवता यानी कि न्याय के देवता, न्यायप्रिय देवता शनिदेव की। जिंदगी में जब सब साथ छोड़ दें, जब मेहनत का फल देर से मिले, जब बार बार परीक्षा हो, तो समझिए शायद शनिदेव आपको कमज़ोर नहीं पहाड़ जैसा मजबूत बना रहे हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का शांत मन से जाप व्यक्ति को धैर्य, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा देता है। चलिए एक और छोटी सी कहानी आपसे साझा करते हैं। एक किसान रोज अपने खेत में काम करता था। पास में बैठा कौवा उसकी मेहनत को देखता। एक दिन किसान बोला, मेहनत का फल देर से मिलता है। कुछ महीनों बाद वही खेत सोने जैसे फसल से भर गया। शनिदेव भी यही सिखाते हैं, धीरे चलो लेकिन सही चलो, क्योंकि देर से मिला फल अक्सर सबसे मीठा होता है। तो दोस्तों, आज की पहली किरण में इतनी ही बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि शनिदेव डर का नहीं, सत्य और कर्म का नाम है। अगर नीयत साफ हो, कर्म अच्छे हो और दिल में दया हो, तो शनि परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन अंत में सफलता भी वही दिलाते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ अब मुस्कुराते रहिए और अच्छे कर्म को करते रहिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई पहली किरण जरूर आती है।

0: श्रोताओं, अब आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पे चर्चा होगी। सवाल यही है कि शनिदेव न्याय के देवता कैसे बने। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव सूर्य देवता और माता छाया के पुत्र माने जाते हैं। कहते हैं जब शनिदेव माता छाया के गर्भ में थे, तब माता कठोर तपस्या और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। उसी तपस्या और संयम का प्रभाव शनिदेव पर भी पड़ा। जन्म से ही उनका स्वभाव गंभीर, शांत और न्यायप्रिय था। उनकी बचपन की एक घटना की बात करें तो जब शनि देव का जन्म हुआ, उनकी दृष्टि बहुत तेज और प्रभावी थी। कथा के अनुसार जैसे ही उनकी दृष्टि सूर्य देव पर पड़ी, सूर्य का तेज थोड़ा मंद पड़ गया। इससे सूर्य देव को लगा कि ये बालक अत्यंत प्रभावशाली है, लेकिन शनि देव के मन में कभी अहंकार नहीं आया। उन्होंने कठोर तप और ध्यान आदि से सत्य का मार्ग चुना। फिर एक समय शनि देव ने वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स वर मांगो। शनि देव ने धन, शक्ति या स्वर्ग नहीं मांगा। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं संसार में न्याय स्थापित कर सकूं, हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिल सके। शनि देव की निष्पक्षता और तपस्या देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनि देव को 9 ग्रहों में विशेष स्थान देते हुए कहा, आज से तुम कर्मफल दाता और न्याय के देवता कहलाओगे। राजा हो या साधारण मनुष्य, सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल दोगे। तो इस कथा से ये बस इतनी सी बात सामने आती है कि शनि देव किसी के शत्रु नहीं हैं, वे केवल अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम देते हैं। मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन शनि देव को प्रिय हैं। अन्याय, छल और अहंकार करने वालों को वे चेतावनी अवश्य देते हैं, क्योंकि हर किसी को सुधार का एक मौका मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों, शनि देव का नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वे डराने नहीं, सुधारने आते हैं। जैसे एक शिक्षक गलती पर डांटता है ताकि भविष्य बेहतर बने, वैसे ही शनि देव इंसान को कर्मों का महत्व समझाते हैं। शनि देव की अदालत में ना दौलत चलती है ना ताकत, वहाँ केवल कर्मों का हिसाब होता है।
1: भगवान शनि की सर्व फलदायी स्तुति मनुष्य के जीवन में चमत्कार कर देती है। रवि पुत्र शनि देव जो नील वर्ण वाले हैं, जो छाया और मार्तंड भगवान सूर्य के पुत्र हैं, जो यम के अग्रज हैं, ऐसे भगवान शनि को जो बारंबार नमस्कार करता है, उस पर शनि की असीम कृपा हो जाती है।

सावन महीने के शनिवार को कई स्थानों पर संपत्ति शनिवार यानी कि संपत्ति देने वाला शनिवार कहा जाता है। ये मान्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में प्रचलित है। ये नाम दो शब्दों से जुड़ा माना जाता है। पहला संपत यानी संपत्ति, और इसको अगर माना जाए आम बोलचाल की भाषा में तो सुख समृद्धि धन और सौभाग्य। शनिवार यानी कि शनिदेव का दिन, इसलिए माना जाता है कि सावन के शनिवार पर श्रद्धा सेवा और अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख समृद्धि और स्थिरता आती है। बस एक बात और भी है कि शनि देव जो हमारे हैं वो है शिव जी के बहुत बड़े भक्त, और सावन महीने की बात करें तो सारे शिव भक्त अपनी एक अलग ही होड़ और रंग रूप में दिखाई देते हैं भक्ति करते हुए। जी हाँ, और उसी तरह से कहीं ना कहीं जब हम अनुकंपा की बात करते हैं, कृपा पाने की बात करते हैं, तो फिर शनि देव भी अपनी कृपा बरसाने को आतुर होते हैं। सावन महीना विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि देव भगवान शिव के परम भक्त हैं। कहा जाता है कि शिव कृपा से ही शनि देव को न्यायाधीश का पद मिला। इसी कारण सावन में आने वाले शनिवार का महत्व और बढ़ जाता है। लोग इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, गरीबों को दान देते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, शनि मंत्र का भी जप करते हैं। और एक लोक मान्यता के अनुसार अगर एक कथा कहूँ तो लोक कथाओं में कहा जाता है कि सावन के शनिवार को जो व्यक्ति मेहनत ईमानदारी और सेवा भाव से जीवन जीने का संकल्प लेता है उस पर शनि देव की कृपा बनी रहती है और उसके घर में संपत्ति यानी स्थाई सुख समृद्धि आती है। इसलिए बुजुर्ग भी कहते थे सावन का शनिवार कर्म सुधारने का त्योहार। आइए चलते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं। और दोस्तों एक बात और कि संपत्ति शनिवार केवल धन पाने का दिन नहीं है, बल्कि ये अपने कर्म व्यवहार और सोच को समृद्ध बनाने का अवसर है। क्योंकि असली संपत्ति केवल पैसा नहीं बल्कि अच्छा समय, सच्चे रिश्ते और मन की शांति भी होती।

जी हाँ श्रोताओं, आप शो सुन रहे हैं भूरे भूरे की पहली किरण और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आर्जा कांक्षा। आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो ज्ञानस्ले 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और आज हम बात कर रहे हैं शनि देव की, न्याय के देवता की, अनुशासन प्रिय देवता की। चलिए उसी ओर ले चलती हूं मैं आपको। और अब यहां पे एक बात और, शनि देव और हमारे कर्मों का संबंध हिंदू दर्शन के उस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है जिसमें कहा गया है कि हर कर्म का फल निश्चित होता है। वैसे खाली ये हिंदू धर्म में नहीं है, ये हर एक धर्म में माना जाता है कि जो इंसान कर्म करता है उसका फल ज़रूर आता है। और धर्म को अगर साइड में रखें, कोई भी अगर हम नॉर्मल भी काम करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन हमको देखने को मिलता है, एक्शन का रिएक्शन होता है, ये साइंस में भी प्रूव्ड है। तो चलिए बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि शनि देव को उसी कर्म फल का न्यायाधीश माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शनि देव ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया तब उन्होंने कोई धन या शक्ति नहीं मांगी। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि संसार में हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल मिले। उनकी निष्पक्षता, धैर्य और सत्यप्रियता देखकर भगवान शिव ने उन्हें ये दायित्व दिया कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा उसे उन्नति और सम्मान मिले, जो छल, अन्याय और अहंकार करेगा उसे अपने कर्मों का परिणाम समझ आए। इसी कारण से शनि देव को कर्म फलदाता और न्याय के देवता का

अब जानेंगे कि शनि देव डर क्यों नहीं, सीख क्यों है। शनि देव का उद्देश्य किसी को केवल कष्ट देना नहीं माना जाता। मान्यता ये है कि वे इंसान को उसके कर्मों का आईना दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर व्यक्ति मेहनती, ईमानदार और दयालु है तो शनि स्थिरता और सफलता देते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरों का हक मारता है, अहंकार करता है या गलत रास्ता अपनाता है तो जीवन की कठिनाइयां उसे सुधारने का माध्यम बनती हैं। उदाहरण के लिए, अगर व्यक्ति मेहनती, ईमानदार और दयालु है तो शनि देव स्थिरता और सफलता देते हैं। अगर कोई दूसरों का हक मारता है, अहंकार करता है या गलत रास्ता अपनाता है तो जीवन की कठिनाइयां उसे सुधारने का माध्यम बनती हैं। कर्म और शनि देव का गहरा संदेश ये है कि शनि की चाल धीमी जरूर है लेकिन उनका न्याय बहुत सटीक माना जाता है। इसका अर्थ है कि कर्मों का फल तुरंत मिले या देर से, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार और नियत का असर जीवन में जरूर दिखाई देता है। दोस्तों, शनि देव हमें ये याद दिलाते हैं कि किस्मत से ज्यादा ताकत हमारे कर्मों में होता है। इंसान मंदिर में क्या चढ़ाता है उससे पहले ये मायने रखता है कि अपने व्यवहार में क्या बांटता है। सम्मान, ईमानदारी और दया या अहंकार या अन्याय, सोचने की बात है। ठीक है, आप सोचिए और अपने दिन को बेहतरी की ओर लेके चलिए। तब तक हम आपको लेके चलते हैं एक और प्यारे से भजन।

आज के समय में एक सवाल बहुत लोगों के मन में आता है, अगर अच्छे कर्म करने वालों को भी संघर्ष और दुख मिलते हैं तो न्याय कहाँ है। इसका उत्तर केवल धार्मिक आस्था में नहीं है, बल्कि दर्शन, मनोविज्ञान और जीवन के व्यवहारिक अध्ययन में भी मिलता है। तर्क और दर्शन के अनुसार कर्म का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। भारतीय दर्शन, विशेषकर भगवद गीता में कहा गया है, कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल तुरंत और हमारी इच्छा के अनुसार मिले ये निश्चित नहीं। अक्सर अच्छे कर्मों का परिणाम धीरे धीरे बनता है। विश्वास, सम्मान, मानसिक शांति, अच्छे संबंध और स्थायी सफलता के रूप में। अच्छा इंसान दुखी है, ये हमेशा पूरी तस्वीर नहीं होती। जी हाँ, इसके पीछे भी एक रीज़न है, चलिए उधर ले चलती आपको। मनोविज्ञान की कई किताबें बताती हैं कि हम दूसरों की बाहरी सफलता देखते हैं, लेकिन उनकी आंतरिक परेशानियां नहीं देखते। उदाहरण के लिए मैंस सर्च फॉर मीनिंग में विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी इंसान अर्थ और धैर्य खोज सकता है। उनके अनुसार दुख हमेशा अन्याय का प्रमाण नहीं होता, बल्कि कभी कभी वो इंसान को गहरा और मजबूत बनाता है। एक और सवाल जो आजकल लोग अक्सर न्याय को केवल धन, शोहरत या आराम से जोड़ देते हैं, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से न्याय का अर्थ है मन की शांति, अपराध बोध से मुक्ति, सम्मान, स्थायी रिश्ते, आत्मविश्वास। कई बार गलत तरीके से सफल दिखने वाले लोग भीतर से असुरक्षित और अशांत होते हैं। एक और सवाल जो हम लोगों के जहन में काफी आता है वो ये है कि समाज में गलत लोग सफल क्यों दिखते हैं। द रिपब्लिक में प्लेटो ने लिखा कि समाज में कई बार अन्यायी लोग कुछ समय तक शक्तिशाली दिख सकते हैं, लेकिन अन्याय लंबे समय तक स्थिर नहीं रहता। गलत रास्ते अक्सर डर, असुरक्षा और अस्थायी सफलता पर टिके होते हैं। अब शनि देव को प्रतीक की तरह समझें। शनि देव को केवल चमत्कार करने वाले देवता नहीं, बल्कि कर्म और परिणाम के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। उनका संदेश ये माना जाता है कि अनुशासन रखो, मेहनत करो, दूसरों के साथ न्याय करो, परिणाम आने में समय लग सकता है, लेकिन शांति बनाए रखो। तो दोस्तों, अच्छे लोगों की जिंदगी में संघर्ष हो सकता है, लेकिन संघर्ष और हार एक जैसी चीज नहीं होते हैं। बरगद का पेड़ भी एक दिन में इतना बड़ा नहीं होता। धीरे धीरे बढ़ने वाली चीजें अक्सर ज्यादा मजबूत होती हैं। इस बात को ध्यान में रखें और अपने जीवन को और मजबूती की ओर आगे बढ़ाते जाएं, अपने कर्मों को नेक बनाते हुए। फिलहाल चलते हैं एक और प्यारे से भजन की ओर।

हिंदू धर्म में न्याय और कर्म के देवता शनि मानव भाग्य पर अपनी शक्तिशाली प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। वे सूर्य देव और छाया देवी के पुत्र हैं। विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों और क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार शनि देव की दो पत्नियां हैं, नीलिमा यानी कि नीला देवी और मंदा यानी कि धामिनी। नीलिमा नीला देवी और नीलिमा, जिन्हें नीला देवी के नाम से जाना जाता है, दिव्य संगीतकार चित्ररथ की पुत्री मानी जाती हैं। कुछ कथाओं के अनुसार वे भगवान शनि की भक्त थीं और उन्होंने प्रेम और आदर के साथ उनसे विवाह किया था। हालांकि शनि देव की दृष्टि की शक्ति और तीव्रता के कारण वे अनजाने में उनके दिव्य प्रभाव से प्रभावित हो गईं। कुछ कथाओं के अनुसार उनकी दृष्टि ने उन्हें कष्ट पहुंचाया, जिससे उनके वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न हुईं। समय के साथ उनका सामंजस्य स्थापित हो गया और वे शनि के दिव्य संगनियों में से एक के रूप में पूजी जाने लगी। अब बात करते हैं मंदा देवी की यानी कि धामिनी की। मंदाना यानी कि जिन्हें हम धामिनी के नाम से जानते हैं, भगवान शनि की एक अन्य पत्नी हैं और उन्हें चित्ररथ की पुत्री भी कहा जाता है। वे एक गुणी और प्रेममयी पत्नी थीं, लेकिन शनि देव की गहन तपस्या और कर्म के स्वामी के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण के कारण उन्होंने उनकी उपेक्षा की। उपेक्षा महसूस करते हुए मंदाना ने उन्हें श्राप दिया कि उनकी दृष्टि हमेशा कष्ट लगाएगी। माना जाता है कि इसी श्राप के कारण ज्योतिष में भगवान शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है। इन चुनौतियों के बावजूद दोनों पत्नियों ने उनके दिव्य दायित्वों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शनि देव के उपासक मानते हैं कि उनकी पत्नियों का सम्मान करने से उनके कठोर प्रभाव को कम किया जा सकता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी कहानियां धैर्य, भक्ति और मानव जीवन में कर्म के परिणामों का प्रतीक हैं। और कहा भी जाता है कि हर एक अच्छे चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक अच्छा चरित्र निर्माण में भी हम अपनी जीवन की अगर बात करें, नॉर्मल हम मनुष्य, तो हमने कितना कुछ झेला होता है और उसके बाद में हम एक अच्छे पर्सनालिटी के रूप में सामने आते हैं, निखर के सामने आते हैं। तो ऐसी कुछ कहानी हमारे शनि देव की भी है कि अगर जीवन में उनके इतना सब कुछ ना होता तो शायद आज वो न्याय के देवता या फिर न्याय को इतने करीब से ना जान पाते और हमारे जीवन का न्याय इतनी आसानी से ना कर पाते। तो फिलहाल बोलते हैं जय शनिदेव।

ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय का देवता माना गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि देव के पास कोई एक निश्चित सवारी नहीं बल्कि पूरे 9 वाहन हैं। जब शनि एक राशि से दूसरी राशि में गोचर प्रवेश करते हैं तो उस समय के वार और स्थिति के अनुसार उनका वाहन तय होता है। ये 9 वाहन और उनकी जुड़ी कथाएं या प्रतीक कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है हाथी। ये जब शनि देव चांदी के पाए पर गोचर करते हैं तब ये हाथी पर वाहन होता है इनका। इसे बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। ये ज्ञान, भारी सफलता और राजसी सुख का प्रतीक होता है। घोड़ा। जब शनि देव लोहे के पाए पर गोचर करते हैं तो ये घोड़े पर सवारी कर रहे होते हैं। ये शनि का सबसे उग्र और पराक्रमी वाहन माना जाता है। ये तेज, बदलाव, ऊर्जा और चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। दोस्तों, मैं कुछ और बताऊं उससे पहले ये बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से इनका वाहन होता है और हमारी राशि में इनका गोचर होता है, ये हमारे कर्म पे डिपेंड करता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो जाहिर सी बात है कि शनि देव हमारी राशि में विचरण करने हाथी पे सवार होकर आएंगे, यानी कि चांदी के पाए पे आएंगे। और अगर हमने कुछ ऐसा वैसा किया होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर हमें लोहे जैसा बनाने के लिए, यानी कि हमारे सुधार के लिए, वो घोड़े पर सवार होकर आएंगे। नेक्स्ट इनकी सवारी की बात करें तो हिरण। शनि देव का एक शुभ वाहन माना गया है। हिरण चंचलता और गति का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं में इसका संबंध मानसिक शांति और स्थिरता से है। अब बारी आती है गधे की, यानी कि गधा। जब शनि ताम्र यानी तांबे के पाए पर गोचर करते हैं उस वक्त इनका वाहन होता है गधा, और इस पर इनका आना सामान्यतः अशुभ या फिर संघर्ष भरा माना जाता है। ये कड़ी मेहनत, परिश्रम और धैर्य का प्रतीक है। नेक्स्ट वाहन कुत्ता। जब शनि स्वर्ण यानी सोने के पाए पर आते हैं, और सोना सबसे महत्वपूर्ण धातु भी है, इसलिए इस वाहन को अत्यधिक शुभ माना जाता है। ये वफादारी, सुरक्षा और अचानक धन लाभ का संकेत देते हैं। अगला भैंसा। इसे भी एक महत्वपूर्ण गोचर सवारी माना जाता है। भैंसे का वाहन होना संघर्ष और चुनौती से भरा होता है। ये कर्मों की कठोर नियम और अटूट शक्ति को दर्शाता है। अगला गिद्ध। जब शनि सामान्य दिनों में यात्रा करते हैं, गिद्ध मृत्यु या मृत्यु के बाद के संसार का प्रतीक माना जाता है। ये जीवन की नश्वरता और वैराग्य का बोध कराता है। अगला शेर। ये शनि देव के सबसे शक्तिशाली वाहनों में से एक है। शेर साहस, निर्भयता और नेतृत्व का प्रतीक है। ये जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं और शत्रुओं का नाश करने की क्षमता को दर्शाता है। यानी आपने जिस तरह से कर्म किया होगा और अगर आपका निर्णायक समय होगा और उस पर शनि देव ने अगर शेर पे सवारी की है तो समझ लीजिए आपके शत्रुओं का तो भाई क्या होने वाला है। और जो आम तौर पे हम जानते हैं कि इनकी सवारी दर्शाई जाती है कौवे के रूप में, तो इनका जो 9वां वाहन है वो है कौवा। इसे शनि का सबसे प्रिय और पारंपरिक वाहन माना जाता है। कौवा अपनी सतर्कता और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। इसके पीछे की कथा में बताया गया है कि ये जातक को सचेत रहने और अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार रहने का संदेश देता है। शनि देव अपने इन 9 वाहनों के माध्यम से मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। प्रत्येक वाहन का अपना विशेष महत्व और है, और साथ ही साथ में जो व्यक्ति के जीवन में आने वाले अच्छे या बुरे समय का भविष्यवाणी भी करता है। चलिए फिर चलते हैं एक और प्यारे से भजन की ओर और लेते हैं शनि देव की कृपा। ओम संग शनिश्चराय नमः।

जी हाँ श्रोताओं, आप शो सुन रहे थे भोरे भोरे की आध्यात्मिक किरणों से भरपूर यानी कि पहली किरण। मैं थी आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा और अब वक्त आ गया कि आपसे विदा लिया जाए। जी हाँ, आज हमने बात की शनि देव जी की। शनि देव हमें डराना नहीं, जीवन का सही रास्ता दिखाना सिखाते हैं। कर्म अच्छे हों, नियत साफ हो और मन में दया हो तो हर कठिन समय भी एक नई सीख बन जाती है। इसी विश्वास के साथ दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई पहली किरण के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय जिनेंद्र, रब राखा सब राखा, अल्लाह हाफिज, जय शनिदेव।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है, और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें।
1: हां जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो आज है सैटरडे मॉर्निंग, यानी कि वीकेंड वाली मॉर्निंग, और आपकी मॉर्निंग जॉक आपके साथ है। और आज के सफर में हम चलते हैं बेसाख्ता होकर।

0: सो भाई साहब, आज भी सैटरडे है और आज है वीकेंड। वीकेंड का कोई स्पेशल प्लान है या नहीं है? और अगर नहीं है तो खैर कोई बात नहीं, फिलहाल मॉर्निंग का प्लान तो आपका ऑलवेज साथ में रहना होता है। सो चलिए, फिलहाल हर बार की तरह इस बार भी सैटरडे मॉर्निंग में हम आपके साथ में हैं। और अब वक्त हो गया आपके थॉट ऑफ द डे का, और हम बताते हैं कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे क्या है और आपसे क्या कहना चाहता है आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो आज का थॉट क्या कहता है? आज का थॉट कहता है कि भाई हम सैटरडे में बात कर रहे हैं, सो जाहिर है बात में कुछ अपने लोग होंगे और कुछ अपनी बातें होंगी। सो आज का थॉट कहता है कि अपनत्व का कोई रूप नहीं होता, जब किसी की अनुभूति यानी कोई महसूस खुद से भी ज़्यादा अच्छा लगने लगे वही अपनत्व है। यानी अपना होने का कोई रूप नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है कि ये अपना है वो अपना है। अपनत्व एक फीलिंग है, एक भाव है, और ये तब होता है जब किसी की अनुभूति, किसी का एहसास खुद से भी ज़्यादा अच्छा लगे, तो वही अपनत्व है। ऐसा कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। सो हमारे अपने कौन होते हैं? जिनके होने से हमारे पास, हमारे आसपास की चीज़ें हमको बहुत अच्छी लगने लगती है, राइट? सो वही हमारा अपनत्व है, वही हमारी फीलिंग्स हैं। ऐसा कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। सो आई होप कि आज का थॉट ऑफ द डे आप समझ गए होंगे और आप तक ये थॉट पहुंच गया है बामुकम्मल। सो भाई अब आप भी देख लीजिए कि आपका अपना कौन है और आप किस तरह से अपनेपन को परिभाषित करते हैं। और अगर कोई ऐसा है जो अपनत्व की भावना देता है तो ये सैटरडे आपके लिए बहुत स्पेशल डे है। ये वही दिन हो सकता है जब आप अपनत्व की भावना लेकर के अपने को एक्सप्रेस करें। सो आज का ये दिन वही अपनत्व की भावना को एक्सप्रेस करने को बोलता है। सो कैसा लगा आज का थॉट ऑफ द डे हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल आइए चलते हैं अगले म्यूजिकल ब्रेक पर।

वैसे हमने हमेशा छोटे छोटे और टिनी स्टेप्स की बात की है कि भाई अगर हम बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो जाहिर सी बात है हम जो चाहते हैं फिर वो कर लेते हैं। सो अगर इस मंथ का भी आपने कोई ऐसा स्टेप सोच के रखा था कि भाई जुलाई आते ही हम ये शुरू कर देंगे, तो आज ज़्यादा नहीं, अभी 4 तारीख स्टार्ट हुई है, अभी यानी 3 ही दिन हुए हैं, 4th दिन स्टार्ट हुआ है। सो शुरू होने से पहले आप कहीं ना कहीं आज ये डिसाइड कर ले कि इस मंथ की आपकी कौन सी छोटी सी आदत है वो होने वाली है चेंज। इट मे बी रीडिंग, या कुछ वॉकिंग शॉकिंग हो जाए, या कुछ मॉर्निंग में हेल्दी पानी शानी पीने की आदत आप डाल लें, कुछ भी ऐसा, खुद को हाइड्रेट रखने की बहुत छोटी सी आदत आपको काफ़ी अलग बनाने वाली, काफ़ी अलग ले जाने वाली है। सो अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर बनाइए, और अगर आप ऐसा कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं तो फिर क्या ही बात कहने, फिर तो आप बहुत सही रास्ते पर हैं, है ना। और अगर ऐसा हुआ है तो उसके लिए मुबारकबाद कि भाई आप बढ़ चुके हैं ऐसे ही रास्ते पर।

0: चलिए भाई, खुले आसमां में देखिए बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं और ये आसमां कोई और नहीं बल्कि ये आपकी मोहब्बतों का आसमां है। क्या बात है भाई, सुबह सुबह इतनी प्यारी बात है यार, सच में सूट करती है।
1: Now you're listening, Good Morning Kota with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई बहुत सारे मैसेजेस हैं चैट बॉक्स पर, और सबसे पहला जो है मुकेश यादव का है, गोंडा से लिखते हैं मुकेश, गुड मॉर्निंग, दिल से गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। कमल नयन जी हैं आरजे अदनान से, गुड मॉर्निंग टू यू कमल जी, और इतने सारे हार्ट इमोजीज बता रहे हैं कि आज आपका दिल गार्डन गार्डन हो रही है, वैसे क्या वजह है ज़रा बताइए। आशु मिश्र जी हैं, सुबह की प्यारी रौनक तो देखो, इन आँखों में आपकी तस्वीर तो देखो, हमने आपको प्यारा सा गुड मॉर्निंग किया है, एक बार उठकर मोबाइल तो देखो। अजी हम मोबाइल देखते ही हुए हैं, आपकी कोई विशेष नहीं आई। हाँ गीता श्रीवास्तव जी लिखती हैं, गुड मॉर्निंग आरजे सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। इसके बाद धर्मेंद्र मोहन जी हैं आवास विकास गोंडा से, अदनान सर जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी सुबह, आपको भी हैप्पी सुबह, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसले से भरी एक कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद प्रीति जी ने लिखा है, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। दिलीप साहू जी हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। और इसके बाद जो है वो आप लोगों ने आज के थॉट पर अपने बहुत सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं, आइए क्या दिए हैं आइए बताते हैं। सबसे पहले जो है कमल नयन जी ने लिखा है कि अपनत्व प्रेम महसूस करता है जिससे वो रिश्ता परिवार जैसा लगने लगता है, सुपर थॉट, थैंक यू सो मच। और आपने भी यही चीज़ कहा कि महसूस होता है, वाह, मुझे लगता है यही सबसे बड़ा पॉइंट है जिसको अभी हम लोग बातचीत में शायद एक बार वापस से समझ पाएंगे। आशु जी कहती हैं कि कौन अपना है कौन पराया है ये वक्त बताता है, कभी कभी अपनापन दिखाने वाला भी अपना नहीं होता, और जो नहीं दिखाता है वो साथ खड़ा होता है, वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच। यानी आपके कहने का भी सार यही निकल रहा है कि ये भी महसूस ही होता है, वाह वाह वाह वाह। गीता जी लिखती हैं, अपनेपन का कोई फॉर्मूला नहीं जिसे रट लिया जाए, ना ही कोई स्केल है जिस पर नाप लिया जाए, हजारों की भीड़ में भी कोई अपना नहीं लगता, कभी कभी बहुत दूर रहने वाला अपना लगता है, बहुत कन्फ्यूजन है इस अपनेपन में भाई। अच्छा, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन रुकिए मैं बताता हूँ, सॉल्यूशन जैसा कुछ तो नहीं है, क्योंकि कभी भी रिश्ते या इमोशंस इनके लिए कोई एग्जैक्ट पैमाना नहीं हो सकता है, इनके लिए पैमाने इसीलिए बनाए नहीं गए क्योंकि ये कितने भी हो सकते हैं। सो बट एक चीज़ हमेशा समझ में आती है, अगर आपकी आशु जी की बात और आपकी बात दोनों ले लिया जाए, तो आशु जी ने कहा कि कभी कभी अपना दिखाने वाला भी है ना, और आपने कहा कि कोई स्केल नहीं होती, तो बात बिल्कुल सही है कि ये हमारे रिश्तेदार हैं या ये हमारे घर में हैं तो ये अपनापन ज़रूर फील होगा, ऐसा कई बार नहीं भी होता है, एंड इसको मानने में कोई गुरेज नहीं है, हमें कई बार अपनापन बिना बताए किसी के बिना कहे फील होता है, शायद कोई बहुत कम हमसे बोलता हो, शायद जिसका मिलना हमसे काफ़ी कम हो, कभी कभारी हो, लेकिन मिलने पर ऐसा आपको कंफर्ट मिलता है, आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप जैसे खुद हैं वैसे रह लेते हैं, और उनकी प्रेजेंस आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो वो प्रेजेंस जो आपको महसूस होती है वही अपनापन है, गॉट माई पॉइंट, यस यही है। एंड प्रीति जी लिखती हैं, हकीकत बयां करता हुआ ऑसम थॉट, मुश्किल और दुख की घड़ी में अपनों की पहचान होती है, क्योंकि सुख के दिनों में लोग अपने आप ही खींचे चले आते हैं, उन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके। एंड गीता जी ने कहा है कि रियल कहूँ तो आप भी थोड़े थोड़े अपने से लगते हैं, बिन बुलाए मेहमान रोज पहुँच जाते हैं तो क्यों नहीं लगेंगे, आदत सी बन गई है, थैंक यू सो मच। जयप्रकाश मिश्र मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड धर्मेंद्र जी ने कहा है कि अपने की पहचान नहीं पराए से दोस्ती, इसलिए अपनापन भी को रहा है, ओके। सो देखिए, अपना और पराया इसकी डेफिनेशन तो आप खुद तय करने वाले हैं, और ये आपके मन में चलने भी वाला है, और चलाइए, बिल्कुल चलाइए, लेकिन इसके साथ ही साथ एक चीज़ हमेशा कि जो चीज़ें महसूस होती हैं आपको बहुत अंदर से, वो बहुत रियल होती हैं, रियल होती हैं दुनिया के लिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, रियल होती है आपके लिए, ऐसा कह रहा हूँ,
सो जो चीज़ें महसूस हो थोड़ा सा ठहर कर आराम से देखने पे समझ में आ ही जाता है। सो चलिए, इतनी प्यारी प्यारी बातें हो गई और इतने अपनेपन की बात हो गई, सो क्यों ना आज के इस सैटरडे जिससे भी आप अपनापन महसूस करते हैं उससे जाके बयां करें और कुछ टाइम उसके साथ भी स्पेंड करें। खैर देखिए, मैं तो आपके साथ रोज़ कर रहा हूँ, है ना।

सो भाई, जिन गानों को आप बहुत पसंद करते हैं, जिन गानों को आपने काफ़ी बार सुना है, नज़र के सामने जिगर के पास मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। अब आप सोचेंगे इतने सारे गाने आखिर हम क्यों गा रहे हैं। आशिकी मूवी का हो, या दिल है कि मानता है नहीं का हो, या फिर जख्म का हो, या फिर क्रिमिनल का हो, या फिर नाम का हो, लेकिन ये सब मूवीज़ को बनाने वाले यानी इसके मेकर महेश भट्ट फ़िलहाल फिल्म मेकिंग को अलविदा कर रहे हैं। सो महेश भट्ट की ऐसी कई सारी मूवीज़ हैं जिनके कई सारे गाने आज भी लोगों की जुबा पर होते हैं, और फिल्म मेकर से बहुत हद तक डिपेंड करता है कि भाई उसमें कौन सिंगिंग करने वाला है, कैसी फिल्म की स्टोरी जाने वाली है, कैसा एक मैसेज जाएगा सोसाइटी को, ये सब कुछ तय होता है। सो फिलहाल महेश भट्ट का एक पूरा दौर रहा है, और अब महेश भट्ट फिल्म मेकिंग को कर रहे हैं अलविदा। सो पांच ऐसी ख़ास मूवीज़ के बारे में हम आपको आकर के बताने वाले हैं, जिसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये इनकी क्लासिक मूवीज़ हैं। जी हाँ, इनके पूरे करियर की कौन सी पांच ऐसी मूवीज़ हैं जिनको हम क्लासिक मान के बताने वाले हैं, उसके थोड़ी सी कहानी के साथ में बहुत इंटरेस्टिंग है। शायद आपको आपकी फेवरेट मूवी भी इनकी बनाई हुई याद आ ही जाए। खैर, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले इस गाने को एंजॉय करिए। वापस जब आएंगे तो बताते हैं महेश भट्ट की पांच क्लासिक मूवीज़ के बारे में।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियाँ हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या बात है भाई। और इसी में आप लोगों ने बाकायदा बता भी दिया है। सुगीता जी का है जख्म, अर्थ आशिकी, सारांश और सड़क। क्या बात है। एंड कमल नयन जी कहते हैं सर महेश भट्ट की 5 मूवी क्लासिक है, सड़क, जख्म, सारांश, अर्थ आशिकी। क्या बात है, आपने भी सेम बात कही है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो आप लोगों ने बताया क्या वहीं की क्लासिक मूवी कहलाती है, और अगर कहलाती है सुबह है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.

हाँ जी, तो पहला है सारांश। बिल्कुल सही अंदाज़ा आपने सारांश का लगाया था। दरअसल ये 1984 में आई थी और कम बजट में बनी ये फिल्म महेश भट्ट के करियर का मील का पत्थर, इवन बोल सकते हैं माइलस्टोन जैसे किसी की लाइफ का होता, वो ये साबित हुई थी, जिसमें अनुपम खेर, रोहिणी हंगगड़ी और सोनी राजदान के शानदार एक्टिंग से इस मूवी में एक बुज़ुर्ग दंपत्ति का दर्द और उनकी फीलिंग्स जो स्ट्रगल करती है। इस मूवी ने अनुपम खेर को रातों रात स्टार बना दिया था और ये ऑस्कर के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री भी बनी थी। ज़रा सोचिए कितनी ज़बरदस्त थी ये सारांश। फिर आई अर्थ, बहुत अच्छे से जानते हैं आप इसके, और ये आई थी 1982 में। अपने वक्त में काफ़ी आगे माने जाने वाली अर्थ जो है, वो जो आजकल जो शादी के रिश्ते होते हैं, वैवाहिक रिश्ते, बेवफाई और एक महिला के आत्मसम्मान की एक बेहद बोल्ड और संजीदा कहानी थी। इसमें कौन था? इसमें शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल और कुलभूषण खरबंदा के दमदार एक्टिंग से सजी ये मूवी। फिल्म को समीक्षकों ने खूब सराहा और इसके लिए शबाना आज़मी को राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। तीसरी मूवी है दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। जी हाँ, सो ये बॉलीवुड की सबसे यादगार और सफल रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ में से एक बनी, जिसमें आमिर खान और पूजा भट्ट की जादुई केमिस्ट्री और इसके सुपरहिट गानों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। आज भी ये फिल्म हर पीढ़ी के जो दर्शक हैं उनकी पहली पसंद बनी हुई है, दिल है कि मानता नहीं, राइट? इसके बाद है सड़क, जो कि 1991 में आई। संजय दत्त और पूजा भट्ट स्टारर ये ब्लॉकबस्टर मूवी जो है रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। सो इस फिल्म में सदाशिव अमरापुरकर के जरिए अभिनय निभाया गया, जिसमें महारानी का खौफनाक विलेन किरदार आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे आइकॉनिक किरदारों में गिना जाता है। ये फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ में से शामिल थी। सड़क, जो कि 1991 में आई थी, यानी जिस साल आई थी दिल है कि मानता नहीं, उसी साल 1991 में सड़क भी आई थी। और इसके बाद नंबर आता है जख्म। जी हाँ, पांचवी मूवी जख्म है। सो महेश भट्ट की, इनकी खुद की निजी जिंदगी से इंस्पायर्ड माने जाने वाली जख्म जो है, वो सांप्रदायिक हिंसा और पारिवारिक जो रिश्तों के ताने बाने पर एक बनी बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड मूवी थी, जिसमें अजय देवगन, पूजा भट्ट और सोनाली बेंद्रे के बेहतरीन एक्टिंग से ये मूवी फिल्म के लिए अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। सो बहुत आइकॉनिक मानी जाती है महेश भट्ट की ये मूवी। और गीता श्रीवास्तव जी ने कहा है कि दिल है कि मानता नहीं, हम है राही प्यार के, दोनों मूवी बहुत अच्छी है। बेशक वैसे तो महेश भट्ट की एक दौर हमने कहा ना रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ पसंद की जाती रही थी, लेकिन अगर आज हम टोटल क्लासिक मूवी की बात करें तो जिसमें हमने आपको बताया कि भाई जख्म, सड़क, दिल है कि मानता नहीं, अर्थ और सारांश, ये पांच ऐसी मूवी है जो इनकी क्लासिक मूवी मानी जाती है। हालांकि ये तो समीक्षकों के हिसाब से है, लेकिन आपको जो पसंद है डेफिनेटली वो ही मानी जाएगी। सो चलिए भाई, इनकी बहुत सारी मूवीज़ के बारे में आपको उसकी स्टोरी भी याद आ गई होगी। और अभी फ़िलहाल तेरे दर पर सनम, यानी फिर तेरी कहानी याद आई, इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया था महेश भट्ट ने और गाना था तेरे दर पर सनम। फ़िलहाल ये गाना आज की पीढ़ी में भी गाया गया है और कितना ज़्यादा पसंद किया गया है, अब इस गाने से ज़रा सुन करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी जब ऐसे सॉन्ग्स को कवर किया जाता है तो सुनने में कितने खूबसूरत लगते हैं।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
0: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज, 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
0: अरे सुना
3: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

भाई साहब, एक किताब बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अब किताब का टाइटल सुन करके तो आपके भी होश फाख्ता होने वाले हैं और आप कहने वाले हैं ये क्या चीज़ है। कोई बात नहीं, किताब का अगर हम नाम बताएं तो सच में आप परेशान हो जाएंगे। किताब जो है वो है हाउ टू किल मैन एंड गेट अवे विद इट, यानी आदमियों को मारने वाली किताब आखिर इतना क्यों वायरल हो रही है। जी हाँ, आदमियों को मारने वाली किताब, बिल्कुल सही सुना आपने। किताब का चूंकि टाइटल ही है हाउ टू किल मैन एंड गेट अवे विद इट, है ना, काफ़ी ज़्यादा चर्चा वाला विषय। सो अभी हाल में ऐसी कई सारी घटनाएं घटित हुई है जिसके बाद ये किताब कुछ ज़्यादा ही सेंसेशन में आ चुकी है और इसको काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो आखिर ऐसा क्या है इस किताब में कि भाई आज के ऐसे सिनारियों में जब इस तरह की घटनाएं काफ़ी हुई हैं जिसमें अपने फीमेल पार्टनर ने मेल पार्टनर को शादी से पहले या शादी के बाद जो है मारा है, लेकिन फ़िलहाल इन्हीं चर्चाओं के बीच आखिर ये इस टाइटल के साथ में आई हुई किताब में ऐसा क्या है। चलिए फिलहाल इस किताब में ऐसा क्या है ये तो हम म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार जान ही लेंगे, लेकिन तब तक आप ज़रा सोच के हमको चैट बॉक्स पर बताइए कि इस मूवी में क्या हो सकता है, यानी इस मूवी के बाद अब इस बुक में क्या हो सकता है।

0: पहला सवाल तो यही हो रहा है कि इस गाने में क्या बोला गया है 24x7 उसके आगे, अगर आप समझ गए तो बता सकते हैं। बहुत छोटा सा लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैलेंज है। हालांकि इसके अलावा गीता जी ने बता दिया कि अभी कोई मेट्रो में एक लड़की पढ़ रही थी और वायरल हो गई। सो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये जो बुक है जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि भाई आदमियों को मारने वाली किताब आखिर वायरल क्यों हो रही है, क्योंकि किताब का टाइटल ही है हाउ टू किल मैन, और ये है कैटी ब्रेंट एंड ये एक नॉवेल है और इसका पूरा नाम है हाउ टू किल मैन एंड गेट अवे विद इट। सो आखिर इस बुक में क्या है, इसका कंटेंट क्या है, आइए आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

इस तरह के रिएक्शन जब वो लड़की पढ़ रही थी बुक और उसकी रील वायरल हुई, जिसके कमेंट सेक्शन में आकर के इस तरह के कमेंट्स नज़र आए। लेकिन इस किताब की असल स्टोरी क्या है, बात तो ये है, अभी तो हमने सिर्फ इतना ही जाना कि ऊपर लिखा है हाउ टू किल मैन एंड गेट अवे विद इट, बट बात आती है कि एक्चुअल में इस किताब के अंदर क्या है। इसका कवर पेज देख करके तो वायरल हो गया, और कई बार कहा भी जाता है कि भाई कवर पेज देख करके बुक को जज नहीं किया जा सकता है, राइट? क्या इसमें सच में आदमियों को कत्ल करने के तरीके बताए गए हैं, ये एक सवाल है। सो इसकी कहानी के बारे में अगर हम बताएं कि भाई जो ये नॉवेल है इसमें है क्या, सो किटी कॉलिंस नाम की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कहानी है ये, जो आत्मरक्षा में उससे कैसे इंसान की हत्या हो जाती है जो उसके साथ कहीं ना कहीं सेक्सुअली हरासमेंट करने की कोशिश करता है। सो किसी तरह वो बच जाती है, और अब किटी को लगता है कि दुनिया में ऐसे कई पुरुष हैं जो महिलाओं के लिए ख़तरा हैं। सो वो खुद ही उन्हें सज़ा देने का फैसला कर लेती है और एक एक करके ऐसे लोगों को मारने लग जाती है। सो किताब ये सवाल उठाती है कि अगर कानून किसी अपराधी को सज़ा ना दे पाए तो क्या किसी आम इंसान को खुद न्याय करने का अधिकार है या नहीं। कहानी ये भी दिखाती है कि कई महिलाएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेक्सुअली हैरेस्ड होती हैं, या फिर हिंसा या फिर डर का सामना कर रही होती हैं। ये उनके एक्सपीरियंस पर जो है वो सटायर है, कि व्यंगात्मक है, लेकिन एक तीखी टिप्पणी करता है। सो किताब में नैतिक दुविधा यानी मॉरल एम्बिग्यूटी भी है, इस पर फोकस है। सो किटी जिन लोगों को मारती है वो लोग बहुत बुरे हैं, फिर भी सवाल यही रहता है क्या किसी बुरे इंसान को मारना सही है। किटी की सोशल मीडिया वाली चमकदार ज़िंदगी और उसकी असली ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। किताब में ये दिखाया गया है कि ऑनलाइन दिखने वाली परफेक्ट लाइफ अक्सर सच नहीं होती है। किताब ये भी एक मैसेज छोड़ती है कि चाहे मर्डर किसी भी वजह से किया जाए, उसकी मानसिक बोझ, डर और परिणाम अच्छे इंसान का पीछा नहीं छोड़ते हैं। सो किताब में कई सारे सवाल हैं, और किताब की अगर हम बात जैसे कि अब कर चुके हैं तो शायद आपको सुनने के बाद अब कई सारे एस्पेक्ट्स आपको नज़र आए होंगे बुक के, कि आखिर बुक भी कई सारे सवाल उठाती है। क्योंकि ऐसे भी समाज में हाँ बहुत केसेस हैं आए दिन रोज़मर्रा, जहाँ पर महिलाओं के साथ इस तरह की हिंसा या इस तरह का उनका शोषण होता है। जबकि हमने कुछ ही केसेस पढ़े हैं, 3-4 केसेस, पहाड़ियों से ढकेल दिया नीले ड्रम में, इस तरह के, और इस पर बड़े ही मीम्स वायरल होते हैं। लेकिन ये जो 4-5 घटनाएँ बहुत हाईलाइट हो रही हैं, और इस तरह की कुछ कुछ घटनाएँ आती रहती हैं, इससे कहीं ज़्यादा रोज़ की घटनाएँ हो रही हैं पर डे। अगर हम एक दिन की बात करें तो ऐसी न जाने कितनी घटनाएँ सिर्फ अपने भारत में ही हो जाती है। तो ज़रा सोचिए कि एक तरफ तो हम मीम बना लेते हैं, बहुत बड़ी बात होती है, और एक तरफ इतनी ईजी बात हो गई है कि महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है वो बहुत नॉर्मल सी बात है क्या, ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, राइट? सो इस तरह की कई सारे सवाल उठाती है ये किताब, और ये किताब ऐसे लोगों को दिखाती है कि भाई ऐसे लोगों को मारा गया है जो बहुत बुरे हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है कि क्या बुरे इंसानों को मारना सही है। सो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब फ़िलहाल सडन ना ही दिया जाए तो बेहतर है, इसको शायद रीथिंक करने के लिए, इसको सोचने के लिए। तो ज़रा आप भी सोचिएगा इन सवालों के जवाब, और देखिए कि आपको अपने अंदर से इसका आखिर जवाब क्या मिलता है। क्योंकि सवाल जो है वो बड़ा ही पेचीदा तो है ही है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, और हमारी सोसाइटी का ना चाहते हुए भी एक बड़ा हिस्सा है।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
5: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
4: सच में? क्या खास है वहाँ?
5: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
4: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
5: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
4: और फोटोग्राफी वगैरह?
5: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
4: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
5: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613 949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
4: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
6: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: बेटा राजू, क्या तुम्हें पता है कि एलोवेरा क्या होता है?
1: हाँ मैडम जी, जब एक पंजाबी विस्की का पैग अपने बड़े भाई को देता है तो कहता है एलोवेरा चीयर्स।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

मैं छाया पटवार रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

क्या बात है। तो चांद तारे की बातों तो कोई हम करते ही रहते हैं और हो भी गई है फिलहाल चांद तारों की बातें। इसी बीच में अब हम बातें करने वाले हैं अपने श्री गोंडा की, यानी कि चलने वाले हैं सिटी अपडेट की तरफ और जाने की भाई क्या है आज गोंडा में चल रहा। तो चलिए इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार वापस से आ रहे हैं और फिर बताते हैं क्या कुछ हो रहा है अपने गोंडा शहर में सिटी अपडेट्स में। फिलहाल आप बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में अपने मॉर्निंग जॉकर जो अदनान के साथ। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और टाइम है 10:03।

0: सुबह भी सुबह 10 बजे से ही, क्योंकि इस वक्त 10:07 हो रहा है आपके 89.6 FM के स्टूडियो में, और सुबह 10 बजे से नगर कोतवाली सहित सभी थानों में आज समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। और क्या क्या हो रहा है हमारे आज के इस गोंडा शहर में, आइए आपको बताते हैं सिटी अपडेट्स में।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan.

सो भाई, जैसा कि हमने बताया, सभी नगर कोतवाली सहित थानों में समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है। इसके अलावा सुबह 10 बजे से ही शिक्षा क्षेत्र परसपुर के कंपोजिट विद्यालय त्योरासी में स्कूल चलो अभियान के तहत रैली इस वक्त निकाली जाने वाली है। सो ये फ़िलहाल दो इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं आज हमारे गोंडा में। एंड फिलहाल जो LBSPG कॉलेज के सामने एक युवक की मौत हो गई थी करंट से, उसको लेकर के बताया गया कि क्षतिग्रस्त भूमिगत केबल से पोल में उतरा था करंट। जी हाँ, लगातार बारिश और जलभराव की वजह से क्षतिग्रस्त हिस्से से पोल में करंट उतरने से यह हादसा हुआ, जिससे बहराइच के हुजूरपुर भगड़वा निवासी विमल कुमार 24 साल के थे, इनकी मौत हो गई, जबकि इनकी बहन गंभीर रूप से झुलस गई थी। सुमृतक के भाई प्रशांत कुमार ने SP को प्रार्थना पत्र देकर नगर पालिका परिषद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। इनका आरोप है कि विद्युत सुरक्षा व्यवस्था में लगे लापरवाही से इनके भाई की मौत हुई है और उनकी बहन मानसिक रूप से भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी विशाल कुमार की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया कि सामान्य परिस्थितियों में भूमिगत केबल क्षतिग्रस्त होने से करंट बाहर नहीं आता, लेकिन लगातार बारिश और आसपास जलभराव से करंट का रिसाव होकर स्ट्रीट लाइट के पोल तक पहुंच गया, इसी वजह से यह हादसा हो गया है। फिलहाल सूत्रों की माने तो जिलाधिकारी ने घटना को गंभीर विद्युत सुरक्षा चूक मानते हुए नगर पालिका विद्युत विभाग और तकनीकी टीम से संयुक्त जाँच रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट्स की तरफ, और अगली जो अपडेट आ रही है वो ये है कि लापरवाही पर 6 नर्सों का वेतन भी रोका गया है। आपको बता दें, करनैलगंज का ये मामला है। CHC में स्वास्थ्य योजनाओं की रिपोर्टिंग में लापरवाही बरतने पर अधीक्षक ने 6 स्टाफ नर्सों के जून के वेतन और मानदेय पर रोक लगा दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्कूल परिसर पर 11 KV लाइन गिरने से JEE को निलंबित भी किया गया है। ये तरबगंज का मामला है। जमाल खानी कंपोजिट विद्यालय परिसर में 11 KV हाई टेंशन लाइन टूटकर गिरने से मामला, बिजली विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है और प्रारंभिक जांच में लापरवाही मिलने पर अधीक्षण अभियंता सुशील कुमार यादव ने, जो संबंधित JEE हैं, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली जो अपडेट है वो है कि भाई दूसरे की जगह पर टेट का देते पकड़ा गया एक युवक। जी हाँ, सो गोंडा के ही वजीरगंज के राजेंद्र नाथ लाहिड़ी स्मारक इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर एक युवक को दूसरे की जगह पर टेट का पेपर देते हुए पकड़ा गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की सूचना पर दोबारा कराए गए बायोमेट्रिक और आयरिस सत्यापन में डेटा मिसमैच होने पर मामले का खुलासा हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि साफ सफाई से सुखुई नदी को मिलने वाला है नया जीवन। जी हाँ, सो DM प्रियंका निरंजन ने शुक्रवार को तहसील तरबगंज के बेलसर ब्लॉक के 2 गांव में विकास कार्यों की हकीकत को देखा। सो आपको बता दें कि DM ने सबसे पहले ग्राम पंचायत अकौनी पहुंची, जहां साल 2020-21 में मनरेगा के तहत बनाए गए तालाब का निरीक्षण किया। तालाब की स्थिति अपेक्षित स्तर पर नहीं मिली। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्याम सुंदर ने अब तक वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव को कार्यभार हस्तांतरित नहीं किया, इससे गंभीर लापरवाही मानते हुए DM ने संबंधित सचिव के निलंबन के निर्देश जो है वो दे दिए हैं, जिसके बाद DM ने ग्राम पंचायत मुकुंदपुर में मनरेगा से जो बना तालाब है उसको देखा और ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों को तालाब की नियमित साफ सफाई और सुंदरीकरण के निर्देश दिए। इसके अलावा DM ने माँ वाराही देवी मंदिर परिसर भी पहुंची। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर के समीप बहने वाली सुखुई नदी विलुप्त होने की कगार पर, इस पर उन्होंने SDM तरबगंज प्रदीप कुमार और BDO बेलसर रवि कुमार को नदी की साफ सफाई, अतिक्रमण हटाने, सुंदरीकरण और पुनर्जीवन के लिए समन्वित कार्य योजना तैयार कर जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला विकास अधिकारी, DC और जिला आपदा विशेषज्ञ आदि मौजूद रहे थे। सो ये जो अपडेट थी वो ऑफ कोर्स DM के निरीक्षण की थी, जो कि हमने आप तक पहुंचा दी और साथ ही साथ बता दिया है। अब आई होप कि भाई आप तक ये ज़रूरी जानकारियां जो है वो पहुंच गई होंगी और कहीं ना कहीं ये आपके काफ़ी ज़्यादा
काम की रही होंगी। सो चलिए, ये तो अपडेट्स थी सिटी से जो कि गोंडा शहर से थी, और हमने आपको बताया कि किस तरह से फ़िलहाल गोंडा शहर में क्या कुछ चल रहा है कुछ अपडेट्स के माध्यम से। अब फ़िलहाल चलते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग आपको सुनाते हैं इस मॉर्निंग वाले शो में, और आप कहने वाले हैं क्या बात है भाई, इतने वक्त बाद ऐसा आइकॉनिक सॉन्ग सुनो तो जैसे लगता है वापस से वो दौर वापस आ गया और हम कहीं अलग ही सफ़र पर निकल चुके हैं। तो चलिए आपको ऐसे बहुत ही खूबसूरत गाने से रूबरू कराते हैं।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हाइपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हाइपेटाइटिस ए, हाइपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
3: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि भाई चलते चलते ई रिक्शा रोक दिया जा रहा है सिर्फ एक एप्लीकेशन से। आखिर क्या है ये एप्लीकेशन और इसको लेकर के फ़िलहाल अब क्या हो चुका है एक्शन जो ये एप्लीकेशन को डेवलप किया गया था, ये सब कुछ बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

तो भाई फिलहाल केंद्र ने कई शहरों में ई रिक्शा चालकों के लिए मुसीबत बने चीन के तीन ऐप बैट बीएमएस लॉसजी और इपोचली आयन को ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। फिलहाल बताया गया है कि दो ऐप हटा भी दिए गए हैं। ये मामला चीन के ऐप बैट बीएमएस के रिपोर्ट शटडाउन फीचर के ज़रिए ई रिक्शा की बैटरी बंद करने के दावे के बीच में सामने आया है। सो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन ऐप्स का ब्लूटूथ के ज़रिए बैटरी को बंद करके चलते और ई रिक्शा को रोक देते थे। इससे जो रिक्शा चलाने वाले चालक थे आई नो कि भाई बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें, इससे इनको काफ़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि बंद ई रिक्शा जिस मोबाइल ऐप के ज़रिए बंद किए जा रहे थे वो उन्हीं से खुल रहे थे। इसके वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट से जुड़े वाहन प्रबंधन प्रणालियों की साइबर सिक्योरिटी को लेकर के एक बहुत बड़ी चिंता पैदा हो गई है। सो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सचिव एस कृष्णन ने कहा कि ऐप स्टोर को ज़रूरी सतर्कता बरतनी चाहिए और फिलहाल इस मुद्दे को और भी आगे उठाए जाने की बात सामने आ रही है। सो बैट बीएमएस जैसे ऐप पर सख्ती है, ब्लूटूथ से कमज़ोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे ये बदमाश। सो किस तरह कर रहे थे कनेक्ट, आपको हम बता दें कि ई रिक्शा की लिथियम बैटरियों का ब्लूटूथ मैनेजमेंट सिस्टम बिना पासवर्ड या कमज़ोर सुरक्षा का होता है, इसलिए ऐप उससे कनेक्ट हो रहा था। सो उज्जैन में तो इसके ज़रिए फिरौती तक वसूली की जा रही थी और आईटी कानून के प्राविधानों के तहत गाड़ियों के सॉफ्टवेयर को बिना इजाज़त एक्सेस करने और उसमें बदलाव करने के दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कड़ी सज़ा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सो फिलहाल अभी आपने इस ऐप के बारे में काफ़ी सुना होगा, बैट बीएमएस ऐप, और ये जो है एप्लीकेशंस बनाया गया था उन एजेंसीज के लिए, उन सर्विस सेंटर्स के लिए जहां पे ये ई रिक्शा जाते हैं ताकि उससे बैटरी की सारी जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाए सर्विस मैन को ताकि वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से कर पाए। लेकिन इसका मिसयूज़ करते हुए चलते चलते ई रिक्शा को उससे बैटरी से कनेक्ट कर करके शट डाउन किया जा रहा था, जिससे बीच रास्ते में चलते चलते ई रिक्शाज रुके जा रहे थे। वैसा एक नहीं कई सारा मामला देखा गया जिसके बाद फिर अभी ये एक्शन लिया गया कि प्ले स्टोर से उस ऐप को ही हटा दिया गया है, दो ऐप को, और साथ ही साथ ये कहा गया कि भाई इस तरह के ऐप्स जब आते हैं तो उसमें उससे पहले ये देख लिया जाए कि इसका मिसयूज़ ना हो, क्योंकि इस तरह से कई सारे लोगों को, कई सारे ई रिक्शा चालकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इसलिए इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फिलहाल इस पे एक्शन हो गया है और अगर आपके मोहल्ले में भी ऐसा हुआ होगा तो ज़ाहिर है आप भी इस खबर से बाखबर होंगे, यानी आप भी इसको जान रहे होंगे कि हाँ इस तरह के केसेस आ रहे हैं, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर जब हम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं तो इस तरह दिखाया जाता है कि भाई पीछे से बाइक वाले उनके वीडियो शूट कर रहे हैं और बताते हैं हाँ आगे बढ़ाओ और उनको हम ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसको शट डाउन करके अचानक से रोक रहे हैं। सो फिलहाल कई सारे ऐसे भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो इसके खिलाफ आकर के खड़े होकर के बोल रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि जो भी रिक्शा चालक चलाते हैं वो अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए कर रहे हैं जिससे उनका टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, मेंटल ट्रॉमा भी हो रहा है और साथ ही जब वो सर्विस सेंटर जा रहे हैं तो उससे उनके बाकायदा पैसे भी लिए जा रहे हैं, तो हर तरह से वो परेशान हो रहे हैं। और जाहिर है किसी भी ऐसे परेशान इंसान को और परेशान करना ऐसे गुर्बत में इंसान को, ये कहीं भी किसी भी तरह से ना वाजिब है ना जायज़ है और ना ही ये कानून के दायरे में सही है, बल्कि सज़ा का पात्र हो जाता है ऐसा शख्स अगर कोई इस तरह की हरकत करता है। सो फिलहाल हमारी भी रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के इस प्लेटफॉर्म से अपील है कि भाई इस तरह की चीज़ों को मत करें, क्योंकि बहुत परेशान हो जाते हैं ई रिक्शा चालक और इस तरह करना ये मजाक की पराकाष्ठा को पार कर देता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे कहा जाए तो ये क्राइम है, क्योंकि आप चलते चलते रिक्शा को अचानक से रोकते हैं जिससे उसके एक्सीडेंट्स का भी ख़तरा बना रहता है। सो फिलहाल ये दो ऐप हटा दिए गए, ये बहुत अच्छी बात है और इस तरह से ये जो एक बड़ी प्रॉब्लम लगातार सेंसेशन में बनी हुई थी उसको लेकर के उम्मीद है कि अब कुछ बेहतर स्टेप्स लेने के बाद ये चीज़ें सही हो जाएंगी।

0: भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

0: देखिए वैसे तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, और स्पेशली चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें जिससे कि किसी की ज़िंदगी या किसी की परिवार पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े, एक अच्छा असर पड़े। ज़ाहिर आप भी सोचते होंगे, पर आपको ख्याल ये आता होगा कि यार हम क्या ही कर सकते हैं, मतलब कुछ पैसों की मदद कर देते हैं, किसी भूखे को खिला देते हैं, किसी को रोड क्रॉस करा देते हैं, बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी वेरी नाइस। ये इंसानियत की बात के अलावा ये आपके लिए भी बात है कि आप एक इंसान हैं, तो चूंकि ये करते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ़िलहाल हम कुछ ऐसा बताने वाले हैं कि आपके ज़रिए सीधे सीधे किसी की लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, वो भी सिर्फ एक कॉल, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन से। लिटरली यकीन मानिए, सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन से आप बहुत लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं अच्छे तौर पर। कैसे, आइए हम बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.

देखिए साल 2026-27 में सिक्स्थ क्लास से लेकर के ट्वेल्थ क्लास तक में पढ़ाई कर रहे ऐसे सामान्य और दिव्यांग स्टूडेंट्स, यानी लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसके माता पिता का निधन हो चुका है, उनकी पढ़ाई का खर्च दिव्य

दिव्यांग सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट आगरा उठाएगा। जी हाँ, ट्रस्ट के जो प्रकल्प हैं संयोजक, उन्होंने बताया है कि इसके लिए 7 जुलाई तक आवेदन फॉर्म मंगाया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 12 जुलाई है। जो भी कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट होंगे उनको 15,000 रुपये का चेक दिया जाएगा। सो आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, संरक्षक का नाम यानी जो गार्जियन होंगे और पता, पिन कोड सहित सभी जानकारियां आप हम कुछ मोबाइल नंबर्स भेज रहे हैं चैट बॉक्स पर, जिसको आप फॉरवर्ड करेंगे ऐसे परिवार, ऐसे बच्चों तक, तो वो इस पे ये इन्फॉर्मेशंस दे करके ऐसे बच्चों का भला हो सकता है। यानी आप रेडियो सुन रहे हैं इस वक्त, जहाँ से भी आप फ्रीक्वेंसी से अपनी कार में ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, आप खेत में काम करते हुए, आप किचन में खाना बनाते हुए, आप पढ़ाई करते हुए, आप कहीं पे भी सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से, जैसे भी आप सुन रहे हैं, ये नंबर्स आपको मेंशन करके दे दिए जा रहे हैं चैट बॉक्स पर। ये नंबर आप उन परिवारों तक पहुँचा दें जिनके माता पिता नहीं हैं और उनके बच्चे 6th से लेकर के 12th के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं, यानी इन बच्चों का खर्च जो है वो उठा रहा है, जैसा कि बताया, दिव्यांग सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट। सो ये एक बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। सिर्फ करना ये है कि सही शख्स तक ये जानकारी पहुंच जाए ताकि उनकी हेल्प हो जाए। किसी की लाइफ बदल सकती है, डेफिनेटली बदल सकती है। सो नंबर मेंशन कर दिया गया है ऑपरेटर के ज़रिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के चैट बॉक्स पर। और एक बार हम आपको नंबर्स बता भी देते हैं, अगर हो सकता है आप एप्लीकेशन पे नहीं है तो आप नोट कर लें। तो एक ही नंबर अगर आप नोट कर लेते हैं तो भी इससे फ़ायदा काफ़ी हो जाएगा। नंबर है 8279, यानी 8279-13-82-79-81-37-32 यानी 827-913-981-837-32। ये नंबर है, पहला नंबर हमने बता दिया है। बाकी आपको टोटल जो है वो 5 नंबर शेयर्स किए गए हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के चैट बॉक्स पर। और ये नंबर्स जो हैं ये है दिव्यांग सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट आगरा के। इसी पर डॉक्यूमेंट्स आप भेज सकते हैं और इसी पर आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। फिलहाल हमने आपको बता दिया है कि जो बच्चे 6th में हो या 12th तक के बीच में और उनके माता पिता ना हो और वो जनरल फैमिली से हो या फिर वो दिव्यांग हो या वो ऐसे हो जो अपने पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनके लिए ये जो ट्रस्ट है वो सीधे तौर पर हेल्प कर रहा है और उनकी पढ़ाई का खर्च उठा रहा है, जिसमें वो 15,000 रुपये का चेक ऐसे पात्र परिवारों को जांच करने के बाद, उनको सही मिलने के बाद दे दिया जाएगा। सो आप ये नंबर्स ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को, अपने पड़ोस में हो सकता है कोई ऐसा हो आपके, हो सकता हो कोई रिश्तेदारी में हो सकता हो कोई कॉन्टैक्ट में हो या कभी किसी ने जिक्र किया हो, उनको जल्दी से बता दें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो 12 जुलाई है और आज ऑलरेडी 4 जुलाई हो गई है। सो लिमिटेड टाइम के लिए है, ये नंबर्स आप फॉरवर्ड कर सकते हैं जिससे किसी की लाइफ बहुत हद तक इम्पैक्ट हो सकती है अच्छे तौर पर। एंड इसके अलावा चूंकि आज एक कंटेंट आया है बहराइच से प्रीति जी की तरफ से, क्या लिखती हैं आइए बताते हैं। आप लिखती हैं कि उम्मीद टाइटल है, हर हार के बाद एक नई शुरुआत छिपी होती है, बस उसे देखने की हिम्मत चाहिए। जिंदगी कभी आसान नहीं होती लेकिन हौसले उसे जीने लायक बना देती है। खुद पर यकीन रखना चाहिए, जो आज हमें रुला रहा है कल वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। क्या बात है, ये बात तो आपने एकदम सही कही है। जो आज आपको कमजोरी लग सकता है या लग रहा है वही आपकी बहुत बड़ी ताकत बन सकता है, बन जाता है इवन। सो ये बात तो बिल्कुल सच है, 100% सही बात कही आपने, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बहुत ही खूबसूरती से आपने अपनी बातों को रखा और बयां किया, तो ये तो बहुत ही प्यारी बात है। एंड आज के शो में हमने कई सारी बातों का जिक्र किया, मुझे लगता है कि इन सारी बातों में आपको कई सारी ऐसी बातें होंगी जो गुदगुदा भी रही होंगी, सोचने पर मजबूर भी कर रही होंगी
और कुछ तो आपको हमने इतना बड़ा मौका दिया है कि भाई आप भी कोई बहुत अच्छा काम कर सकते हैं सिर्फ एक नंबर सही परिवार तक पहुंचा करके, क्योंकि ऐसे कई सारे पात्र लोग हैं जिन तक ये पहुंचना चाहिए ताकि उनकी फैमिली के लिए, उन बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ा सहारा हो जाए। क्योंकि हो सकता हो भाई उनकी हेल्प नहीं हो पा रही हो, लेकिन इस तरह से उनकी हेल्प हो जाएगी और उनकी पढ़ाई का खर्च निकल आएगा, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चलिए फिलहाल आज का शो कैसा रहा हमको ज़रूर कमेंट करके बताइए। और फिलहाल नंबर मेंशन कर दिए गए हैं आपके 89.6 एफएम की चैट बॉक्स पर आकर के, उसको आप देख सकते हैं, मेंशनड है नंबर, और साथ ही साथ आज के शो के बारे में जो भी आपको कहना बता सकते हैं। फिलहाल आरजे अदनान को दीजिए इजाज़त, क्योंकि अब चलने का वक्त आ गया, आपसे परमिशन ले रहे हैं। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक ज़बरदस्त गाना डेडिकेट करके जा रहे हैं, और फिलहाल आपको बने रहना अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर, क्योंकि अब आएंगे बैक टू बैक आपके फेवरेट शोज सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी पर, जिसे आप जानते हैं 89.6 एफएम वाली फ्रीक्वेंसी। खुश रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गुना शहर की धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: भाई, जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
6: खाना तो बड़ा टेस्टी था, या गलका कितना बढ़िया है, पूरी के साथ तो बिल्कुल यम लग रहा है। इतनी टेस्टी स्वीट डिश हमने कभी नहीं खाई। रबड़ी डालकर दही चूरा बता रहे थे। दही में चूरे को कुछ घंटे भिगोते हैं, चीनी डालते हैं और ऊपर से रबड़ी। घर पर सभी ट्राई जरूर करेंगे,
7: सबको खिलाएंगे 100%, सबको बहुत टेस्टी लगेगी। एक बात बताएं, आज तक जितनी शादी में गए हैं सबने बुफे ही खाया है। फर्स्ट टाइम है कि टेबल पर बैठकर सब लोग खा रहे हैं।
6: सब कितने प्यार से खाना खिला रहे हैं, खुद से खाना परसों, उसमें वो स्वाद ही नहीं होता जो आज के खाने में था। वैसे बफर सिस्टम में कितना खाना वेस्ट होता है, ये हम लोग क्यों नहीं सोचते।
8: चलो चलो, अब बातें बंद करो, शादी की रस्में शुरू होने जा रही हैं। चलो, आंगन में वही मंडप है, रात भर खूब ढोलक पर गाने सुनने को मिलेगा और खूब मजेदार गाने होते हैं, ये शादी की रौनक होती है।

0: ऐसे गाने गा रही हैं लड़के वाले बुरा नहीं मानते। सच में किरण दी गाने बड़े मस्त गाती हैं, लड़के वाले खूब इंजॉय कर रहे हैं।
1: हाँ समता मैम, इनको गाली कहा जाता है। पूरे रात की शादी होती है, इन गानों के कारण किसी को नींद नहीं आती है।
2: लगता है पूरा गांव ही यहाँ पर बैठा है। सबके हाथ में एक एक बर्तन क्यों है? इतने सारे लोग रात भर जागेंगे। यह देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा गांव शादी में इन्वॉल्व होता है।
3: गांव की शादी की यही ब्यूटी होती है। सब लोग मानते हैं कि आज गांव की बेटी की शादी है। पहले लड़की के माँ बाप कन्यादान करेंगे, अपनी बेटी के हाथ में हल्दी लगाकर वर के हाथ में देंगे और कन्यादान करेंगे। साथ में आटे के गोले में कुछ धन छुपाकर गुप्त दान किया जाता है, जो केवल लड़की और उसके माँ बाप ही जानते हैं। पर अब वह दहेज जैसी कुरीति बन गई है।
0: कन्यादान की रस्म शुरू हो गई। अब इसके बाद गांव का हर परिवार बेटी की पैर पूजा करेंगे और एक एक बर्तन देंगे। इससे लड़की की गृहस्थी का हर सामान भी पूरा हो जाता है।
1: पर आजकल लोग गहनों से पैर पूजा करते हैं। पहले शादी को जिम्मेदारी की तरह लिया जाता था और पूरा गांव बेटी के घर बसाने में सहयोग करता था। बेटी एक घर की नहीं पूरे गांव की विदा होती थी।

0: जानते हो, सब लोग शादी देखने में बिजी हैं और ये जो सुमन और गौरी का ग्रुप है, उन लोगों ने जूते चुरा लिए हैं। हमने आजी से पूछा जूते क्यों चुराए जाते हैं, तो चची बोल रही है कि थोड़ा हंसी मजाक के लिए, और आजी कहती है कि किसी दूसरे सुंदर लड़की को देखकर दूल्हा भाग ना जाए। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है।
1: देखो, लड़के के साथ लड़की का गठबंधन हो रहा है और अब इसके बाद पंडित जी शपथ दिलवाएंगे।
2: शादी मतलब ट्रस्ट, प्रेम और एक दूसरे के केयर करना, इन वचनों का बहुत महत्व होता है। जब अग्नि के सामने इतने लोगों के बीच जब लड़का लड़की वचन लेते हैं, तो उन लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस पता रहती है।
3: दोनों लोग हमेशा मर्यादा में रहते हैं, पर हम लोग इसे शॉर्ट में कर जाते हैं। शहर में तभी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते और तलाक के केस बढ़ते जाते हैं।
0: देखो, लड़की लड़की ने अपने पैर से सिलबट्टे को छुआ। रज्जू दादी इसका मतलब बता रही थी कि जैसे अंगद के पैर टिके रहते हैं, वैसे ही लड़का लड़की अपने जिम्मेदारी पर अडिग रहेंगे। चलो चलो, फेरे स्टार्ट हो गए।

0: पहले चार फेरे में लड़की आगे होती है और लड़का पीछे, यानी घर के काम में लड़की मेन होगी और लड़का अनुसरण करेगा, और इसके बाद लड़का तीन में आगे और लड़की पीछे।
1: इसका मतलब बाहर के कामों में वर मुख्य होगा और लड़की उसका अनुसरण करेगी।
2: हर फेरे में भाई बहन को लावा देता है, इसका मतलब भाई बहन को अन्न दे रहा है। लड़की उसे वर को देती है, जिसका मतलब होता है मुझे जो कुछ भी मिलेगा उसे तुम्हें दूंगी, कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। वर उसे अग्नि में डाल देता है, जिसका अर्थ होता है कि ससुराल से मिले सामान पर हम अपना लालच नहीं करेंगे बल्कि जन कल्याण में लगा देंगे।
3: कोई बताएगा मुझे हम लोग सात फेरे क्यों रहते हैं, आठ क्यों नहीं लेते? छोटी बुआ कह रही थी कि सात नंबर काफी शुभ होता है, जैसे सात सुर होते हैं, सात रंग होते हैं, सात चक्र, सात लोक, सात दिन, ये सारी चीजें जो साथ साथ करके होती हैं वो बहुत शुभ होते हैं।
0: यह तो हमें भी नहीं पता था, बहुत ही सुंदर जानकारी दी है। ये पता है जिमी रात में क्यों शादी होती है?
1: हाँ हमें पता है, हम लोग ध्रुव तारे को साक्षी मानकर शादी करते हैं। जैसे ध्रुव तारा एक जगह अडिग है वैसे ही शादी कभी न टूटे।
2: लास्ट सेरेमनी सिंदूर का होता है, सिंदूर से मांग भरने की तैयारी होती है, मांग भरी जाती है, इसके बाद लड़की शादीशुदा हो जाती है। सिंदूर सुहागन का प्रतीक होता है।

0: एक बात देखी तुमने, अब लड़की वर के बाएं साइड में बैठ गई है। आज से लड़की का स्थान लड़की से पहले माना जाएगा। हर पूजा के घर में, हर काम में लड़की लड़के के साथ बैठेगी।
1: शादी पूरी हुई, चलो हम लोग भी लड़के लड़की को बधाई दे आए। देखो इन लोगों का ढोलक पर गाना नहीं रुका।
2: हाँ, रात कैसे बीत गई पता ही नहीं चला, बिल्कुल नींद भी नहीं आई।
0: चलो चलो, विदाई की तैयारी हो रही है। इससे पहले कोबर में दूल्हा दुल्हन को ले जाते हैं और सालियां भाभी सब दूल्हे को कहती हैं, छंद सुनाओ, गाना सुनाओ, थोड़ा हंसी मजाक का खेल होता है। यहाँ केवल लड़की वाले रहेंगे, हम लोग नहीं जा सकते।
3: ये क्या, सब लोग कह रहे हैं कि अब गौना होगा, ये क्या होता है? हम लोग के यहाँ तो विदाई होती है।
1: पहले छोटी उम्र में शादी होती थी तो लड़की को विदा नहीं किया जाता था। जब वो 18 साल की हो जाती थी तब विदाई होती थी, उसी को गौना कहते हैं।
2: इसलिए बारात थोड़ी दूर जाएगी, फिर लौटेगी और दुल्हन को अपने साथ ले जाएगी। बस एक ही बार में विदाई हो जाती है।

0: गांव में भी कुछ कुछ शॉर्टकट होने लगे हैं। अब बताना कैसा लगा तुम लोगों को, हरिओम होता तो उसे भी बहुत अच्छा लगता।
1: हमें तो विदाई बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, सब कितना रो रहे हैं।
2: चलो बहू से बात करते हैं, अभी वहाँ इतनी रस्में होंगी कि वह सब भूल जाएगी।
3: सब इतना थके थे कि बस में बैठते ही सो गए, पटाखे की आवाज से नींद खुली।
4: वेलकम वेलकम, शादी कैसी रही?
0: अरे हरिओम, तुमको बहुत मिस किया।
4: हमको लगा आप लोग पता नहीं कैसे लौटेंगे, इसीलिए मैं आप लोग को लेने आ गया।
1: कितनी धूम है यहाँ पर, पूरा गांव वेलकम के लिए खड़ा है।
0: देखो नाउन सिर पर कलश लेकर मंगल गीत गा रही है, वहाँ गांव की सभी लेडीज ढोलक पर गीत गा रही हैं।

0: हो जाएंगी।
1: देखो बहू से छापे बनवाए गए हैं घर की दहलीज पर और लक्ष्मी घर आ गई हैं और सभी लोग घर के बड़े आरती करने के लिए भी आ गए हैं।
2: यह सुंदरता है गांव की, ऐसा लग रहा है पूरे गांव में बहू आई है, सब इतने ही खुश होते हैं।
3: यहां अनाज पर चलकर बहू अंदर जाती है। सबसे पहले घर के मंदिर में जाएगी, फिर सारी भाभियां और बहनें जो हाथ में कड़े बंधे थे ना, उसे दूल्हा दुल्हन मिलकर एक साथ खोलेंगे। पानी में अंगूठी ढूंढेंगे ताकि बहू इस माहौल में बिल्कुल घुल मिल जाए।
4: सब लोग बोल रहे हैं आओ डांस करो, हम तो चले डांस करने।
5: हो सखी भुसवा माँ झुलनी हेराई गई रे,

0: अब सब लोग बहू को थोड़ा आराम कर लेने दो, शाम को मुंह दिखाई के लिए सब लोग आ जाएंगे ना। भावना, भाभी को लेकर जाओ बच्चा।
1: लोग आने शुरू हो गए हैं मुंह दिखाई के लिए, बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें लेकर। अब हम लोगों को भी चलना चाहिए।
2: बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। अगर अपने हो साथ तो नमक रोटी भी स्वादिष्ट पकवान लगती है।
3: गांव की मिट्टी हर बार एक नई बात सिखाती है।
4: आप सब भी अपने गांव से जुड़िए और जब भी मौका मिले जरूर आइए। ढेर सारा अपनापन और बहुत सारा प्यार मिलेगा। आप लोग गांव से दूर जाकर बहुत सारी चीजें खो रहे हैं। एक बार फिर अपने गांव लौटिए और गले लगाकर तो देखिए।
3: मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई है। हरिओम भैया, प्लीज सामान रखवाइए, हम लोग बस नमस्ते करके आते हैं।
5: अरे घूंघट में आओ प्यारी बन्नी, अंगना में ढोलक बजे। हाँ घूम

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न कडीज़।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: गुड आफ्टरनून एवरीवन, भाई कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी का आनंद भी उठा रहे होंगे। भाई ज़िंदगी का आनंद उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी बड़ी तेज़ भागती है। आ चुकी हूँ मैं आपकी आरजे आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी, क्योंकि आज है दिन शनिवार। जी हाँ, शनिवार को दिन एक ऐसा दिन है शनिवार का जिस दिन हम बात करते हैं आपके सेहत की, क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम काफ़ी सारी बातें करते हैं, हंसी मजाक चटपटी चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन आज का दिन स्पेशली हम लोग हेल्थ की बातें करते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आज जब मैं आ रही थी अपने घर से, तो मैंने देखा कि यार जब से हमारे गोंडा में बारिश हुई है 2-4 दिन, और तब से मौसम तो थोड़ा सा बिगड़ रहा ही है, कभी धूप हो रही है कभी बादल हो रहा है, लेकिन जब जैसे हम लोग बारिश का आनंद उठाते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि बारिश के बाद हमारी गली में नुक्कड़ पे जो नाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा भर आते हैं और उनका पानी रोड तक आ जाता है, हर जगह कीचड़ हो जाता है, गंदगी फैली होती है। और आपको तो सबको ये पता है जितने गोंडावासी हैं कि हमारे गोंडा का नाम जो है गंदगी में सबसे टॉप पर आता है। तो हम जिस गोंडा की बात करते हैं जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, और लोग पर्यटन आते हैं हमारे गोंडा में घूम, लेकिन फिर भी हमारे गोंडा में गंदगी है एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम शायद नहीं सोच रहे हैं और जहां हमारा गोंडा पीछे है। तो आज मैंने सोचा कि आप सभी को बता दें कि भाई बारिश जितनी ही ज़्यादा सुहानी लग रही है ना, उतना ही कहीं ना कहीं हमें बीमार भी करती है। अब एक तो हो जाता है कि नॉर्मल सर्दी जुकाम, लेकिन एक होता है हमारी लापरवाही से एक बड़ी बीमारी, वो कौन सी है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कभी भी अगर आप जिला अस्पताल गए हों, सिटी हॉस्पिटल वहाँ गए हों, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पर एक ऐसे क्षेत्र के लोग ज़्यादा मिलेंगे जो बीमार हैं, और वो एक ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो हम दोनों ही, यानी आप और मैं, ये दोनों मानते हैं कि गंदगी से होने वाली बीमारी आज भी बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं हम इन बीमारियों से वाकिफ भी हैं। लेकिन फिर आज हमारे हॉस्पिटल का, हमारे गोंडा का और हमारे उत्तर प्रदेश का ये हाल क्यों है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बीमार लोग पाए जाते हैं? दोस्तों, अब बात करते हैं मुद्दे की। तो सबसे पहले भाई कैसे हैं आप सब? मैंने आपका वेलकम किया आपके अपने शो स्वास्थ्य संगिनी में, वो शो जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत की बिल्कुल अपने घर के डॉक्टर की तरह, लेकिन थोड़ा सा मसालेदार अंदाज में। बिल्कुल ठीक, आज भी हम बात करेंगे, और मैं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे आयुषी, और आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसे मेहमान की जो बुलाए नहीं जाते हैं फिर भी वो आ जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मलेरिया की। आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो टॉपिक बहुत पुराना है, हमें पता है मलेरिया क्या होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सच ये है कि हर साल मानसून के बाद, और मानसून में स्पेशली जो पीक बारिश का सीज़न होता है, वहाँ पे हॉस्पिटल में बिल्कुल तांता लग जाता है मलेरिया के पेशेंट का। मलेरिया के केसेस तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और लोग हैरान रह जाते हैं, और तब आपको जाके पता चलता है कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पे मलेरिया जैसी चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें, लेकिन अगर जानते हैं तो फिर इतने ज़्यादा मरीज क्यों आ रहे हैं? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग इससे हल्के में ले लेते हैं, बस थोड़ा सा बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा, जाएंगे गली के बाहर जो दुकान है वहाँ से जाके दवाई ले आएंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन यही सोच काफ़ी लोगों को भारी पड़ रही है। तो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये मलेरिया है क्या, इसको थोड़ा सा और ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। देखिए, मलेरिया एक इन्फेक्शन है जो होता है एक पैरासाइट से, मतलब एक ऐसा जो आप सभी जानते हैं कि ये जो मलेरिया होता है ये मच्छर के काटने से होता है, लेकिन ये जो मच्छर है वो हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट करता है, कैसे क्या चीज़ होती है, मतलब क्या वो होता है, मतलब क्या वो करता है हमारी बॉडी में, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है या फिर कोई वायरस है वो हमारी बॉडी में आता है, ये सब आप भी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि भाई सिर्फ मच्छर के काटने से इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है। मैं बता दूँ, एक खास तरीके का एक मच्छर होता है जिसे हम एनाफिलीस मॉस्किटो कहते हैं। जब ये मच्छर किसी इन्फेक्टेड इंसान को काटता है और फिर किसी हेल्दी इंसान को काटता है, तो फिर ये पैरासाइट उसके ब्लड में भी चला जाता है, और बस यहीं से शुरू हो जाती है मलेरिया जितनी बड़ी प्रॉब्लम। शुरू तो बहुत ही छोटे रूप में होती है, जस्ट आपको बुखार आएगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अगर आपने इसको ध्यान से नहीं किया, सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, तो ये आपकी जान भी ले सकता है। अब ये मच्छर होते कहाँ हैं, इनकी भी हम बात कर लेते। भाई ये कैसे मेहमान हैं जो आपको हर गली नुक्कड़ पे मिल ही जाएंगे। भाई सिंपल सी बात है, जहाँ पानी जमा होता है वहीं ये पैदा हो जाते हैं। अब भाई हमारे मौसम विभाग ने कहा है कि हमारे नॉर्थ साइड में जुलाई लास्ट तक मानसून आ जाएगा, तो बेटर यही है कि हम इसके लिए प्रिपेयर रहें पहले से ही और अपने आसपास सफाई अभी से रखना शुरू कर दें। घर के आसपास गमले में पानी ना जमा होने दें, कूलर का पानी बिल्कुल ना जमा होने दें, उसे चेंज करते रहें, छत पे रखा पुराना टायर या फिर टंकी या फिर कोई एक ऐसा सामान जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है बारिश का या फिर कोई भी पानी इकट्ठा होता है उस सब को आपको साफ़ करना है। ये सब मच्छर को बिल्कुल 5-स्टार ट्रीटमेंट देता है और वहाँ पे ये ज़्यादा पनपते हैं, तो बेटर यही है कि आप अभी से थोड़ा सा सावधान हो जाएं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो मॉस्किटोज़ हैं, ये जो मच्छर हैं, ये ज़्यादातर रात के टाइम एक्टिव होते हैं, खासकर शाम को। जैसे ही शाम ढलने लगती है वैसे ही ये मच्छर कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि गाँव में लोग शाम होते ही दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर देते हैं। वो ऐसे ही नहीं करते, देखिए हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हमारी दादी नानी जब शाम को कहीं, आपने देखा होगा कि आज भी गांव में कोई, जैसे शाम होने लगती है बरसात का सीज़न आता है, कोई ना कोई जो उपले होते हैं उनको जला के रख देते हैं, यानी कि धुआं होता है, धुआं फैला देते हैं। उससे क्या होता है कि उससे मच्छर नहीं आते। खिड़कियाँ बंद, अगर धुआं नहीं है तो खिड़कियाँ बंद कर दी जाती हैं, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिससे कि मच्छर ना आए। तो दोस्तों ये मलेरिया का एक छोटा सा और बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चले कि आपको मलेरिया है या फिर नॉर्मल बुखार। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुनते रहिए अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी। हम वापस आएंगे थोड़ी देर में और बात करेंगे आपके सेहत के बारे में कि आप मलेरिया से कैसे खुद को और अपनों को बचा सकते हैं। स्टे ट्यून।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9970931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: नमस्कार, स्वास्थ्य और जागरूकता के हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम फाइलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी पर चर्चा करेंगे, जिसे हम हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। ये एक मच्छर से फैलने वाली लाइलाज बीमारी है। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के अपर निदेशक मलेरिया और VBD डॉक्टर AK चौधरी जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि आखिर ये फाइलेरिया बीमारी है क्या और ये शरीर में किस तरह प्रवेश करती है।
3: फाइलेरिया जो होता है एक तरीके के कृमि होते हैं हमारे शरीर में, पैरासाइट होते हैं, जिनको हम नेमेटोड्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। इसका नाम अगर जानना चाहते हैं तो बुचरेरिया ब्रोंकेप्टाई नाम के एक पैरासाइट के कारण होता है, और ये खासतौर से मच्छर के काटने से एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है।
2: डॉक्टर साहब, इसकी गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि भारत में फाइलेरिया की स्थिति चिंताजनक है। देश के 345 जिले इससे प्रभावित है और लगभग 74 करोड़ लोग इसके जोखिम में हैं। ये रोग मुख्यतः हाथ, पैर, पुरुषों के अंडकोश और महिलाओं के स्तनों में देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, शरीर में इसके फैलने की प्रक्रिया क्या है?
3: तो जो हमारा क्यूलेक्स मच्छर होता है उसकी फीमेल जब हमें काटती है तब ये एक दूसरे से ट्रांसमिट करती है। स्टेजेस इसकी बात करें तो हमारे शरीर में जो भी निमेटोड्स इसके बुचरेरिया ब्रोंकाइफाई के जो एडल्ट वर्म्स होते हैं वो दिन में प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 50,000 अंडे देते हैं, और वे अंडे जो हैं हमारे शरीर के अंदर लार्वा के रूप में डेवलप होते हैं। इसकी स्टेजेस होती हैं लार्वा 1, 2, 3, ठीक है, जो हमारे शरीर में रहती हैं। लार्वा की स्टेज 3 ही मच्छर के लिए इन्फेक्टिव होती है। जब मच्छर काटता है हमको, तो अगर हमारे शरीर में लार्वा की थर्ड स्टेज अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो हमारे खून में दौड़ती रहती है, वही मच्छर जब कोई भी ब्लड मील लेता है तो उसके शरीर में जाता है और वहाँ डेवलप होता है। उसके बाद जब वो डेवलप होता है, वहाँ भी उसका जो लार्वा है स्टेज मेटामॉर्फोसिस होती है, फिर वो नए आदमी के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए इन्फेक्टिव होता है। और जब वो मच्छर, इन्फेक्टिव मच्छर जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तब वो उसके अंदर लार्वा वो ट्रांसमिट करता है, फिर वही साइकिल शुरू होती है, वो लार्वा फिर डेवलप होगा एडल्ट वर्म में। और वो इसमें टोटल समय जो है, मैं बताया मैंने, काटने के बाद 5 से 15 साल का समय लगता है, जब हमारे शरीर में फाइलेरिया के लक्षण, जिनको हम एलिफेंटेसिस या हाइड्रोसील या किसी भी अंग का अचानक सूज जाना, मोटा हो जाना, ये होता है। हाइड्रोसील और हाथी पाँव मिल के दुनिया में सबसे अधिक विकलांगता पैदा करते हैं। विकलांगता मतलब लोको मोटर, आदमी चलने फिरने में एक तरीके से असहज होता है, या एक तरीके से चलने फिरने उसका बंद हो जाता है। तो ये दूसरे नंबर की बीमारी है दुनिया में, जो इस तरह की डिसेबिलिटी पैदा करती है, जिसमें लोग चलने फिरने में असमर्थ होते हैं। दूसरी चीज़, उसके घर का भी लोग बहुत ही अफेक्टेड रहते हैं, बहुत ही परेशान रहते हैं, उसमें आर्थिक नुकसान भी होता है। और अगर वो कमाई करने वाला आदमी है, पुरुष है, तो एक आर्थिक नुकसान भी होता है, सामाजिक नुकसान उसको इस तरीके से होता है कि लोग उसको अवॉइड करने लगते हैं, उसके परिवार से अवॉइड करने लगते हैं कि भाई इनके घर में तो हाथी पाँव है, किसी और को भी कोई उससे बातचीत नहीं करता है। हाथी पाँव महिला और पुरुष में दोनों बराबर रूप से होता है। हाइड्रोसील हाँ, स्पेशली पुरुषों की बीमारी है, लेकिन महिलाओं में भी इसमें सेम टाइप की, पैरों में तो लगभग बराबर ही होता है, हाथों में भी होता है, महिलाओं के जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें भी, स्तनों में भी आकार बहुत बड़ा हो जाता है, उनमें सूजन आती है, और ये इस तरह का लिम्फेडिमा होता है। बच्चों में भी पाया जाता है, बच्चों में लिम्फेडिमा होता है, तो बच्चों में इसका असर तो मानसिक रूप से भी विकलांगता के रूप में देखा गया है। जहाँ ये बीमारी खासतौर से एंडेमिक है, जिन जनपदों में या जिन प्रदेशों में या जिन कंट्रीज़ में, वहाँ के बच्चों की मानसिक स्थिति अन्य बच्चों की तुलना में अक्सर कम होती है।
2: यही सबसे डरावनी बात है कि एक बार यदि फाइलेरिया हो जाए तो इसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन बचाव पूरी तरह संभव है। और बचाव का सबसे बड़ा हथियार है सर्वजन दवा सेवन अभियान। डॉक्टर साहब, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
3: फाइलेरिया को ग्लोबली खत्म करने के लिए या उन्मूलन करने के लिए हमने 2030 का, WHO की तरफ से 2030 का टारगेट रखा गया है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी टारगेट को, हम हिंदुस्तान से फाइलेरिया मिटाने के लिए 2027 रखा है, और हम लोग 2027 तक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पब्लिक को, हम जो स्वस्थ पब्लिक है, उसको कैसे इस बीमारी से बचाएं, उस बचाने के लिए जो हमारे पास एविडेंसेस हैं कि अगर हम साल में एक बार फाइलेरिया रोधी दवाएँ, जनरली इसमें 3 तरह की दवाएँ यूज़ होती हैं, तो उन सब दवाओं को साल भर में अगर एक बार सारी पब्लिक को खिला दिया जाए, तो ये एक तरीके से, जिसको मास ड्रग एडमिशन MDA भी कहते हैं, इसमें 2 तरह की मैंने रेजिम बताया, कुछ में 3 ड्रग्स यूज़ होती हैं, कहीं कहीं कहीं कहीं 2 ड्रग्स यूज़ होती हैं। ड्रग्स के नाम भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो DEC हमारी पहली ड्रग है, एल्बेंडाजॉल दूसरी ड्रग है, और आइवरमेक्टिन तीसरी ड्रग है। तो कहीं कहीं 3 ड्रग हम लोग तीनों यूज़ करते हैं, कहीं कहीं किसी किसी जनपद में 2 ड्रग यूज़ करते हैं, जिसमें DEC और एल्बेंडाजॉल होती है। और इस को हम एक तरीके से कैंपेन के रूप में लेते हैं, और एक निश्चित दिवस को 10 दिन के अंदर सारे जनमानस को कवर करते हुए सभी स्वस्थ व्यक्तियों को दवाई खिलाने का काम करते हैं। दूसरा पिलर इसका वो है कि जिसपे, जिन लोगों को फाइलेरिया ऑलरेडी हो चुका है या जो इसके रोगी हैं या भुक्तभोगी हैं, उन लोगों को हम एक तरीके से उस रोग से लड़ने के लिए कैसे बेहतर तरीके से वो तैयार रहें, जिससे कि समाज में और उनके घर में, आर्थिक स्थिति में और उनके लोकोमोटर, जिसकी जो डिसेबिलिटी वाली बात है, वो कम से कम हो, उसके लिए उन्हें कम से कम अस्पताल जाना पड़े, कम से कम उनका समय नष्ट हो, इसके लिए अपने उस पैर की या अपने उस जो भी उनका जहाँ भी फाइलेरिया है उस पार्ट को बेहतर देखभाल करने के लिए हम उनको ट्रेनिंग कराते हैं साल में एक बार, और उनको एक किट देते हैं जिसको हम लोग MMDP किट के नाम से जानते हैं। तीसरे पिलर के रूप में इसमें मेडिकल कॉलेज का एंगेजमेंट किया गया है। मेडिकल कॉलेज के एंगेजमेंट खास तौर से इसलिए किया गया है कि ये लोग अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस करेंगे, मतलब केसेस को हमें बिल्कुल शुरुआत स्टेज में बताएंगे या डायग्नोस करेंगे, जिससे कि फाइलेरिया उस रूप में ना पहुंच पाए कि लोगों को कोई भी डिसेबिलिटी डेवलप हो पाए। तीसरा काम मेडिकल कॉलेज को दिया गया है कि जो हम लोग MDA राउंड करते हैं, MDA का मतलब है जो हम मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का राउंड फरवरी और अगस्त के महीने में करते हैं, उसको एवेल्युएट करते हैं कि वाकई में जो हमारा जनमानस है उसमें कितने प्रतिशत लोगों ने दवाई खाई है। चौथे पिलर के रूप में हमने इसमें हाई लेवल एडवोकेसी को एक तरीके से इंक्लूड किया है। हाई लेवल एडवोकेसी में हमारे जितने भी मतलब चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हाई लेवल एडवोकेसी में जनप्रतिनिधियों से कहा जाता है, चाहे वो प्रधान लेवल से लेकर सांसद लेवल तक के सभी जनप्रतिनिधियों को उसमें सम्मिलित किया गया। सभी को हम लोग एजुकेट करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस अभियान में वो लोग अपना भरपूर सहयोग दें। चौथे पिलर के रूप में हमने अपने इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के रूप में लिया है, जिसमें हमने सारे डिपार्टमेंट्स को जो इस अभियान में एक तरीके से हमको कोऑपरेट कर सकते हैं, इसको जन आंदोलन बनाने में हमें सहयोग कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः दो तरह के डिपार्टमेंट हैं, एक तो जो वेक्टर कंट्रोल करते हैं, खासतौर से मच्छरों का कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारा पंचायती राज और नगर निगम। दूसरा जो IEC का काम कर सकते हैं, जैसे शिक्षा विभाग। शिक्षा में हम तीनों प्रकार की शिक्षाएं, चाहे बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, तीनों शिक्षा के लोग हमको सहयोग करते हैं। बेसिक शिक्षा वाले बच्चे टीचर्स अपने बच्चों को प्रार्थना में डेली फाइलेरिया के बारे में बताते हैं, समय पर इनसे रैली निकलवाते हैं, ठीक है, और दवाई खाने के लिए प्रेरित करते हैं। MDA मतलब होता है सर्वजन दवा सेवन अभियान। ये साल में एक निश्चित तिथि को होता है। हम अभी तक अपने प्रदेश में, जैसे हमारे प्रदेश में 75 में से 51 जनपद हमारे एंडेमिक हैं फाइलेरिया के लिए, जहाँ फाइलेरिया के रोगी अधिक रूप में पाए जाते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है NBS होता है, कि इसमें हम तय करते हैं कि दवाई खिलानी है या नहीं खिलानी है, खिलानी भी है तो कौन सी खिलानी है, 2 ड्रग खिलानी है या 3 ड्रग खिलानी है। ये हम डिपेंड करता है कि उसकी पॉजिटिविटी कितनी आई है, पॉजिटिविटी मतलब एक तरीके से कितने लोगों में अभी फाइलेरिया वहाँ पर एंडेमिक है, कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, इस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ इसमें NBS के बाद जब ये तय हो जाता है कि इतने इन लोगों को दवाई खिलानी है, तो सबसे पहले काम होता है हमारा कि हम उसकी अच्छी तरीके से माइक्रो प्लानिंग करें। माइक्रो प्लानिंग के नाम पर बहुत सारे काम होते हैं। इसमें एक तो हम माइक्रो प्लान बनाते हैं अपना कि किन लोगों को दवाई खिलानी है, कौन दवाई खिलाएगा, कैसे खिलाई जाएगी, कब से कब तक खिलाई जाएगी। दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि पब्लिक को हम अवेयर कैसे करें, उसके लिए IEC करते हैं। IEC बैनर, पोस्टर, रेडियो, TV सारे माध्यमों का उपयोग करके हम लोगों को जागरूक करते हैं एक तरीके से। तीसरा पार्ट जो होता है इसमें हम जन आंदोलन के रूप में बनाने के लिए जनता के मतलब जो चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनको शामिल करते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि वो भी अपने अपने मंचों से अपने अपने इस तरह की अपील करें कि लोगों को अगर आपको फाइलेरिया से बचना है या फाइलेरिया अपने एरिया से अपने क्षेत्र से समाप्त करना है तो सभी लोगों को निडर होकर दवाई खानी चाहिए। तीसरा इसके अलावा हम जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, सभी डिपार्टमेंट्स मिलके एक तरीके से काम करते हैं। इसमें दो तरह के डिपार्टमेंट्स को हमने अगर बांटना चाहें तो दो ग्रुप में बांटते हैं। एक डिपार्टमेंट्स वो होते हैं, विभाग वो होते हैं जो हमको मच्छर कंट्रोल करने में एक तरीके से सहायता करते हैं। मच्छर कंट्रोल करने में जैसे गांव में हमारा पंचायती राज विभाग है, साफ़ सफाई करवाता है, मच्छरों के लिए स्प्रे करवाता है, और जैसे इसी के लिए शहर में हमारे पास नगर निगम और नगर पालिकाएँ होती हैं जो यही काम शहर के अंदर अर्बन एरिया में करती हैं। दूसरा डिपार्टमेंट लोगों को जागरूक करता है अपने अपने माध्यम से, जैसे किसान हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, शिक्षा डिपार्टमेंट है, तो ये सब हमारे जो हैं लोगों को जागरूक करते हैं, बच्चों के माध्यम से रैली निकालते हैं, किसानों के माध्यम से उनकी मीटिंग्स में उनको बताया जाता है कि फाइलेरिया कैसे फैलता है, तो अपनी अगली पीढ़ी को बचाने के लिए सभी लोगों को दवाई खानी है, तो सभी लोग सहयोग करते हैं।
2: बिल्कुल सही, और मैं इस बात को दोहराना चाहूंगी कि इस दवा के सेवन से खून में मौजूद माइक्रोफाइलेरिया की संख्या घटती है और रोग का प्रसार रुक जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि यदि प्रभावित जिलों में 90% पात्र जनसंख्या लगातार 5 वर्षों तक DA या 3 वर्षों तक आईडीए की खुराक ले ले तो इस रोग को जड़ से मिटाया जा सकता है।
4: डॉक्टर साहब, अक्सर लोग दवा के साइड इफेक्ट से डरते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
3: जहाँ तक दवाई की सुरक्षा का प्रश्न है, दवाई कितनी कारगर है या कितनी सुरक्षित है, इसके लिए मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये तीनों दवाइयाँ, जैसे मैंने अभी अपने स्टार्टिंग में बताया था कि DEC, एल्बेंडाजॉल और आइवरमेक्टिन, तीनों दवाइयाँ 100% सुरक्षित हैं। इन दवाइयों से किसी को कोई भी नुकसान नहीं होता। जहाँ तक इसमें दवाई के लिए हम 3 तरह के लोगों को छोड़ते हैं खास तौर से। एक तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको नहीं देते हैं, दूसरा जो हमारे 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको हम ये फाइलेरोधी दवाएं नहीं देते हैं, लेकिन 1 साल से 2 साल के बच्चे को हम सिर्फ एल्बेंडाजोल की दवाई ज़रूर देते हैं, पेट में कीड़े वाली दवाई देते हैं। तीसरे तरह के व्यक्ति होते हैं जो गंभीर रूप से बीमार हैं, ऐसे लोगों को हम ये दवाई नहीं खिलाते हैं। देखिए, अब मैंने जैसे बताया कि तीनों ड्रग्स बेहद सुरक्षित हैं, किसी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों को दवाई खाने पर कुछ परेशानियां होती हैं। जैसे 8 गोली यदि कोई व्यक्ति एक बार में एक साथ खाता है और उसका पेट बिल्कुल खाली है तो ये दवाएं पेट में इरिटेशन करती हैं एक तरीके से। इसलिए हम लोग इसको एक तरीके से सुविधा के तौर पर लोगों को बताते हैं कि कभी भी दवाई को खाली पेट ना खाएं, खाना खाने के बाद ही खाएं। तीसरे तरह के सिम्टम आते हैं कभी कभी ADR के नाम पर, कि उसको जब दवाई खाने के बाद शरीर में खुजली होती है, चकत्ते पड़ते हैं या फफोले पड़ जाते हैं। ये तभी संभव है जब उसके शरीर में माइक्रोफाइलेरिया नाम की चीज़ पहले से रही हो, उसको फाइलेरिया का इन्फेक्शन पहले से हो। तो जब भी हम ये दवाई खाएंगे वो माइक्रोफाइलेरिया और उसके एडल्ट वॉर्म एक निश्चित समय बाद, वो 1-2 दिन बाद मरना शुरू होते हैं। मरने पर हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस को कभी कभी ADR के तौर पे मान लिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से खुजली और ये चकत्ते पड़ते हैं। ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये शुभ संकेत है कि हमारे शरीर में इन्फेस्टेशन था, हमने सही समय पे दवाई खा ली, एलिफेंटेसिस से हम बच गए। देखिए, जैसा कि आप जानते, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फाइलेरिया एक लाइलाज मतलब ना ठीक होने वाली बीमारी है, मच्छर से फैलती है। तो पहले तो ये जो भ्रांति है कि हम इस मरीज को, जो भी जिसको फाइलेरिया होता है, जिसको हाथी पांव होता है, उसके साथ भेदभाव दुर्व्यवहार करते हैं, ये दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये एक दूसरे को छूने से या उसका उसके साथ रहने से, उसके पास बैठने से ये बीमारी नहीं लगती है। तो ये भ्रांति जो है एक तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म होनी चाहिए। आपके गांव लेवल पर एक आयुष्मान केंद्र स्थापित किया गया है, जिस पर एक CHO पोस्ट होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम से जिसकी पोस्टिंग है, और वो आपको चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। उसको भी हमने फाइलेरिया रोग के तहत इसमें इनकॉर्पोरेट किया है, उसको ट्रेन किया है, उसको सब कुछ बताया उसके बारे में, वो आपको, और दवाएं भी उसके पास डिपो रहता है, ये दवाएं भी आपको कभी भी ज़रूरत है तो ये दवाएं भी उसके पास रहती हैं। सारे लोग जो इस फाइलेरिया प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उनको इस आयुष्मान केंद्र के एक तरीके से सम्मिलित होकर, आयुष्मान केंद्र की सेवाओं में सम्मिलित होकर, चाहे वो आशा हो, चाहे वो ANM हो, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, टीचर हो, उस गांव के कोटेदार हो, ये सारे लोग जैसे हमको इसको सहयोग करते हैं, तो ये सब लोग मिलके आयुष्मान केंद्र के साथ काम करके जनता को जागरूक करें, उनको दवाई खिलाने में सहयोग करें, यही एक तरीके से हम लोगों ने इसमें प्लान किया है। देखिए, MDA अभियान हमारा, जैसे मैंने बताया कि निश्चित अवधि के लिए होता है, ये सिर्फ 10 वर्किंग डे में चलता है। कभी कभी जब ज़्यादा मतलब जनमानस ज़्यादा छूट जाता है दवाई खाने से, तो हम उसमें एक मॉपअप के लिए राउंड भी प्लान करते हैं 2 दिन या 3 दिन का। तो मैक्सिमम 15 दिन मान के चलिए कि मैक्सिमम 15 दिन हम लोग ये दवाई खिलाते हैं। अब लेकिन समस्या ये आती है कि क्या लोगों को दवाई इसके बाद भी मिल सकती है? हाँ, हमारे प्रत्येक सरकारी अस्पताल में ये दवाई निःशुल्क हमेशा उपलब्ध रहती है, पूरी साल उपलब्ध रहती है। लेकिन समस्या यही है कि लोग स्वयं अपने आप आना नहीं चाहते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जो लोग वाकई में जिनके काम में जिनके एरिया में क्षेत्र में दवाई खिलाई जा चुकी है, उनका क्षेत्र फाइलेरिया के लिए एंडेमिक है, उन लोगों को अस्पताल जाके ये दवाई स्वयं खानी चाहिए। अब इसमें जैसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन इसमें दो तरह के लोग होते हैं, तो ब्लॉक लेवल स्ट्रेटजी होती है, इसमें ब्लॉक का मेडिकल अफसर इसमें सारी गतिविधि देखता है, उसको आशा उसमें आशा और उसके साथ काम करने वाले लोग बेसिक पब्लिक के साथ इंटरेक्ट होके उसको जुड़ के उसको दवाई खिलाते हैं, काम करते हैं। इसके अलावा जिला मलेरिया अधिकारी इसके लिए खास तौर से रिस्पॉन्सिबल होता है, जिला मलेरिया अधिकारी और ACMO वेक्टर बोर्ड। पब्लिक की भागीदारी अभी भी इसमें कम है, पब्लिक की भागीदारी मेरे हिसाब से तो इतनी होनी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति अब उसको ये पता है कि हमारे जनपद में फाइलेरिया रोग है या फाइलेरिया रोगी हमारे गांव में पाए जाते हैं, तो उस गांव के हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है या जिम्मेदारी होती है कि वो जाके अपनी दवाई स्वयं खाए, कहे भाई मुझे दवाई दे दो, मुझे दवाई खाने, मैं कल मेरे घर में कल टीम गई थी, मैं घर पर नहीं था, मुझे आज दवाई दे दो। तो इस तरह का एक तरीके जब तक अभियान नहीं चलेगा तब तक लोग मतलब इस लेवल तक जागरूक नहीं होंगे, तब तक अभियान की सफलता पर थोड़ा सा प्रश्न रहेगा या थोड़ा सा कठिन होता है इस तरह के अभियान को सफल करने में। तो किसी भी अभियान को सफल करने के लिए मतलब दो तरीके, एक तो पब्लिक की भागीदारी और दूसरा पब्लिक द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो हैं अपने अपने जनप्रतिनिधियों से बात करें और जनप्रतिनिधि से कहूँगा कि भाई वो अपने अपनी जनता को इसके लिए जागरूक करें और उनको प्रेरित करें कि इस तरह की दवाई जो भी खिलाई जा रही है वो बिल्कुल निशुल्क है, बिल्कुल एक तरीके से किसी भी दुष्परिणाम से रहित है, उसको जरूर खाएं।
2: धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। श्रोताओं याद रखिए, फाइलेरिया का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बचाव है। जब भी आपके घर पर टीम आए दवा जरूर खाएं और भारत को फाइलेरिया मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
5: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर निधि, जो एक पब्लिक हेल्थ
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं मलेरिया की। जी हाँ, वही मलेरिया जिसके बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बारे में जान के भी अनजान बन के अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल देते हैं। अभी तक हमने बात की कि ये मलेरिया क्या होता है, लेकिन अब बात ये होती है कि हम पहचाने कैसे कि हमें मलेरिया है या फिर नॉर्मल बुखार। तो दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका आपके अपने शो स्वास्थ्य संगिनी में। हम पिछले सेगमेंट में यही बात कर रहे थे कि मलेरिया क्या होता है, कैसे फैलता है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, वो है सिम्टम्स, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, हम इलाज कैसे करवाएंगे, है ना। देखिए, मलेरिया का सबसे बड़ा इशू यही है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो शुरू में बिल्कुल नॉर्मल बुखार जैसे लगते हैं, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे ये तो बस मौसम बदलने का बुखार है, मौसम बदला है इसीलिए आया है, या फिर बस थोड़ी सी कमज़ोरी है, आराम करने से ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर ये सिम्टम्स है तो प्लीज़ इसे इग्नोर आप बिल्कुल ना करें। सबसे पहले और सबसे कॉमन सिम्टम जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो यही है कि आपको बहुत तेज़ से बुखार आएगा, वो भी ठंडे गर्म के साथ। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, पहले आपको बहुत ज़्यादा सा ठंड लगेगी, कंबल ओढ़ेंगे आप, उसके बाद जो है आपको कंबल उम्बल ओढ़ने के बाद फिर आपको अचानक से थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाएगी, और इसी बीच में आपको बुखार भी हो जाएगा, पसीना आना शुरू हो जाएगा। ये साइकिल बार बार आपको रिपीट आपके साथ होगी, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी पसीना। हम इसको साइकिल फीवर भी कहते हैं, और ये मलेरिया की सबसे बड़ी पहचान है। उसके बाद अगर हम दूसरे सिम्टम की बात करें तो वो है सर दर्द और बदन दर्द। ऐसा लगता है कि पूरा शरीर किसी ने आपके पकड़ के पीट दिया और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। जॉइंट्स में आपको एकदम ऐसा दर्द हो रहा हो कि आप चल नहीं पाएंगे, मसल में दर्द हो रहा हो, आप हाथ भी अपना ना उठा पाएं। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन सिम्टम हैं मलेरिया की। उसके बाद अगर हम तीसरे सिम्टम की बात करें तो भाई, कमज़ोरी और थकान आपकी बिल्कुल चरम सीमा पे होगी। बिना कुछ किए, बिना कुछ करे आपकी एनर्जी आप में बचेगी ही नहीं, आपको एनर्जी बिल्कुल कम फील होगी, चलना भी आपका मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद अगर चौथे सिम्टम की बात करें तो भाई, आपका जी मचलाने लग जाएगा, उल्टी आने लग जाएगी, कई लोगों को एपेटाइट भी जो है चला जाता है, यानी उनको भूख लगना भी बंद हो जाती है, खाने खाने का मन नहीं करता है, खाना देखते ही आपको ऐसा लगता है कि अभी उल्टी हो जाएगी। और अगर ये सिम्टम्स ज़्यादा सीरियस हो जाएं, जैसे बहुत तेज़ बुखार हो जाए, कंफ्यूज होने लग जाए, बेहोश होने की स्थिति आ जाए, या फिर शरीर पे पीलापन आने लग जाए, तो दोस्तों ये सबसे बड़ी इमरजेंसी है, तुरंत ही नज़दीकी हॉस्पिटल जाएं, और वहाँ पे जाने से बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि अगर आप टाइमली इलाज नहीं कराएंगे तो मलेरिया सीधा किडनी और ब्रेन तक भी असर डाल सकता है। और हम सभी को पता है कि भाई, हमारे पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन ही चलाता है, तो अगर ये बुखार दिमाग तक गया तो भाई आप बहुत ही बड़े नुकसान का सामना कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग, चलो कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, दवाई रखी होगी, पिछली बार लाए थे दवाई, वही खा लें, उसी से काम चल जाएगा, यही सोच के ये लोग इन सबको इग्नोर कर देते हैं। ये जो आपकी मंशा रखते हैं, जो लोग ऐसी बातें करते हैं, वही आगे जाकर बहुत बड़ा नुकसान झेलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए, अगर आपको बुखार है और 2-3 दिन से ज़्यादा रहे, चाहे पैरासीटामोल लेने के बाद भी वो कम ना हो रहा हो, तो प्लीज़ खुद को डायग्नोसिस मत करें, आप खुद जाएं किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, डॉक्टर के पास जाइए, ब्लड टेस्ट कराइए। मलेरिया का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है दोस्तों, उसे हम MP टेस्ट कहते हैं, ये रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी इसे हम कहते हैं। लेकिन इससे लोग काफ़ी ज़्यादा डरते हैं कि अरे कहीं बड़ी, हमारे भारत में एक बहुत ही बड़ी, अगर हम कहें कि जैसे ये कह सकते हैं कि हमारे जो हम जो भारतीय होते हैं, अगर हम कोई टेस्ट कराने जा रहे हैं और अगर टेस्ट नेगेटिव आ जाए कि आप जो बीमारी का टेस्ट कराने जा रहे हैं वो बीमारी आपको नहीं निकलती है, तो हम क्या सोचते हैं? आपने हमेशा नोटिस किया होगा अपने घर वालों की, अरे भाई हमारे पैसे ख़राब हो गए, टेस्ट कराए थे कुछ निकला ही नहीं। और ये हम सभी कहीं ना कहीं फील भी करते हैं जब हमारे घर वाले जाते हैं किसी टेस्ट को ले कराने। लेकिन याद रखें कि ये सोच आप में कभी भी नहीं आनी चाहिए। अगर आपने ये सोचा, और ये तो बहुत बड़ी बात है कि छोटे से टेस्ट से आपको पता चल गया कि आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर कोई बीमारी होती तो भाई टेस्ट आप ज़रूर कराएं, इससे आप बिल्कुल ना घबराएं। और टेस्ट कराने के बाद खुद ही दवाई नहीं लेनी है, डॉक्टर को उन टेस्ट की रिपोर्ट भी दिखाना है, और डॉक्टर की सलाह से ही आपको दवाइयाँ लेनी है। याद रखिए, जितनी जल्दी पहचान पहचान होगी उतना ही आसान होगा उसका इलाज। मलेरिया क्योरेबल है, यानी उसे ठीक किया जा सकता है। इससे डरने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आपको ज़रूरत है तो अलर्ट रहने की, अपने आप को जागरूक करने की। अब हम बात करेंगे इसके प्रिकॉशन की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई प्रिकॉशन की बात करने एक और हमारे साथ गेस्ट जुड़ी हैं, गेस्ट कह लीजिए या मेरी को होस्ट कह लीजिए, बहुत ही प्यारी सी आई हैं और इन्होंने कहा कि मुझे बताना है प्रिकॉशन क्योंकि मेरे पास है कई सारी चीज़ें। मैं वेलकम करती हूँ सृष्टि जो कि हमारे साथ बैठी है और वो मलेरिया पर बात करने वाली है। वेलकम सृष्टि।
2: थैंक यू मैम। हेलो लिसनर्स।
1: हेलो सृष्टि, तो आप क्या लेके आई हैं? क्योंकि देखिए अभी हम मलेरिया की बात कर रहे हैं और हम इंडियंस हैं, तो हम देखिए हम भी इंडियन, आप भी इंडियन, और हम इंडियन की मंशा को ज़्यादा ही अच्छे समझ लेते हैं। एक तो भी मैंने बताया ही, आप सुन रही थी कि ये लोग खुद ही डायग्नोस कर लेते हैं, नहीं करते हैं, बाहर करवाते हैं तो भाई अगर नहीं निकलते हैं तो पैसे ख़राब हो जाते हैं, और अगर हमने हमारा मलेरिया निकल भी गया फिर भी सोचेंगे अच्छा इन चीज़ की कमी है, इन चीज़ की ये चीज़ें ज़्यादा हो रही, तो इसको हम अपने हिसाब से ही मैनेज कर लेते हैं और अपना ही डॉक्टर बन जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हम सभी को पता है अंदर ही अंदर कि नहीं भाई ये तो ख़राब है। और जो इंसान, मैं ये हमेशा कहती हूँ कि जो इंसान 5-6 साल की डिग्री लेके आपका इलाज कर रहा है तो उसने ऐसे ही नहीं लिया है। यही लापरवाही इंडियंस को बहुत बड़े खतरे में डालती है।
2: जी आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम वही करते हैं अक्सर।
1: तो इसके प्रिकॉशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप कुछ बताएंगी?
2: देखिए पूरी स्ट्रेटजी सिंपल सी है, मच्छर को खुद से दूर रखो और मच्छर को पैदा होने का मौका ही मत दो। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट से समझते हैं।
1: जी बिल्कुल समझाइए।
2: नंबर 1, पानी जमा मत होने दीजिए घर के आसपास, छत पे, गमलों में या फिर कूलर में। कहीं भी पानी रुका हुआ है तो उसे नहीं रोकना है, उसे खाली कर दीजिए। हर हफ्ते एक बार अपने घर का राउंड लगाइए और देखिए कहीं पानी तो जमा नहीं हो रहा है। नंबर 2, मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करिए। रात को सोते वक्त मच्छरदानी लगाना कोई पुरानी बात नहीं है दोस्तों, ये एक प्रूवन और इफ़ेक्टिव तरीका है, खासकर बच्चों और प्रेग्नेंट वोमेन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, फुल स्लीव्स कपड़े पहनिए, खासकर शाम के टाइम जब मच्छर सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं।
1: लेकिन ये आप क्या बात कर रही हैं, फुल स्लीव्स कैसे, हमें फैशन भी तो करना है ना।
2: लेकिन हमें मच्छरों से भी तो बचना है ना।
1: तो भाई देखिए फैशन अपनी जगह है लेकिन सेहत अपनी जगह है। याद रहे कि अपने घर के जो छोटे बच्चे हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ये ध्यान से आपको ये कहना है कि आपको कपड़े फुल स्लीव्स के ही पहनने हैं
2: या फिर हल्के रंग के कपड़े पहने, लूज कपड़े बेहतर होते हैं क्योंकि मच्छर डार्क कलर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 4, मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज़ करिए, चाहे वो क्रीम हो, स्प्रे हो या फिर कॉइल, घर में और बाहर दोनों जगह यूज़ करिए। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन रेपेलेंट यूज़ करिए। नंबर 5, खिड़की दरवाज़ों पे मेश लगवाइए, इससे मच्छर घर के अंदर आ ही नहीं पाएंगे और आप चैन से सो पाएंगे। नंबर 6, अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ मलेरिया ज़्यादा कॉमन है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रिवेंटिव मेडिकेशन भी ले सकते हैं, खासकर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी हाई रिस्क एरिया में। और दोस्तों एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ये सिर्फ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आपके मोहल्ले में कहीं पानी जमा है, चाहे वो कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो या फिर कोई खाली प्लॉट, तो लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करिए क्योंकि एक मच्छर सिर्फ आपके घर तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे मोहल्ले में फैलता है। गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम फॉगिंग करवाती है, स्पेशली मॉनसून के बाद। अगर आपके एरिया में यह एक्टिविटी हो रही है तो प्लीज़ कोऑपरेट करिए, घर के डोर्स विंडो खुला रखिए ताकि धुआं अंदर तक पहुंच सके। और हाँ एक मिथ है, वो मैं क्लियर करती हूँ, मलेरिया सिर्फ गंदा पानी या डर्टी एरियाज में नहीं होता, साफ पानी में भी एनोफेलियस मच्छर पैदा हो सकते हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि हमारा घर तो साफ है हमें क्या होगा, ये गलत सोच है, सबको इक्वली अलर्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव प्रिकॉशंस, छोटी छोटी आदतें बदल के हम अपने आप को अपने परिवार को मलेरिया से बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच सिस्टी, आपने ये चीज़ें बताई और कहीं ना कहीं हमें ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देने की कि सिर्फ अपना घर ही नहीं अपने आसपास के इलाके का भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हमारे घर में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर कमाने जाते हैं, बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, महिलाएँ बाहर कुछ सामान वामान लेने जाती हैं या फिर नॉर्मल वॉक के लिए भी निकलती हैं, तो आप दिन भर अपने घर में नहीं रहते। अगर घर साफ़ है फिर भी आपको मलेरिया होने के चांसेस बढ़ सकते हैं या चांसेस पूरे हैं, इसीलिए अपने आसपास भी पानी जमा बिल्कुल ना होने दें। सरकार को या फिर नगर निगम वालों को अगर कहीं जमा है पानी तो उसके बारे में ज़रूर इत्तला करिए, और साथ ही साथ अपना और अपनों का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम जानते तो हैं लेकिन हम समझते नहीं हैं, उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। फिलहाल ये थी बात सिम्टम की और प्रिकॉशन की, लेकिन अगर आपको मलेरिया हो जा रहा है तब क्या करना है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तब क्या करना है उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना हमारे साथ अपने शो स्वास्थ्य संगिनी में, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं मलेरिया की। स्टे ट्यून्ड।
0: हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरनिधि, जो एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और इस समय वे न्यू कॉन्सेप्ट संस्था से जुड़ी हैं। डॉक्टर अमर निधि के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, लाइफ स्किल्स, परिवार नियोजन, एचआईवी एड्स और सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन पर व्यापक रूप से काम किया है। उन्होंने समुदाय को जागरूक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमें खुशी है कि डॉक्टर अमर निधि आज हमारे साथ हैं और आज हमारे जरिए वे समुदाय से कुछ बातचीत करेंगी। डॉक्टर अमरनिधि, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है और ये ऐसा महसूस कर रही हूँ, गर्वित महसूस कर रही हूँ कि श्रोताओं को मेरे माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मैं दे सकूँ जिससे वो लाभ उठा सकें।
0: हमारा पहला सवाल है कि अनीमिया की समस्या काफी व्यापक हो गई है और इसके मुख्य कारण क्या हैं?
3: ये बहुत ही अहम सवाल है। अनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व नहीं मिलता तो खून में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, कभी किन्हीं कारणों से शरीर में से खून का बह जाना, पेट में कीड़े या कृमि होना या कुछ पुरानी बीमारियां भी अनीमिया का कारण हो सकती हैं।
0: क्या अनीमिया के कुछ भिन्न लक्षण होते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि अनीमिया है?
3: अनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान होना, चक्कर आना, त्वचा या जीभ का पीला होना, हाथ पैरों का ठंडे होना, सांस फूलना और खास कर पढ़ाई जैसे कामों में ध्यान ना लगना शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी को अनीमिया हो और ये लक्षण ना दिखाई दें, इसीलिए अनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच ही सबसे सही तरीका है।
0: जी, तो क्या अनीमिया को रोकने या अनीमिया से निकलने का कोई तरीका आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं को?
3: जी हाँ बिल्कुल, अनीमिया को रोकने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां या सिरप का सेवन लेना, आयरन वाले आहार, हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा का लेना और बीमारी का इलाज, ये सब बहुत मदद करते हैं। गंभीर स्थिति की अनीमिया में डॉक्टर ज्यादा खुराक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं।
0: जी, तो मैम अनीमिया सिर्फ लड़कियों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए को ही होता है या फिर पुरुषों में भी अनीमिया पाया जाता है?
3: ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि महिलाओं, खास करके किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का खतरा अधिक होता है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी अनीमिया से प्रभावित होते हैं, इसलिए समय समय पर सभी को अनीमिया की जांच करवानी चाहिए।
0: तो मैम मतलब अनीमिया के बचाव के लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं? कुछ सरकारी योजनाएं या सरकारी कार्यक्रम कुछ उपलब्ध हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं?
3: ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा जो श्रोताओं की जानकारी के लिए है कि सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत जीवन के हर चरण के लिए आयरन फॉलिक एसिड की खुराक दी जाती है और इसी के साथ साथ बच्चों और किशोरों किशोरों में किशोर किशोरियां दोनों शामिल हैं, उनकी जांच, कृमिनाशक दवा और काउंसलिंग भी की जाती है। स्कूलों में साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसे हम विफ्स के नाम से भी जानते हैं, ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है।
4: मैम, हमारा अगला सवाल होगा कि आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र से परिवार किस तरह आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, कृमिनाशक दवाएं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी जैसी सेवाएं ले सकता है?
3: ये आसान है। परिवार जो है वो नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सब सेंटर या पीएचसी में मुफ्त अनीमिया की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर IFA की गोलियां

0: पीएचसी या आंगनबाड़ी केंद्र से दवा मिलने लगती है, तो उसको बार बार आशा जो आंगनबाड़ी आशा और आंगनबाड़ी इसका वितरण कर सकते हैं, घर जाकर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगर किसी को अनीमिया की शंका है, वो सबसे नज़दीकी सब सेंटर पीएचसी सीएचसी या जिला अस्पताल में जाएं, तो वहाँ हीमोग्लोबिन की जांच और मुफ्त इलाज जो है वो डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध है। जो गंभीर रूप से अनीमिया से पीड़ित मरीज होते हैं उनको आगे रेफर कर दिया जाता है।
1: जी, तो मैम जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ज्यादा अनीमिया पाया जाता है, तो क्या इनके बचाव के लिए, इनके इनके स्वास्थ्य के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता हमें सरकार से मिलती है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनके लिए होता है?
0: जी हाँ बिल्कुल होता है। ICDS और जो सरकारी मुहिम है पोषण अभियान के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण, जिसे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी कहते हैं, उसके साथ साथ मुफ्त आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, स्वास्थ्य की जांच और सलाह दी जाती है।
1: मैम एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जो लोग अधिक मोटापे की समस्या से जूझते हैं उन्हें भी अनीमिया हो सकता है या उन्हें अनीमिया होने के अधिक चांसेस हैं?
0: थोड़ा सा ये सुनने में अजीब लगता है कि, लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जो मोटापा है वो अनीमिया से बचाव नहीं करता, बल्कि सूजन की वजह से शरीर में आयरन का उपयोग कम हो जाता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मोटे लोगों को भी अनीमिया हो सकता है।
1: तो आजकल की जो बहुत आदतें हैं जंक फूड खाने की लोगों में, तो क्या आज की युवाओं में जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं उनको अनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं उनमें?
0: आजकल की पीढ़ी के लिए, खास करके युवा की पीढ़ी और जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी बात है जो आपने पते की बात पूछी है। जंक फूड में कैलोरी तो बहुत होती है लेकिन ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन नहीं होते, इसलिए आयरन युक्त और पौष्टिक भोजन की जगह अगर जंक फूड लिया जाए तो खून की कमी का खतरा यानी अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जंक फूड होता है, जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जैसे बर्गर पिज्ज़ा नूडल्स मोमोज जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनमें अक्सर मीठा या नमक अधिक मात्रा में होता है जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं है और वो हमारे स्वास्थ्य को और आगे खराब करता है अनीमिया के साथ साथ। तो इसलिए जंक फूड को ये तो मेरा कहना उचित नहीं होगा कि बिल्कुल ना लें, लेकिन घर पे बने खाने का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें, इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा।
1: एक और सवाल मैम मैं पूछना चाहूंगी कि आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए या मतलब अगर हमें सिम्टम्स लग रहे हैं तो हम खुद से भी ले सकते हैं, और कितनी गोलियां लेनी चाहिए अगर हम लेते हैं तो दिन में?
0: आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का सेवन समुदाय स्तर पर ANM द्वारा वितरित किया जाता है इनको, और जो कि हीमोग्लोबिन की जांच के बाद ही किया जाता है। जो हमारा अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है उसमें गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको 6 महीने गर्भावस्था के दौरान और पहले 6 महीने बच्चे के जन्म के बाद जब वो स्तनपान कराती हैं, 180 और 180 दोनों को मिला के 360 गोलियों का सेवन आयरन फॉलिक एसिड का कराया जाता है। इसके अलावा किशोरियों को और जो और ऐसी महिलाएं हैं जो कि बच्चा या प्रजनन वर्ग में जो आती हैं, जो जो भी माँ बनने की आशंका हो सकती है, उनको सप्ताह में एक बार आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। लेकिन ये एक जरूरी बात है कि स्वयं से इसको लेकर इसका सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती, इसको किसी ना किसी जांच के बाद ही, और जो भी हमारे जो चाहे वो डॉक्टर हो या चाहे वो हमारे ANM हो, वो एक बार जब उनका पर्ची पर उसको लिख दें उसके बाद ही आशा और आंगनबाड़ी भी उनको आगे उनका वितरण करती हैं। तो स्वयं से इसको लेना उचित नहीं है।
1: थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे

0: श्रोताओं को काफी बातें बताई और आशा है कि वो सुनेंगे अच्छे से, उसको अमल भी करेंगे। धन्यवाद मैम।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: वेल्कम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस। मैं आपकी होस्ट और दोस्त आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं मलेरिया की। जी हाँ, मलेरिया, जिसके बारे में हमने जाना कि ये क्या होता है, कैसे फैलता है, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या इसके प्रिकॉशंस हैं। जी हाँ, और प्रिकॉशंस के साथ साथ अगर मान लीजिए हमें मलेरिया हो गया है, अब हमें क्या करना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा पड़ जाता है। जी हाँ, देखिए, अगर आपको मलेरिया हो जाए तो कुछ चीज़ें हैं आपको जो तुरंत करनी है। जैसे आपको तुरंत डॉक्टर से जांच करानी है, जिसमें ब्लड टेस्ट ज़रूर होगा आपका। बिना जांच कराए आपको दवाएं नहीं शुरू करनी है, डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं को आपको पूरा करना है। काफ़ी बार ऐसा होता है, हम सभी ये जानते हैं और हम सभी ने कभी ना कभी ये किया भी है, कि जब हमें डॉक्टर दवाई देते हैं तो हम उसको, उसकी जो सही समय विधि है उस तक उसको नहीं खाते हैं। जैसे हमें आराम मिल जाता है, हम सोचते हैं बस अब दवाई क्या ही करने खाना है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मलेरिया का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी पैरासाइट है जिसने आपको, जो आपके बॉडी के अंदर एंटर हुई है, किस क्षेत्र में कौन सी दवाई देनी चाहिए, वो आपको डॉक्टर ही बता पाएंगे। और दवाएं बीच में कभी ना बंद करें, चाहे बुखार उतर भी जाए तो भी। उसके बाद आपको भरपूर आराम करना है। अगर आपको मलेरिया हो गया है तो आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए आराम की ज़रूरत होती है, इसीलिए आपको रेस्ट बिल्कुल, उससे आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। उसके बाद आपको पर्याप्त पानी पीना है, तरल पदार्थ आपको ज़रूर लेने हैं, जिसमें आप पानी ले सकते हैं, ORS ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, सूप हो गया, ताज़े फलों का रस, यदि आपको डॉक्टर ने मना ना किया हो तो, अगर आपको कोई एलर्जी ना हो तो आप इन सभी चीज़ों का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि जब हमें मलेरिया होता है तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट भी होने लगती है। इसी से जो है शरीर में पानी की कमी भी पूरी होती है और आपका जो क्योर चल रहा है, जो आपका आप अभी अपने आपका आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें भी आपको आसानी होती है। उसके बाद खाने में भी, क्योंकि देखिए हम सब ये जानते हैं और हम सभी ने कभी ना कभी फील किया है कि जब हम ज़्यादा दवाएं खाने लगते हैं, बीमार हो जाते हैं, बुखार होने लग जाता है हमें, तो हमारे मुँह का टेस्ट भी चेंज होने लग जाता है। हम जो है हमारे जो मुंह का टेस्ट है, हमें मन करता है कुछ चटपटा सा मिल जाए तो क्या ही बात होती, लेकिन भाई इस दौरान आपको चटपटा खाना बिल्कुल नहीं खाना है। आपको खिचड़ी, दाल, दलिया, दही यदि आपको सूट करे तो, और साथ ही साथ उबली सब्जी और फल खाने हैं। ये आपको एक तो सही न्यूट्रिशन देंगे और दूसरी बात आपको नुकसान भी नहीं पहुँचाएंगे। तला भुना भारी खाना ये आपको कुछ दिनों तक बिल्कुल कम करना है, बिल्कुल ना के बराबर रखना है। साथ ही साथ बुखार को भी आपको लगातार नापते रहना है। आप एक थर्मोमीटर ले सकते हैं, जिससे आप अपने बॉडी को, अपने जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कुछ समय के बाद आप उसे जो है टेस्ट करते रहें। आप जो भी चेंजेस होते हैं वो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, और दवाई भी अगर डॉक्टर आपको डोज़ बढ़ा रहा है या घटा रहा है उसी अनुसार लेना है। अपने से किसी का भी डोज़ बढ़ाना घटाना बिल्कुल नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर कुछ सिम्टम्स हैं ऐसे जो आप जान लीजिए कि अगर ये आपको होने लग जाए दवाई लेने के बाद भी, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं जब आपको एडमिट भी होना पड़ सकता है। जैसे अगर आपको बार बार उल्टियाँ आ रही हैं, बेहोशी हो रखी है, भ्रम होने लग गया है, कन्फ्यूज़ होने लग गए हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कभी कभी आपको दौरे भी पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है, बार बार आपको जो है बुखार आने लग जाता है और लगातार तेज़ बुखार आता है, ये मलेरिया के बहुत गंभीर संकेत हैं। अगर ये दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। इन सब में आपको बिल्कुल भी, कहते हैं ना अवधि में, कि ढिलाई नहीं करने लायक है, तो भाई ढिलाई बिल्कुल नहीं करने लायक है जब बात आपकी सेहत की हो। और स्पेशली जो लोग अडल्ट्स हैं उनसे मैं बताऊँ कि आप अपने बच्चों का, क्योंकि बच्चे एक ऐसे चीज़ हैं जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो पेरेंट्स हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, वो इन चीज़ों से बहुत इजी रिलेट कर पा रहे होंगे, तो उनको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं। कोशिश करें कि ओडोमॉस या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं मार्केट में जिससे मच्छर आपको नहीं काटते, अगर बच्चे बाहर जा रहे हैं तो उन्हें ये ज़रूर लगाएं। साथ ही साथ ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो मच्छर को भगाती हो, और अपने बच्चों का तो ध्यान रखें ही रखें, और साफ़ सफ़ाई का उससे भी ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अगर साफ़ सफ़ाई रहेगी तो सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि आपका पूरा घर भी सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की बात, आई होप आपने समझा होगा और सुना होगा, इन्जॉय भी किया होगा, क्योंकि भाई देखिए इन्जॉय करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें जब हमारी गलती पता चलती है ना तो हम सोचते हैं अरे हाँ भाई यहाँ तो हम गलती कर रहे थे। आपने समझा होगा और समझने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसे अपनी ज़िंदगी में लागू भी करेंगे। इसी थॉट के साथ लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे आपसे मंडे को लेके आपकी अपना शो ज्ञानसी लाइव, जिसमें हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, चटपटी और रिलेटेबल। तब तक के लिए अपना रेडियो स्टेशन रेडियो ज्ञानसी 89.6 FM सुनते रहिए और इन्जॉय करते रहिए।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब?
3: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी, और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
6: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूं और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
5: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
6: जी हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
5: जी,
6: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
5: जी बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीवी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
6: जी हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
5: जी,
6: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन ना लगना।
5: जी तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख ना लगना, तो जब आप कोई टीवी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
6: जी जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
5: जी,
6: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर।
1: साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। आज का कार्यक्रम कुछ खास है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हफ्ते की जिसका हर परिवार की खुशी से सीधा नाता है, नवजात सुरक्षा सप्ताह यानी न्यूबॉर्न केयर वीक, जो हर साल 15 से 21 नवंबर तक पूरे देश में मनाया जाता है। और आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ है गांव-गांव की हेल्थ दूत, माताओं की सच्ची साथी और नवजात देखभाल की चैंपियन, हमारी शुभचिंतक टीकन देवी जी। स्वागत है भाभी आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और क्या तारीफ कर रहे हो, इतने बड़े बड़े शब्द तो मैंने अपने ही बारे में कभी नहीं सुने।
1: क्यों नहीं भाभी, जब आप इतने बड़े बड़े काम करेंगी तो बड़े बड़े शब्द तो तारीफ में बनते हैं। टीकन भाभी, शुरुआत एकदम मूल बात से करते हैं। ये जो नवजात सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, ये आखिर क्यों मनाया जाता है, इतना जोर क्यों दिया जाता है इस पर?
2: अरे दीदी, बात बहुत सीधी है। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसके बाद के पहले 28 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे नाजुक समय होता है। इस समय को ही हम नवजात अवस्था कहते हैं। इस दौरान बच्चा इतना कमजोर होता है कि जरा सी लापरवाही भी उसे बीमार कर सकती है। यही वो समय है जब उसे संक्रमण लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। शरीर का तापमान तुरंत बिगड़ जाता है। कई बार बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है तो उसके फेफड़े में ताकत कम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध ना मिले तो बच्चे बहुत जल्दी कमजोर पड़ जाते हैं। मतलब ये पूरे 28 दिन बच्चे के लिए जैसे इम्तिहान का होता है। ये सावधानी बहुत जरूरी है।
1: भाभी, ये सब सुनकर तो लगता है मामला बहुत गंभीर है। क्या हमारे देश में अभी भी नवजात बच्चों की मौत एक बड़ी समस्या है?
2: कहने में दुख होता है दीदी, लेकिन हाँ अभी भी है। SRS 2023 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में अभी भी 18 नवजात बच्चे हर 1000 जन्मों में पहले ही महीने में दुनिया छोड़ देते हैं। अब सोचो ना, 18 परिवारों के घरों की रोशनी सिर्फ इसलिए बुझ जाती है क्योंकि थोड़ी सी सावधानी नहीं बरती गई।
1: ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसके कारण कौन कौन से होते हैं?
2: कारण साफ है दीदी। सबसे ज्यादा मौतें कम वजन के बच्चों और समय से पहले जन्मे बच्चों की होती है। ये लगभग 45% के करीब है। फिर आते हैं वे बच्चे जो जन्म के समय ठीक से सांस नहीं ले पाते, जिसे हम एस्फिक्सिया कहते हैं। ये लगभग 15% मामलों में होता है। नवजात निमोनिया 10% बच्चे की जान ले लेती है। सेप्सिस यानी इन्फेक्शन लगभग 6% का कारण बनता है। बाकी जो कारण है, जैसे जन्म के बाद दूध न लगना, साफ सफाई न रखना, नाभि का गलत तरीके से ख्याल रखना, जन्मजात समस्याएं, ये सब भी जिम्मेदार है। इसलिए ये पूरा सप्ताह मनाने का मकसद यही है कि सही जानकारी हर घर तक पहुंचे।
1: सही कहा आपने भाभी। और हर साल की थीम बहुत ही सुंदर है ना?
2: जी बिल्कुल दीदी, इस साल की थीम है न्यू बॉर्न सेफ्टी, एवरी टच एवरी टाइम एवरी बेबी। यानी कि हर बार जब भी हम बच्चे को छुएं, उसे उठाएं, दूध पिलाएं, नहलाएं, कपड़े बदलें, तो हर बार हमें पूरा ध्यान रखना है कि बच्चा सुरक्षित रहे। ये नहीं कि हर बार सावधानी बरती और दूसरी बार भूल गए। बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, हर बच्चा समान रूप से कीमती है और हर बच्चे की सुरक्षा जरूरी है।
1: बहुत बढ़िया। अब थोड़ी जानकारी लोगों को भी दे देते हैं कि बच्चे के पैदा होते ही क्या क्या करना जरूरी होता है। टीकन भाभी, जरा विस्तार में समझाइए कि जन्म के तुरंत बाद क्या करना चाहिए।
2: अरे दीदी, जन्म का पहला घंटा सबसे अहम होता है। इसको गोल्डन आवर्स भी कहते हैं। बच्चा जैसे ही पैदा होता है, सबसे पहले नाल काटने में थोड़ी देर की जाती है, 1 से 3 मिनट तक। इसे ही डिलेड कॉर्ड कटिंग कहते हैं। इससे बच्चे को माँ का खून और ऑक्सीजन अच्छे से मिल जाता है। इसके बाद बच्चे को तुरंत पूरी तरह से सुखाया जाता है। गीला शरीर बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसका तापमान एकदम से गिर जाता है। फिर बच्चे की सांस देखी जाती है, अगर सांस ठीक नहीं चल रही हो तो NSS के ट्रेंड स्टाफ तुरंत उसे सहारा देते हैं। इसके बाद बच्चा माँ की छाती पर स्किन टू स्किन रखा जाता है, यानी उसका शरीर माँ की गर्मी से सीधे जुड़ा रहता है। ये बच्चे के तापमान, सांस, धड़कन सबको स्थिर कर देता है। और दीदी, सबसे जरूरी बात ये है कि जन्म के एक घंटे के भीतर माँ का दूध पिलाने की शुरुआत की जाए। यही दूध बच्चे की पहली दवा है, पहली ढाल है। बच्चे को विटामिन के का टीका भी इसी समय दिया जाता है, ताकि आगे चलकर खून बहने की समस्या ना हो। और अंत में बच्चे का वजन, शरीर की जांच, और जरूरत हो तो आगे भी देखभाल शुरू और जरूरत हो तो आगे की देखभाल भी शुरू की जाती है।
3: ओह ठीक है भाभी, पर एक बात तो अक्सर लोग कहते ही रहते हैं कि नवजात बच्चा बहुत जल्दी ठंड से कांपने लगता है, यानी उसको बहुत जल्द ठंड पकड़ लेती है। ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है इसकी?
2: दीदी, नवजात के शरीर में तापमान संभालने की ताकत बहुत कम होती है। हम बड़े लोग जैसे थोड़ी ठंड सह लेते हैं, बच्चा वैसा नहीं कर सकता है। उसका शरीर इतना नाजुक होता है कि जरा सी हवा या जरा सा गीला कपड़ा जरा सा देर भी उसके तापमान को गिरा देती, इसलिए बच्चे को ठंड बहुत जल्दी पकड़ लेता है। जैसे ही बच्चा पैदा हो उसे तुरंत अच्छी तरह से सुखाना जरूरी है। सिर पर छोटी सी टोपी डाल दो, कपड़ा लपेट दो और कपड़ा भी थोड़ा गर्म रखा जाए। सबसे अच्छा तरीका तो है कि माँ की छाती से लगा रहे, यानी स्किन टू स्किन। इससे बच्चा सुरक्षित भी रहता है और उसका तापमान भी ठीक रहता है। ठंड नवजातों की सबसे बड़ी दुश्मन है दीदी, ये मैं पूरे अनुभव से कहती हूँ।
3: सही कहा आपने भाभी। अब बात करते हैं स्तनपान की। कई बार लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं, पर आप ही बताइए स्तनपान क्यों इतना जरूरी है?
2: दीदी, माँ का दूध नवजात के लिए भगवान का दिया हुआ वो खजाना है। जी, इसमें जितनी ताकत, जितना पोषण, जितनी दवा, ऑल इन वन है।
3: बिल्कुल,
2: माँ का दूध बच्चे को हर तरह के संक्रमण से बचाता है, उसे ताकत देता है, उसके दिमाग का विकास तेज करता है। और इसमें सबसे प्यारी बात ये है कि इससे माँ और बच्चे के बीच रिश्ता भी बहुत मजबूत होता है। जन्म के 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, ना पानी, ना शहद, ना घुट्टी, कुछ भी नहीं। बच्चे की पहली और असली दवा है माँ का दूध।
3: क्या बात है भाभी। लेकिन भाभी, हमारे गाँव में तो लोग बच्चे को छूते रहते हैं, चूम लेते हैं, हाथों में उठा लेते हैं, ये सब कितना सही है आखिर?
2: बस दीदी, यही सबसे खतरनाक चीज है,
3: है ना?
2: नवजात का शरीर इतना कमजोर होता है कि अगर कोई भी हाथ बिना धोए उसे पकड़े, चूम ले या बहुत सारी भीड़ उसके पास आ जाए तो संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है। नाभि को गंदे हाथों से छू दिया, समस्या। बिना हाथ धोए बच्चा उठा लिया, समस्या। घर में 10-20 लोग नया बच्चा दिखाओ कहकर इकट्ठा हो गए तो भी समस्या। हमेशा एक ही बात याद रखो, साफ हाथ, सुरक्षित बच्चा। बच्चे के लिए ये नियम सबसे बड़ा बचाव है।
3: ठीक है भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब लोग अक्सर पूछते हैं कि कौन कौन से खतरे के संकेत हमें तुरंत पहचान लेने चाहिए।
2: देखिए दीदी, अगर बच्चा दूध ना पिए या उसकी सांसें तेज चल रही हो या सीना धंसता हुआ दिखे, तो ये बड़े खतरे हो सकते हैं, संकेत होते हैं ये खतरों के। अगर बच्चा बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म लगे, त्वचा पर दाने फोड़े हों, बच्चा बहुत रोए या बिल्कुल ना रोए, बिल्कुल चुप पड़ा रहे, तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। शरीर का पीला पड़ जाना, झटके आना, ये तो बिल्कुल भी इंतजार करने वाली चीजें नहीं है। ऐसा कुछ भी दिखे तो बिना देरी किए अस्पताल जाएं। नवजात के मामले में देर करना मतलब खतरा बढ़ाना है।
3: बिल्कुल सही बात है भाभी। अब एक और जरूरी बात, अस्पतालों में नवजात के लिए कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं?
2: दीदी, सरकार ने आजकल हर स्तर पर नवजात बचाने की व्यवस्था की है। सबसे पहले आती है NBCC, यानी न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर, जहां बच्चे को गर्म रखने के लिए वार्मर होता है, ऑक्सीजन सेक्शन। इसके बाद आती है NBSU यानी न्यू बॉर्न स्टेबिलाईजेशन यूनिट, जहां हल्के बीमार या कम वजन वाले बच्चे को संभाला जाता है। फिर आती है SNCU स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट, ये तो बड़े अस्पतालों में होती है, 12 से 20 बेड वाली। यहाँ सांस की दिक्कत हो, कम वजन हो, पीलिया हो, संक्रमण हो या हर तरह की बीमारियों का इलाज होता है। और अब तो MNCU भी बन रहे हैं, जहाँ बच्चा और माँ साथ रहते हैं। बच्चा अस्पताल में भर्ती है तो माँ को अलग नहीं किया जाता, माँ ही उसके पास रहकर उसकी देखभाल करती है, और यही सही तरीका है।
3: गांव में आशा बहनें जो काम करती हैं, उसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, तो जरा इस पर भी बता दे।
2: हाँ दीदी, HBNC यानी होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आशा बहनों की। जन्म के बाद आशा बहन 3rd, 7th, 14th, 21th, 28th, 42th दिन घर घर जाकर बच्चे की जांच करती है। वो वजन देखती है, छाती का उतार चढ़ाव चेक करती है, बच्चे को दूध कैसे पिलाना है ये सब सिखाती है। अगर कोई खतरे का संकेत दिखे तो तुरंत रेफरल कराती है, साथ ही माँ की देखभाल करती है। खून की कमी, कमजोरी, तनाव, परिवार नियोजन, HBNC का मकसद है कि हर घर में सुरक्षित देखभाल पहुँचे।
3: और भाभी एक बहुत जरूरी बात, ये जो KMC यानी कंगारू मदर केयर है जिसकी खूब चर्चा होती है, ये आखिर क्या है?
2: अरे दीदी, KMC तो जादू जैसा है,
3: है ना?
2: हाँ, इसमें बच्चा सीधे माँ की छाती पर रखा जाता है, त्वचा से त्वचा यानी स्किन टू स्किन, कम से कम 1 घंटे, जितना लंबा हो सके उतना अच्छा है। कई दिन कई हफ्ते तक किया जाता है, अस्पताल में भी किया जाता है और घर पर भी। इससे बच्चे का तापमान स्थिर रहता है, वजन तेजी से बढ़ता है, संक्रमण कम होता है और माँ का दूध ज्यादा बनता है, बच्चा भी शांत रहता है। मेरी तो हमेशा यही सलाह है, KMC जितना लंबा उतना फायदा ज्यादा।
3: यानी कंगारू मदर केयर बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जादुई भी।
2: बिल्कुल
3: भाभी, अब सरकार की कई योजनाएं चलती हैं नवजातों के लिए, उसके बारे में क्या कहना है आपका?
2: दीदी, सबसे पहले आता है NSSK यानी नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसमें हर प्रसव केंद्र पर प्रशिक्षित स्टाफ होता है जो जन्म के समय सही देखभाल, सांस चलने पर रीससिटेशन, ठंड से बचाव, इन्फेक्शन से बचाव करते हैं। दूसरा है JSSK यानी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसमें बच्चे को 1 साल तक मुफ्त इलाज मिलता है, मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त जांच, मुफ्त खून और घर से अस्पताल तक और वापस पूरी तरह मुफ्त एम्बुलेंस सेवा। गरीब परिवारों के लिए तो ये सच में भगवान की कृपा जैसा है।
3: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। एक और बात कि विटामिन के का टीका क्यों लगवाया जाता है?
2: क्योंकि दीदी, नवजातों में विटामिन के बहुत कम होता है और इससे कई बार अचानक खून बहने का खतरा भी होता है, इसलिए जन्म के पहले घंटे में ही 1 mg का विटामिन के देना बहुत जरूरी है। ये बच्चे को गंभीर बीमारियों से बचाता है।
3: और आखिर में नवजात देखभाल में घर में कौन कौन लोग मदद कर सकते हैं, ये भी बता दीजिए।
2: ये तो सबको करना चाहिए। हाँ, भैया, पिता, दादी, नानी, चाची, बड़ी बहन, हर कोई। माँ को आराम मिले, सफाई रहे, सही समय पर दूध दिया जाए, ये सब परिवार की ही तो जिम्मेदारी है। नवजात सिर्फ माँ का नहीं, पूरे परिवार का बच्चा होता है।
3: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। और भाभी, कहीं ना कहीं आपने कुछ भ्रांतियाँ भी तो लोगों में होते हुए सुनी या देखी होंगी।
2: हाँ दीदी, और इन्हीं भ्रांतियों की वजह से बच्चे बीमार पड़ते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पहला दूध गंदा होता है। अरे दीदी, यही तो सबसे पौष्टिक होता है।
3: वही तो।
2: हाँ, कहते हैं कि बच्चे को जल्दी नहला दो। अरे 24 घंटे बाद ही नहलाना चाहिए, ज्यादा लोग देखने आएंगे तो अच्छा है। नहीं दीदी, ये तो संक्रमण का बड़ा खतरा है और सबसे खतरनाक भ्रांति। बच्चा थोड़ा ठंडा है, ठीक हो जाएगा।
3: अरे
2: नहीं, ठंड नवजात की जान भी ले सकती है। मेरे गांव की बहनों और भाइयों, एक बात जरा दिल में उतार लो, हर बच्चा अनमोल होता है और नवजात की सुरक्षा सिर्फ माँ की नहीं बल्कि पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। देखिए, नवजात का ध्यान रखना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अगर सही रखा जाए तो बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहता है।
3: ठीक है भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कितनी सरल भाषा में इतनी जरूरी और इतनी महत्वपूर्ण बातों पर जरूरी बातें की। दोस्तों, जैसे टीकन भाभी ने कहा, नवजात सुरक्षा सप्ताह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए आज मिलकर एक वादा करें, हर बच्चा सुरक्षित बच्चा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नई सेहत भरी बात के साथ, पर जाने से पहले बिल्कुल हम लेंगे आपकी और हमारी सुरक्षा की शपथ।
0: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
4: प्राथमिकता देंगे,
0: क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे
4: ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
4: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
0: विशेष ध्यान रखेंगे।
4: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा
0: तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
5: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
5: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
6: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
7: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: त्योहार त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
9: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
8: और जेंट्स के लिए,
9: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
8: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
9: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आज समता और साथ में आज जे अंशिका। तो भाई, हम लोग आ गए हैं आज सैटरडे, यानी कि आज करते हैं आज के दिन हम फुल मस्ती धमाल। लेकिन आपकी, जिसे कहते हैं ना कि कोई अगर घर में आ रहा होता है, किसी ने नॉक किया होता है, तो पहले हम लोग दरवाजा खोलते हैं।
4: यस मैम,
3: पहले हम अंदर से ही अपनी प्लेटिंग और अपना रूम डेकोरेट नहीं करने लगते हैं। पहले हम दरवाजा खोलते हैं, उनको अंदर बैठाते हैं, उनका हालचाल लेते हैं और उसके बाद हम अपनी कहते हैं। तो हम लोगों ने भी अभी यही सेगमेंट शुरू कर दिया है कि पहले हम लोग दरवाजा खोलते हैं, उन्हें बैठाते हैं और उसके बाद में हम नेक्स्ट चाय पानी की व्यवस्था खुद करने लगते हैं।
4: बिल्कुल
3: अच्छा है ना?
4: अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो सुपर से भी ऊपर वाले सैटरडे में स्वागत है आप सभी का। स्वागत हो गया है, अब स्वागत के साथ प्यारी प्यारी हमारी जो दो औपचारिकताएं हैं, हाँ, वो पूरी करते हैं और उसके बाद बताते हैं। हाँ, कि आज हमारे
3: और
4: पास
3: पता है, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, मैं दरवाजा मैंने खोला और मतलब मैं सोच रही थी कि मुझे अब क्या करना है। मतलब मेहमानों को देख करके मुझे लगा कि अब क्या करना है। खैर कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो जिसका नाम है
2: सुन सहेली।
3: एंड दोपहर आ गई है, तो दोपहर में एक साथ एक ही फ्रेम में विश करेंगे
2: शुभ दोपहरिया।
4: शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और दोपहरिया है प्यारी सी हमारे आने से। आई होप कि आप सभी की दोपहरिया और प्यारी हो गई हो और आप एक्साइटेड हो अपने सैटरडे के लिए। क्योंकि कहते हैं ना कि एक दिन जब हमें मिलता है और ये फीलिंग आती है कि छुट्टी है, संडे सभी की छुट्टी वाला दिन होता है, तो वो जो एक फीलिंग आती है सैटरडे से ही आने लगती है कि कल छुट्टी है, तो वो एक अलग सी होती है। तो आप सभी वही महसूस कर रहे होंगे ना कि कल हम फ्री फ्री फ्री हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि फ्री फ्री फ्री होता नहीं है, मतलब संडे इतना काम में बीतता है कि ये फीलिंग आती है कि
3: जी
4: संडे नहीं, लगता है कि इससे अच्छे तो बाकी दिन थे।
3: ओके, हम मुझे भी यही लगता है कि हम लोगों को ना कि संडे से बाकी दिन अच्छे होते हैं।
4: तो जी मैम,
3: अभी हम लोग सबसे पहले आज की पोयम हम लोग बोल देते हैं, ठीक है
4: जी,
3: जो कि आज का हमारा लव सीजन पे रहता है।
4: बिल्कुल मैम,
3: ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, तो कुछ हाँ, है एंट्री में कुछ बोलना है?
4: हाँ बिल्कुल बोलना है। प्यार वो नहीं जो शब्दों में बयां हो, प्यार वो है जो आंखों में दिखता है, हमें नजर नहीं आता पर औरों को साफ दिखाई देता है। तो चलिए प्यार की इस नई राह की शुरुआत करते हैं और इस प्यारी सी कविता को सुनाएंगे आपकी अपनी आज समता।
3: प्यार एहसास है जो सिर्फ महसूस किया जाता है, शब्दों में कहाँ बंधती है मोहब्बत की दास्तान, ये तो वो हवा है जो रूह को छूकर गुजर जाती है, ना इसे देखने की चाहत ना पाने की जिद, ये वो खामोश धड़कन है जो चुपके से धड़क जाती है, पास होने से नहीं या तो दूरियों से सवरता है, आंखें बंद हो तो भी अक्स सामने उभरता है, नहीं जरूरत इसे किसी गवाह या सबूत की, यह वो दुआ है जो बिन मांगे भी असर करता है, जुबां चुप रहे फिर भी सब बयां होता है, जब एक का दिल दुखे तो रोता दूसरा आसमान है, या कोई सौदा नहीं जो तराजू में तोला जाए, ये तो बस एक पावन अनकहा और सच्चा एहसास है।
4: वाओ, मतलब वाकई में बहुत ही प्यार से मैम ने बयां किया अभी कि प्यार कैसा एहसास है। और बिल्कुल प्यार ऐसा ही एहसास है कि जो लाइफ में जब आता है ना, तब लगता है कि बस अभी ही एक नई शुरुआत हुई है।
3: बिल्कुल,
4: अभी हमने कुछ नया किया है, कुछ नया पाया है, एक नया एहसास महसूस किया है।
3: तो जैसा कि अंशिका ने बोला अभी, तो मैं भी कुछ बोल दूं कि
4: जी मैम,
3: हम करते हैं रोज, एक दूसरे से घर जाते हुए रास्ते में चुलबुली सी फाइट।
4: ओके,
3: ठीक है। तो आइए, अब तैयार है अंशिका के द्वारा आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
4: वाह, बहुत प्यारा था। अगर ऐसे प्यारी प्यारी लाइन मैम बोलेंगी तो मैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ भूल जाऊंगी।
3: हाँ, ऐसा है क्या?
4: ऐसा है, अगर मैं खो जाऊंगी आपकी लाइन्स में। लेकिन चलिए, भूली नहीं हूँ मैं, और आप सभी को बता देती हूँ, जो आपकी बातों को न समझे
3: वो सबसे बड़ा बेवकूफ।
4: हाँ, ये तो है,
3: है ना? जो प्यार को न समझे यार, तो वो तो बेवकूफ
4: हुआ ही। बिल्कुल, जो आपकी बातों को नहीं समझते हैं, उनके सामने अपनी फीलिंग्स को बताना, यानी कि अपने शब्दों की इज्जत को कम करना। इसलिए बात हमेशा उसी से करें जो आपके शब्दों को और आपकी फीलिंग्स को समझते हैं।
3: तो देखिए भाई, आज है प्यार का दिन, यानी कि आज हम रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में भी प्यार का बता दिए, लव की हमने पोयम बता दी आपको, आज की कविता बता दी, साथ ही साथ जो लव सीरीज हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ हम जब गेम खेलेंगे उसमें भी लव सॉन्ग्स को लेंगे, साथ ही साथ में लव राशिफल लेकर के आएंगे। तो भाई कुल मिलाकर के आज सैटरडे एक ऐसा होता है जिस दिन हम बात करते हैं कम और सॉन्ग्स चलते हैं ज्यादा। मतलब आज के दिन हम आप वाली मन की ज्यादा करते हैं।
4: बिल्कुल, और अपने मन की थोड़ी सी कम,
3: तो भाई अपने मन की थोड़ी सी कम करते हैं। तो चलिए, ज्यादा नहीं बोलते हुए आइए हम सुनाते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन सा गाना। लेकिन हम कुछ भूल रहे हैं, मुझे लग रहा है।
4: क्या
3: भूल ये रहे हैं कि आज लव, आज का लव, आज जो दिन होता है वो लव, लव का दिन होता है, है ना? तो लव के दिन में हमने आज एक बहुत बड़ी अच्छी सी पोयम भी बोल दी।
4: जी मैम।
3: लेकिन अंशिका ने आज लव के दिन में मेरी तारीफ नहीं की है। मतलब रोज होता है तो मैं इंतजार करती हूँ कि अभी अंशिका कुछ बोलेगी, अंशिका आज कुछ बोलेगी मुझे देख करके कि मतलब पहले से मेरे में फर्क हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसने कुछ बोला ही नहीं, तो मैं बहुत अंदर से उत्सुकता होती है कि हाँ अंशिका बोलेगी, अभी बोलेगी।
4: ओके, तो जब मैम ने कह दिया है तो बोल देती हूँ। वैसे तो मैम कुछ दिनों से ये अच्छी लग रही है, मतलब उनके फेस पे ग्लो रह रहा है।
3: कुछ दिनों से सनम के मिजाज दिखते हैं।
4: और क्यों दिखते हैं बदले?
3: क्यों दिखते हैं? क्योंकि मैं हीलिंग प्रोसेस में हूँ।
4: यस।
3: और हीलिंग प्रोसेस में जब इंसान रहता है तो वो सारी चीजों को भूल करके सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचता है कि हम कितने सुंदर लग रहे हैं, हम ये पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, और हम इधर जाएंगे तो हमारे मन को सुकून मिलेगा। तो ये पता है कब होता है?
4: जब हम
3: किसी के मोह से छूटते हैं।
4: ओके।
3: और अच्छे वाले प्यार की ओर हम जाते हैं। जैसे अभी आपने क्या कहा कि प्यार वो होता है जो आपको सम्मान दे।
4: बिल्कुल।
3: आपको समझे, है ना? तो शायद एक आपको अगर कोई पकड़ के बैठा है तो मतलब वो मोह है। अगर आपको किसी ने आजाद किया हुआ है, इट मींस कि वो प्यार है।
4: बिल्कुल,
3: है ना?
4: तो आज हमारा प्यार वाला दिन है, और प्यार वाले दिन में आज मेरे पास कुछ सरप्राइज भी है।
3: सरप्राइज?
4: यस,
3: बहुत सरप्राइज
4: है कुछ, लेकिन वो अभी नहीं बताएंगे।
3: अच्छा ठीक है, मत बताइए, लेकिन मैं आपको बताऊंगी और मैं आपको सुनाऊंगी भी, क्योंकि आज सैटरडे है। तो भाई एक दो गाने तो आपको आपका हक है भाई आज के दिन सुनना। तो चलिए फटाफट सुनाती हूँ, आज के गानों की सीरीज को शुरू करते हैं, आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। बस हम यूं गए यूं आए, लेकिन आपको सुनाएंगे आज लगातार दो गाने। तो भाई इंजॉय करिए आज के दिन को, बस हम यूं गए यूं आए, स्टे ट्यून्ड।
5: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है? स्किन पीली पड़ रही है? या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता एंड सैटरडे वाला दिन भी आ ही गया।
3: फंडे
2: तो चलिए भाई, फंडे है और एंजॉय करेंगे आज के दिन को। तो फटाफट शुरू करते हैं आज के दूसरे सेगमेंट की ओर, जो कि हमारा रहता है OTT सीरियल्स एंड कुछ नेटफ्लिक्स पे या फिर और हॉटस्टार वगैरह, जो भी अंशिका जानती है। आई नो, मुझे नहीं, मैं ना देखती हूँ ना, मुझे पता है। तो ये देखती है सारा टाइम, इसके हाथ में मोबाइल रहती है, यहाँ भी आती है तो इसके हाथ में मोबाइल रहती है, और पता नहीं कौन कौन से आदिकाल से पुराने जो सीरियल्स हैं वो खोज खोज के इसको इसकी सीरीज को पूरा करना होता है। इसको किसी ने कह रखा है कि तुम अगर इतनी सीरीज पूरी करोगी तो तुम एक हफ्ते में पतली हो जाओगी।
3: ऐसा है?
2: हाँ, इसको किसी ने, पंडित ने कह रखा है, है ना?
3: फिर तो वही पूरे देखने चाहिए,
2: पूरा देखना चाहिए। ये पतले होने के लिए परेशान है, मैं मोटे होने के लिए परेशान हूँ। पता नहीं क्यों मैं मोटे होने के लिए परेशान हूँ।
3: बिल्कुल, आपको तो परेशान होने की कोई नीड नहीं है,
2: पागल है ना हम, इसीलिए मुझे लोग कहते ही हैं ऐसा वैसा। चलो तो फटाफट चले सीरियल से बात करते हैं और फिर हम अपने पे आते हैं कि हम क्या हैं एक्चुअल में।
3: ओके, तो बात हो रही थी पिछले सैटरडे, हम बात कर रहे थे टीवी की कि टीवी पे जो सीरियल्स आते हैं उनके हम कितने दीवाने हुआ करते थे।
2: हाँ।
3: और आज भी बहुत लोग होते हैं। तो आज कुछ शुरुआत करते हैं टीवी की दुनिया से। तो भाई, जिन्हें भी टीवी देखना बहुत पसंद है, ये उनके लिए है कि आज दो तीन शोज में ऐसे बताऊंगी जो आप देख सकते हैं।
2: ओके,
3: तो सबसे पहले चलते हैं, थोड़ा सा प्यार का दिन है हमारा, तो प्यार व्यार इश्क इश्क की तरफ चलते हैं और उसके बाद फिर आएंगे वापस। तो इस बार हम प्यार में जो सीरियल का नाम आपको बताने वाले हैं, वो बहुत ही प्यारा सा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है मन अति सुंदर।
2: मन अति सुंदर,
3: क्योंकि
2: याद आ गया।
3: हाँ, याद आना भी चाहिए और इट्स वेल की याद आ गया। तो इस शो में ऐसा है कि जैसे कहते हैं ना कि कोई अगर आपको प्यार करता है तो वो आपकी मन की खूबसूरती देखता है, और बाहरी खूबसूरती सिर्फ वही देखते हैं जिन्हें जज करना होता है या फिर आप उन्हें अपनी राय देनी होती है। तो इसमें यह है कि मन की खूबसूरती क्या होती है, ये आप जानेंगे अगर आप इसे देखेंगे। तो ज़रूर देखिए Zee5 ऐप पर और इन्जॉय करिए।
2: Zee5 ऐप, जो मैंने कभी सुना ही नहीं है, मुझे पता था
3: नहीं, मैम ऐप पे भी देख सकते हैं और टीवी पे भी देख सकते हैं
2: जी।
3: लेकिन ऐप पे देखना इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि फिर आप बिना ऐड के वो पूरा एपिसोड देख सकते हैं।
2: ओके,
3: इसलिए
2: ओके।
3: अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट शो हमारा है, जो कि नाम ही बहुत प्यारा है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, इश्क जुनूनी।
2: इश्क जुनूनी,
3: यस।
2: ये कौन सा इश्क होता है? मतलब इश्क इश्क तंदूरी सुना है, इश्क मासूमी सुना है, इश्क जुनून सुना है, इश्क मासूम सुना है, इश्क और भी कुछ होगा, लेकिन इश्क जुनूनी कौन सा होता है?
3: इश्क जुनूनी बहुत ही प्यारा सा है। इसमें आप पता है स्टोरी होती है और इसमें थोड़ी सी you know, जैसे आजकल के लड़के होते हैं थोड़ा धाकड़ पर्सनालिटी होती है जिनकी।
2: हाँ।
3: वो वाली स्टोरी है कि वो जो है बहुत अच्छे परिवार से होता है, बहुत अच्छा होता है, और उसको अचानक जिससे प्यार होता है वो मामूली एक MBBS कर रही लड़की होती है जो डॉक्टर बनने वाली होती है, लेकिन जो कि वो बहुत अच्छे घर से होता है, एस्टैब्लिश परिवार से होता है। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि हम इतने कम पैसों वाले घर की लड़की के साथ तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, और हमें हमारे बराबर की एस्टैब्लिश अच्छी फैमिली से चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, मेरी तो मेरा प्यार वही है, और अगर मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा, वरना पूरी लाइफ नहीं करूँगा। और ये इश्क जुनूनी इसलिए है क्योंकि इसमें जो लड़की है उसका नाम रूहानी होता है।
2: रूहानी,
3: तो बहुत प्यारी स्टोरी है, और आप देखें और इन्जॉय करें कि जब कोई इश्क से टकराता है तो किस तरह चूर होता है, क्योंकि कोई उससे टकरा सकता ही नहीं है। बहुत प्यारी स्टोरी है।
2: अंशिका ने ऐसे कहा कि उससे कोई टकरा सकता ही नहीं है। यहाँ इतना बड़ा पहाड़ बैठा हुआ है इश्क, और इश्क से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा।
3: नहीं तो आप चूर होने वालों में से नहीं।
2: ये तो बात एग्जैक्टली हुई है, ये तो एग्जैक्टली है बात, इश्क में इंसान चूर चूर हो ही जाते हैं।
3: बिल्कुल नहीं मैम,
2: बिखर जाते हैं लोग,
3: और बिखरे हुए को जो समेट लेता है वो बहुत ही एक अच्छा इंसान और अच्छी पर्सनैलिटी बन के निखर करके फिर आती है।
2: जी बिल्कुल।
3: तो अभी तक मैंने आपको आई थिंक इमोशनल कर दिया और दूसरी तरफ भी लेके चली गई हूँ। चलिए अब ले चलती हूँ कॉमेडी की तरफ, क्योंकि बहुत हो गया यार सीरियस, अब थोड़ा हंस लेते हैं।
2: हाँ।
3: अब मैं आपको जिस सीरीज के बारे में बताने वाली हूँ उसमें सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि है कौन, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि है कौन तो फिर आप बोलोगे ठीक है अब तो मजा आएगा।
2: हाँ।
3: तो भाई जिन्हें हम कहते हैं जूनियर गोविंदा और जिनकी मस्ती कर देती है सभी को सराबोर, हम बात कर रहे हैं वरुण धवन की।
2: ओके।
3: क्योंकि सीरीज का नाम है जवानी तो इश्क होना है। बहुत ही प्यारी सी है, कॉमेडी है जिसमें वरुण धवन,
2: तो एक गाना भी था है जवानी तो इश्क होना है,
3: होके ही रहेगा
2: हो जवानी तो इश्क होना है।
3: तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा,
2: मुझे पता था पक्का कि इसमें वरुण धवन जरूर होने वाले हैं, क्योंकि अगर वरुण धवन इस मूवी में, मतलब कुछ ऐसे फनी अगर मूवी है और अगर उसमें वरुण धवन ना हो तो ये हो ही नहीं सकता है।
3: बिल्कुल नहीं हो सकता है। वरुण की मस्ती सभी जानते हैं, मतलब उनकी फिल्म जिसने भी जितनी भी देखी होगी, मैंने बद्री की दुल्हनिया बहुत बार देखा है, मैं तेरा हीरो बहुत बार देखा
2: बहुत
3: है,
2: बहुत मस्त
3: तो है, ये सारी मूवीज आपने अगर देखी हैं और आप वरुण धवन के फैन हैं तो जरूर देखिए और एंजॉय करिए, क्योंकि हम तो देखेंगे एंजॉय करेंगे और अपने वीकेंड को शानदार बनाएंगे।
2: अच्छा आज ना मुझे तुम्हारी इस बात पे कुछ एक बात याद आ गई, वो ये बात आ गई कि आज जो हम लोग गेम करेंगे ना, आज हम लोग एक्टर्स का नाम देंगे।
3: अरे वाह,
2: है ना, एक्टर्स का नाम देंगे और उस एक्टर की कोई भी मूवी आप हमको भेजेंगे और या उस मूवी का गाना भेजेंगे, ये कर देते हैं, है ना,
3: बहुत अच्छा है।
2: उस मूवी का गाना भेजेंगे जिसमें वो एक्टर ने काम किया है और वो गाना जो आपको उस एक्टर के बिहाफ पे सुनना होगा।
3: वाह, ये तो बहुत ही अच्छा,
2: तो आज हम लोग ऐसा वाला करेंगे, ऐसा वाला गेम खेलेंगे, ठीक है। चलिए तो बाकी कुछ है भी आपकी झोली में?
3: हाँ, अभी मैंने OTT सीरीज आपको बता दी।
2: हाँ।
3: अब बारी आती है सरप्राइज की, जो मैं आपको बताने वाली थी
2: जी।
3: तो वही दिन होता है कुछ अपने जज्बातों को कहने का, कुछ प्यार को बताने का, तो मैं आज कुछ लाइंस लेके आई हूँ मैम के ऊपर।
2: Oh my God.
3: क्योंकि मैं लिखती हूँ तो इसलिए मैंने कुछ लिखा है और वो अभी प्रत्यक्ष तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने लिखा है इसलिए मुझे याद है, इसलिए मैं आज के दिन पढ़ूंगी
2: जी। बिल्कुल,
3: तो शुरू करते हैं और आई होप कि मैम को अच्छा लगे,
2: मुझे अच्छा लगे और लिसनर्स को भी अच्छा लगे क्योंकि वो मेरे लिए लिख के लाई है। तो प्लीज आप सभी लोग भी बहुत ध्यान से सुने और उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि अंशिका ने कैसा लिखा है, मतलब ये नहीं कि वो मेरे लिए लिखी हुई है, आप ये फीडबैक दीजिएगा कि जो एक पोयम का सिलसिला है, जो एक राइमिंग है, वो उसने अंशिका ने कैसे की हुई है।
3: तो चलिए, मैंने मेरे हिसाब से लिखा है, मतलब मेरे ख्यालों से वो करके लिखा है, अभी आपके ऊपर है कि आपको कैसे लगती है। वो अक्षत सी पवित्र सौंदर्य का रूप चित्र, वो अक्षत सी पवित्र सौंदर्य का रूप चित्र, तुम सामने हो मेरे पर तुम प्रेरणा हो मेरी, तुम कल्पना हो मेरी, तुम कल्पना हो मेरी। वो टूट जाए जो बिखर जाए, जो टूट जाए जो बिखर जाए, वो नहीं हो तुम अपनी हर टूटी हुई उम्मीद से भी जो निखर जाए वो हो तुम। आंखों से आंसू निकले तो क्या हुआ, इन आंखों में वो मजबूती है, वो आंसू भी गंगा जल बन जाते हैं, हमसे पूछो हम बताएं हम आपको कैसे देख पाते हैं।
2: वाह।
3: दर्द उनके लिए कोई नई बात नहीं, दर्द उनके लिए कोई नई बात नहीं, और सहकर मुस्कुराना ही उनकी आदत है, हमने तो देखा है आंखों में वो गुस्सा, हमने तो देखा है आंखों में वो गुस्सा, पर दिल में वो प्यार बन जाता है, हमारी हर बात उन्हें समझ में तो आती है, पर क्या करें ये दिल उन्हें हर बार कुछ ना कुछ समझाता है, हम उनकी खुशियां चाहते हैं, वो अपनी खुशियां पलकों में समेट लें, खुश रहें मुस्कुराती रहें, अब और कोई गम उनके जीवन में कभी ना आए, मिलें तो सिर्फ खुशियां मिलें, हम यही दुआ करते हैं, इस आसमां में जितने तारे हों उतनी खुशियां मिलें आपको, और जब तक धरती में ये खुशबू रहे, जब तक आसमां में बादल बरसते रहें, तब तक ये प्यार ऐसे ही बना रहे और वो प्यार हर पल मिले आपको, अब कोई और दुख ना हो आपके जीवन में, खुशियाँ और सिर्फ खुशियाँ ही मिले आपको, कैसा लगा?
2: बहुत अच्छा और एग्जैक्टली मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ इस समय।
3: ओके
2: अनुष्का जी आ गई हैं, आरजे सोनी आ गई हैं एंड आरजे अमन रेडियो हॉटस्टार से। नागेश्वर जी लिख रहे हैं कि वांशिका मैम। आशु जी लिख रही हैं कि खूब, बहुत खूब अंशिका जी।
3: थैंक यू।
2: मैं बताऊं कि शायद मेरे वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं इस समय, तो उसका कारण भी है कि अगर मैं अगर ज़्यादा अगर इसमें बोलने लगूंगी ना तो शायद मेरी आवाज़ भारी हो जाएगी, और आवाज़ भारी क्यों होती है आप सभी को पता है।
3: नहीं तो वो नहीं करेंगे हम हंसेंगे मुस्कुराएंगे, क्योंकि मैंने इतनी प्यारी जो लिखी है ना वो आपके मुस्कुराने के लिए लिखी
2: है। बहुत सुंदर, बहुत ही दिल को छू लेने वाली, मतलब ऐसा तो कोई अपना ही होता है जो दिल से दुआ देता है, और एग्जैक्टली अंशिका बहुत ही प्यारी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि नो वर्ड्स,
3: ओके ओके,
2: बयां करने के लिए नो वर्ड्स, तो बिल्कुल स्पीचलेस था। चले एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के उस पार आएंगे, आज की लव राशिफल को हम आप तक पहुंचाएंगे और लव राशिफल को जानेंगे कि लव राशिफल में भी आज का क्या है कुछ नया। ठीक है अंशिका?
3: बिल्कुल। तो भाई मेरा सरप्राइज तो ये था, आप सभी को कैसे लगा जरूर बताइए।
2: एग्जैक्टली सभी लोग बताएं कि अंशिका ने जो पोयम लिखी है वो कैसी है, और मैं तो चाहूंगी कि अंशिका से इसको लिख लूं ताकि आज मैं इसको स्टेटस पे लगा पाऊं कि ये दुआ होती है जब कोई दिल से देता है। तो चलिए ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं आपके नए सेगमेंट यानी कि लव राशिफल की ओर।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबी, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: दोस्तों आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो भाई आ रहे हैं, आज ही तो सैटरडे है और आज ही के दिन हम आपकी सुविधा को देखते हुए आपको दो गाने सुनने का शुभ अवसर प्राप्त करते हैं। अदरवाइज तो हम जल्दी जल्दी से अब एंट्री ले लेते हैं बाकी दिनों में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के थर्ड सेगमेंट की ओर, जो कि होता है लव राशिफल। और सबको बहुत इंतजार होता है, लेकिन उसके पहले मैं सोच रही हूँ ना अंशिका कि हम एक मूवी दे देते हैं, ठीक है? और मूवी देने के साथ साथ ना हम लोग तब तक लिसनर्स उसमें से लिखेंगे और क्या कहते हैं कि अपना सॉन्ग भी लिखेंगे।
6: तो जी मैम, तो आज
5: मूवी मूवी
6: हाँ मूवी तो आज सबसे पहली मूवी आपको देते हैं
5: वरुण धवन की। कोई मूवी चाहिए मुझे आज
6: वरुण धवन की।
5: हाँ
6: तो चलो, तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है, तो पहले ही मूवी देते हैं मैं तेरा हीरो। यस,
5: मैं तेरा हीरो। तो भाई इस मूवी का गाना जल्दी से लिख करके भेज दीजिए आप लोग, जल्दी से फटाफट मैं तेरा हीरो। अब इस मूवी का गाना जिसने भी लगा के फटाफट लिख के भेज दिया ना, मतलब उसको हम लोग आज का स्टार समझेंगे, यानी रेडियो हॉट स्टार।
6: ओ वाओ,
5: तो सबसे पहला गाना जिसका आया वो आज का रेडियो हॉट स्टार।
6: चलो तो फटाफट सॉन्ग लिखिए, तब तक चलते हैं लव राशिफल की तरफ। बताते हैं कि आज आपकी राशियां आपके प्यार के साथ क्या, मतलब क्या तालमेल होने वाला है।
5: जी जी।
6: तो सबसे पहले बताते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए है कि आज आपका जो प्यार है वो बढ़ेगा। पार्टनर के साथ, दोस्तों के साथ आप घूमने जाने वाले हैं और साथ ही साथ में जो लोग सिंगल हैं उन्हें आज उनका कोई पुराना दोस्त मिलने वाला है।
5: ओह माय गुडनेस।
6: और उसी के साथ कुछ आपको थोड़ा सा उस पे आकर्षण भी महसूस होगा। आप अट्रैक्ट होंगे और आपका आज का पूरा दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा।
5: वेरी नाइस। तो मतलब बहुत अच्छे से एक न्यूज़ बता दी है।
6: जी बिल्कुल।
5: और फटाफट चलिए हम नेक्स्ट राशि की ओर आते हैं,
6: जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए है कि आज आप किसी से अपने दिल की बात कहेंगे और शाम होते होते आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा।
5: जी।
6: और जवाब पॉजिटिव होगा, जो आपकी लाइफ में एक नया चेंज लाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए है कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन आप बातें अच्छी नहीं करते, मतलब गुस्से में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए अपने गुस्से को रोकें और अपने किसी समवन स्पेशल से थोड़ा प्यार से बात करें। कर्क राशि वालों के लिए है कि जो लोग सिंगल हैं वो आज अपने दिल की बात किसी करीबी से शेयर करेंगे, पार्टनर के साथ पूरा दिन बिताएंगे और आपके रिश्ते में भरोसा और प्यार दोनों बढ़ेगा।
5: नेक्स्ट राशि
6: कर्क राशि वालों के लिए था, अब आते हैं नेक्स्ट राशि पे। तो हमारी नेक्स्ट राशि जो है वो है सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए है कि आज आपका प्यार जो है वो ज़बरदस्त मजबूती से दिखने वाला है। आप अपने पार्टनर के सामने अपनी बात को रखेंगे और आपका मन जो है वो खुश रहेगा।
5: वेरी नाइस। तो अंशिका, मुझे आज का रेडियो हॉटस्टार जिसे कहते हैं ना, रेडियो का सुपरस्टार मिल गया है।
6: और मैं, कौन है वो?
5: मैं नाम बताऊं कौन है? वो है हमारे नागेश्वर जी।
6: ओके।
5: उन्होंने फटाफट गाना लिख के भेज दिया है, तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है। तो मुझे पता था कि नागेश्वर जी और आपस में जो बाकी लोग बात कर रहे हैं, अगर आपस में बात ना करते तो आज हम जीत जाते। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर हम खेल पाते तो हम जीत जाते ना। एक मूवी में एक डायलॉग था जो कि काजोल जी कहती हैं, तो अभी जीत चुके हैं नागेश्वर जी, तो नागेश्वर जी का गाना लगा दिया है। बाकी राशियों के बारे में हम आएंगे, लेकिन उसके पहले गेम सेक्शन भी शुरू कर दिया है क्योंकि गेम आज आधा घंटा पूरा चलेगा। तो फटाफट आइए गेम की ओर चलते हैं और फिर हम देंगे आपको एक और राशि जो बाकी राशियों के बारे में। तब तक आप चैट बॉक्स में बने रहें।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता एंड साथ में आज अंशिका। तो चलिए भाई लव राशि फल को बताएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको देती हूँ एक मूवी, क्योंकि मूवी भी हम आपको देते चल रहे हैं ताकि हम जब आपको लव राशि फल बताएंगे तब तक आपकी मूवीज के आंसर्स आ सकें। तो नेक्स्ट मूवी इज
7: नेक्स्ट मूवी आपको देते
6: लव सॉन्ग्स में, लव सॉन्ग्स में, लव सॉन्ग्स में,
7: लव सॉन्ग्स में
6: मैं दूं। नेक्स्ट मूवी मैं देने जा रही हूँ दामिनी, क्योंकि दामिनी मूवी में बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो नेक्स्ट मूवी है दामिनी, और दामिनी मूवी में जो है मीनाक्षी शशाद्री है ना
7: जी।
6: तो मीनाक्षी शशाद्री क्या आप कोई भी गाना लिख सकते हैं, मतलब हाँ। ऐसा नहीं है कि आप दामिनी मूवी का ही गाना लिखें, आप मीनाक्षी शशाद्री का कोई भी गाना लिख सकते हैं, ठीक है। तो चले अंशिका, तब तक हम लोग चलते हैं लव राशि फल की ओर। तो अगली राशि है कन्या। रिश्तों को निभाने के लिए आज आपको सूझबूझ और धैर्य से काम लेना होगा। व्यर्थ की बहस या तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें और साथी की भावनाओं का सम्मान करें। नेक्स्ट राशि है तुला। भावात्मक रूप से आज का दिन सबसे श्रेष्ठ है। पुराने गिले शिकवे दूर होंगे जिससे आपकी असमंजस्य और विश्वास का स्तर ऊंचा होगा। नेक्स्ट राशि है वृश्चिक। आज आप अपने पार्टनर और अपनों की खुशी के लिए कुछ खास प्रयास करेंगे। रिश्तों में अति संवेदनशीलता और दिखावे से बचें, सादगी से बात को संभालें। नेक्स्ट राशि आती है धनु राशि वालों के लिए। आज का दिन है कि परिजनों और पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी, प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपसी संबंधों को नया बल मिलने वाला है।
7: वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है, और सभी की राशियों में काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो उन सभी को करें और अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। और चलिए चलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि किसने कौन सा सॉन्ग भेजा।
6: वैसे तो सच्चा आशिक है, तो ये पता नहीं कौन सी मूवी का गाना है। आरजे अमन, आई डोंट नो। नीना ने लिखा है दामिनी ओ मेरी दामिनी, तो नागेश्वर ने भी वही लिखा है, और प्रीति जी ने भी वही लिखा है, एंड आरजे सोनी ने भी वही लिखा है। तो मुझे लग रहा है जिसको ज्यादा वोट्स हैं हमें वो गाना प्ले कर लेना चाहिए।
7: बिल्कुल
6: ठीक है। तो नेक्स्ट मूवी भी अभी हम आपको दे देंगे चैट बॉक्स में, जल्दी से आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि अब हमारे पास केवल 3 राशियां हैं, वो हम इन 2 सॉन्ग्स के बाद आएंगे और आपको सुनाएंगे, जो कि हैं मतलब जिनके जिनके सॉन्ग्स जिनके जिनके नाम लिए हैं ना, उन सब की तरफ से ये सॉन्ग है। एंड प्लीज़ आप लोग आपस में बात ना करें, क्योंकि जो लोग फिर मैसेजेस कर रहे हैं उनके सॉन्ग्स ऊपर चले जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी लोग ऐसा ना करें, एंड जिनके भी सॉन्ग्स नहीं हुए हैं वो नेक्स्ट ट्राई इज़ द बेस्ट ट्राई।

0: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो बाकी बची राशियों के साथ शुरू करेंगे आज का। मुझे लग रहा है एक गाना ही जाएगा अभी, एक ही मूवी का। तो जिनके सॉन्ग्स नहीं हुए हैं प्रमुख जी, हम ऐसे सॉन्ग्स नहीं बजाएंगे क्योंकि क्योंकि एक गाना देखिए बज चुका है ना उस मूवी का। तो अब मैं जो आपको गाना मूवी दे रही हूँ ना, आप उस मूवी से सॉन्ग लिख करके भेजें तो मैं आप जरूर आपके सॉन्ग को, क्योंकि देखिए गेम का रूल इज रूल है ना।
2: बिल्कुल। तो प्रमुख जी, और पहले भी कहा था आपसे और फिर कह रहे हैं कि जो मूवी हम देने जा रहे हैं उस मूवी से आप सॉन्ग भेजें।
1: तो मूवी नेम इज दिल। तो जिनके भी सॉन्ग्स नहीं हुए हैं आप जल्दी जल्दी से भेज सकते हैं क्योंकि 10 मिनट अभी पूरा है। तो जिसका भी सॉन्ग होगा हम उसे जरूर से प्ले करेंगे। तो मूवी इज दिल।
2: तो चलिए अब चलते हैं मकर राशि वालों की तरफ, जिसमें है कि घर और आपकी पर्सनल लाइफ में आज पूरा खुशी का माहौल रहने वाला है। आप अपनी जो आपका रिलेशनशिप है उसमें आप इंटरेस्ट दिखाएंगे और इसी के साथ आपको आपके पार्टनर का पूरा पूरा सपोर्ट भी मिलेगा।
1: ओके।
2: अब आते हैं कुंभ राशि वालों के
1: जल्दी।
2: कुंभ राशि वालों के लिए है कि आज आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी और मधुर होगी। आपसी तालमेल शानदार रहने के कारण पार्टनर के साथ खुशनुमा और शांत शाम बिताएंगे।
1: वाओ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है।
2: चलते हैं मीन राशि वालों के लिए, जो कि है आज रिश्तों के प्रति आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे और पुरानी गलत फहमियां जो काफी टाइम से चल रही है वो दूर होंगी और आपका रिश्ता बहुत बेहतर होगा।
1: ओके।
2: तो ये हो गई मतलब
1: हमारी आज की लव राशि फल। एंड बिल्कुल समय को देखते हुए, टाइम बिल्कुल ना वेस्ट करते हुए गाना बजा देते हैं, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए, जो कि भेजा है आरजे अमन रेडियो हॉटस्टार ने। एंड यही गाना भेजा है मुझे नींद ना आए धर्मेंद्र जी ने भी यही गाना भेजा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि दो लोगों ने ये गाना भेज दिया है। एंड दिल विल प्यार वर मैं क्या जानू रे, वर्ड से नहीं भेजना है दरक्षा जी, मूवी से भेजना था। तो खैर कोई नहीं, अभी आपने मुझे लग रहा है नहीं समझ पाई होंगी आप, लेकिन चलिए कोई नहीं। अब तो सिर्फ एक गाना बचा है और हम जल्दी से मूवी देंगे। चैट बॉक्स में आप देखिए और फटाफट उस मूवी का गाना लिख करके भेजिए।

0: एग्जैक्टली दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। तो चलिए भाई अब हम दोनों को दें इजाजत, हम मिलेंगे आपसे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय
1: बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमे एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 88 40 98 123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: हाजिर हूँ मैं आपकी होस्ट अनुष आर्य आकांक्षा, लेकर के आपका फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम कॉल एट ट्यून गोंडा। और आज दिन है शनिवार, वीकेंड का वार होगा और आप लोगों की ताकत को आजमाया जाएगा। भाई लगातार आप कॉल करते रहेंगे और लकी कॉलर की कॉल्स पिक होंगी, यही तो है इस जी हाँ ऑन एयर वाले शो का मजा। देखते हैं आज किन किन की कॉल लगती हो, कौन होता है रेस से बाहर। लेकिन उससे पहले बता दें कि शो आपका स्टार्ट हो गया और अगर आपको भी कॉल लगाना है तो भैया जादुई नंबर वही है आपके स्टूडियो का। जी हाँ, आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और इसके स्टूडियो का नंबर वही है 6393316429, यानी के 6393316429। तो सफर की शुरुआत करते हैं आज के पहले नगमे से और वो है हमारी पसंद का आप सभी के लिए। भाई बोलते हैं ना कि प्यार किस मौसम में करना चाहिए, कुछ कहते हैं सर्दियों में करना चाहिए, कुछ कहते हैं बरसात में करना चाहिए, कुछ कहते हैं सावन को आने दो, तो कुछ कहते हैं भाई गर्मी भी कुछ बुरी बात नहीं है, गर्मी में भी चल सकता है। लेकिन हम इस गाने के माध्यम से बताएंगे कि एक्चुअल में प्यार करते कब है। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, आपकी अपनी आरजे आकांक्षा की पसंद का ट्रैक, उनकी प्लेलिस्ट से ये गाना आप सभी तक पहुंच रहा है। एंजॉय करिए, फिर आते हैं आज के पहले लकी कॉलर की कॉल के साथ।

ना सर्दी ना बरसात ना ही गर्मी, भाई मौसम कौन सा है ये आप बताएंगे? प्यार करने का एक्चुअल में उचित मौसम कौन सा है भाई? मेरे को ढूंढने से मिलकर मैंने कहा आप लोगों तक पहुंचा दे, काहे को खाली अपने पास तक रखे। प्यार मोहब्बत से ही तो जिंदगी प्यारी खूबसूरत और सुहानी बनती है। बने रहिए 3 से 4 के सफर में। आज दिन शनिवार है, थोड़ा सा स्ट्रेंदी वाला दिन।

0: भाई जब हम ऐसे ऐसे अनोखे आए जिसका कोई जवाब ही नहीं है, देखते हमारे फर्स्ट कॉलर कौन बनेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी के जवाब हम पढ़ना चाहेंगे। कोई कह रहा है भाई फरवरी का मौसम बढ़िया है, कोई कह रहा है नहीं भैया रात का महीना बढ़िया है और रात का मौसम अच्छा होता है, कुछ कह रहे हैं भैया नाटक का महीना बेस्ट होता है, तो कुछ का कहना भैया आप यार तुझे कर लो चाहे जो भी महीना है। वहाँ क्या बात है। वैसे नीना जी ने बिल्कुल सही बता दिया है, चाहत के महीने में, जब तक चाहत नहीं होती प्यार मोहब्बत होता ही नहीं है जनाब। इसलिए बोला गया है इस गाने में कि आप प्यार तुझे कर लूं चाहत का महीना है। तो इस चाहत के महीने के साथ में देखते हैं आज के हमारे लकी कॉलर कौन है और ये किस महीने को प्रिस्क्राइब करते हैं। हेलो
1: नमस्कार भोजपुरिया मैम।
0: अच्छा हम भोजपुरिया मैम है, कैसन बानी आप तनी बतावा जाए हमका अपन हाल चाल।
1: एकदम झकास बानी और हमरे बताई।
0: हाँ हमरा का लागत बारे कि आप बहुते नीमन बाटे, तो तनी बतावा जाए कि आप हमार नाम भोजपुरिया मैम काहे रखा गए है।
1: भोजपुरिया मैम ना कहनी है, भोजपुरिया प्रणाम करता नहीं
0: रहो। ओ आशीर्वाद आशीर्वाद। अभी ये बताइए सबलू सावन जी हमारे सामने बलम जी है भाई कॉल पे, हम बता दें अपने प्यारे श्रोताओं को कि प्यार करने का कौन सा महीना बेस्ट होता है, फरवरी सावन या फिर गर्मी या कोई और महीना, आपके हिसाब से कौन सा महीना
1: सबसे बढ़िया? तो फरवरी है हम लोग दिखता है।
0: लीजिए भाई हमारे सुखी राम जी ने भी यही बोला था, यानी हमारे नागेश्वर जी ने, और इन्होंने कहा था कि हमको आप पहले वाले सॉन्ग में ऐड क्यों नहीं कर लिया, आपने आपको कर लेना चाहिए था। तो आपको बता दें कि आप ही के प्यारे प्यारे शब्दों से हमारे जहन में गाना आया था। खैर आगे बढ़ेंगे अपने सबलू सावन जी की डिमांड के साथ में। डिमांड क्या है सर आपकी?
1: डिमांड मेरा है एक छो दिलवाले फिल्म का है,
0: कौन सा
1: सातों जन्म में तुझे मैं करता रहूं प्यार।
0: ये भगवान आज सब प्यार मोहब्बत पे ही गाने हमें लग रहा है उपज हो गए हैं क्यों? देखा शुरुआत में जो बीज बो दिया जाता है वही आगे चल के फल लगता है।
1: आकांक्षा जी जो लव सॉन्ग है वो सैड सॉन्ग में मजा नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और सही बात तो ये है कि जिंदगी में
1: सैड सॉन्ग नाइट में ही अच्छा लगता है, और इस वक्त जितना लव सॉन्ग जितना अभी सुनिएगा उसका एक आनंद अलग ही मिलता है।
0: अच्छा आप भी तन्हाई में गमों को उखेड़ना पसंद करते हैं, इसका मतलब है
1: इंसान का चढ़ाव उतराव है, कभी गम है कभी खुशी है।
0: जी जी जी जी, अभी गाना एंजॉय करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप काफी गहरी सोच रखते हैं, थैंक यू।

नागेश्वर जी इसीलिए कहते हैं कि आपका दिमाग घुटनों में ही रहता है। खैर कोई बात नहीं, हम अवधी भी बोल लेते हैं, भोजपुरी भी बोल लेते हैं, पंजाबी भी थोड़े थोड़े बोल लेते हैं, तुन्नु तुन्नु सा और कुछ और भाषाएं भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। खैर कोई बात नहीं। और धर्मेंद्र मोहन जी का कहना, भैया प्यार का महीना नागपंचमी के दिन होता है, इसके पीछे का लॉजिक जरा हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए धर्मेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ऐसा क्यों कहा आपने, मतलब डसाने का विचार होता है। हद हद इंटेलिजेंट है हमारे प्यारे वाले लिसनर्स। और कुमार साहब का कहना, भैया पहले गाना सुनते, बहुत सुंदर गाना है।

0: पसंद है आपकी, मजा आ गया सुन के भाई। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ में। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरिया, वेरी वेरी वेरी वेरी ब्यूटीफुल मौसम आपके लिए स्पेशली। अपना नाम बताएं।
1: जी धन्यवाद, मेरा नाम है रोशनी रावत।
0: जी कहाँ से बात कर रही हैं आप हमसे?
1: मैं अभी चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है भाई, चंडीगढ़ से क्या मंगवाए हम वैसे आपके लिए?
1: आप जो दे देंगे प्रेम से हम ले लेंगे।
0: तो आपका गाना पसंदीदा ही प्ले कर देते हैं, क्या सुनना चाहेंगी रोशनी जी?
1: मैम अभी तो कुछ सोचा नहीं था फिलहाल, आप मुझे लाल दुपट्टा मलमल का एक सॉन्ग है नजराना साजन का प्यार वो सुना दीजिए।
0: नजराना साजन का प्यार गाना है या फिर लाल दुपट्टा मलमल का गाना है?
1: मूवी का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का और गाना है नजराना साजन का प्यार।
0: ओके, आपकी शादी हो गई है?
1: नहीं मैम।
0: ओहो, मतलब साजन का
1: अभी मैं ऑन एयर हूँ या फिर ऑफ एयर बात हो रही है आपसे?
0: बस कहीं से तो हवा आ रही है और कहीं तक तो जा रही है, इतना पता है।
1: नहीं मैम, लेटे थे आज प्रमुख भैया ने बताया था कि मतलब कॉल लगाना।
0: हाँ,
1: तो हमने कहा कोशिश करते हैं। तो
0: नहीं, आपने कॉल लगा ली है और आपको सभी सुन रहे हैं, आपके प्रमुख भैया भी सुन रहे हैं।
1: अच्छा,
0: चलिए आपका गाना आप तक पहुंचाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: मैम आपसे बात करके ना मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: ओह माय गॉड, मुझे उससे ज्यादा हो रही है क्योंकि लुधियाना से हमने गाना मंगा लिया और सब तक पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो भाई प्रमुख जी को और हमको डेडिकेट कर दिया है रोशनी जी ने ये गाना, आइए सुनते हैं नजराना साजन का प्यार।

दोस्तों, आज है आपका फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम में कॉल इन शो, और कहीं ना कहीं आप लोगों के लगातार कॉल्स भी आ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो जहां से भी जैसे भी सुन पा रहे हैं। चैट बॉक्स में भी बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, लेकिन उससे पहले ये गाना रोशनी जी की ओर से।

0: क्या बात है भाई, लाल दुपट्टा मलमल का और मजा आ गया गाना सुन के। डेडिकेशन में आया था प्रमुख जी की और आपकी अपनी आरजे आकांक्षा की। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन है, चीची पॉपा के बीच में। हेलो।
1: हेलो मैम, कैसे हैं आप?
0: जी बहुत उम्दा है। आपको लग नहीं रहा है कि हमारी आवाज से हम कैसे होंगे?
1: आपकी आवाज से लग रहा है खुश हो, मस्त हो, मलंग हो।
0: जी जी बिल्कुल, बेशक आपने सही पहचाना। और आप अपना शुभ नाम हमारे श्रोताओं को बताएं, उससे पहले हम आपका नाम बता दें, आप खुद बताएंगे।
1: मैम आप बता देंगे तो प्रचार प्रसार हो जाएगा, हम बताएंगे तो नहीं हो पाएगा।
0: प्रचार तक नहीं, प्रचार तक तो ठीक था, प्रसार कर देंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। जी हाँ, तो ये है हमारे अरविंद मौर्य जी जो हमें सुनते हैं मनकापुर से। क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: मैम आज आप सॉन्ग सुना दीजिए हमें, तुमसे वो तुमसे दूर रह के हमने जाना प्यार क्या है।
0: ओहो क्या बात है भाई, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है।
1: जी मैम,
0: तुमसे दूर रह के आए हैं, क्या बात।
1: मैम हो सके तो, मैम हो सके एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप ही गा दीजिए वो ज्यादा मेरे लिए, क्योंकि आपकी आवाज भाई को दिल पे लगती है।
0: थैंक यू सो मच, बट आप हम चाहेंगे सिंगर की आवाज ही सुनिए, ज्यादा बेहतर है।
1: ओह थैंक यू मैम।
0: ओके टेक केयर सर, थैंक्स अ लॉट।
1: वेलकम
0: जी। चलिए फिर चलते हैं हम अपने मौर्या जी की इस प्यारी सी डिमांड की ओर।

बहुत ही खूबसूरत सी डिमांड है दोस्तों, एंजॉय करते रहिए लता जी और मोहम्मद रफी साहब की आवाज को आपके अपने पसंदीदा शो जी हाँ फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा के साथ। लगातार कॉल आ रही है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बट शो की डिजाइनिंग आज के दिन खाली ऐसी होती है कि आप लोगों से बात करने का मौका मिलता है और ऐसे नगमों को सुनने का।

0: हाँ जी श्रोताओं, और ये गाना काफी उम्दा लगा हमको भी। और हमारी रीना शर्मा जी जो रुड़की उत्तराखंड से हमें सुन रही हैं, कह रही भाई फर्स्ट सॉन्ग वेरी नाइस, प्यार तुझे कर लूं, सावन का नहीं मैडम चाहत का महीना है। एक्चुअल में जो महीना होता है प्यार का वो चाहत का ही होता है। जब तक आप किसी से चाहत नहीं रखते ना, प्यार का वक्त ही नहीं आता है। फिलहाल ये गाना किसी स्पेशल के लिए था, फिलहाल वो आई नहीं, खैर कोई बात नहीं। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में, और हम देखेंगे हमारे साथ में कॉल पे कौन बना हुआ है। अरविंद जी बहुत प्यारी डिमांड थी आपकी, थैंक यू सो मच। हेलो,
1: नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन।
0: जी नमस्कार, कैसे हैं देवी प्रसाद जी?
1: हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
0: बहुत मस्त हैं। कहिए क्या सुनना चाहते हैं?
1: छोड़ के मुझको चली गई, कितना तड़पाती है ओ बेवफा, ओ तेरी याद आती है।
0: बेवफा की याद आने ही नहीं देंगे आपको। बढ़िया गाना बताइए, वरना हम अपनी तरफ से कुछ बजा देंगे बढ़िया वाला। कुछ भी,
1: कुछ भी।
0: ओके, फिर चलिए हम अपनी पसंद का एक प्यारा सा गाना आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये गाना जरूर से पसंद आएगा। सुनना चाहेंगे? ओके, चलिए आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, स्पेशली फॉर देव प्रसाद जी।

लगातार फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के मैसेज मुझ तक पहुंच रहे हैं, बस मैं ले नहीं पा रही क्योंकि आज कॉल इन शो होता है और काफी बिजी लाइन होती है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू डियर लिसनर्स।

क्या बात है भाई, कॉमेडी में भी दिमाग लगा जाते हैं कभी कभी। नागेश्वर जी कहते हैं, बेवफा की याद सबसे ज्यादा तब आती है जब उसके नाम का बिल आपको चुकाना पड़ता है। ओहो क्या बात।

0: तो ये डिमांड थी हमारी देवी जी की हमारी तरफ से उनके लिए प्यारा सा नगमा। और देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन जुड़े हुए हैं। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, जय माता दी, कैसे हैं?
1: हेलो
0: हेलो,
1: मैं नॉन बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून
0: जी, शुभ दोपहरिया। और हम आपको बता दें हमारे फोन में ऐसा टेक्निकल मतलब है, भगवान जाने क्या है, एक कॉलर पीछे से उठ गए थे, दूसरे कॉलर को इन्होंने उठा लिया, मतलब हमारे फोन महाराज। कहिए क्या सुनना चाहेंगे धर्मेंद्र जी?
1: बस तेरे प्यार को सलाम ओ सनम।
0: ओह थैंक यू। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, क्या सुनना चाहेंगे सर?
1: जय माता दी,
0: जय माता दी। लेट्स रॉक कर रहे हैं या नहीं? रॉक कर रहे हैं, रॉकिंग रोल कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं अभी इस वक्त आप?
1: अभी तो बैठे हुए हैं, क्या करें गर्मी में, काम वाम करने का मन ही नहीं कर रहा है अपना, धूप चल रहा है।
0: भाई साहब, भाई साहब गर्मी में आप बेना हाँक सकते हैं वैसे?
1: नहीं नहीं, पंखा लगा हुआ मैडम।
0: तब बताओ, हाथों कहीं दुख ना दिए हो तब गर्मी लाग कैसे आपका?
1: गर्मी तो बहुत ज्यादा ही है,
0: है ना? चलिए कोई बात नहीं, अपनी डिमांड बता दीजिए, हो सकता है थोड़ी ठंडक आप तक आ जाए।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।
0: हैं?
1: कभी कभी
0: कभी कभी ही ख्याल आता है, मतलब जिंदगी बिना ख्यालों के बीत गई, कभी कभी ख्याल आता है, चलिए फिलहाल चलते हैं अपने धर्मेंद्र जी की प्यारी सी डिमांड की ओर, और उसके बाद आते हैं अपने कुमार टेलर साहब की डिमांड के साथ।

भाई यहाँ अनुभव भी साझा किया जा रहा है। वैसे अनुभव हमारे एक लिसनर का भी नाम है, कुमार साहब, हमारे एमपी रीवा वाले कुमार साहब का कहना है इनको हर तरह का अनुभव है। तो भैया ये आपने किसके लिए कहा है जरा स्पष्ट कर दीजिए ताकि हमको पता चल पाए कि, क्योंकि अगर शिक्षक महोदय कुछ ऐसा कह रहे हैं तो हम अपने आप को अनुग्रहित महसूस करेंगे। फिलहाल ये गाना आप एंजॉय कर रहे हैं धर्मेंद्र मोहन भारती जी की डिमांड पे, जो हमें सुनते हैं आवाज़ बिकॉज कॉलोनी गोंडा से, और वहीं से हमारे चिंटू जी भी हमें सुन रहे हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, और सभी जो जहां से भी हमें सुन रहे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 3 से 4 के सफर में आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और ये गाना आप सभी के लिए है।

0: भाई चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारे कुमार टेलर साहब की है, गौरा चौकी से। गौरा चौकी से सुनने वाले सभी लिसनर्स के लिए स्पेशली ये सॉन्ग
1: कि तू नहीं,
0: काफी दिनों बाद ये गाना
1: जो भी नहीं,
0: और आवाज किसकी है आप लोग बताएंगे।
1: कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं, न कोई राह न मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

हमारे पास जवाब भी आ गया है। और कुमार साहब का कहना भैया हमारे मित्र के अलावा कौन हो सकता है, अनुभव इनको बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बेशक आप सही कह रहे हैं, कभी कभी गलत अनुभव भी आता है, लेकिन मुझे समझ में आता है वो घुटनों से आता है वो अनुभव। और मुकेश जी ने भाई जवाब दे दिया, लता मंगेशकर और मुकेश जी। ओके, मुकेश अंबानी जी ने अपना ही नाम ले लिया, क्या बात है। सुरेंद्र यादव जी ने भी भाई सही जवाब दिया है और फेवरेट सॉन्ग भी बताया जा रहा है। आइए एंजॉय करते हैं।

0: हाँ जी, और अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर, देखते हैं क्या डिमांड है। हेलो
1: जी नमस्कार, सुरेंद्र यादव गौरव चौधरी।
0: जी हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी क्या सुनना चाहेंगे आज? हम उनसे मोहब्बत करके, क्या बात है भाई, मोहब्बत करना भी होता है, उसके बाद में दिन रात रोना भी होता है, तो फिर इंसान करता क्यों मोहब्बत?
1: पता नहीं क्यों करता।
0: चलिए किसी दिन इस बारे में भी बात करेंगे, फिलहाल आज एंजॉय करते हैं अपनी चीची जी पर फिल्माया गया ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी सी डिमांड है, थैंक यू। भाई आप लोग गाना एंजॉय करिए, हम किसी को याद कर लेते हैं थोड़ी देर इस गाने के साथ।

भाई ये लाइन हमें मालूम है, हमारी चंगू जी हमारे लिए डेडिकेट कर सकती हैं, हमें अच्छे से पता है। खैर हम अपने गुलाब जामुन को याद कर रहे थे और अभी आते हैं प्यारे से मैसेज की ओर जो आई हुई है हमारे पास में अरविंद मौर्या जी की ओर से। लिखते हैं, जमाने भर की खुशियां तुम्हें मुबारक हो, प्यार ही प्यार की गलियां तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी राहों के कांटे मेरे पथ पर हो, मेरे राहों की कलियां तुम्हें मुबारक हो। और वैसे मैं कहूँगी ये सभी के नाम होना चाहिए ये प्यारा सा पैगाम, जो जिसको जहाँ से भी दिल से प्यार करता है। ऐसा होता है ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं उसकी ज़िंदगी का सारा गम हम ले लें। कुछ ऐसा ही पैगाम हम तक पहुँचाया मौर्या जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम और क्या बोलेंगे आशीर्वाद के लिए। थैंक यू सो मच। एंजॉय करते फिर से सुरेंद्र यादव जी के द्वारा डिमांडेड ये सॉन्ग।

0: हाँ जी, गाना इतना बढ़िया था कि हम भूल गए कि हमको नेक्स्ट कॉल भी लेनी है। खैर कोई बात नहीं, कुमार टेलर साहब का कहना है, भाई आकांक्षा मैम सुरेंद्र यादव ये लड़का ना बहुत ही भोला है, इसको पता नहीं मोहब्बत क्या चीज़ है। भाई मोहब्बत है क्या चीज़, हमको बताओ ये किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ, ये तो बड़े बड़े महान महान लोग कह गए हैं और आज तक किसी को पता ही नहीं चला है मोहब्बत इतनी आसानी से पता चल जाए, फिर वो मोहब्बत कैसी। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर। हेलो
1: मैडम, नमस्कार।
0: कैसे हैं सर? बहुत दूर से बोल रहे हैं, आवाज़ ही नहीं आ रही है, हमको लग रहा है आप सच में मुंबई से ही बोल रहे हैं, महाराष्ट्र से।
1: हाँ, मुंबई से, बारिश हो रहा है इधर को।
0: ओह बारिश हो रहा है, तो उसने इतना दूर कर दिया कि जैसे लग रहा है मतलब एक हम नीचे खड़े हैं और आप टावर के एकदम ऊपर खड़े हैं, तार लगा के सुन रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है।
1: कंपनी में हो ना
0: जी। ओके कोई बात नहीं, अपना नाम बताएं हमारे श्रोताओं को और अपनी फरमाइश बताएं।
1: रमेश कुमार
0: जी, क्या सुनना चाहेंगे? ओहो, नीले नीले अंबर पे ही चांद क्यों आता है, मुझे ये जानना है आपसे। जी
1: कंपनी में काम कर रहा हूँ।
0: ओके, कंपनी में काम कर रहे हैं इसलिए भाई आज नहीं बता पाएंगे, नेक्स्ट टाइम हम आपसे पूछेंगे नीले नीले अंबर पे ही चांद क्यों आता है। थैंक यू सो मच।
1: ओके
0: ठीक है, चलिए चलते हैं भाई, सुनते हैं इस प्यारी सी डिमांड को किशोर दा की आवाज में।

0: हाँ जी, और चांद का इंतजार करती है रात, ताकि जब चांद आए उसके पास तो चांदनी बिखर जाए चारों ओर और थोड़ा सा सुकून मिले और हम आराम से उस नींद की आगोश में जा सके जो हमें मतलब चार्ज करता है फिर से अगले दिन के लिए, थोड़ी सी शक्ति प्रदान करता है। तो भाई हमारे बीच में कुछ हमारे लिसनर्स जुड़ गए हैं, तो मेरा मन कर रहा है कि हम उनके पैगाम ले, लेकिन उससे पहले एक कॉल हम और ले लेते हैं। आते हैं 3:40 पे आप सभी से मुलाकात करते हैं। और कोई बहुत लेट लतीफ आया है, कोई बात नहीं, गुस्सा तो आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा, आज गुस्सा माफ है। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कॉल हमारे साथ में कौन है। हेलो हेलो हेलो, लग रहा है कि इनको इनका गाना सुनना ही नहीं है। कोई बात नहीं, चलते हैं भाई आप लोगों के मैसेजेस की ओर ही, क्योंकि लगातार कॉल तो आ रही है लेकिन हमने जिनका कॉल लिया था उन्होंने कॉल का जवाब ही नहीं दिया। हाउ रूड। नहीं, ऐसा नहीं है, टेक्निकल इशू के कारण ऐसा कुछ हो गया है। चलिए चलते हैं भाई और मैसेजेस ले लेते हैं। मैसेजेस में सबसे पहला मैसेज हमें जिसका दिख रहा है वो किसका है वो हमें भी नहीं पता, हमें ढूंढ के ऊपर तक जाना पड़ेगा। फिलहाल ले लेते हैं हम आप सभी के मैसेज, और मैसेज की अगर बात करें तो आज मुझे लग रहा है नीचे से ही मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब नीचे से ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे आएं, आपसे पूछें या खुद ही बताएं, क्या करें। चलिए तब तक एक कॉल उठा लेते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ में। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: नमस्कार, मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ।
0: जी अमित जी, आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: मेरे सजनी सुपरस्टार
0: हैं। आपकी सजनी सुपरस्टार हो सकती है, आपके सैया सुपरस्टार कैसे हुए?
1: अरे वही मैम, चेंज कर देते।
0: अच्छा तो क्या बोले आप बताइए।
1: ओ फीमेल कर दीजिए।
0: क्या कर दे?
1: चेंज कर दे फीमेल।
0: नहीं नहीं, आपको बोल के बताना पड़ेगा, ये गलत बात है भाई, बोलना पड़ेगा। तो भाई अब नेक्स्ट टाइम से आएगा तो घूंघट उंगट डाल के आएगा। वैसे यहाँ आपके जेठ नहीं है, दो पल के लिए आप जिठानी मान सकते हैं। चलिए अब घूंघट करके बोल गए,
1: लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है।
0: ओह गॉड, चलिए कोई बात नहीं, आज घूंघट में ही रहेंगे, घूंघट से बाहर ही नहीं आएंगे, लेकिन हम इनका गाना जरूर बजाएंगे। एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, और नहीं ट्रैक को पहले नहीं एंजॉय करेंगे, पहले हम आपके मैसेजेस पे आएंगे, फिर बजाते हैं हम अपने अमित जी का गाना। तो सबसे पहले हमारे साथ में जो चैट बॉक्स में हमें दिख रहे हैं, हमारे सुरेंद्र यादव जी हैं गौरा चौकी से, उसके बाद में हमारी चंगू जी यानी नीना जी हैं भाई, और चिंटू जी हैं आवाज़ बिकॉज कॉलोनी गोंडा से यानी हमारे रवि जी, नागेश्वर ढाकर जी यानी हमारे सुखी राम जी, इसके अलावा इट्स कुमार साहब एमपी रीवा से, पोस्ट बैचलर ऑफ आवर चैट बॉक्स। ओके देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैसेज की ओर। दरक्षा अंसारी जी हैं सीतापुर से, और ये गुलाबों का मैसेज, और एक हार्ट और एक गुलाब हमेशा की तरह भूली नहीं है, थैंक यू सो मच। मुकेश यादव जी हैं, गुड आफ्टरनून डियर मैम आकांक्षा जी, हां जी विद सन, थैंक यू सो मच। और उसके बाद में नेक्स्ट मैसेज पे जो हैं उनका नाम है, हम आपको बताते हैं नेक्स्ट मैसेज पे हमारे साथ में कौन बने हुए हैं। नेक्स्ट मैसेज पे हमारे साथ में बने हुए हैं प्रमुख कुमार जी लुधियाना से। भाई आज आपने हमको गुलाबो बुला लिया, क्या बात है भाई, मज़ा आ गया सुन के, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो हमारे बीच में हैं कौन है मुकेश यादव जी हैं और आप सभी हैं, और आरजी सोनी जी भी हैं भाई गोपालगंज से, इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और इसके बाद में आप लोगों को गाना काफ़ी पसंद आया है, हमारी पसंद का जो पहला आज सॉन्ग था, खैर किसी ने मिस किया है कोई बात नहीं, जो देर से आएगा वो मिस करके ही जाएगा। अनिल वर्मा जी हैं सैदापुर से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मैसेज आप सभी के हैं, नेहा जी भी आ गई हैं बहराइच से यानी कि हमारे मंगू जी, चंगू मंगू की जोड़ी हुई कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जी हैं सऊदी अरेबिया से। इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज, भाई बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं लेकिन एक प्यारा सा मैसेज है मुकेश जी की ओर से, लिखते हैं तुमसे दूर रहकर जाना प्यार क्या, ओहो गाने को इन्होंने लिख दिया है, बहुत ही प्यारा गाना है वैसे ये, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट मैसेज में है सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से, धर्मेंद्र मोहन भारती जी है आवाज विकास कॉलोनी गोंडा से, और अगर किसी का नाम छूट जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि एक लिसनर हमारे साथ में है कॉल पे। मनी शर्मा जी हैं भटपुरवा से, भाई दिख गए हैं हम मार खाने वाला काम नहीं करते, मतलब डांट खाने वाला काम नहीं करते हैं। और एक पथरिया भैया है कोई जो भाई पथरीले आकार से आए हुए हैं, इनको भी हम स्वागत इनका कर लेंगे। और उसके बाद जो आज थोड़ा लेट लतीफ आए, जरा इनकी क्लास ले लेते हैं, देखते हैं ये कहाँ थे, इतनी देर से इनका आना क्यों हुआ, लेते हैं इनको हम कॉल पे और देखते हैं। तो चलते हैं कॉल की ओर। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, राधे राधे।
1: श्री राधे राधे मैम जी, क्या हाल है?
0: बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन आज हम थोड़ा सा आपसे नाराज हैं, रुष्ट हैं।
1: रोस्टर तो दुनिया रहती है, अच्छा? दुनिया को थोड़ी कुछ कर पाएंगे।
0: ओह तो ठीक है फिर, कोई बात नहीं, हम आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, आप क्या सुनना चाहेंगे बस यही बता दीजिए।
1: हाँ ये वाला सवाल सही है।
0: हाँ ये सही है, तो कहिए क्या सुनना चाहेंगे।
1: नरसिम्हा फिल्म का गाना है चुपचाप तू क्यों खड़ी है।
0: ठीक है, थैंक यू। चलते हैं अपने अमित जी की डिमांड की ओर और फिर आते हैं प्रबल जी के डिमांड के साथ।

मुकेश अंबानी जी का कहना है कि आपका यूं जबरदस्ती करना गलत बात है। भाई गलत बात बिल्कुल नहीं है, देर से आना जल्दी जाना ये गलत बात होती है। हम टाइम से आए थे ना, तो आप सभी को भी टाइम से आना चाहिए। क्लास टाइम से लगती है और अगर कोई स्टूडेंट लेट से आता है तो एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ती है भाई।

0: भैया इनका कहना है सैया सुपरस्टार, लेकिन अमित जी आपकी सजनी सुपरस्टार होंगी, सैया सुपरस्टार नहीं होंगे। कोई बात नहीं, और हमने कोशिश बहुत की थी लेकिन हमारे अमित जी ने मुंह में दही जमा रखा था। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर, देखते हैं कौन हमारे साथ में। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार, बढ़िया है मैडम जी।
0: जी अपना शुभ नाम बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: पंडित मनी शर्मा बोल रहे हैं।
0: जी भटपुरवा से मनी शर्मा जी की कॉल आ गई है, क्या सुनना चाहते हैं? जी क्या सुनना चाहेंगे सर, क्या सुनना चाहेंगे?
1: सुनना चाहते हैं वो क्या बोलते हैं, मोहब्बत बरसा देना तो सावन आया।
0: सावन कहाँ आया, अभी तो गर्मी है।
1: अरे हमारे लिए रोज सावन आता है।
0: अच्छा क्या मतलब, कोई खास है आप, कुछ खास है आपके उधर क्या?
1: हमारे यहाँ हरियाली है, 10 तो भैंस लेकर आए हैं, छोड़ दिए हैं।
0: अच्छा,
1: आराम से पेड़ पर बैठे हैं।
0: तो इससे सावन आ जाता है।
1: बिल्कुल मैम, बहुत बहुत बहुत अच्छा मौसम है।
0: हाँ ये बात तो है, जहाँ हरियाली होती है वहाँ पे भाई उसकी बात ही अलग है। अब हम लोग ही इतना दुखी रह सकते हैं, एसी चला के बैठे फिर भी गर्मी लगती है। खैर आपकी डिमांड अभी कंप्लीट करते हैं, उससे पहले पंडित जी की डिमांड को ट्यून करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी तो हमारे साथ में जुड़े हुए थे अभी मनी जी, और काफ़ी कॉल्स आज लगातार आ रही है। फिलहाल बढ़ेंगे उस डिमांड की ओर जो हमारे पंडित जी की, और इन्होंने पूछा भाई चुपचाप तू क्यों खड़ी है, तो भाई वो मौन व्रत है उसका, इतना नहीं समझते आप पंडित जी होके। खैर कोई बात नहीं, एंजॉय करते इस ब्रेक को।

0: उठा लेते हैं, क्या सुनना चाहेंगे?
1: मैम नागिन फिल्म का गाना सुनाइए।
0: नागिन फिल्म से कौन सॉन्ग? आजू बाजू में अगर नाग नागिन निकल आए तो हम दूध नहीं पिला पाएंगे। दूध वाले भैया सुबह दे के चले जाते हैं दूध।
1: हम पहले मैम रेडियो बंद करके भाग जाएंगे और क्या नागिन आए कि नहीं।
0: ये तो बहुत सही बात है भाई, ऐसे दोस्त होना तो फिर आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अपना सारा कांड करके पीछे से निकल लिए, वाह।
1: तो ये सॉन्ग सभी लोग सुनेंगे, मैं अपना रेडियो बंद कर लूंगा ये सॉन्ग आएगा।
0: नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम कोई गाना ही नहीं बजाएंगे कि आपको भागना पड़े। सुनते रहिए और आपका गाना आप तक पहुंचाते हैं। आइए एंजॉय करते हैं उससे पहले मनी जी का सॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।

0: भाई लगातार कॉल आ रही है, ले लेते हैं दो चार कॉल। हेलो
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, अपना नाम जल्दी से बताओ और अपनी डिमांड।
1: रईस बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। रईस साहब क्या सुनना चाहेंगे?
1: मुझे सुनना सौदागर मूवी से।
0: हाँ
1: इलू इलू।
0: इलू इलू, ओके थैंक यू सो मच।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: अपनी अपना नाम बताएं, अपना नाम बताएं और क्या सुनना चाहेंगे?
1: नमस्ते।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं, क्या सुनना चाहेंगे?
1: अर्जुन प्रसाद वर्मा, दौलतपुर माथी।
0: जी, क्या सुनना चाहेंगे सर?
1: हमको गाना सुनाइए, याद तेरी आती है मुझे तड़पाती।
0: कोई और सॉन्ग बताएं, सैड सॉन्ग नहीं, कुछ अच्छा सा।
1: याद तेरी आती है मुझे तड़पाती है।
0: कोई अच्छा सा सॉन्ग, सैड सॉन्ग नहीं।
1: हाँ, सुनावा जाए,
0: यही सुनना है आपको?
1: जी,
0: थैंक यू। चलिए फिर चलते हैं, फिर पुनः से अपने मनी जी के सॉन्ग की ओर, फिर आते हैं बाकी सॉन्ग्स की तरफ।

जी हाँ, आपने मनी जी की डिमांड को एंजॉय किया भटपुरवा से जो हमें सुने हैं, और रोशनी रावत जी जो हमें सुने हैं लुधियाना से, उनकी ओर से फीडबैक आया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, इन्होंने लिखा है, आकांक्षा मैम जी आप प्रोग्राम बहुत अच्छा, लाजवाब, बिंदास, कमाल करती हैं, थैंक यू इंक्लूडिंग माई कॉल। थैंक यू, आज आप पहली दफ़ा हमारे साथ में जुड़ी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे मुकेश अंबानी जी की, सुनिए आप भी।

आज काफी कॉल्स आई जो मैं उठा नहीं पाई, उन सभी से माजरत चाहूंगी। जैसे कि हमारे अजय मिश्रा जी थे और साथ ही में हमारे अनिल जी ने भी कॉल लगाई थी कई दफा, और कुछ और प्यारे प्यारे लिसनर्स थे लाइक समरीन और बाकी लिसनर्स जिनके मैं नाम भी नहीं ले पा रही हूँ, और उन सभी से माजरत चाहूंगी क्योंकि आज दिन है शनिवार। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं आज का दिन ऐसा ही जाता है, लेकिन डिमांड और सॉन्ग में तो आप लोग लाजवाब रहते हैं हमेशा। फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड रईस साहब की लेके, उसके बाद अर्जुन जी की, और इसी के साथ में समय समाप्ति की घोषणा होने का भी वक्त हो

हैं भाई, ऐसा कहना है मुकेश जी का कि बहुत तगड़ा असर हुआ है, बाद में कुछ रह नहीं गया, बहुत पतला हो गया हूँ। थैंक यू सो मच भाई फीडबैक के लिए। नीना जी तो भाई अपरंपार है, चंगू जी हमारी कह रही हैं कोई आपकी तारीफ करता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर हमको अच्छा लगता है आप जब ऐसा कहती हैं, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ये हमको अच्छा लगता है इसलिए हम जानबूझ के पढ़ देते हैं। वैसे मैसेज पढ़ना नहीं चाहिए लेकिन हम पढ़ देते हैं आपके रिएक्शन के लिए। और नेहा जी बहराई से कह रही हैं आपको ये सॉन्ग डेडिकेट है मेरी ओर से। ओके थैंक यू सो मच आप लोग के लव और सपोर्ट के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं, रईस साहब की रईसिया से निकाला गया प्यारा सा सॉन्ग इलू इलू इलू इलू, और इलू का मतलब क्या होता है वो सब को पता है, नहीं पता तो सुन लीजिए इस गाने के माध्यम से।

हाँ जी, प्रोग्राम के साथ बने रहने वालों को भी शुक्रिया अदा। हमने फरमाइश नहीं की तो क्या हुआ, सबके सॉन्ग तो झेले। ओह झेला है नागेश्वर जी, आपकी क्लास लगेगी बाय गॉड। फिलहाल एंजॉय करिए इस ट्रैक को। सन्नो शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल वर्मा जी क्या करें, शो ऐसा ही होता है, इसलिए डिजाइनिंग ऐसी होती है। मैं कई दफा सोचा आपकी कॉल उठा लूं लेकिन नहीं उठ पाया। यही तो मजा है इस शो का, एंजॉय करते रहिए।

0: हाँ जी श्रोताओं, बड़े दिन बाद हमारे एक प्यारे लिसनर जुड़े हैं। इनकी कॉल केवल लेंगे क्योंकि वक्त हमारे पास में है नहीं, लेकिन कॉल लेना बनता है। हेलो,
1: हेलो, फरमाइशी कार्यक्रम जा रहा है।
0: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है बसंत कुमार जी, हमें बाराबंकी से सुन रहे हैं लिसनर्स। कैसे हैं आप बसंत जी?
1: जी जो है ये फरमाइशी कार्यक्रम शनिवार को जाता है, तो हमने सोचा कि प्रोग्राम में एक रफी साहब का गाना जो है लेट हो जाए।
0: लेकिन बहुत लेट हो गए हैं आप, आज आपसे माफी चाहेंगे। आप प्लीज मंडे को जरूर आइएगा, आपका कॉल लगेगा और आपका गाना जरूर प्ले होगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए, बाय बाय।

हाँ जी, और आज की लास्ट डिमांड लेते हैं अर्जुन जी की, और अर्जुन वर्मा जी जो हमें सुन रहे हैं, और चिंटू जी आपका ये सॉन्ग मैं शो के स्टार्ट में चला सकती हूँ, मुझे मालूम है आपने बड़े ही मेहनत से जिंगल तैयार किया है, लेकिन माफ़ करिएगा जाते जाते नहीं, तो मंडे को आइएगा, टाइमली आ जाइएगा ताकि मैं आपके जिंगल को ले पाऊँ। आई एम सो सॉरी डियर, लेकिन ऐसे नहीं ले सकती ना, बस ये बात है बीच कुछ में। फिलहाल अब लेती हूँ आपसे इजाज़त, सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। शो को हिट बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सारी मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद ही बन जाएगा। और इन प्यारी सी पंक्तियों के साथ मैं आज अपने सारे लिसनर्स का स्वागत करती हूँ गोधुली आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रोज़ प्रतिदिन किसी न किसी गोंडा शहर की एक अच्छी और एक जानी मानी और बुलंदियों को हासिल करने वाली पर्सनालिटी से मिलते हैं। और आज फिर हमारे साथ एक बहुत ही जानी मानी पर्सनालिटी, जिन्होंने अपने करियर में बहुत ही कुछ खास किया और बहुत सारी बुलंदियों को छुआ। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं सर आपका हमारे स्टूडियो में। और मैं सर सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगी कि सर कैसे आपने इस फील्ड को चुना और कैसे आपके बचपन से पढ़ाई रही, परिवार में आपके माता पिता क्या करते थे, इन सब बारे में कुछ हमारे लिसनर्स को बताइए सर।
2: धन्यवाद। बचपन से ही मुझे इंजीनियर बनने का शौक था, और हमारी सारी सोच साइंटिफिक थी बाय बर्थ। ये हमारा बहुत बड़ा एम्बिशन था इंजीनियर बनना। मैं गोंडा में ही पैदा हुआ था
1: जी।
2: बहुत पहले की बात है, तब इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में दो ही तीन थे, IIT कानपुर, गोरखपुर में मदन मोहल
1: जी।
2: तो इस तरीके से एडमिशन की बड़ी दिक्कत थी, और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत थी आर्थिक कठिनाइयाँ। कोई व्यवस्था नहीं रहती थी, लोगों को पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती थी। बाद में हमने फैसला किया था कि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स करेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा से
1: जी।
2: यहाँ से हमने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स से हमने ग्रेजुएशन किया
1: जी सर।
2: फिर ग्रामीण अभियंत्र विभाग में सेवा में आ गए, निरंतर यहाँ काम करते रहे लगन से, मेहनत से। 39 साल लगातार सेवा करने के उपरांत मैं यहाँ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
1: और सर मेरा प्रश्न ये भी है कि सर आपके माता और पिताजी का इसमें क्या योगदान रहा, और वो खुद क्या करते थे, उनसे क्या इंस्पिरेशन मिली आपको?
2: हमारे पिताजी सरकारी सेवा में ही थे
1: जी जी।
2: हमारी माता गृहिणी थी
1: जी।
2: दो भाई दो बहन थे
1: जी।
2: हम लोग यहीं गोंडा में रह के ही टॉमसन इंटर कॉलेज से इंटर किया था, बाकी सारी पढ़ाई गोंडा हुई। इसके बाद सर्विस में आने के बाद गोंडा मैंने छोड़ा
1: जी जी। और सर क्या कभी दिमाग में ऐसा स्विच हुआ कि मैं इंजीनियर ना बन के ये भी बन सकता हूँ, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन भी कभी रहा आपके पास?
2: एक केवल हमें जो है
1: जी
2: फिजिक्स के अलावा और किसी चीज़ में कोई रुचि नहीं थी, और इंजीनियर के अलावा हमने कुछ सोचा भी नहीं था।
1: मतलब एक डायरेक्शन डायरेक्शनल मूवमेंट आपका रहा?
2: मैं हमारे छोटे भाई का भी
1: जी जी।
2: वो इस समय डिप्टी जनरल मैनेजर है गेल इंडिया लिमिटेड में
1: जी जी।
2: दोनों का एक ही लाइन क्लियर था बचपन से ही,
1: मतलब उसी डायरेक्शन में आप लोग मोटिवेटेड थे। और सर ये तो आपकी मतलब मोटिवेशन की बात हुई कि आप बिल्कुल डेडिकेटेड थे, बिल्कुल मतलब कह सकते हैं ना कि उसी में रुझान था आपका।
2: बिल्कुल रुझान था, प्राइमरी लेवल से ही रुझान था।
1: ये बहुत बड़ी बात है। और अक्सर हमारे जो यूथ की अगर मैं बात करूँ, हमारी यूथ हमेशा माइग्रेट करता रहता है, ये स्विच करते हैं, ये नहीं कर सकते, तो ये मतलब स्टार्टिंग से मतलब ये कहना चाहते हैं आपकी एक डायरेक्शन पकड़ के हमें उस पर चलना चाहिए।
2: नहीं वो तो ठीक रहता है, उसमें अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना रहती है, लेकिन वो मन से नहीं। जैसे हमने ये सर्विस की या जो भी पढ़ाई की, ये हमारे मन से था, ये हमारा शौक था। शौक से कोई चीज़ करता है और उसमें उसको रोजगार भी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है।
1: सो वी कैन से दैट इज इट इज़ योर पैशन।
2: हमारा ये पैशन था,
1: ये बहुत बड़ी बात है। और सर मैं भी ये भी जानना चाहूँगी कि इसके अलावा क्या आपको कभी राइटिंग या पोइट्री पढ़ना या
2: नहीं, लिटरेचर से हमें बहुत लगाव था, स्पोर्ट्स में हमारा कोई लगाव नहीं था। लिटरेचर्स में हम इंटर लेवल में टॉमसन की पहले लाइब्रेरी बड़ी रिच थी जिसमें हमने काफ़ी नावल्स पढ़े।
1: जी जी। और कभी ऐसा हुआ कि घर में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसको देख के आपके अंदर और मोटिवेशन आ गई, या कभी कोई रोल मॉडल जैसा कुछ आपके लाइफ में आया जिसको देख के मतलब एकदम स्विच हो गया कि अब तो ये चीज़ करनी ही है, किसी से मोटिवेशन या कोई आपके सामने आइडल पर्सनालिटी कभी ऐसा हुआ?
2: आइडल पर्सनालिटी तो हमारे सामने कोई भी नहीं हुआ। उसका कारण था हम बहुत ईगोइस्ट थे, हम खुद ही को अपना आइडियल मानते थे।
1: मोस्ट एम्बिशियस, दैट्स अ ग्रेट थिंग। और कभी लाइफ में ऐसा हुआ हो कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हों कि लगता रहा हो कि हाँ अब ये चीज़ भी हो सकती है, बट फिर आप वापस उसी डायरेक्शन में मूव करने लगे, कि पढ़ाई के अलावा स्कूल में किसी अलग करिकुलर एक्टिविटी में आपका रुझान, स्कूल में कभी कोई टीचर ने आपको मोटिवेट किया हो कि यस यू कैन डू इट, आप ऐसा कर सकते हैं आप?
2: जी हाँ, इसके लिए हमारे कई टीचर्स जिनको हम आज भी आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया।
1: जी जी, मतलब मोटिवेशन में, जैसे
2: मोटिवेशन में हम कभी कभी कमज़ोर पड़े या अपने को हारते हुए देखा तो उन्होंने हमारे पूरा सहयोग किया,
1: मतलब हौसला अफजाई का काम,
2: हौसला अफजाई का काम पूरे पूरा करते रहे।
1: और कभी सर स्कूल में आपने किसी मतलब स्टेट या नेशनल लेवल के किसी गेम या किसी भी हमें पार्टिसिपेशन किया?
2: नहीं, पहले भी बताया कि हमें गेम में नहीं इंटरेस्ट था। हाँ, विज्ञान प्रदर्शनी में हमारे मॉडल्स स्टेट लेवल पे कई बार गए हैं।
1: मतलब मॉडल्स आपने
2: बनाए? हाँ, मॉडल्स
1: बनाए एज एग्जीबिशन में।
2: एग्जीबिशन में विज्ञान प्रदर्शनी पहले लगा करती थी, और ये बात 75 और 76 की थी जब कंप्यूटर और लॉजिक गेट के बारे में बात लोग नहीं जानते थे।
1: हाँ,
2: तब हमने एक ऑपरेटर्स बनाया था जिसमें किसी भी सन का कैलेंडर या कंप्यूटिंग कर सकता था।
1: ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम के लिए।
2: जी हाँ।
1: और सर ये बताइए, जैसे फिजिक्स की आपने बात की, आपको फिजिक्स बहुत पसंद थी, फिजिक्स का कोई ऐसा पोर्शन जिससे आपको एकदम प्यार था कि हाँ ये पोर्शन देखते ही मतलब खाना छोड़ के भी आप उस पोर्शन की तरफ?
2: एस्ट्रोनॉमी।
1: एस्ट्रोनॉमी, यस, वेरी ग्रेट थिंग। और सर फिजिक्स में एटॉमिक फिजिक्स के बारे में क्या आपकी राय है?
2: अब एटॉमिक और क्वांटम फिजिक्स हमें सब कुछ अच्छे लगते हैं
1: जी,
2: और जब हम इसको कोरिलेट करते हैं कॉस्मोलॉजी से तो
1: वो तो एक अलग ही डायरेक्शन में जाते। सो थैंक यू सर, ये आपने अपने बारे में बताया, और आप अपने बच्चों के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या आपसे भी इंस्पायर होकर आपके बच्चों ने इस डायरेक्शन को मूव करने के बारे में सोचा, या कुछ अलग डायरेक्शन?
2: जी हाँ, हमारे बच्चों ने जो हमारे पढ़ाई में प्रॉब्लम आई थी, जैसे हमने कहा कि उस समय में इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी ने लगभग पूरे इंडिया की थी, इकोनॉमिक बहुत कमज़ोर थी, तो जो पढ़ने के कॉलेजेज वगैरह नहीं थे, तो उन लोगों ने भी इंजीनियर बनने का फैसला किया, और दो बेटियां हैं हमारी, दोनों जो है मैकेनिकल इंजीनियर हैं। बड़ी बेटी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है
1: जी जी।
2: और छोटी बेटी जो है हमारी थॉपर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है इस समय।
1: वाओ, दैट्स ग्रेट थिंग, मतलब इंस्पिरेशन आप उनके लिए बन गए।
2: और इंजीनियरिंग वो पीएचडी करने जा रही है।
1: ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपसे इंस्पायर उन्होंने आपको मतलब रोल मॉडल बनाया। और सर संघर्षों की आपने बात की कि इकोनॉमिकली आपने मतलब बचपन से फेस किया, तो क्या कुछ संघर्ष आपके लाइफ में रहे?
2: मतलब बहुत संघर्ष नहीं था उस समय, वो संघर्ष सबका था। संघर्ष ये था कि उस समय फीस इंजीनियरिंग कॉलेज की बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बहुत दूर दूर कॉलेज थे, हर आदमी कॉमन मैन जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था।
1: हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है।
2: और चाहते हुए भी वो चीज़ को नहीं कर पाता था।
1: जी जी।
2: उसको कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ते थे कि हमें इस कॉलेज में ही जाना, यहाँ पे जाना है, जो उसके रेंज में आ जाता हो।
1: तो सर संघर्ष से जुड़ी कोई छोटी सी मेमोरी हो तो आप बताइए कि हाँ मेरे लाइफ में ये बहुत बड़ा संघर्ष था। कभी कभी होता है ना कि कहीं हम जा रहे हो रास्ते में, कभी किराया कम पड़ जाता है, या कभी कुछ ऐसा छोटा सा मतलब मोमेंट शेयर कीजिए जिससे हमारे यूथ को मोटिवेशन हो कि मनी इज नॉट एवरीथिंग दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर।
2: देखिए, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए, हमने डिप्लोमा किया, लेकिन हम अपने जो हमारा टारगेट था उसको हमने अचीव कर लिया।
1: जी जी,
2: मेहनत करके अचीव कर लिया।
1: तो मतलब मेहनत इज, मतलब आप कहना चाहेंगे अगर कड़ी मेहनत आप कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ बाधा नहीं बन सकती, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था आपकी लाइफ में वो मतलब बाधा नहीं बन सकती। अगर आपकी ये सोच,
2: सफलता के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। जी, परिश्रम, परिवेश और प्रारब्ध।
1: जी सर,
2: हमें परिश्रम भी करना चाहिए, हमारी प्रारब्ध यानी किस्मत भी काम, और परिवेश हम कहाँ रहते हैं, कैसे करते हैं, क्या एनवायरनमेंट है हमारा,
1: जी
2: इकोनॉमिकल या सोशल, ये सारी चीज़ें करती हैं। परिश्रम ही हमारे हाथ में है,
1: जी
2: प्रारब्ध तो हम बनाते नहीं हैं,
1: बिल्कुल,
2: और परिवेश भी प्रारब्ध से ही मिलता है,
1: बिल्कुल। तो परिवेश और परिश्रम दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो मतलब ऊंचाइयों को हम छू सकते हैं,
2: ऊंचाइयों को छू सकते हैं।
1: और सर आपने बताया कि आपकी हॉबी में आपको लिटरेचर बहुत पसंद है,
2: हाँ, लिटरेचर।
1: तो लिटरेचर के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि आपने राइटर को या किस पोएट को या किसी को ऐसा मतलब जिससे आप पढ़ते थे, आपको पढ़ के मजा आता,
2: जिसे हमें शरदचंद बहुत अच्छे लगते थे,
1: जी
2: हमें बंगला साहित्य में काफी रुचि थी, जो बंगाली जो थे बांग्ला लेखक, बंकिमचंद चटर्जी हुए, शरदचंद हुए, ये हमें काफी अच्छे लगते थे। प्रेमचंद तो सभी को पसंद होंगे,
1: कोई भी ऐसा नहीं,
2: कोई भी ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा गहरे लिटरेचर में थे नहीं, इसलिए जयशंकर प्रसाद वगैरह को हमारे नहीं पढ़ पाते, समझ में आता था, पोएट्री तो हमारी समझ में ही नहीं आती, वो आज भी नहीं आई।
1: हाँ, लिटरेचर में आपको रुचि रही है, और कोई ऐसी मतलब उनकी रचना जो आपको आज भी याद है और लगता है कि हाँ वो मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगी, ये आपको
2: भंवरमल सिंधी की,
1: ये बहुत अच्छी बात है। और सच में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सर कि जो छाप छोड़ जाती है हमारी ज़िंदगी में, तो उस छाप छोड़ने की अगर मैं बात करूँ तो आपकी पढ़ाई के पूरे मतलब जो आपने डिप्लोमा किया उस टाइम पे कोई ऐसा टीचर या कोई ऐसी इंसिडेंट जो छाप छोड़ गई आपकी ज़िंदगी में, वो आपको बार बार याद आता है?
2: हाँ, ये छुट्टी हमारे थे सिविल इंजीनियरिंग के,
1: जी
2: SR सतीजा साहब,
1: जी तो उनकी आपको याद आती है अभी? हाँ, भी अगर मौका मिले तो आप उनसे मिलना चाहेंगे। सो थैंक यू सर इतनी सारी बातें बताने के लिए, और अभी हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: सो लिसनर्स, हमारे साथ आप सबको पता है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री प्रवीण जी जुड़े हैं, जिन्होंने बहुत सारी बातें अपनी लाइफ से जुड़ी हुई, मतलब अपने बायो से जुड़ी हुई बताई। लाइफ में बचपन से इन्होंने कैसे मोटिवेट रहने का तरीका बताया और कैसे कठिन परिश्रम के साथ परिवेश भी काम करता है, ये सब हमने जानी। और अब हम जानेंगे सर के करियर के बारे में कि सर ने जब अपना वर्किंग करियर यानी कि डिप्लोमा के बाद जब अपना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो काम शुरू किया, मतलब रूरल एरिया में ये गए और इन्होंने क्या क्या काम किया, उसके बारे में सर बताइए सर हमारे लिसनर्स को।
2: हम लोग जब शुरू में काम करना शुरू किया, हमारा विभाग बिल्कुल नया था, अभी इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं।
1: जी जी,
2: तो 10-11 वर्ष का ये विभाग था और जैसे कि इंडिया की ही इकनॉमी बड़ी कमज़ोर थी, फंड्स की बड़ी कमी रहा करती थी, गांव में कोई विकास नहीं था, कच्ची सड़कें हुआ करती थी, कहीं भी हमें आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। उस समय बात कही जाती थी कि केवल मोटरसाइकिल या साइकिल से ही गांव जाया जा सकता है, कार तो कल्पना भी नहीं थी कि वहाँ जा सकती है। तब हम लोगों ने मिट्टी पटाई का काम शुरू किया। फंड कम रहते थे, ज़्यादा जगह पे हमें काम कराना रहता था, तो इतने बजट नहीं रहते थे कि उस पर हम कुछ और आगे कर पाए। मिट्टी बनाकर रोडें बनाएंगी, कुछ सालों तक हम मिट्टी का ही काम करते रहे, मिट्टी पटाई का काम करते रहे। फिर थोड़ा थोड़ा फंड जब उपलब्ध होने लगा तो उस पर सोलिंग ईंटों की लगाना शुरू हुआ। 10-15 साल में जब ये सेचुरेशन की स्थिति पैदा हो गई, तब हमने उस पर पक्की सड़कें बनाने का काम शुरू किया। इस मामले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में शुरू हुई थी। ये कॉन्सेप्ट उनका था कि हर गांव को हमें एक अच्छी सड़क देनी है।
1: जी,
2: इस कॉन्सेप्ट में PWD और RED दोनों मिलकर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे हम लोगों ने इस पर काफ़ी अच्छा काम करना शुरू कर दिया और गाँव में अच्छी सड़कें बनने लगी।
1: जी सर, जो प्रमाण दिख रहा है सर,
2: जो आज भी दिख रहा है, आप कहीं भी गांव में जाइएगा, PMJSY का लोगो मिल जाएगा और रोड मिल जाएगी।
1: जी,
2: हर जगह पर, ऐसा ही नहीं केवल नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पे भी काम हुआ, गांव के अंदर सड़कें बनना शुरू हुई। इसके लिए एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया गया कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सड़कें होंगी पहले वो ली जाएंगी।
1: जी, धीरे धीरे। प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट होती थी?
2: ये केंद्र सरकार की योजना थी, स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन करती है
1: और उस प्लान को आप लोग फॉलो करते हुए से मतलब उसे अंत तक पहुंचा देते हैं। और हमारे लिए तो वो एक छोटा सा मुझे लगता है चेंज होगा कि आज कच्ची रोड से फिर सोलिंग बनी, सोलिंग से फिर पक्की रोड, लेकिन इसके पीछे जो संघर्ष रहा होगा वो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा।
2: नहीं, बहुत संघर्ष रहा है। धीरे धीरे हम लोगों ने काम सीखना शुरू किया, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई।
1: जी,
2: पुरानी पढ़ाई थी उस पर बहुत सी टेक्नोलॉजी, जिसे अभी भी लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम चला ही करते हैं।
1: हाँ,
2: डॉक्टर और इंजीनियर को हमेशा अपडेट करना पड़ता है।
1: बिल्कुल, रोज कोई ना कोई चेंज हो ही रहा है, दिन प्रतिदिन।
2: अब आज से 40 साल पहले जो कुछ पढ़ाया लिखा गया था वो टेक्नोलॉजी नहीं यूज हो रही, ना बिल्डिंग में ना रोड में, सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। तो एक तो हम लोग टेक्नोलॉजी लेवल पे अपने को काफ़ी इम्प्रूव किए। इसके बाद बजट की उपलब्धता भी बहुत कुछ हो गई और संपर्क मार्गों का निर्माण आज आप देख ही रही होंगी, चाहे नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, हर गांव इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग हर गांव सेचुरेट हो चुका है। अब हम अपग्रेडेशन का ही काम कर रहे हैं, यानी जो सड़कें पतली थी उनको चौड़ी कर रहे हैं। हमारे पास नई सड़कें बनाने के लिए नहीं रह गई हैं जो दो विलेज को जोड़ रही हों, बड़ी सड़कें हों।
1: जी जी,
2: ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: बिल्कुल सर, ये उपलब्धि है।
2: और PMJSY योजना में ऐसा भी नहीं कि सड़क बना के हम छोड़ देते हैं, 5 साल मेंटेनेंस कराते हैं उसका।
1: और सर सड़कों की अगर आपने बात कही तो ये सड़कें बनाने का काम, जैसे आपने सबसे पहले बोला कि मिट्टी पटाई का काम हुआ, तो सपोज काम दो गांव एक साथ हैं तो उनमें अगर सोलिंग बन रही है या मिट्टी पटाई वाली रोड जो बन रही है उसमें लगभग कितना समय लगता रहा होगा उस समय?
2: पहले बहुत समय लग जाता था, 1 किलोमीटर सड़क बनने में मिट्टी पाटने में ही 1 महीने लग जाता था।
1: और संसाधन क्या हुआ करते थे उस समय?
2: केवल मैनुअल होता था,
1: मतलब मैन पावर से काम
2: करते थे। आज सारी चीजें मशीन ही है।
1: हाँ, लेवलिंग के लिए अपने पास रोलर्स हैं। और
2: नहीं, FDR टेक्निक में तो हम लोग रोड बनाते हैं, 1 दिन में 200 मीटर सड़क हमारी बन जाती है।
1: जी।
2: अभी हम बहराइच में थे, हम एक ट्रायल कराया गया था, 200 मीटर की सड़क जो है 8 या 10 घंटे में कंप्लीट हो गई थी।
1: जी।
2: जीरो लेवल से।
1: वाओ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सुनने में भी मतलब लग रहा है कि हाँ कितनी बड़ी।
2: पहले सड़क कुछ भी नहीं थी और शाम को उस पर 200 मीटर सड़क बन गई।
1: 200 मीटर, वाओ। और सर ये बताइए, सबसे पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई?
2: सबसे पहले पोस्टिंग गोंडा हुई थी
1: हमारी। गोंडा, और गोंडा के आसपास के क्षेत्रों में गांव के एरिया आपने कवर किए?
2: काफ़ी कवर किए।
1: और गोंडा से क्या कुछ आपको नया सीखने को मिला अपने मतलब पहले कार्यकाल, मतलब सबसे पहला जो गोंडा है, गोंडा में आपने क्या नया सीखा मतलब जैसे ज्वाइनिंग के दौरान?
2: उस समय तो बहुत इनिशियल स्टेज थी और सीखने के लिए कुछ खास नहीं था हमारे विभाग में। हाँ। कोई विशेष काम था ही नहीं।
1: और इसके बाद आपकी कहाँ हुई?
2: इसके बाद हम बहराइच गए।
1: बहराइच, बहराइच आप कितने साल तक लगभग आपका कार्यकाल वहाँ कितना रहा?
2: 6 साल पहले राउंड में थे और बाद में फिर अधिशासी अभियंताओं के 2 साल फिर वहाँ रहे।
1: जी। और वहाँ पे भी मतलब रोड का ही काम?
2: हाँ, मोस्टली हमारा विभाग रोड का ही काम करता है, बिल्डिंग भी बनाता है। इस समय जो है पुलिस विभाग की बिल्डिंग बनाई जा रही है और ITI बिल्डिंग्स बन रही है।
1: चलिए सर, बहुत अच्छी जानकारी दी। और इसके बाद आखिरी पोस्टिंग आपकी कहाँ है?
2: बहराइच से रिटायर हुआ।
1: मतलब रिटायर उस दौरान बहराइच से बहराइच के बीच में कुछ जगह का स्थानांतरण हुआ?
2: बहराइच, बलरामपुर में रहा, श्रावस्ती जनपद रहा, पडरौना में मेरी पोस्टिंग रही है।
1: जी।
2: हरदोई में भी रहा, बाराबंकी, लखीमपुर।
1: अरे मतलब सर आपने बहुत जगह रूटिंग की। तो सर इन सारे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अच्छा क्षेत्र मतलब अच्छा मतलब वहाँ के लोग जो आपको सबसे ज्यादा सपोर्टिव स्टाफ कहाँ मिला?
2: सपोर्टिव स्टाफ तो हमें हर जगह मिला
1: जी।
2: लेकिन कहा जाए अच्छा लगने का तो लखीमपुर हमें बहुत अच्छा लगता था। एक तो हम वहाँ पे नेचर से भरपूर इलाका था, कहीं भी जाने पे जंगल, नदी, कोई पॉल्यूशन नहीं था, वहाँ पे काम करने का एक अलग ही मज़ा था
1: जी।
2: तो आसपास की सीनेरियो आज भी हम कभी घूमने चले जाते हैं लखीमपुर।
1: ये बहुत अच्छी बात है। और सर ऐसा लग रहा है सुन के कि आप पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो पर्यावरण को बचाने के लिए भी सर आपने कुछ है?
2: हाँ, नहीं, हमने बहुत काम किया है अपने जितने भी PMJSY रोड, हालांकि अब तो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई कि वहाँ पे पेड़ लगाए जाएं।
1: जी।
2: इसके बाद भी हम काफ़ी पेड़ लेके जहाँ नहीं लग सकता वहाँ भी लगवाने का प्रयास किया है।
1: सर ये बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट, और मैं लिसनर से भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप सुन रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि ये काम पहले से चल रहा है। सर ने कब काम किया होगा? सर अब रिटायर्ड हो चुके हैं, सर अब बता रहे हैं कि उस समय मतलब बिना सरकार के आदेश के सर पेड़ पौधे लगाने का काम करते थे। तो आज तो सर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पेड़ों की
2: बहुत ज़रूरत है।
1: और कहीं ना कहीं अल्प वर्षा का कारण भी पेड़ों का कटना और कम होना है। लोग घर में मतलब सोलिंग मतलब ऐसे लगवा देते हैं कि कहीं से भी मिट्टी ना आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है घर में मिट्टी होनी चाहिए। कम से कम बारिश का कुछ पानी तो ज़मीन के अंदर जाए। जो लोग कह रहे हैं ग्राउंड लेवल का पानी नीचे जा रहा है, तो जब बारिश का पानी सर ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा तो पानी कैसे मेंटेन होगा?
2: प्लांटेशन का काम गवर्नमेंट लेवल पे भी शुरू हुआ
1: जी।
2: हमने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया कि वो ऐसे पेड़ लगाएं जिसकी यूटिलिटी हमें डायरेक्टली कुछ न दिखती हो, जैसे बरगद है, जामुन है, इसको कोई लगाता नहीं है, ये सार्वजनिक रूप से ही लग सकते हैं
1: और सालों तक ये हमें
2: सालों तक रहते
1: हैं, फायदे देते हैं।
2: आज कोई इमली का पेड़ लगाता है, कोई भी नहीं लगाता है,
1: नहीं, कोई नहीं लगाता।
2: पाकड़ का पेड़ कोई नहीं लगाता है, जबकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल सर।
2: तो जो गाँव के अंदर खाली ज़मीन है जहाँ पे हमें सरकार की तरफ से वृक्षारोपण कराना है
1: जी।
2: तो वहाँ पे हम दूसरे पेड़ क्यों लगाएं, यही लगा दें।
1: बिल्कुल सर।
2: इसमें 2 फायदा होगा, इसकी लकड़ी नहीं चोरी होगी, इसके फल के लिए इसको कोई तोड़ेगा भी नहीं
1: जी। सर ये भी बात। और सर पीपल का भी पेड़ कभी कोई नहीं लगाता, जबकि पीपल तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये रात के समय भी ऑक्सीजन देता है।
2: हम तो वहाँ पे कई लोगों को हमने समझाया, प्रधान के साथ मीटिंग की, महिलाओं को भी समझाया कि आप बरगद पीपल नहीं रखोगे, अगर कुछ दिन बाद ये 100 साल बाद ये पेड़ ख़त्म हो जाएंगे तो आप बरसाई कहाँ पूजने जाओगे, आपका घंट कहाँ बनेगा।
1: जी जी,
2: आपको अपने गांव के लिए तो एक पेड़ चाहिए ही।
1: और एक आध अगर और लगा दिए जाएं तो इसमें क्या ही बुराई है,
2: क्या बुराई है।
1: सर बहुत अच्छी जानकारी थी सर, पेड़ पौधों को लेके तो मोटिवेशनल जो बात होनी चाहिए वो तो मुझे लगता है हर प्रोग्राम में जानी चाहिए। तो सर ये बताने के लिए सबसे पहले मैं आपसे शुक्रिया बोलना चाहूँगी। और सर कुछ एक्सपीरियंस इन जगहों में जाने के दौरान कुछ ऐसा लगा कि ये वाला जो एक्सपीरियंस या ये एक छोटी सी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें कार्यकाल के दौरान, जैसे आपने गोंडा से बहराइच तक का सफ़र तय किया और उस दौरान की कोई भी छोटी सी मेमोरी शेयर कीजिए सर, जहाँ का खाना आपको बहुत अच्छा लगा हो या लोग बहुत अच्छे लगे हो, गीत कुछ भी लोग से संबंधित बता सकते हैं सर।
2: हम एक बार की घटना है, हम बलरामपुर में उस समय पोस्टेड थे
1: जी,
2: शाम के समय एक साइड पे हमें जाना था, साइड पे हम लोग गए एक नाला पार करके
1: जी।
2: तो जिसे पहाड़ पे होता है जरा सा पानी बरस जाता है तो नाले उफन जाते हैं
1: जी जी।
2: रात में शाम होते होते नाला उफनने लगा और वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया
1: जी।
2: हम लोग अनजान रास्ते पे चलते रहे और रात भर सड़कों को घूमते रहे, उस समय GPS नहीं था
1: जी जी।
2: भटकते हुए सुबह 5 बजे बलरामपुर पहुंचे थे,
1: मतलब
2: वो घटना आज भी याद आ रही है,
1: रास्ता भटक गया।
2: रात में कोई बताने वाला भी नहीं था
1: हाँ, वो इलाका
2: और बलरामपुर का तराई इलाका, वहाँ पे आबादी भी बहुत कम है, बहुत रेयर पॉपुलेशन है उसकी
1: जी। तो उस समय मतलब आपको बहुत घूमना पड़ा और
2: घूमना पड़ा, कोई बताने वाला भी नहीं था
1: हाँ, और डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आपको सुबह हो गई। तो ऐसी छोटी छोटी मेमोरीज जो हैं हमें याद दिलाती हैं अपने कार्यकाल को, लगता है कि हाँ एक बार फिर जी लिया जाए। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि इन सब जगहों में अब जो विकास हो रहा है और तब के विकास में क्या तीव्रता, अब पहले का विकास तो स्लो था क्योंकि तकनीकी सुविधा कम थी
2: हाँ,
1: और आज का विकास फास्ट है, लेकिन उसमें भी कुछ अंतर अगर आपको दिखता है तो बताइए।
2: नहीं आज तो विकास पूरे अपने फ्लो में है
1: जी,
2: जैसा होना चाहिए वैसा है, उसके लिए हमारे पास पूरी व्यवस्था है, लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज भी है, फंड्स भी हैं और आइडियाज भी हैं, प्लानिंग भी है, सब कुछ है।
1: और सर
2: समय बहुत अच्छा काम हो रहा है
1: हाँ। और सर आप गांव के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या वो लोग सहयोग कर सकते हैं इस काम में, या अगर काम हो रहा है तो उस दौरान क्या, उनकी क्या भूमिका है।
2: देखिए इस बारे में हमें गांव वालों से थोड़ी सी शिकायत है
1: जी जी,
2: वहाँ जब भी काम होता है कोई ना कोई गांव का एक आदमी हिंड्रेंस पैदा करता है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका नुकसान हो रहा है, दूसरे का फायदा हो रहा है इसलिए वो हिंड्रेंस पैदा करता है। हमें इस भावना से बाहर आना चाहिए। दूसरी बात है कि भारत में लोकतंत्र अब कहा जाए ओवरडोज हो चुका है, गांव में हर लेवल पे लोकतंत्र प्रधान है, एक जीता हुआ प्रधान है एक हारा हुआ प्रधान है
1: जी जी।
2: तो जो हारा हुआ प्रधान है वो जीते हुए प्रधान के हमेशा टांग खींचने की कोशिश करता है,
1: ये
2: तमाम टाइप की कंप्लेंट्स होते हैं उसके द्वारा काम कराए जाने पे कोई ना कोई डिस्टर्बेंस पैदा किया जाता है, अगली बार वो भूतपूर्व हो जाता है, वो वर्तमान हो जाता है तो वही काम वो करने लगता है।
1: तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों से कि क्या सही है क्या गलत है उसको चुनने के लिए।
2: मैसेज ये है कि जिनकी आपसी मनमुटाव है लड़ाई है वो व्यक्तिगत तौर पर लड़े, सरकारी मशीनरी को वो अपना हथियार न बनाए,
1: बिल्कुल, और हो सके जितना सहयोग करने का
2: कर सके, क्योंकि वो किसी एक आदमी का विरोध नहीं करते हैं, किसी रोड का या किसी नाली का किसी ने विरोध किया तो उस आदमी का विरोध नहीं कर रहा है, वो पूरे कम्युनिटी का विरोध कर रहा है,
1: और कहीं ना कहीं वो देश के विकास में
2: देश भी एक
1: बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है।
2: हम लोगों के सामने ये बहुत बड़ी समस्या आती है।
1: तो सभी लिसनर्स अगर सुन रहे हैं तो आप लोग ये हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप गांव से हैं तो अगर आपके गांव में कोई भी सड़क द्वारा या कोई भी ऐसी योजना
2: कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो कुछ भी हो
1: तो आप भर भर के उसमें सहयोग करें, क्योंकि वो आपके फायदे साथ ही साथ आपके देश के विकास के लिए काम हो रहा है,
2: क्योंकि हर सुविधा जो हमें सरकार ने उपलब्ध कराई है हमारे फायदे के लिए है। गाँव में सबसे ज्यादा मिस यूज होता है RTI का, शहर का आदमी शायद RTI न जानता हो लेकिन गांव में एक RTI की एप्लीकेशन हमेशा पड़ी रहती है, उसमें क्या होता है हम अधिकारियों का आधा ज़्यादा समय जांच में, आरटीआई में ही व्यतीत हो जाता है, तो इधर से हम कुछ कंस्ट्रक्टिव काम नहीं सोच पाते हैं।
1: ये बात सही सर, ये बहुत जानने वाली भी बात है कि लोग अपने स्तर तक जाने कि क्यों ऐसा करना गलत है। हाँ, कोई राइट की बात हो जहाँ उनका हनन हो रहा हो बिल्कुल कहना चाहिए, लेकिन जहाँ विकास की बात हो रही हो तो वहाँ पे एक रोक बांध वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए।
2: इतनी कंप्लेंटें आती हैं, हमारे ब्लॉक लेवल पे देखते हैं हमारे विभाग के जीज हैं, वो आधा समय उनका केवल जांच में ही बीत जाता है।
1: जी जी, और जांच के दौरान कार्य करना तो बिल्कुल मुश्किल होगा। चलिए, थैंक यू सर, और इस बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज, 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: सो वेलकम अगेन लिसनर्स, हम लोग फिर जुड़ चुके हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम गौधूली में, और आज हम बात कर रहे हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी से, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी जानकारी और अपने क्षेत्र में बहुत कुछ सर ने किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है कि हमारे गोंडा क्षेत्र में ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया, और ऐसे मतलब कहते हैं ना कि डाउन टू अर्थ, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। आज आप सबके सब उनके बारे में कुछ खास जानेंगे और कुछ नया जानेंगे, और वो भी जानेंगे कि क्या क्या उनसे सीख सकते हैं। तो अब बात करते हैं सर कि क्या आप हमारे यूथ को, हमारी जो लिसनर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या वो इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, या उनकी लाइफ में अगर कोई ऐसी दुविधा है कि कह सकते हैं ना कि आगे एम को लेके जब दुविधा होती है, तो उस क्षेत्र में भी ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो पोस्ट है वो उनको कैसे मदद कर सकता है सर?
6: पहली बात, हम गोंडा के, गोंडा हमारे लिए इसमें गर्व का विषय है कि यहाँ पे लोक सेवा आयोग से 2 कैंडिडेट, संघ लोक सेवा आयोग से भी 2 कैंडिडेट, काफ़ी ज़्यादा संख्या में इस बार नीट की परीक्षा अच्छे रैंक्स में उत्तीर्ण किए हुए हैं। ऐसी उपलब्धि गोंडा को बहुत दिन बाद मिली हुई है।
5: जी सर,
6: ये इस वर्ष की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक अच्छा संकेत है कि हम लोग में कुछ सुधार या परिवर्तन आना शुरू हो गया है।
5: और सर, हार्ड वर्किंग हो चुके हैं,
6: क्योंकि यहाँ पे लोगों ने रिजल्ट देना शुरू कर दिया है युवाओं के लिए। हाँ, आजकल का कंपटीशन का ज़माना है, लेकिन कंपटीशन अच्छे में है।
5: जी सर,
6: अगर किसी भी एग्जाम में 10,000 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, कैंडिडेट बैठ रहे हैं, तो 10,000 में से केवल सीरियस 200 हैं, बाकी लोग वैसे ही बैठे हुए हैं। तो हम युवाओं से ये कहना चाहते हैं, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या इंजीनियरिंग की अच्छी तैयारी करनी है कि सब कुछ करना, तो उनको शुरू से ही अलर्ट रहना पड़ेगा, हमेशा विजिलेंट रहना पड़ेगा। आसपास की घटनाओं के बारे में उन्हें हमेशा जानकारी होनी चाहिए। अपने जो है पढ़ाई है, इसके अलावा भी उनको जनरल स्टडी की तरफ बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए।
5: जी जी सर,
6: चाहे वो जिस सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, तब भी उनको जो है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आसपास के जो करंट अफेयर्स हैं, इनकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना अब कंपटीशन निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। इंजीनियरिंग में भी लोक सेवा आयोग से जब भी सहायक अभियंताओं की भर्ती निकलती है या अवर अभियंताओं की भर्ती निकलती है, तो उसमें पहले तो एक हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है, एक जनरल स्टडी का पेपर होता है, इंजीनियरिंग वगैरह का पेपर तो बाद में होता है, इसको क्वालिफाई करने के बाद।
5: जी जी सर, तो अपडेटेड होना उनके लिए बहुत,
6: अपडेटेड होना, केवल हम कहें कि हमने कोर्स पूरा कर लिया है तब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कोर्स पूरा करना ही नहीं महत्वपूर्ण है, हमें साइड में भी काफ़ी स्टडी करनी चाहिए,
5: डायनेमिक नॉलेज
6: होनी चाहिए, क्योंकि अब इसके बिना नहीं काम चल सकता है।
5: और सर कैसे, मतलब शुरू से वो क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं, मतलब अगर प्रारंभिक
6: इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के लिए उसके पास दो हैं, दो तरीके हैं, या तो डिप्लोमा कर ले, आजकल डिप्लोमा का रिवाज लगभग समाप्त हो चुका है क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज पर्याप्त हो चुके हैं, वहाँ से वो बीटेक की ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहे तो प्राइवेट सेक्टर में जा सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में स्कोप थोड़ा सा केवल सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की ही होती है
5: जी सर,
6: राज्य सरकारों के पास कोई फैक्ट्री नहीं है इस समय
5: जी सर, तो इस वजह से वो लोग प्राइवेट में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज गेन कर सकते हैं,
6: प्राइवेट में काफ़ी अपॉर्चुनिटी।
5: और सर अगर हम बात करें कि जो यूथ है हमारा, यूथ मतलब टीनेजर्स जो हैं, टीनेजर्स की लाइफ में मतलब इमोशनली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाते, इधर उधर माइग्रेट करते रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो अपने माइंड को थोड़ा सा एक डायरेक्शन में कंट्रोल करें और अपनी स्टडीज़ को या डायनेमिक नॉलेज जो है उसको कैसे मेंटेन करें, उनका डेली शेड्यूल कैसा हो सकता है सर?
6: उनको घर का एटमॉस्फेयर भी हमें देना पड़ेगा, परिवेश बनाना बहुत ज़रूरी है। आजकल कोई भी स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता है, पढ़ने का मतलब हमारी उसकी बुक से नहीं है, उसको पढ़ने की आदत ही नहीं होती है, ना वो कोई मैगजीन पढ़ता है ना पेपर पढ़ता है, या तो सोशल मीडिया पे ही लगा रहता है। स्कूल का सिलेबस किसी तरीके से वो पूरा करता है, 90% नंबर पा जाता है। स्ट्रेटजी से नंबर प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको तीन क्वेश्चन भी आपको दे दें और फिर हम तीन क्वेश्चन 10 मिनट बाद पूछ लें, आप 100% जवाब दे देंगे, आपके नंबर आ गए 100, तो क्या इससे आपका पूरा टेस्ट हो गया? नहीं हो गया। हमारे पेरेंट्स भी बहुत इस पे खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ने 95% नंबर गेन किया, 80% नंबर गेन किया। नॉलेज के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, वो एक भ्रम में जी रहे होते हैं, वो बच्चा भी भ्रम में जी रहा होता है।
5: हाँ सर, एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि नॉलेज का एप्लीकेशन उन्हें नहीं मालूम है,
6: नहीं मालूम।
5: अगर नॉलेज अप्लाई करना उनको आ गया तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ प्रतिशत कर लिया, और इसके अलावा नॉलेज अप्लाई करने के बाद उसे रिजल्ट को भी ऑब्जर्व करना आ गया तो दैट विल बी द 100%। और क्या कुछ नया करने के बारे में सोचा जा सकता है सर इस फील्ड में, कि कोई नई सोच इसमें ऐड हो सकती है?
6: इस फील्ड में जिस तरीके से आजकल नंबर बढ़ रहा है उससे अच्छा है कि एग्ज़ाम सिस्टम ही ख़त्म कर देना चाहिए, जो बच्चा एग्ज़ाम देना चाहे वही एग्ज़ाम दे, जिसको अपना वैल्यूएशन कराना है वो एग्ज़ाम दे दे, बाकी सबको क्लासेस दिया जाए। इस तरीके से नंबर देने पे जो सीरियस स्टूडेंट होंगे वो पढ़ेगा, बाकी को डिग्री मिल जाएगी
5: जी जी, और अपने क्षेत्र में वो
6: अच्छा कर पाएगा।
5: थैंक यू। और सर क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, कैसे वो मोटिवेट हो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के क्षेत्र में या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कैसे वो मोटिवेटेड हों, और हमारी जो फीमेल्स हैं यानी कि हमारी जो महिला प्रधान क्षेत्र है वो काफ़ी डरते हैं इंजीनियरिंग के, मतलब कुछ लोग तो बहुत मोटिवेटेड होती हैं बचपन से ही, लेकिन कुछ लोग डरती हैं कि नहीं ये काम नहीं सही है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं, यहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाना पड़ेगा, मेरा मैथ्स नहीं अच्छा है, मेरा फिजिक्स नहीं अच्छा है, मैं फिजिक्स नहीं कर पाऊँगी, तो उसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे?
6: जब पहले से ही आदमी हार मान जाएगा तो उसको तो असफलता ही मिलेगी, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता।
5: बिल्कुल सर,
6: और क्यूरियोसिटी से बड़ा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है।
5: यस, ये बात 100% ट्रुथ है, क्योंकि ऐसे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जो रद्दी का काम करते थे और उन्होंने रद्दी में बैक्टीरिया की खोज कर निकाली, रद्दी में भरे पानी को उनमें मूवमेंट देखा और उसमें बैक्टीरिया की खोज निकाली, और क्यूरियोसिटी सबसे बड़ी साइंटिस्ट है, सबसे बड़ा ज्ञान क्यूरियोसिटी है। तो सर यूथ को मैसेज क्या देना चाहेंगे?
6: ऐसा क्यूरियस रहे,
5: क्यूरियस रहे
6: हमारे आसपास क्या हो रहा है, अगर हमारे पास एक भी चीज आ जाती है वो हमें उससे 100 क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस ग्लास में पानी है तो पानी कितना आधा है, आधा है तो पानी कैसे बना हुआ है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है तो फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या, मतलब इससे प्रश्नों की झड़ी उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। एक ग्लास सामने रखा हुआ है इससे 10,000 क्वेश्चन बन जाएंगे उसके दिमाग में।
5: तो सर आजकल का जो लर्निंग सिस्टम है उसमें कोई चेंज लाने की जरूरत है,
6: बस यही क्यूरियोसिटी बढ़ाए, क्यूरियोसिटी ही डेवलप है। आजकल सब कुछ प्रैक्टिकल कर देना चाहिए, जो जिसके अंदर क्यूरियोसिटी है उसकी क्यूरियोसिटी पूरी की जानी चाहिए, जिसके अंदर नहीं है उसको केवल सर्टिफिकेट देके अलग कर देना चाहिए।
5: सर ये बात बिल्कुल सही कही कि जिसको जैसी इच्छा है उसे वैसे पढ़ाया जाए, लेकिन क्यूरियोसिटी के लिए सर कोई ऐसी चीज है कि हाँ बीइंग अ टीचर या बीइंग अ फैमिली, मतलब फैमिली की बात सबसे पहला योगदान मुझे लगता है सर फैमिली का होता है।
6: हाँ,
5: तो फैमिली क्या कर सकती है कि जिससे बच्चा क्यूरियस हो या क्यूरियोसिटी जागे हमारे घर के अंदर?
6: देखिए, हर बच्चा जब छोटा होता है, पैदा होता है, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती ही है, वो हर चीज को देख के सुन के समझना चाहता है। हम लोग अवॉइड करने लगते हैं धीरे धीरे, जब बड़ा होने लगता है, 5-6 साल का बच्चा होता है, तो हमारा फोकस ये हो जाता है कि वो स्कूल के डिसिप्लिन में रहे
7: जी।
6: उसको जितना स्कूल में पढ़ाया गया है वही पढ़े, क्योंकि उसको नंबर लाना है, उसको अपने टीचर्स का अप्रिसिएशन सुनना है। हमें इस चीज़ से, हमारा टीचर अप्रिसिएट करे या न करे, हमारा बच्चा कोई चीज़ जानना चाहता है तो हमें उसको
7: बताना
6: चाहिए
7: और उसको एक्सप्लोर करने के हर मौके देने,
6: हमें खुद देना चाहिए। उतना बड़ा नहीं, उसकी जो भी क्यूरियोसिटी उसको हमें ख़त्म करना चाहिए, बताना चाहिए।
7: और ये सब चीज़ें हम सब महसूस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर पेरेंट इसको इग्नोर करता है।
6: नहीं, इग्नोर इसलिए करता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हमारी टीचर क्या कहेंगे। हमें टीचर से कोई लेना देना नहीं होता है, बच्चा हमारा है। एक घटना हम आप
7: जी,
6: मेरी बेटी थी फातिमा में ही पढ़ रही थी
7: जी।
6: पेरेंट टीचर्स मीटिंग हुई, हम भी गए, इनकी फिजिक्स की टीचर ने कहा है ये बहुत अच्छा कर रही है आपकी बेटी। हमने कहा आपके हिसाब से अच्छा कर रही है, हमें तो नहीं अच्छा लग रहा है, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। तो बजाय हम अप्रिसिएशन सुनने के, उस समय हम खुश हो गए थे, बहुत अच्छा है, टीचर ने बताया इतने परसेंट मार्क आए, तो उस दिन उसका ग्रोथ रुक गया होता।
7: ये बहुत बड़ी सर मैसेज आपने दिया हमारे यूथ को, हमारे लिसनर्स को, कि क्यूरियोसिटी ही सबसे बड़ी, मतलब कह सकते हैं कि एक ग्रोथ को जन्म देने वाली है, और अप्रिसिएशन लेने के बाद वहीं पे फुल स्टॉप लगाना भी गलत है।
6: अभी आप हमें एक कक्षा 8 का स्टूडेंट आप हमें दे दें, उससे हम इंटर का क्वेश्चन करवा देंगे आपके सामने बैठ के, जो कुछ पढ़ रहा है वो हम बहुत बेसिक से उसको छोटे छोटे पीसेस में करके। अभी आपसे कह दिए कि 100 किलो गेहूं उठाना नहीं उठा पाएंगे, और हमने कह दिया आधा आधा किलो गेहूँ 212 में उठा दो।
7: सर वाह, बहुत अच्छा मैसेज, और बहुत अच्छे तरीके से सर आपने ज्ञान और क्यूरियोसिटी को रिलेट करके बताया कि नॉलेज लर्न करना मात्र नहीं है, उसको ऑप्ट करके मार्क्स लाना मात्र नहीं है, बस उसको एंडलेस एरियाज तक पहुंचाना है। नॉलेज को कभी भी एक जगह रुकना नहीं चाहिए। और सर मेरा ये मानना है कि किसी भी एज में हम लर्निंग कर सकते हैं, लर्निंग की कोई एज नहीं होती, कभी भी शुरू किया जा सकता है, सीखना सिखाना कभी भी रुकना नहीं चाहिए।
6: कभी भी लर्निंग की कोई एज नहीं होती है, आज भी हम पढ़ते रहते हैं, यहाँ तक कि इंटर और बेसिक के क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करने को मिल जाता है तो हम करते हैं, हमें बड़ा शौक है। हम इंटरनेट से डाउनलोड करके क्वेश्चंस उतारते हैं और आज भी सॉल्व करते हैं, जिसका कोई यूज नहीं है।
7: और सर ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं, शायद वो रिटायर्ड भी हो चुके होंगे और वहाँ बस रिटायरमेंट का अपने एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी पेंशन एंजॉय करने होंगे, लेकिन आपने बताया कि आप अभी भी क्यूरियस हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, लर्निंग के। आपने कहा कि मैं किसी भी बच्चे को भी बता सकता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है सर, थैंक यू सो मच। और कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हैं लास्ट में तो बिल्कुल दे सकते हैं हमारे यूथ के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए, हर एज के लिए। सर अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए।
6: यूथ से यही कहना चाहेंगे कि शॉर्टकट लाइफ में कोई होता नहीं है, उसके लिए कठिन

0: ये हमारी गोंडा की भूमि बहुत ज़्यादा लकी है, बहुत ज़्यादा गर्व से भरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे पर्सनैलिटी लोग हैं जिन्होंने इतना अच्छा अच्छा अनुभव दिया और आज भी वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सर, ये हमारे गोंडा स्टेशन का ये पहला FM बैंड है और यहाँ से हम कुछ ना कुछ अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं, और क्या लगता है सर, ये कैसी पहल है गोंडा शहर की?
1: ये बहुत ही अच्छी पहल है गोंडा के निवासियों के लिए, एक अच्छा सराहनीय कदम है।
0: जी, थैंक यू सर। और इसके लिए कुछ खास कहना चाहेंगे कि ये गोंडा को क्या फैसिलिटी दे रहा है, क्या गोंडा के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं?
1: हाँ, लाभान्वित हो रहे हैं।
0: चलिए, धन्यवाद सर।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
6: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
5: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
6: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
5: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरननाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज, गोंडा।
7: अरे सुना?
8: क्या?
7: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
8: वाओ!
7: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
9: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
10: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
11: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
12: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
11: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
13: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
14: गोंडा शहर की धड़कन।

0: अरे ओ मेरे प्यारे शिष्य सद्गुणी
1: जी गुरुदेव,
0: कबीर का कोई दोहा तो सुनाओ।
1: अभी सुनाता हूँ। कबीर तेरे दुनिया में कैसे कैसे हैं इशू, कोई मांगे कपड़ा लता तो कोई मांगे टिशू टिशू टिशू।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: उसने कहा मेरे साथ तू कब तक चलेगा, उसने कहा मेरे साथ तू कब तक चलेगा, मैंने कहा जब तक ये जमीन आसमां के मिलने का सफ़र चलता रहेगा। फिर मैंने पूछा कि तू मुझसे कब अपने दिल की बात कहेगा, उसने कहा जब तू अपनी चुप्पी को तोड़ के मुझसे हर वो राज कहेगा। इसी कश्मकश में बीत गए कई साल, ना वो कुछ कह पाया और ना कुछ कहने का मौका मिल पाया। सो वेलकम टू द शो डॉक्टर लव, आरजे बीना वाला शो गोंडा मैसेज मसाला, आपके साथ मौजूद है आपकी अपनी आरजे बीना। तो आज भाई हमारे लवर्स पॉइंट में डॉक्टर लव का तो स्वागत ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ एक्सपीरियंस्ड अगर हमारे बीच आ जाते तो हमारी जो लव केमिस्ट्री है उसकी बायोलॉजी थोड़ी अच्छी हो जाती। तो सभी का स्वागत है। अभी जैसे कि बज चुके हैं 6:03:55 और अभी देखिए आरजे बीना आपसे बात कर रही हैं, कुछ ही देर में आपके साथ डॉक्टर लव भी लाइव होंगे और आपके दिलों के जो कहते हैं ना कारवां सुनने के लिए तैयार होंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि बात तब तक रंगीन नहीं होगी जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, तो शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। सो किसी भी रिश्ते की शुरुआत तब होगी अच्छी जब हम शुरुआत करने के लिए रेडी होंगे। गुड इवनिंग नयन, कैसे हैं आप? कमल नयन सॉरी। और क्या हाल है सभी का? और आज की शाम तो बड़ी गर्म गर्म सी है। एंड शहर की बात करूँ तो शहर का माहौल भी अच्छा खासा है, वीकेंड वाली वाइब आ रही है, लग रहा है कि सब बैक टू रेस्ट के लिए जा रहे हैं। सैटरडे मतलब रेस्ट के लिए दरवाज़ा खटखटाने का दिन कि भाई मुझको तो सोने दो सोने दो सोने दो। एंड यस यार, यूरोप की गर्मी सुन के तो हालत ख़राब होगी, वहाँ तो एसी बंद करा रहे हैं, क्या अपने आप ही एसी बंद हो जाएगा? देखो हम लोग जितना खुद को अडॉप्ट करते हैं चीज़ों के अकॉर्डिंग उतना ही ज़्यादा हम फिट एंड हेल्दी रहेंगे, ये बात तो सही है। तो आप लोग को क्या लगता है कि एसीज का यूज़ ओके है या नॉन ओके? देखिए कुछ स्पेसिफिक जगह तो भाई कहेंगे कि एसी चलना ही है, लेकिन हम अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड मतलब कि जब तक रहना चाहिए वहाँ तक रह सकते हैं। ऐसे वहाँ की गवर्नमेंट का भी कहना है कि हाँ भाई जब तक बिना एसी के रह सकते हो रहो। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को स्टेबल भी हम ही को बनाना पड़ेगा। और भाई जगह जगह सुनने में आ रहा है भाई ज्वालामुखी विस्फोट भी हो गया है, तो हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हैं। इसी के साथ साथ भाई मानसिक संतुलन भी लोगों का काफ़ी बिगड़ा हुआ सा लग रहा है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ मैंने कल देखी टीवी में कि एक औरत ने एक आदमी को यार मार के टॉयलेट की फर्श में दफना दिया। मतलब कैसा कैसा दिमाग खुराफाती लेके चलते हैं लोग। मतलब क्यों नहीं ब्रेक लगाना जरूरी समझते हैं? आज तो डॉक्टर लव से बड़े सारे सवाल करने पड़ेंगे और बहुत सारे लड़कों ने तो अपने रिलेशनशिप को लेके पहले भी मुझे डराया था और आज भी डरते हुए सवाल किए। फिलहाल आपके साथ आरजे बीना लाइव है, आप शो सुन रहे हैं सबसे दिलकश अंदाज का शो डॉक्टर लव के साथ गोंडा मसी मसाला आरजे बीना वाला। एंड यस, आज हम मौजूद हैं लवर्स पॉइंट में भी, क्योंकि यहाँ दिल की बातें होंगी, यहाँ प्यार के किस्से होंगे, थोड़ी शरारत होगी, ढेर सारी हंसी होगी और आपके दिल के सवालों का जवाब भी होगा। कहते हैं प्यार की कोई मंजिल नहीं होती, बस एक खूबसूरत सफ़र होता है और उस सफ़र का सबसे पहला पड़ाव जो है वो है लवर्स पॉइंट। पहले तो एक जगह मिलके अपने मतलब प्यार की शुरुआत करेंगे ना। कहीं तो आपने अपने प्यार को पहली बार देखा ही होगा, चाहे मंडप में ही देखा हो लेकिन देखा ज़रूर होगा। एंड आज डॉक्टर लव की क्लिनिक भी खुल गई है तो सबके सवाल लेंगे। एंड मैं तो कहूँगी कि आप लोग भी अपनी जो सवालों की जो लाइन है उसके लिए हेजिटेट ना करें। भाई देखो, मैं तो ये कहूँगी कि आप कॉल करो, नाम बदल के कॉल करो अगर आपको डर लगता है तो, ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं, इश्क ने हमें निकम्मा कर डाला, दिल दिया, मोबाइल रिचार्ज किया, फिर भी बात ना बनी। अब हाल ये है दोस्तों कि दिल खाली है और वॉलेट में उधार भी चढ़ा हुआ है। तो ऐसा इश्क करने से अच्छा है कि नॉर्मल वाला इश्क करिए, ऐसा ना हो कि आपकी दिल की जो जन्नत है वो जहन्नम बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्यारी सी मेडली के साथ इस शाम की शुरुआत और फिर आगे बात करेंगे आपके साथ, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगा। तो एंजॉय करते रहिए इस एनर्जेटिक शाम को और दिल के मामलों को लेके बिल्कुल तैयार रहिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, दिल का मामला है दिलबर। यस, तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा मैशअप जो आपके प्यार की कहानी को और रंगीन बनाएगा। तब तक के लिए इंतजार करते रहिए डॉक्टर लव वाला शो गोंडा मैसी मसाला।

लेकिन आरजे बीना के साथ शाम का रंग जरूर बदलेगा। तो भाई सबके सब जो जहां जहां जैसे जैसे एंजॉय कर रहे हो फटाफट से उठ जाओ और फिर उसके बाद बताओ कि आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि शायद आप और हम दोनों साथ होंगे, लेकिन लेकिन जो बात है वो यही है कि हम सब साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं, जी हाँ हम सब साथ हैं। तो फिलहाल प्यार की बात होती रहेगी, यूं ही बरसात होती रहेगी, और मुझे लगता है कि जब भी हम और आप साथ होंगे यूं ही बातें होती रहेंगी, ठीक है ना। बातों ही बातों में इशारा मिल जाता है और जैसे लगता है कि दिल का जो खिल फूल है वो खिल जाता है, ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ी देर में लाइव होते हैं, बात करते हैं आप लोगों से और मिलके दो मिनट में बताएंगे कि क्या होने वाला है आगे इस टकरार में, प्यार की टकरार जहाँ पे हर किसी के दिल में है एक सवाल।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।
7: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई, एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
8: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी, और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
7: सच में, क्या खास है वहाँ?
8: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
7: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
8: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कम्प्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
7: और फोटोग्राफी वगैरह?
8: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमैटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
7: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
8: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
7: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: फिलहाल मर जाना से ज़्यादा अलग सीन चल रहा है हमारी दुनिया में, यानी कि दुनिया में चल रहा है कि ना मरना है ना मर जाना है, हमें सिर्फ दूसरे को मार जाना है। तो फिलहाल मार जाने की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ ये ज़रूर आ जाती है कि कैसे हम इन सारी उलझनों से बाहर निकले। फिलहाल कहते हैं ना, मोहब्बत की राह में बड़े बड़े इम्तहान होते हैं, और जो हाँ कह दे वो फरिश्ते कहलाते हैं, और जो हर बात पर बोल दिखाते हैं वो सीधे सादे दिल में एक प्रिंसिपल बन के आ जाते हैं। फिलहाल प्रिंसिपल बन के आए या ना आए, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि अब तो वही सोच समझ के हाँ बोले, नहीं तो आप भी फरिश्ते ही बन के कहीं दिखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई दुनिया से चला जाता है तो उसको फरिश्ता ही कहते हैं। फरिश्ता बन के आया था बेचारा। फिलहाल बेचारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और भाई अभी जल्दी ना, मेरे एक लिसनर ने मुझसे बड़ा अच्छा सा सवाल किया, और मतलब बड़ा अजीब सा सवाल था। सवाल तो अच्छा ही था, लेकिन अजीब मुझे इसलिए लगा कि मुझे मतलब उस सामने वाले की समस्या नहीं समझ में आई। समस्या ये थी कि भाई हमारा एक मेल लिसनर है, मेल लिसनर ने ये कहा कि मेरा जो एक मतलब मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो मुझसे हमेशा ये कहती है बात बात पे, मुझसे बात मत करना, और ख़ुद ही बार बार फ़ोन करती है। तो इस सिचुएशन का मैं कैसे सलूशन निकालूँ? मतलब वो बार बार खुद ही कहती है मुझे फ़ोन मत करना, और मैं जो बात नहीं करनी है, और फिर फ़ोन करती है तो मैं नहीं बोलता, तो कहती तुम्हारे मुँह में दही जम गया है क्या। मतलब वो खुद ही सारी चीज़ें बोलती है और ख़ुद ही मुझे फंसा देती है। अब इसके लिए मैं क्या करूं? इसके लिए तो मैंने कहा कि सीधे आप डॉक्टर लव से बात करिए, नहीं तो मेरे पास तो कोई सलूशन है नहीं है सच। तो सलूशन जानने के लिए भाई डॉक्टर लव को बुलाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आरजे बिना आप मतलब हर शनिवार को बड़ी कॉन्फिडेंट लग रहती हैं, क्या है आपके पास ऐसा शनिवार को? तो मैंने भी बता दिया सबको चिल्ला चिल्ला के, भाई सबके पास बंगला होता है, गाड़ी होती है, लेकिन मेरे पास कुछ खास है, क्या है वो आप जानिए।
1: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास?
2: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।

0: सो डॉक्टर लव, आपकी पसंद का गाना सुनते हुए मुझे बड़ा मजा आ रहा है। आपने कहा कि ये गाना आपका पसंदीदा है, तो मैंने सोचा दो लाइन सुनी लिया जाए। कैसे हैं? स्वागत है आपका।
1: जी जी, एकदम शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद।
0: आपका स्वागत है, वेलकम है।
1: जी एकदम बिल्कुल, आपके स्वागत को हम जो है वो शिरोधार करते हैं।
0: अच्छा, लोग वेलकम क्यों बोलते हैं? वेल कुएं में गिरा के तब कम।
1: हाँ,
0: आगे कुआं है, कूद पर हो।
1: अब यही तो देखिए, अंग्रेजी में यही
0: जब कोई वेलकम कहता है तो हमारे मन में यही आता, वेल माने कुआ।
1: हाँ?
0: कम माने मतलब कूद पड़ो, कम आ जाओ,
1: आ जाओ। इसीलिए हमने इंग्लैंड छोड़ा। पूछिए क्यों? वहाँ जब किसी से को प्यार होता है तो कहते हैं आई हैव फॉलन इन लव।
0: अच्छा, फॉलन।
1: अब हम कहें बताओ, मतलब प्यार में गिर रहे हो? प्यार में इंसान उठता है। आई हैव फॉलन इन लव विथ यू। अब हम बहुत, हमको बहुत बुरा लगता है जब कोई ये बोलता है कि आई हैव फॉलन इन लव विथ यू। आया कहना चाहिए आई हैव राइजन इन लव विथ यू। हम आपके साथ प्यार में जो है वो बढ़ रहे हैं। मतलब इसीलिए हमने इंग्लैंड छोड़ कर
0: लोग बातें करते
1: हैं। मतलब क्या बताएं कि मतलब
0: मन कहता है कि
1: अब हाँ बस वही हमारा
0: भी कहता है, हम भी जहन्नम।
1: हाँ, मतलब मन वही हमारा भी कहता है, लेकिन मजबूर है क्योंकि हम पति।
0: फिलहाल दर्द दिलों के कम हो जाते अगर शादी करने के पहले आप हमें बता देते कि आप किसी और से प्यार करते हैं।
1: अच्छा, ये बात है। शादी करे चाहे ना करे इंसान, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि शादी।
0: लेकिन सर, आजकल मतलब जैसे कि हम लोग अक्सर कह देते हैं कि एक दो केस देख के आप लोग लड़कियों पे उंगली उठा रहे हैं, लेकिन केस बढ़ते ही जा रहे हैं।
1: अब उस पर बात नहीं करेंगे, अब हम बात आज करेंगे, हम पतियों को सुझाव देंगे।
0: अच्छा,
1: देखिए
0: पतियों को नहीं, पहले बॉयफ्रेंडों को भी दीजिए। देखिए वो बॉयफ्रेंड, वो जो केतन है, वो चेतन हाँ चेतन बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, यही मुझे फंसाई है। अब तो मामला यहाँ आगे फंस गया। गुड इवनिंग मुकेश जी और कमल जी, लिखते हैं लबेरिया वाले मरीज जल्दी से आओ, पर्चा कटा लो। क्योंकि हमारे कमल जी कटा चुके हैं सबसे पहले आगे। पॉपकॉर्न खिलाए हैं, दो कप पॉपकॉर्न मिला है, दो कप चाय मिली है, तो हम लोग बहुत हैं खुश,
1: बहुत खुश हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन खा लिया
0: जी।
1: अच्छा,
0: जी, जी,
1: जी, जी। ये लोग अगर ऑनलाइन खिलाने के बजाय ऑफलाइन खिलाए तो कैसा रहेगा?
0: तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन ये लोग ऑफलाइन कहाँ खिलाते हैं?
1: वही तो, मतलब ये हम लोगों से मुफ्त में इलाज।
0: कश्मकश वही तो फंसी है गालिब।
1: कश्मकश वही फंसी है गालिब,
0: ना वो बुलाता है ना हम जा पाते हैं,
1: ना वो बुलाता है। अच्छा, ये क्या आपके साथ क्या बात, मतलब क्या शेर मारा है आपने? आज मैंने पहली बार देखा कि किसी शेरनी ने शेर मारा।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई, शेरनी ही शेर को मारेगी, शेर को भला क्यों ही मारेगा,
1: भला क्यों मारेगा। बिल्कुल, हर व्यक्ति जो है वो शेर ही।
0: बताइए, हमारे एक मतलब श्रोता का सवाल था आपसे, शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी प्रेमिका बोलती है कि मतलब हम वो कॉल मत करना, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर वापस से वही कॉल करती है और बात भी करने लगती है। इस बात को क्या समझे, वो बात करना चाहती है नहीं करना चाहती है?
1: इस बात को ये समझा जाए कि मोहब्बत बहुत गहरी हो गई है। जब आपसे कोई ये कहता है कि हमसे बात मत कीजिएगा, तो वो ये कहना चाहता है कि हमसे बात करो।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। आपने मतलब ये तो न्यूटन का तीसरा वाला लॉ लगा,
1: ये चौथा वाला। तीन तो वो देखकर गए थे, चौथा हमने लगाया।
0: अरे वो तीसरे से मॉडिफाई होके चौथा बन गया।
1: हाँ, वो जैसे
0: ऐसे चौथा मत बोलिए, चौथा सुन के मेरे दिमाग में कुछ और ही दिमाग आ जाता है।
1: वो चौथा आपके दिमाग में चौथा सुनकर और हमारे दिमाग में चौथी सुनकर आ जाता है।
0: चौथी क्या होता है?
1: अब हाँ, तो अजत में हमारी शादी हुई।
0: हाँ।
1: पहली शादी हुई।
0: अच्छा, पहली।
1: तो जब पहली शादी हुई तो वो चार दिन
0: हम के ये नहीं जान पाते चौथा मतलब पहली शादी में चौथ क्यों।
1: अब रुकिए, अब समझा रहे हैं। तो हमारी जब शादी हुई, कसम कसम भगवान बता रहे हैं, तो हमको जब विवाह जब हमारा हो गया, तो अब विवाह हो गया, पत्नी आ गई, पहला विवाह था, हम भी बहुत खुश थे। तो चौथे दिन वो लोग पहुंच गए
0: लेने के लिए।
1: अच्छा, हमको बुरा बहुत लगा, हम आपसे कसम से बता रहे हैं। तो हमने पापा से पूछा कि पापा ये क्या है? तो उन्होंने कहा बेटा ये लोग चौथी लेकर आए हैं। तो हमने कहा ये दूसरी तीसरी कहाँ है? हाँ, मतलब हम समझे कि मतलब पहली वाली को तो दे दिए हमको, वो भी कंफ्यूजन में दे दिए। उन्होंने कहा हमारी बिटिया एकदम गऊ है, बाप ने पता चला वो गऊ नहीं है। और इसके पश्चात चौथी लेकर आए हैं, पहली वाली हमको दिए चौथी लेकर आए हैं, तो दूसरी तीसरी वाली कहाँ है?
0: बात तो सही,
1: क्या उस पर हमारा अधिकार नहीं है?
0: तो
1: मतलब पहली हमारी चौथी हमारी तो दूसरी तीसरी किसकी? तो इसलिए हम चौथी के नाम से डर जाते हैं।
0: वो भी आप ही की सर।
1: हाँ वही तो, अब आप हमको बताइए
0: कि आप ही की,
1: आप चौथा के नाम से क्यों डरती हैं? हम तो ने तो अपना कारण बताया कि हम चौथी के इसलिए डरते हैं, आप चौथा से क्यों डरती हैं?
0: ये बात तो सही है,
1: नहीं सोचनी है, विचारनी है।
0: हाँ, वो मतलब शहरों में जैसे अपने यहाँ यूपी बिहार में कोई मरता है रहता है तो क्या होता है, वो होती है तेरही होती है।
1: हाँ?
0: और क्या कहते हैं, भाई होता है, ये सब होता है।
1: हाँ?
0: शहरों में चौथा होता है
1: तो शहरों में जब हम कभी सुने नहीं है।
0: हाँ, मैं मतलब उनके चौथे में गए थे।
1: अच्छा,
0: चौथे दिन मतलब शांति पाठ वाठ रहता है और खिलाते पिलाते हैं। अच्छा, ये शहरी सिस्टम है।
1: अच्छा,
0: हमारे यहाँ 13 दिन होता है तब भाई होता है यूपी बिहार में।
1: अच्छा अच्छा, ये बात है।
0: चौथा
1: तो भगवान न करे भैया किसी चौथम जाने की नौबत पड़े ना, आप जाइएगा तो खाइएगा।
0: हाँ, हम लोग सीधे जाएंगे ब्याह में।
1: अरे आप लोग आवाज जाइएगा भी तो खाइएगा मत, चौथा चौथा में खाना जो है। हाँ भाई, खाए और चौथम खाए, तीसरी में खाए, दूसरी में खाए, पहले में खाए, लेकिन चौथम ना खाए।
0: बात तो
1: क्या मानते हैं आप?
0: बात तो सही है।
1: हाँ, मतलब जो है वो हमारे जो सारे श्रोता है इनमें कोई पति नहीं दिख रहा है आज हमको, सब बॉयफ्रेंड वाले हैं कि कुछ पति वाले भी?
0: अरे ये हमारे ये कमल नयन जिनके समान है, कमल समान नयन है।
1: अच्छा, ये मतलब
0: इनके पास भी कमल नयनी है?
1: अच्छा, कमल नैनी है।
0: मृग नैनी
1: कमल नैनी, वो जैसे वो कल हमने बात की थी।
0: नहीं, मृग नैनी मतलब मृग नैनी को कहते हैं कि बहुत खूबसूरत होती हैं लड़कियां, उनके मृग नयन होते हैं।
1: अरे वो अब उसकी बात मत कीजिए, उसकी भी मृग जैसी आंखें थी जो वो प्रयागराज में आई थी, क्या नाम उसका?
0: अरे उसकी बात ना करिए, वो मृग नैनी नहीं थी, वो बिलार नैनी।
1: बिलार नहीं थी वो, उसकी
0: दर्द से भारी कई रात देखी है। भाई साहब के पास दिक्कत है। देखिए,
1: दिक्कत है।
0: हमने दर्द से भारी कई रात देखी है।
1: हाँ, दर्द से विवाहित नहीं होंगे।
0: हाँ,
1: इसलिए
0: कमिटेड है। अपनी मोहब्बत किसी और के साथ देखी,
1: बस देखिए मामला एकदम।
0: देखिए, सवाल करने का भी ये तरीका है। मैं तो कहूँगी सारे सरोता लोग इसी शायराना अंदाज में अपनी समस्या बताएं, समाधान यहाँ डॉक्टर लक्ष्मी ऐसे ही देंगे कि अपनी मोहब्बत किसी और के साथ देखिए, अब और क्या ही बुरा होगा मेरे साथ।
1: अरे क्या क्या,
0: गौर फरमाइएगा ये सवाल चल रहा है कि अब और क्या ही होगा बुरा मेरे साथ, मैंने अपनी ही मोहब्बत की बारात देखी, इनके साथ कुछ नहीं हो पाएगा।
1: ये
0: बारात निकल गई, कुछ नहीं
1: तो
0: हो पाएगा।
1: गजल गाइए वो जनाजा मेरा उठने से पहले,
0: मेहंदी ना लगाना तुम।
1: कोई ऐसे गजल है?
0: अरे अब ये गाना गाए, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआएं हमारी। किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए,
1: नहीं तो किसी के लिए
0: दुआएं दो भाई, दुआएं दो, हो गया तुम्हारा, तुम्हारी वाली का ब्याह हो गया, अब दूसरे पे टराई करो।
1: नहीं, तुम्हारी वाली का ब्याह हो गया, उसको जाओ उसके ससुराल से छीन के लाओ।
0: नहीं भाई, ये गलत बात है।
1: गलत बात क्यों है?
0: हम अहिंसा के पथ पे चलते हैं।
1: नहीं तो हम भी हैं सत्याग्रह की, हम सामने बैठ जाएंगे जब तक हमारी वाली नहीं दोगे।
0: कमल नयन जी कह रहे मोनालिसा थी।
1: याद
0: है, देखिए भाई इन्हें ये नहीं याद होगा कि कुंभ में कौन कौन नदी मिलती है, लेकिन मोनालिसा याद है।
1: ये हमारे श्रोते कमल नयन जी का
0: अभी पूछ लें कि ये जो प्रयागराज में कुंभ का वो लगता है, प्रयाग में जो संगम होता है, कौन कौन सी नदी का संगम होता है, नहीं बता पाएंगे?
1: नहीं बिल्कुल बता देंगे, वो संगम उनको बहुत बढ़िया
0: पता है।
1: हाँ, गूगल करके बताएंगे।
0: कुलकाय संगम होते हैं भारत में, जरा बताइए। मोनालिसा याद है तो चलिए इनको भी मोनालिसा वाला कोई बढ़िया सा गाना सुना।
1: हाँ, बढ़िया वाला गाना इनको सुनाइए। हाँ, जबरदस्त एकदम। हाँ,
0: कौन सा सुना दिया जाए, बताइए।
1: अब आप गाने के मामले में आपकी पसंद हमको लगता है ज्यादा अच्छी है।
0: अच्छा,
1: हम ठहरे ऑक्सफोर्ड वाले, हमको अंग्रेजी वाले गाने ज्यादा आते हैं।
0: चलिए दगा बाज रे सुना दें, क्योंकि लड़की के नैना ने ही पूरे देश को घुमाया, और दगाबाज लेकिन बोलती बहुत बेकार है भाई, बोल देती है तो जैसे लगता है कि कोई पाथर मार, मतलब उसकी मिमिक्री करने का भी अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत गंदी मिमिक्री करूंगी।
1: अच्छा,
0: बहुत वाहियात बोलती है वो, मतलब उसको बोलने की ट्रेनिंग देनी चाहिए थी अगर आप फिल्म बना रहे हो।
1: कोशिश
0: ना ऐसे, मतलब कैसे बोलती है, सवाल करिए उत्तर देती हूँ मैं उसके अंदर।
1: आपको मेरी आंखों में क्या खास दिखा?
0: तुम्हारी आंखों में मुझको क्या दिखेगा?
1: अच्छा,
0: मतलब इतना हार्ड, इतना हार्श तो मैं नेवर, मैं कितने भी गुस्से में हूँ।
1: लेकिन भाई खूबसूरती को तो थोड़ी सी अदाएं जमती हैं। बनती।
0: हाँ, आवाज बहुत जरूरी है। फिलहाल चलिए सुनते हैं नैनो की दगाबाजी।

0: किसी के दीदार की खुशबू किसी को रहे या ना रहे, लेकिन हमारे पास हमारे कॉलर का जो कॉन्टैक्ट है, नेटवर्क जो है, वो हमारे साथ बना रहता है। तो चलिए देखते हैं पहला कॉल किसका है। हेलो,
1: हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्ते,
0: गुड इवनिंग,
2: गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग के टाइम आपने गुड आफ्टरनून क्यों
1: बोला कि मैं थोड़ा दोपहर में आ जाऊँ। मैं कितनी देर से परेशान हूँ, कॉल कर रही हूँ, कॉल उठ जा रही, कट जा रही, उठ जा रही, कट जा रही, ये क्या इशू है?
2: उठना और कटना प्रकृति का नियम है, जो उठेगा वो कटेगा, जो कटेगा वो उठेगा।
1: अरे नहीं नहीं सर, इतना नहीं है। पर प्रकृति का नेम मत बताइए, अभी तो बहुत दिन
0: हमारे कमल जी ने उत्तर दे डाला है इसी समय, और गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी के नाम से जानी जाती हैं। हाँ। इन्हीं का संगम होता है। क्या बात है, क्या बात है। धर्मेंद्र जी कैसे हमारे साथ, शुभ संध्या। विजय पाल जी ललहुआ खीरी से शुभ संध्या। और फिलहाल हमारे साथ मौजूद है हमारी अनु, लेकिन मैंने सोचा शायद मोनालिसा का फोन आया है।
2: अच्छा, अभी अभी ये कह रही थी कि मोनालिसा की आवाज़ बहुत ख़राब है, और अब कह रही है कि हमको लगा मोनालिसा का फ़ोन है। मतलब आप कहने
1: तो
2: का
0: मतलब आभास, आभास वाइब्रेशन आई
2: नहीं, देखो
0: आवाज़ सुनी तब जान ही गई ना अनु। मैंने पूछा कि अनु बोल रही हो, पूछो पूछिए मतलब, अनु मैंने आपसे पूछा कि आप कौन बोल रही हैं।
1: नहीं मैम, आपने पूछा तो नहीं, पर आप मोनालिसा का इंतजार कर रही थी, मैंने कॉल करके लगता है कहीं गलती कर दी, क्योंकि अभी मैंने कॉल तो मोनालिसा आ जाती।
0: मैं मोनालिसा का इंतजार नहीं कर रही थी, मुझे ऐसा लगा, ऐसा तो नहीं कि वो भी कहीं रेडियो पे सुन रही हो और मुझे फोन करके मेरी ही क्लास लेने वाली हो। आपने मेरी आवाज को क्या कह डाला, कैसे कह डाला?
1: अरे मोनालिसा ना हम लोगों की तरह पागल नहीं है, वो रेडियो पे थोड़ी ना रहेंगी, उन्हें दुनिया ढूंढ रही है, वो हम लोगों की बीच थोड़ी ना आएंगी।
0: नहीं, अभी आजकल कोई नहीं ढूंढ रहा उन्हें।
2: हाँ, मतलब बताइए क्या आप ढूंढ रही हैं?
1: अरे सर, मोनालिसा को तो बहुत सारे ढूंढ रहे हैं। अच्छा, बहुत लोग हैं।
2: अच्छा, हमने सुना है कि मोनालिसा डॉक्टर लव को ढूंढ रही है।
1: हाँ
2: हाँ, वो जानना चाहती है कि उनके लिए सही पति कौन है,
1: तो बता दीजिए सर अभी कौन है उनके लिए सही पति। शायद सुन रही होंगी तो उनको पता चल जाएगा, बिगड़ सवाल किए जानकारी मिल जाएगी।
2: आपने आपको पता होगा मेरी 30 पत्नियां तो
0: आई हैं। अभी हमारे मुकेश का प्लेटफॉर्म खाली दिख रहा
2: है। नहीं नहीं, हम अपनी बात बताए, पहले हमको अपना जुगाड़ करने दीजिए। अनु जी,
1: जी सर, जी सर,
2: वर्ष में कुछ महीने जो है वो 31 दिन के होते हैं, पत्नियां हमारे पास 30 हैं। मतलब जो जो महीना 31 वाला हो
1: तो गड़बड़ हो जाता होगा फिर आपके लिए।
2: हाँ, तो
1: अगर एक दिन बहुत भारी होता होगा फिर आपके लिए,
2: बहुत भारी हो जाता
0: है, ना खाना मिलता है ना पानी मिलती है, मतलब
2: होटल में रहना पड़ता है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि अगर डॉक्टर लव को ढूंढते ढूंढते वो पहुँच गए तो हम एक फ्लैट और बनवा लेंगे।
0: और क्या?
1: हाँ, और वो 31 दिन भी भर जाएगा तो उस दिन भी आपको मतलब परेशान नहीं होना पड़ेगा। हाँ, खाना पानी सब कुछ मिल जाएगा,
2: यही
1: जो 31 के हिस्से में है।
2: बस बस बस यही, आप समझ गए। हाँ
1: हाँ,
0: शुभ संध्या अनिल जी, शुभ संध्या इम्तियाज, कैसे हैं आप? और तो अनु, आपको समस्या क्या है?
1: मैम, मुझको समस्या ये है कि मेरे यहाँ तीन बंदर है।
0: मतलब जिंदा बंदर?
1: अरे, तीन बंदर है, तीन बंदर।
2: गांधी जी वाले? गांधी जी वाले
1: नहीं, गांधी जी वाले नहीं सर, फ्लेचर वाले बंदर है।
2: अच्छा, मतलब आपने गाय भैंस के साथ बंदरों का भी काम शुरू कर दिया।
0: वाह।
1: अरे सर, मैंने बंदरों का काम नहीं शुरू किया है, पहले पूरा क्वेश्चन तो सुनिए। अच्छा, सवाल तो सुनिए।
2: जी जी जी जी।
1: तो सवाल ये है, समस्या ये है कि तीन बंदर है मेरे गांव में, वो भी फ्लेचर वाले बंदर है, और ये तीनों बंदर आए हैं अयोध्या से सपना जी के यहाँ से, जो मेरी फ्रेंड है सपना सिंह, जिसके फॉर्म अयोध्या से, ये तीनों बंदर उनके यहाँ से आए, तो हम क्या करें, कैसे करें, इनको हम भेजना चाहते हैं फिर से उन्हीं के पास।
2: तो ये आपको कैसे पता चला कि वो वहीं से आए हैं?
1: वहीं से आए, सपना जी ने बताया था कि अनु, मैं फ्लेचर वाले बंदर तीन बंदर में आपके यहाँ भेज रही हूँ।
2: कोई आप चिंता करने की बात नहीं, हम अपने यहाँ से तीन बंदरिया भेज रहे हैं, वो तीन बंदर हमारे यहाँ की तीन बंदरिया आपस में परिवार बसा लेंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
1: अरे सर, परेशानी है, मैं इनको वापस भेजना चाहती हूँ, कैसे भेजूं?
0: अरे वो तीन बंदरिया जहाँ जाएंगे अपने साथ वो ले जाएंगे। क्योंकि देखिए, आजकल ये भी जमाना बहुत फैल रहा है कि मतलब लड़कियां अपने मायके के नजदीक रहना पसंद करती हैं। तो उन बंदरियों का मायका जो है वो इधर क्या कहते हैं, आवास विकास के पास है। वो अपने साथ लेके चले
2: बस। और आप जानती हैं जहाँ जहाँ जहाँ पत्नी वहाँ वहाँ पति, तो जहाँ जहाँ चलेगा।
1: मैम आपको इतनी बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आपने मेरी समस्या का हल बहुत अच्छे से किया है। सबको भी थैंक्स, लेकिन आपको
0: बस बस बस देखो बारात लाने की तैयारी करो।
2: हाँ बारात लाने की तैयारी करो, और ये इधर जानकी नगर या इधर सूरज होटल के पास भी बंदरिया उपलब्ध है। और
1: वो तो मैम जानती ना मैम कहाँ रुकना है, किधर आना है, एड्रेस आप बताइए।
0: आवास विकास में मतलब हमारे गोंडा शहर का सबसे ए ग्रेड इलाका आवास विकास माना।
2: हाँ,
1: मतलब ये तो सही है।
2: वहाँ पर
0: और वहाँ के जो बंदर,
2: मतलब
0: बंदर
2: ये समझिए कि हमारे यहाँ की जो एक आरजे उनकी दीदी भी वही रहती है, और कई सारी बंदरिया भी रहती है।
0: और क्या हमारे डॉक्टर लव का पूरा मतलब 30 हाँ। पत्नियां सब उधर ही उधर
2: नहीं, हमारा उधर से कोई कनेक्शन नहीं,
0: पूरा क्षेत्र
2: पूरा क्षेत्र नहीं, नहीं मतलब आप निश्चित
0: ठीक है अनु, आप तैयारी करके रखें और हम फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में।
1: मैम हम लोग तैयारी करते हैं फिर वही मिलते हैं आज विकास में ही।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो तब तक के लिए आप हंसती रहिए और उन लोग को खिलाते पिलाते रहिए। तो भाई अनु की समस्या का समाधान तो हो ही गया है, लेकिन अब बारी है आपसे जानने की कि आपकी समस्या क्या है, यानी कि हमारे लिसनर्स की क्या समस्या है। हमारे लिख रहे हैं कि मत सताओ हमें हम सताए हुए हैं। कंपाउंडर मैडम जी, मत सताओ हमें हम सताए हुए हैं, अकेले रहने का गम उठाए हुए हैं, खिलौना समझ कर ना खेलो हमसे, हम भी उसी खुदा के बनाए हुए हैं। क्या बात है, आपने तो मतलब हम लोग को इमोशनल और क्या बना दिया, इमोशनल को हिंदी में
2: भावुक,
0: भावुक बना दिया, आंसू आ गए। डॉक्टर साहब, चोर अगर चोरी करता है तो वो चोरी के बाद निशान लगाता है, और पत्नी चोरी करती है तो चोरी का निशान क्यों नहीं लगाती है? चोरी का निशान डॉक्टर साहब, चोर और पत्नी का क्या मतलब वास्ता है?
2: हाँ मतलब पति का वास्ता।
0: इम्तियाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं इनकी भावनाओं को समझ नहीं पा रही हूँ।
2: इम्तियाज जी की भावनाओं को तत्काल समझा जाए। इम्तियाज जी आने आकर के अपनी समस्या बता दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि हमारे श्रोतागण स्वयं आए।
2: हाँ।
0: और स्वयं अपनी समस्या हम लोगों से साझा करें।
2: हाँ, और पतियों के लिए खास निर्देश है आज।
0: क्या?
2: जितने भी पति हमको सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने, जब कभी भी आप अपने घर पर जाइए तो मुंह लटका कर जाइए, दुखी होकर जाइए।
0: अब कुछ दिनों के लिए अपनी जुबान थोड़ी
2: नहीं
0: कंट्रोल कर लीजिए, पत्नी क्योंकि आजकल मामला थोड़ा गड़बड़ ही चल रहा है।
2: नहीं नहीं, मतलब पत्नी ये समझेगी कि पति कंट्रोल में है। अब एक दिन हम क्या बताएं कि गाना गुनगुनाते हुए चले गए,
0: कहाँ
2: है अपना दिल तो आवारा। अब गाना गा रहे थे, पत्नी ने दरवाजा खोला, कहे कहा बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। मतलब पत्नियां पतियों को खुश नहीं देख सकती हैं। हमने अपनी पत्नी से 100,000% की बात कही, हमने कहा तुम सैकड़ों में एक हो बीना जी। सुन रही है?
0: सुन रहे हैं।
2: कितनी तारीफ की मैंने उससे कि तुम सैकड़ों में
0: एक हो।
2: उसने कहा वो तो बात ठीक है, लेकिन ये बताओ कि वो बाकी 99 कहाँ हैं।
0: क्या बात है,
2: मतलब तारीफ भी करो तो पति लोग जब भी जाओ घर में तो मुंह लटका के जाओ, पत्नी जान जाएगी कि सब मामला अंडर कंट्रोल है। और अगर कहीं मुस्कुराते गुनगुनाते झूमते हुए गए तो पत्नी जान जाएगी कि दाल में कुछ काला है, समथिंग इज ब्लैक इन द बॉटम। हाँ, तो मतलब पतियों जब कभी भी घर में जाओ तो मुस्कुराते हुए मत जाओ। ये पत्नी लोग जो है वो पति, जैसे आपने कभी वो देखा होगा कोई कॉमेडी का शो वगैरह आता है, देखिए भाई कोई आपको जो है वो, हाँ ये कौन भाई साहब?
3: हेलो
2: जी, हेलो
3: डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: जी नमस्कार,
3: कहिए क्या हाल है?
2: बस बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।
0: लेकिन हाल आपका ठीक नहीं लग रहा है, आपका शुभ
3: नहीं? हमारा ठीक है।
2: आपका तो ठीक है,
3: लेकिन आपका नहीं ठीक है।
0: आपकी आवाज में कुछ गंभीरता मालूम पड़ रही है।
2: हाँ
3: नहीं, कोई गंभीरता नहीं है, बहुत सही है।
2: जिंदगी को कभी गंभीर लेना नहीं चाहिए।
3: हाँ
2: हाँ, गंभीर लोग, गंभीर लोग आईसीयू में पाए जाते हैं। हाँ, क्या जो सीरियस है वो हॉस्पिटल में है भाई?
3: हाँ, जो सीरियस है वो हॉस्पिटल में है, जो नॉर्मल है वो घर पे है।
2: जो नॉर्मल है वो घर पर है, और जो एब नॉर्मल है वो स्टूडियो में है।
3: वो स्टूडियो,
2: हाँ ये भी बात है।
3: लेकिन आपने बताया कि जब घर में आइए तो चुपचाप आइए, मुँह लटका के आइए।
2: हाँ।
3: तो ये बात भाई कुछ हो, हम तो चुपचाप आए तो कहीं आज का बहुरा हुई जो का।
2: एक्चुअली रोज मुस्कुराते हुए जाते थे
3: यहाँ वापस।
2: हाँ, तो रोज आपको मुस्कुराते हुए नहीं जाना है। जब कभी भी जाइए घर में,
3: हाँ,
2: तो मुंह लटका कर, जैसे मन ही मन मुस्कुराइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वाइफ को ये दिखाइए कि मामला बहुत तनाव में है, टेंशन में है, हम स्ट्रेस्ड हैं। तो पत्नी समझती है पति कंट्रोल में है। अब आप किसी दिन गाना गुनगुनाते हुए जरा मस्ती से अपने घर में घुसिए, देखिए 20 सवाल पत्नी करेगी आपकी। यकीन ना हो तो गुनगुना कर गाना मुस्कुरा कर देख लीजिए।
3: अरे नहीं, गाना अगर जाके घर में घुसो तो कहीं गाना की का सुनाओ तो हो जाओ। हाँ, तो
2: ये मतलब उनसे आपकी खुशी देखी नहीं जाती है।
3: हाँ, हाँ, गाना की का सुनाओ तो
2: गाना। और हम तो पहले बार हम जरा रोमांटिक गाना गाए है अपना दिल, तो हमने कहा चलो भाई रोमांटिक गाने से पत्नी को दिक्कत होगी। अगर एक दिन गए तो सैड सॉन्ग गाते हुए गए, वो तेरे प्यार का गम। अब उसने कहा के तुहे याद आवत है के बिछड़ गया। तो मतलब सैड सॉन्ग भी गाते हुए घुसेंगे तो भी दिक्कत है। इसलिए सॉन्ग तो एकदम मत गाइए, गीत मत गाइए, गुनगुनाइए नहीं। मुंह एकदम लटका हुआ हो, चेहरे पर मुस्कुराहट नाम की चीज ना हो, ऐसे प्रवेश कीजिए।
3: अच्छा,
2: ये सुखी और वैवाहिक जीवन के सफल होने का एकमात्र तरीका है। पत्नी आप पर कभी डाउट नहीं करेगी।
3: नहीं, डाउट हो पहले बता रहा हूँ, अगर
2: हाँ
3: दिक्कत हो तो एक दो झंडा बता रहा हूँ साथ हम रखो।
2: हाँ,
3: तो भैया हम दो झंडा रखें तो कहने का यही डॉक्टर साहब बतावते हैं, यही करते हैं घर में अपने का।
2: हाँ, नहीं उनसे कहिए कि ये जो है वो प्रयोग के बाद निष्कर्ष निकाला गया है, थ्योरी है, ऐसे
3: तो फिर हम यो पर यो कहें डॉक्टर साहब एक उनाए दो उनाए तीन पत्नी है, एक आधी नाराज हो जी, एक आधी तो हूँ खुश रही है।
2: हाँ,
3: और जी के एक हो का करे
2: भाई, वो तो भाई जो भाई पत्नी कम से कम दो होनी चाहिए।
3: दो,
2: हाँ, मतलब एक पत्नी के साथ एक महीना पता नहीं कैसे लोग बिता लेते हैं, उनको तो बड़ा आश्चर्य होता है।
3: तो फिर सबसे सुखी डॉक्टर साहब आप ही हैं, आपके तीन पत्नियां हैं ना?
2: हमारी 30 है 30 30।
3: अच्छा, हाँ भूल गए।
2: हम महीने में सिर्फ एक दिन एक पत्नी के लिए, दूसरा दिन दूसरी पत्नी के लिए।
3: बहुत बहुत बधाई हो भाई आपके। हाँ, तीन तो, पत्नियां हैं।
2: अरे तब जब हम ऑक्सफोर्ड में डॉक्टर लव पॉली पढ़ाई कर रहे थे तो 27 तभी हो गई थी।
3: अच्छा।
2: हाँ, जब PhD पूरी हुई तो 3 और हो गई। अभी अभी मोनालिसा वाली बात चल रही थी, अब देखिए भगवान ने चाहा तो। हाँ, हो सकता है एकाध और बढ़ जाए।
3: लड़ाई नहीं डॉक्टर साहब होती अब क्या?
2: अब लड़ाई हो सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम मुंह लटका के घुसते हैं।
3: नहीं, ये लोग कहते हैं जहाँ जहाँ पे बर्तन ज्यादा होते हैं खटकते जरूर हैं, खटकते नहीं आपके यहाँ?
2: है तो हमारे यहाँ किसी को पता नहीं, हमने 30 फ्लोर बनवा रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 30 पर 30 रहती हैं। तो एक दूसरे को पता ही नहीं कि उनका हस्बैंड कौन है, वो सब जानती हैं कि वो मेरे ही हैं। जुगाड़ से काम किया है।
3: वही तो बता रहे हैं, यहाँ हमारे पड़ोस में एक के दो है, उसमें रोज लड़ाई होती है। आप क्या तीसरे वाला बताओ, आप रोक रहे हैं
2: भाई। आप अलग अलग दोनों को फ्लैट दे दीजिए, ऊपर और नीचे, फिर लिफ्ट लगवा दीजिए। आपने लिफ्ट लगवा रखी है, एक एक अगले दिन लिफ्ट नंबर 2, फिर 3 दबाते हैं, फिर 4 दबाते हैं, ऐसे 30 लिफ्ट तक चले जाते हैं, फिर वही प्रक्रिया शुरू। तो लोग जान ही नहीं पाती हैं। और लिफ्ट,
3: ये बात सही है।
2: हाँ, लिफ्ट कहाँ लगी है खाली हम जानते हैं।
3: हाँ,
2: तुम जुगाड़, अरे तुम PhD किया है।
3: नहीं तो जुगाड़ बताने के लिए आपने क्लिनिक ही खोली है।
2: हाँ, मतलब कोई भी तकलीफ हो।
3: हाँ,
2: मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुरंत आप
3: डॉक्टर साहब एक बात और बताएं, मास्क डॉक्टर लोग क्यों लगाए रहते हैं?
2: बहुत खूबसूरत होते हैं ताकि उनको नजर न लग जाए, इसलिए
3: नहीं, वो हमें मुंह छिपाने के लिए या खूबसूरती के लिए?
2: नहीं, खूबसूरती छिपाने के लिए, क्योंकि कई सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो खूबसूरत होते हैं, डॉक्टर जनरली खूबसूरत होते ही हैं, तो उनको नजर लग जाती है तो मास्क लगाए रहते हैं।
3: अच्छा, इसीलिए मास्क कहिए चाहे उनके मुंह को छुपाए हुए कहिए, कुछ कहिए,
2: कुछ कहिए, लेकिन मतलब उनको कोई देख के भी पता है, पेशेंट ने देखा, डॉक्टर को देखा, डॉक्टर से उसको लव हो गया कि भाई खूबसूरत डॉक्टर साहब है, मतलब ऑपरेशन के बजाय जो है कुछ और होने लगा, तो वो स्थिति से बचने के लिए मास्क लगाया जाता है।
3: अच्छा।
2: हाँ, मास्क जो है वो प्रिकॉशन इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि डॉक्टर बहुत खूबसूरत होते हैं सर्जरी वाले।
3: जी सर, ये तो सही बात है,
2: एकदम 100% सही बात।
3: चलो भाई डॉक्टर साहब, ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा
2: बहुत,
3: लगा।
2: बहुत बहुत बढ़िया, हमको विजयपाल जी लगा आपसे बात करके। आप सपत्नी स्वस्थ रहें, ये हमारी कामना है।
3: धन्यवाद
2: बहुत,
3: आपको भी
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
3: नमस्ते डॉक्टर साहब।
2: जी नमस्ते। जी हाँ, तो ये भाई विजयपाल जो है यादव जी की समस्या का समाधान हो गया, मतलब ये पत्नी के सामने उन्होंने कसम खा ली है कि कभी मुस्कुराते हुए और गाना गाते हुए नहीं जाएंगे, तो ये बात कंफर्म हो चुकी है। अब हमारी कंपाउंडर साहिबा, ये भाई उनको तो इतना प्यास लगती है, पानी पीने की हद होती है, ये आपको इतनी मतलब इतना खून पिया आपने, अभी आपकी प्यास नहीं बुझी?
0: अरे डॉक्टर लोग, हमारे पास एक लाइव मरीज आ गई तो उन्हीं को लेने चले गए थे।
2: मैं मतलब हमको आपको देख कर लगता है कि हमको फिल्म में आ जाते, याद आ जाती है कि
0: अरे हमारी एक लाइव मरीज आई है जिनकी बहुत ही जेन्युइन समस्या, अभी तक आपने सब लड़कों की समस्या सुनी, लेकिन अभी आपने हमारी एक महिला, मतलब कहते हैं ना कि अभी तक दुनिया ये कह रही है कि औरतें मार रही हैं, लेकिन औरतों की भी समस्या सुननी चाहिए, तो विजय जी की समस्या का समाधान हुआ कि नहीं?
2: बिल्कुल बिल्कुल, निपटा दिया हमने।
0: तो चलिए विजय जी के लिए गाना भी सुन लेते हैं। वैसे उनको समस्या क्या थी? वैसे उन्हें समस्या क्या थी?
2: भाई मैंने कहा कि घर में जब जाओ तो मुंह लटका के जाओ, तो पत्नी समझेगी कि आप कंट्रोल में हैं। अगर आप मुंह लटका के नहीं कहीं हंसते हंसते खुशते पहुंच गए तो 20 सवाल होते हैं, क्या बात है आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, कोई बात है क्या?
0: तो मतलब वो मुस्कुरा के जाएं तो भी दिक्कत ना जाए?
2: नहीं, मुस्कुरा कर किसी भी पति को अब घर में पत्नी के सामने प्रवेश नहीं करना चाहिए, एकदम डॉक्टर लव की तरीके संविधान में।
0: मुझे लग रहा है कि हमारे साथ जो हमारी क्या कहते हैं महिला मोर्चा को जो लेके आई है रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके पति के साथ भी मतलब ऐसा ही कुछ है, उनको लग रहा है आप ही ने ज्ञान दिया है कि कभी घर में घुसो तो मुस्कुराते हुए मत घुसो। फिलहाल अभी उनसे थोड़ी देर में बात करेंगे, तब तक के लिए हम एक गाना सुन लेते हैं, मोस्ट ट्रेंडिंग गाना, आप भी सुन के बताइए आपको कैसा लगा। और अगर आपने जल्दी ही मस्कारा खरीदा है तो समझ लीजिए कि आपकी पत्नी इसी गाने से इंस्पायर्ड है।

0: सो वापस से आपके साथ मौजूद है आपकी अपनी आरजेबिना आपके वाले शो गुंडा मैसे मसाला आरजेबिना वाला में। एंड यस, आप सबके साथ अपनी अपनी समस्या लेकर आने वाले लोगों की कमी नहीं, लेकिन आज हमारे साथ हमारी एक लाइव लिसनर हैं जो कि हमारी बहुत ही करीबी लिसनर है, बहुत रेगुलर सुनती हैं। हाँ, ऑन एयर या चैट रूम में बहुत कम आती हैं, लेकिन आज हमारे साथ सीधे स्टूडियो से लाइव है। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है, आपको फिलहाल यहाँ कैसा लग रहा है स्टूडियो में आके?
1: पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाने का, मुझे आने का मौका दिया। मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड समझ रही हूँ कि मैं ज्ञानस्थली के इस बहुत ही लोकप्रिय शो में आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत अपनेपन जैसी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर में ही हूँ और अपनी कोई भी समस्या खुलकर कह सकती हूँ, अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए बड़े खुलकर अपने डॉक्टर साहब से बात कर सकती हूँ।
2: जी हाँ, खुल कर।
1: मेरा नाम है सरोज तिवारी और मैं फातिमा स्कूल में इंग्लिश TGT की अध्यापिका हूँ।
0: और तो आपको आपके अध्यापन कार्य में कोई समस्या आ रही है या फिर आपको अपने पारिवारिक जीवन में कोई समस्या आ रही है?
1: नहीं, हमारा अध्यापन कार्य तो बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें हमें कोई समस्या नहीं है। वही पारिवारिक समस्या ही है, पतियों से, जैसे आजकल तो ट्रेंडिंग है कि मोस्टली पति ही पीड़ित है, लेकिन मेरे हिसाब से तो पत्नियाँ कम पीड़ित नहीं हैं, क्योंकि जो पुरुष होते हैं इनका जो व्यवहार है, इनका जो स्वभाव है, तो बरसात के मतलब मौसम की तरह बदलता रहता है। जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है, उनका मूड कब कैसा होगा मैं आज तक समझ ही नहीं पाई हूँ कि एक पुरुष का कितने टाइप का व्यवहार हो सकता है, कितने प्रकार के हस्बैंड्स हो सकते हैं, मैं आज तक किसी को समझ ही नहीं पाई हूँ। और मैं अपने डॉक्टर जी से जानना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे आप समझाइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हस्बैंड्स कि कितने प्रकार की पुरुष का व्यवहार और स्वभाव हो सकता है।
0: तो देखिए, आप सबसे पहले तो सरोज मैम, आपको मैं बता दूं, हमारे डॉक्टर लव खुद ही 30 बार पति बन चुके हैं, इनकी 30 पत्नियां हैं, तो जिसकी 30 पत्नियां होंगी तो वो अपने मतलब प्रकार बता ही सकता है आसानी से, क्योंकि हर पत्नी के साथ इनका प्रकार अलग होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह
0: रही हैं। तो डॉक्टर लव, अब इस बड़ी समस्या पे आप प्रकाश डालिए और हम आराम से सुनते हैं।
2: हम प्रकाश जरूर डालेंगे, लेकिन टॉर्च आप ऑफ कर दीजिए।
0: हम टॉर्च ऑफ कर रहे हैं, बिल्कुल, हम बत्तियां भी बुझा दे रहे हैं, आप बस प्रकाश करिए।
2: आप प्रकाश, हम अपनी वाणी से प्रकाश करेंगे। देखिए भाई, इस दुनिया में 3 प्रकार के पति होते हैं। पहला होता है बहादुर पति, जो इस धरती पर केवल एक है, वो मैं हूं। दूसरा होता है पत्नी का गुलाम पति। अब उसे आप कैसे पहचानेंगी? जो गुलाम पति होता है वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे चलता है, तो उसे हम कहते हैं गुलाम पति। और जो तीसरे पति की कैटेगरी होती है वो होता है महागुलाम पति। वो होता है जो अपनी पत्नी के पीछे चलता है और बच्चे को गोद में लिए रहता है। तो ये 3 ही प्रकार के पति आपको मिलेंगे। बहादुर, जो इस धरती पर केवल एक है, वो मैं हूँ। गुलाम, जो अपनी पत्नी के पीछे चले। महागुलाम, जो अपनी पत्नी के पीछे चले और बच्चे को भी अपने साथ में लेकर चले। मैं कभी अपनी पत्नी के पीछे नहीं चलता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी पत्नी के कम से कम 500 कदम पीछे चलूँ। अच्छा, अब कोशिश ये रहती है कि किसी महिला के आगे चलूँ, ताकि समाज में तो लोग जानते नहीं कि हमारी पत्नी कौन है, तो अगर कोई पूछेगा तो देखेगा तो कहेगा देखो पति आगे आगे, पत्नी पीछे पीछे, तो मैं बहादुर पति कहलाता हूँ। तो ये मतलब ये पतियों की कैटेगरी है।
0: वाह वाह, क्या बात है। अब तो हमारी सरोज जी बताएंगी उनको कितना अच्छा लगा ये कैटेगराइजेशन, और ये मतलब विच्छेद कर पाए कि नहीं अभी तक?
1: आपका विच्छेद हमें बहुत पसंद आया, लेकिन मैं आपसे ये भी, अब मुझे मैं संतुष्ट हूँ आपके इस डेफिनेशन से ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हस्बैंड्स। मैं अनुरोध चाहूँगी कि जरा उस इनके बदलते हुए व्यवहार पे प्रकाश डालिए कि इनका पतियों का व्यवहार मौसम की तरह बदलता क्यों रहता है।
2: अच्छा, देखिए पति, ये बताइए, आप अगर, आपको अगर रोज भिंडी की सब्जी दी जाए, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने, डॉक्टर ने उनको कहा बथुआ का साग खिलाओ, पत्नी ने सुबह नाश्ते में बथुआ, दोपहर को खाने में बथुआ, शाम के खाने में बथुआ। अब भैया ये करीब 20 दिन तक चला बथुआ बथुआ बथुआ बथुआ, वो पति झल्ला कर कहा कि अब क्या राड निकल आएगी शरीर में, तब मानोगी कि आयरन की कमी पूरी हो गई है। अब मतलब एक ही सब्जी खाते खाते आपका मन उबता है कि नहीं? उबता है। तो अगर पति का एक जैसा व्यवहार रहेगा तो आप उससे उबने लगेंगी। इसलिए पति चाहते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे उबे ना, इसलिए अपने व्यवहार को बदलते रहते हैं। सिंपल सा कारण है, आपको खुश रखने के लिए पति ये सारा काम करते हैं। ताकि कल पत्नी ने हमको मुस्कुराते देखा था, आज थोड़ा सा उदास देख रही है, कल थोड़ा सा रोमांटिक देखेगी, परसों अब ये समझिए मैंने अपनी
0: कभी कभी तनतनाते देखा।
2: हाँ, तनतनाते देखा। मैंने अपनी पत्नी को इतनी, अपने बेटे को इतनी अच्छी शिक्षा दी कि पूरी विश्व में ऐसी शिक्षा किसी पिता ने अपने बेटे को नहीं दी होगी।
0: कौन सी शिक्षा?
2: अब बता रहे हैं। लेकिन मेरी पत्नी ने उस शिक्षा को ऐसे लिया जैसा कोई, जितना बुरा कोई ले भी नहीं सकता। हाँ, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपने बेटे को राम बनाना चाहता हूँ, राम जैसा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसा बने मेरा बेटा। मेरी पत्नी ने मेरी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारी चालाकी खूब समझती हूँ, बेटे को राम बनाकर तुम दशरथ बनना चाहते हो और 3 शादी करना चाहते हो। अब बताइए, मतलब अच्छी बात भी पत्नियां बुरे ढंग से ही ले रही हैं, अब कैसे कहा जाए।
0: हमने अपने बात तो नहीं है, जैसे पति तो मार सीधे ही हैं।
2: नहीं, जैसे हमने अपनी पत्नी से कह दिया तुम सैकड़ों में हो तो करिए, बताइए एक तो हमें, लेकिन बाकी 99 कहाँ है। अब तो तारीफ भी करो तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क। पति बेचारा करे तो क्या करे।
0: हाँ, पति बेचारा ही रहेगा।
2: पति बेचारा, पत्नी जो पति पर रहे तनी वही पत्नी, नाम से क्लियर है भाई। आप नाम देखिए, पत्नी
0: क्या बात,
2: जो पति पर रहे तनी वही पत्नी, हस्बैंड जो बैंड की तरह पिटता रहे फिर भी हंसता रहे वही हस्बैंड।
0: अच्छा, तो हस्बैंड की बारी, आप हस्बैंड आ गए, वाइफ पहले बोलते।
2: हाँ, तो वाइफ का
0: पति बोलिए, पति पति में क्या बता देंगे आप?
2: पति में, हाँ भाई बता दें, पहले आप देखिए कोई पीड़ित है, कौन पीड़ित है भाई? हेलो,
3: हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार,
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: शिमला से राकेश जी, पहले तो आपकी आवाज़ सुन के भी हमें थोड़ी ठंडक फील हुई। हाँ। क्योंकि यहाँ गोंडा शहर में इतनी गर्मी है कि क्या बताएं, लेकिन आपने शिमला से कॉल करके बहुत ठंडी हवा भेजी, मजा आ गया। तो सवाल बताइए राकेश जी, क्या है आपका?
3: मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हमारे हिमाचल में कई बार माइनस में चल जाता तापमान और ठंड ज्यादा हो जाती है, तो आप ऐसे क्या करना चाहिए?
2: अगर आपके यहाँ तापमान कम है तो आप घर में कुछ जरूर रखिए, फ्रीजर रखिए, और जैसे ही तापमान जो है
0: माइनस
2: में जाए आप तुरंत फ्रीजर को ऑन करके उसके अंदर बैठ जाइए सब परिवार।
0: देखिए, आपने ये तो सुना होगा ना, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, वैसे ही ठंडी ठंडी को काटता है,
2: ठंडी ठंडक को।
0: बड़ा वाला फ्रीजर रखिए,
2: बड़ा वाला फ्रीजर रखिए, और अपनी पत्नी के साथ जैसे तापमान माइनस में,
0: सब परिवार उसी फ्रीजर में बैठ जाइए, अन्न जल त्याग के, तब देखिए ठंडी कैसे कटेगी।
2: एकदम ठंडी आपको लगेगी नहीं, आपको गर्मी कैसे लगेगा कि आपने 2-2, 3-3 कंबल ओढ़ रखा है।
0: आप ट्राई करके बताइए, जरूर अनुभव जरूर शेयर करिएगा एक्सपीरियंस।
2: एकदम आप निश्चिंत हैं
0: तो राकेश जी, बढ़िया है। मौसम अभी माइनस में तो नहीं चल रहा है?
3: नहीं, अभी तो माइनस में चल रहा है, जनवरी में चलेगा।
0: अभी आप एसी वैसी चला के
2: अभी आप वो बड़ा वाला फ्रीजर तक खरीद लीजिए, और पैसा कम हो तो हम कंपाउंडर साहब से कह दें कि आपकी QR पर भेज दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे डॉक्टर लव के पास बहुत पर्चे कटते हैं दिन भर में।
3: हमारे पास पैसे तो कमी तो नहीं है, हमारे पास पैसे भी ठीक ठाक है, हमारे सेब भी ठीक ठाक है।
0: सेब तो यहाँ एक क्रेट सेब ही भिजवा दीजिए राकेश जी, मतलब हम आपके बहुत थैंकफुल होंगे। हमारे यहाँ तो ये पूरे कारपेट लगे वाले सेब आते हैं, पूरे मतलब प्रिजर्वेटिव वाले। मैं तो कहूँगी एक क्रेट सेब चाहिए।
2: भैया सेब मत भिजवाइएगा, बिल्कुल मत भिजवाइएगा, गोजम तो बिल्कुल मत भिजवाइएगा, क्योंकि कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब एक सेब खाओ डॉक्टर दूर रहो। आप भिजवा देंगे,
0: आपको कौन कह रहा खाने के लिए? मैं खाऊंगी
2: तो मैं खाऊंगी, आप अपने लिए तो खाइए।
0: अब आप 2-4 लोगों को भेज दीजिएगा, गोंडा का पता मैं आपको दे
3: दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भेज देंगे, जो हमारे डॉक्टर साहब है इनको तो सेब जो है सेहत के लिए ठीक नहीं है, इनको तो सिर्फ आम ठीक खाने के लिए।
2: नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि लोग बीमार हों, क्योंकि लोग अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमको कौन पूछेगा।
0: डॉक्टर भी सोचता है ना
3: तो ऐसा डॉक्टर, अगर डॉक्टर साहब को अगर ठीक होना है तो हिमाचल में आइए, तो यहाँ अनेक से डॉक्टर हो, हर चीज का इलाज कर लेते हैं।
2: अरे भाई,
3: चाहे कोई भी हो,
2: वो मोहब्बत वाला इलाज हम ही कर पाएंगे। अकेले दुनिया में है डॉक्टर वाली डिग्री हमारे ही पास।
3: यहाँ हिमाचल में अच्छे से इलाज कर लेते, बड़ी यहाँ खातेदारी भी अच्छी कर लेते।
0: अच्छा ये बताइए, हिमाचल का कोई ऐसा डॉक्टर है जिसने टूटी हुई शादी को जोड़ दिया हो, जिसकी गर्लफ्रेंड भाग गई उसे बुलवा दिया हो?
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे भी टूटी हुई शादी को कहीं जोड़ दिया है
0: अरे
3: और जो भागी तो वो वापिस आ जाएगी।
0: अरे वाह, मतलब मुझे लगता है कि डॉक्टर लव से इंस्पायर होकर बहुत लोगों ने इस बिजनेस को
2: नहीं, और हमने बताए, हमने दम वाले को जोड़ दिया है, हम मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। हिमाचल में है कोई?
0: थैंक यू सो मच राकेश जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगी कि आप फिर से कॉल करें और इंतजार रहेगा। तो चलिए हम लोग भी अब मौसम पे गाना सुन लेते हैं, क्योंकि अभी हमारी लिसनर जो हमारे साथ बैठी हुई है सरोज, वैसे सरोज जी कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: कोई भी,
0: कोई भी, चलिए हम मन को कुछ।
2: तुम जिंदगी बन गए हो तुम, अरे क्या बात है,
1: रोमांटिक सॉन्ग बजाइए।
0: रोमांटिक सॉन्ग, लेटेस्ट और ओल्ड?
2: लेटेस्ट और ओल्ड बताइए,
0: बताइए बताइए, आप अपनी पसंद के सिंगर का नाम बताइए, हम गाना यहाँ प्ले कर रहे हैं आपके लिए। चलिए, आपकी पसंद हमारी पसंद, एंड हम बजाना चाहेंगे रोमांटिक सॉन्ग ऑफ अरिजीत सिंह, और मुझे लगता है कि अरिजीत सिंह शायद ही कोई होगा जिसका फेवरेट ना हो। ठीक है, तो आपके लिए प्ले है गाना तुम ही हो। तो चलिए हम एंजॉय करते हैं अरिजीत की आवाज़ का ये प्यारा सा गाना। अगर किसी की भी लाइफ में प्यार की कमी, अगर उसने ये गाना किसी को भी डेडिकेट कर दिया, उसकी ज़िंदगी में प्यार की बाहर तो ज़रूरी आ जाएगी, क्योंकि डॉक्टर लोग अक्सर पर्चे में लिख के इस गाने को सुनने की भी सलाह देते हैं लोगों को।

0: डॉक्टर लव, गाना तो बहुत अच्छा सुन लिया हम लोगों ने, तो आपको क्या लगता है गाना गाने गाना सुनने से भी लोगों की जिंदगी में प्यार भर सकता है?
1: मतलब जो मेरी जो को चैन दे प्यार दे खुशी बन
0: गए, तो मैं तो चाहती हूँ सबकी जिंदगी में ऐसी खुशियाँ बरसती रहे, सबके जिंदगी में प्यार की बाढ़ आती रहे, और
1: बस बाढ़ बहा कर ले
0: बस बस। और भाई जिस किसी को एक शादी करनी है एक करे, दो करनी है दो करे, तीन करनी है तीन करे, चार करनी है चार करे, लेकिन
1: लेकिन
0: नीले ड्रम में पहले। तो भाई इसी के साथ आरजे बीना और डॉक्टर लव को दे इजाजत, अगले शनिवार फिर लाइव होंगे आपके बहुत सारे सवालों के साथ, बहुत सारी बातों के साथ, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते ये जिंदगी का सफर यूं ही चलता रहेगा। वी विल बी बैक विद इन अ वीक,
1: बिल्कुल।
0: तो इसी के साथ हमें दे इजाजत, फिर मिलेंगे, चलते चलते हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, प्यार की दुनिया में प्यार बरसाते रहिए। आप सुन रहे थे शो गुंडा मैज मसाला, आरजे बीना वाला डॉक्टर लव स्पेशल, आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.67 पर।
1: ये है गुंडा शहर की
0: धड़कन, स्टे ट्यून्ड।

और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सो जिन लोगों ने अपनी परमाइशी की गठरी को नहीं खोली, किसका है ये तुमको इंतजार में होना। सो आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी के बीच में आ चुकी है। फटाफट से अपनी परमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, एकदम अपनी तरह गाना टटोल लीजिए। उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ना दोस्तों। सो की हाल चाल है? हाँ बल्ले बल्ले, आज तो है सैटरडे नाइट स्पेशल वाला शो और जहाँ होता है

सैटरडे नाइट स्पेशल का तड़का वही सिर्फ और सिर्फ हम पाते हैं पंगड़ा पंगड़ा मींस वी आर लाइक अ प्रो एंड वी आर लाइक अ रॉक स्टार ऑन सैटरडे नाइट स्पेशल इवनिंग इन फरमाइशी महफिल की। सही कहा ना मैंने? सो एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मुस्तफा जी सऊदी से, उदालक शर्मा मन कपूर से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, नवीन राजपूत जी एमपी से, अनिल वर्मा सैदापुर से, मालवीय नगर से राजेश सिंह जी, अनुष्का श्रावस्ती से, इम्तियाज अहमद गोंडा से, मुकेश यादव गोंडा से, शशि सिंह जी गोंडा से और सुरेश कुमार जी चौक से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, राजू सलमानी आवास विकास गोंडा से, नागेश्वर धाकर द ग्रेट सीन साहब धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से और गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, एवरीवन वेलकम इन योर शो। सो एंजॉय कर लेते हैं फटाफट से हमारी आज की पहली फरमाइश। सो दोस्तों पहली फरमाइश हमारे पास में है मुस्तफा की और मुस्तफा जी को सऊदी से सुनना है नगमा अपना पसंदीदा। तो मुस्तफा जी का शनिवार का जज्बातों वाला पिटारा है, मुझे दुनिया वालों ने शराबी समझा है, कुछ यही लिरिक्स है। तो एंजॉय करते हैं मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये सुपर डुपर ही टोलिस गुड़ वाला नगमा हमारे मुस्तफा जी की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर।

एंजॉय किया है मुस्तफा जी की फरमाइश पर ये वाला नगमा। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है उदालक शर्मा की मनकापुर से, और उदालक शर्मा को मनकापुर से सुनना है जानते हैं कौन सा वाला गाना। चुम लू हो तेरे दिल की यही ख्वाहिश है, कुमार सानोल का याग्निक की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर हिट हाउ रोमांटिक वाला नगमा हम एंजॉय करेंगे उदालक शर्मा की फरमाइश पर जो कि है मन कपूर से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो सुरेंद्र यादव फ्रॉम गौरा चौकी।

चुमलू होठ तेरे दिल की यही ख्वाहिश है। हमने एंजॉय किया ये सुपर डुपर हिट नगमा उदालक शर्मा की फरमाइश पर। सो नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले मुकेश यादव का गोंडा से कहना है कि मुझे तो शाम का इंतजार रहता है जो तेरी यादों को साथ लेकर आती है। दिन की भाग दौड़ में तुझे भूल भी जाऊं मगर हर शाम फिर तुझसे मुलाकात करी जाती है। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग आरजे सिंपल। हाँ वेरी वेरी गुड इवनिंग मुकेश यादव फ्रॉम गोंडा, स्टे ट्यून। और अगली फरमाइश हमारे पास में है नवीन राजपूत जी की एमपी से। हमारे ग्रेट ऑपरेटर नवीन राजपूत को ग्राम बासला तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर मध्य प्रदेश से सुनना है गाना मैं हूँ प्रेम का रोगी। सो एंजॉय करते हैं सुरेश जी की आवाज में ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा सुपर डुपर हिट मूवी का हमारे सुपर डुपर हिट ग्रेट ऑपरेटर की फरमाइश पर। स्टे ट्यून।

टाइम रोंगी, कोई दवा तो कराओ और जाओ जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ। हमने एंजॉय किया है ये सुपर डुपर हिट नगमा मध्य प्रदेश से नवीन राजपूत की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश है जग्गू दादा की और जुगल किशोर वर्मा जी को, मीन्स जग्गू दादा को एमपी से सुनना है गाना अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट नगमा साजन का घर मूवी का सिर्फ और सिर्फ जग्गू दादा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

खुशियों का पल आएगा और ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हमने एंजॉय किया है ये नगमा जग्गू दादा की फरमाइश पर। बढ़ते अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले नवीन राजपूत जी का एमपी से कहना है, छोटे से दिल में गम बहुत है, छोटे से दिल में गम बहुत है, जिंदगी में मिले जख्म बहुत है, मार ही डालती कब की ये दुनिया हमें, कम बखत दोस्तों की दुआओं में दम बहुत है। वाह वाह, बहुत खूब नवीन राजपूत जी। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना, शनिवार राती हमें नींद नहीं आती। सो एंजॉय करते हैं मैं तेरा हीरो का ये सुपर डुपर हिट सैटरडे नाइट स्पेशल प्लेलिस्ट का तड़कता भड़कता सन्नगमा, हमारी तड़कती भड़कती सी अनुष्का की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आई लव दिस सॉन्ग, डोंट नो व्हाई, बिकॉज ऑफ सैटरडे नाइट स्पेशल। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: I cannot sleep.
1: I cannot sleep. So very very good evening and welcome in your show नागेश्वर धाकड़ और हमने enjoy की है ये फरमाइश अनुष्का की और अनुष्का है श्रावस्ती से एंड दोस्तों बढ़ेंगे हमारी हमारी हमारी आज के अगले फरमाइश की तरफ लेकिन उसके पहले हमारी आशु मिश्रा जी का एक बहुत ही प्यारा सा एक मैसेज आया है बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज आया है आशु मिश्रा जी का लखनऊ से कहना है कि दिल को छू लेने वाली बात जो नसीब में है वो चलकर आएगा जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा एक सच ये भी है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते लेकिन एक मीठा सच ये भी है कि अगर ये जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुला कर ना जाते ओह माय गॉड लव यू सो मच आशु जी आपने बहुत ही प्यारी बात कही है और मैं इसको दोबारा ज़रूर पढ़ना चाहूँगी एकदम गहराई से समझने के लिए फिलहाल चलते हैं इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गाना सांसों की माला पे सुमिरू मैं पी का नाम सो इंजॉय करते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में ये सदाबहार नगमा सदाबहार दर्द भरा नगमा सिर्फ और सिर्फ अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर स्टे ट्यून्ड

हमने इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा नगमा। अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर ये दर्द भरा नगमा था कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मुकेश यादव की गोंडा से। मुकेश यादव को गोंडा से सुनना है गाना रईस मूवी का। सो कुर्सी की पेटी को खोल लीजिए, तुरंत से जल्दी से चैट बॉक्स के डांस फ्लोर पे आ जाइए, क्योंकि जो नहीं आएगा वो बाद में बहुत पछताएगा, क्योंकि ये कमाल का गाना ऐसा है एकदम आगरे की पेठी की तरह कि जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो ऑब्वियसली पछताता है और जरूर जरूर पछताता है। जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश है हमारे पास में मुकेश यादव की गोंडा से, उनको सुनना है रईस मूवी का गाना लैला मैं लैला और ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट सैटरडे नाइट स्पेशल वाला तड़कता भड़कता सा हाई एनर्जी हाई बीट वाला फरमाइश हमारे हाई एनर्जी हाई बीट वाले एकदम ओवरलोड है मुकेश यादव की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। इस गाने की म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, ऐसा ना हर एक पार्टी में ऐसा लगता है जान डाल देती है, ऐसा लगता है कि जो तार होता है ना, जो वायर यूजलेस होता है ना, उसमें भी ऐसे बिजली की करंट ऐसे दौड़ा देती है। क्यों सही का ना मैं I love this song personally.

मैं लैला, सी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत संगमर रईस मूवी का, हमारे दिल के रईस मुकेश यादव जी की फरमाइश पर जो की है गुंडा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की, और मालवीय नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है गाना चुप हो आज कहो क्या बात है। सो एंजॉय करते हैं किशोर कुमार जी की आवाज में ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारे राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

चुप हो आज, कहो क्या है बात, जरा बोलो ना। हमने एंजॉय किया मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर ये वाला नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, और आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना जिसके सपने हमें रोज आते रहे। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला सुपर डुपर हिट नगमा आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

0: बजाते रहे, हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आशु जी की फरमाइश पे जो की है लखनऊ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, और धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है बॉडीगार्ड मूवी का नगमा। जी हाँ, हम इंजॉय करेंगे सलमान खान करीना कपूर का सुपर डुपर डुपर हिट नगमा आई लव यू। सो एंजॉय करते हैं, दिल का ये क्या राज है जाने क्या कर गई, जैसे अंधेरों में तुम रोशनी भर गए। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर हिट नगमा। बहुत दिनों बाद में ये गाना मेरे कानों में गुनगुनाने जा रहा है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग भी एक्साइटेड हैं कि नहीं मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से आपका स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल। Stay tuned.
1: Of course, गया.

हमने एंजॉय किया है ये नगमा धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर, जो कि है आवाज विकास कोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, एंजॉय करेंगे आज की अगली फरमाइश, और इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, टन टन टन टन, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन लेकिन लेकिन सिर्फ सिर्फ और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आरजो सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यही बने रहेगा अपने रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। एंजॉय करते हैं शशि सिंह जी की फरमाइश, उनको सुनना है गाना भरे बाजार में। सो एंजॉय करते हैं फिर से ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, लेकिन इस बार आसपास मूवी का है ये गाना, और हम सबको भी रहना है आसपास। सो आसपास रहिएगा और सीधे 9 बजे पेट पूजा करके फिर से अपने फरमाइशी की महफिल में सम्मिलित होइएगा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: मुनी शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी।

0: बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका

की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांगद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

back in your super maishi video are just simple who is not so simple let's rock the floor and let's rock the saturday night kaise hain aap sab aur ek bar phir se farmaishi ki mehfil mein lagane hazaron lakhon aur bahut sare chand jazbaton ke chand khushiyon ke chand sukoon ke chand aur shanti ke chand kyun sahi gana maine aur entertainment ka tadka to koi nahi lagane ko bhulega kyun sahi gana so enjoy karte hain agli farmaish hamare paas mein hai dosto surendra yadav ji ki gora chauki se aur ek bar phir se स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके अपनी आर्ज सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल सो अगली फरमाइश है सुरेंद्र जी की उनको सुनना है गाना आज तुझसे जो कहना है कहने दे और तेरा दिल मेरे पास रहने दे उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में 90s का ये सदाबहार सुनहरा सा मखमली गाना हम एंजॉय करेंगे सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र जी की फरमाइश पर ऐसे ही अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आज सिंपल नॉट से सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन

really. आज तुझसे जो कहना है कहने दे, और तेरा दिल मेरे पास रहने दे, और मेरा भी दिल तेरे पास रहने दे. हमने इंजॉय किया ये वाव लवली हाउ रोमांटिक वाला नगमा. बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ. अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से, और हमारे दिल पे एक आशिक मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है गाना. आंखों में नींदे ना दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार. सोलका याग्निक की और कुमार सानू की बहुत ही खूबसूरत सी एक बार फिर से हाउ रोमांटिक सी आवाज में इंजॉय करते हैं ये वाला नगमा. स्टे ट्यून्ड एवरीवन.

आंखों में नींद देना दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। ये नगमा हमने इंजॉय किया है मोहम्मद मुशीफ जी की फरमाइश पर जो की है बाराबंकी से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल शास्त्री की गोरखपुर से। उनको सुनना है गाना पर्दा है पर्दा। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा मोहम्मद रफी जी की आवाज में। अमर अकबर एंथोनी का गाना सिर्फ और सिर्फ अनिल शास्त्री की फरमाइश पर।

पर्दा है पर्दा, हमने एंजॉय किया है ये नगमा बढ़ते अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है सबीहा की गोंडा से, सबीहा को गोंडा से सुनना है गाना तेरे नैना बढ़े कातिल मार ही डालेंगे। सो जय हो का ये गाना एंजॉय करते हैं सबीहा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

हमने एंजॉय किया है कातिलाना अदाओं से, इस दिल को मार डालेंगे। जय हो मूवी का गाना सिर्फ और सिर्फ सबीहा की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू हमारे अगले वाले और आखिरी वाले फरमाइश की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में अगली और आखिरी फरमाइश है नागेश्वर धाकड़ की। नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना ओए होए ये कुड़ियां शहर दियां। सो एंजॉय करते हैं तड़कता भड़कता सा हाई एनर्जी हाई बीट वाला गाना, एकदम सैटरडे नाइट स्पेशल प्लेलिस्ट से मैच होने वाला गाना सिर्फ और सिर्फ नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। और इसी के साथ में लेना चाहूंगी अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना है बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर बालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का बहुत सारा सवाल बनता है। क्यों? क्योंकि मैं कल नहीं आऊँगी, कल है संडे, फंडे मींस हॉलीडे, हॉलीडे मींस कल आप अपना फरमाइशी प्रोग्राम और फरमाइशी महफिल एंजॉय करेंगे आपके आरजे मनु के साथ में। सो बहुत सारा मिस करिएगा, एक दो गाने भी डेडिकेट कर दीजिएगा और थोड़ा सा जिक्र भी कर दीजिएगा, मिस यू भी लिख दीजिएगा कि आरजे मनु को लगे कि हाँ आप लोग सच में मुझे मिस कर रहे हैं। फिलहाल अभी चलती हूँ, मिलते हैं मंडे को। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, हैव अ सो मच सो मच सो मच सो मच फन, हैव सो मच लव, हैव सो मच ब्लेसिंग्स। बाय बाय, हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वाले ऊपर ध्यान देना कभी नहीं भूलने का है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए और आप सभी की तरफ से बेइंतहा प्यार। स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 88-40-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब?
5: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बहार ए गज़ल। शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। जी हाँ, और आज ये आपकी और हमारी, हम दोनों की महफिल होती है और गज़लें हमारी होती हैं और गीत आपके होते हैं। तो जी छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, बहुत ही प्यारी सी गज़ल हमने आपको सुनाई। और इसके पश्चात भाई, अब हम चूंकि आपको गज़लें सुनवा चुके हैं तो उम्मीद करते हैं कि आज एक अच्छा काम करते हैं। आज हमारे प्रश्न होते हैं और आपके उत्तर होते हैं, लेकिन आज प्रश्नों को थोड़ा सा कठिन कम कर देते हैं। जी हाँ, आसान कर देते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। जी हाँ, लता जी की आवाज़ में कोई भी गीत जो आप सुनना चाहें वो हमारे साथ। तो भाई दादा जुड़ चुके हैं, चरण स्पर्श और शुभ संध्या दादा आपको। अनिल शास्त्री जी कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और श्री तेज नारायण शुक्ल जी भाई, शुभ संध्या मनुष्य जी, शुभकामनाएं। गुलाम अली की गज़ल, हम तेरे शहर में आए हैं। बिल्कुल साहब, आज तो हमारी गज़लें होंगी और आपके गीत होंगे, तो बिल्कुल इस गीत को आपके साथ लेकर आएंगे। और लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि भाई कुछ गज़लें हमने आपको सुना दी हैं और अब हम ये चाहेंगे कि आप कुछ गीत सुना दें। तो अगर आप कुछ गीत सुना देते हैं तो फिर कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। गज़लें हमारी, गीत आपके। तो भाई हमारी गज़लें हो चुकी हैं और अब आपके गीत होने बाकी हैं। तो देखते हैं भाई सबसे पहला काल हमको कौन करता है और हमारी गज़ल के बाद ये गीत कौन हमको सुनाने वाला है। और जब तक आपका फ़ोन नहीं आता, जी आपका दूरभाष क्रमांक वही है 63 93 31 64 29। और हम चाहेंगे कि आप कोई भी गीत गाएं लता जी का, और तब तक हम आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल। जी हाँ, तीव्र इच्छा है, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। जी हाँ, गुलाम अली की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी गज़ल है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी पसंद है। आइए भाई आपका आदेश है तो इस गज़ल को सुनाते हैं और इस गज़ल के बाद उम्मीद करेंगे कि आपसे कुछ गीत सुने। जी हाँ, तो गज़लें हमारी, गीत आपके, सैटरडे स्पेशल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत इस्तकबाल। और इस गज़ल के बाद हम आपसे उम्मीद करेंगे किसी गीत की जो लता जी ने गाया हो।

0: जी हाँ, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, और देखें दोस्तों तो हम सभी लोग तो मुसाफिर की तरह ही जिंदगी में हैं। वास्तव में यहाँ पर रफ़ी जी ने भी कभी गाया था, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। मुसाफिर है साहब और यादें छोड़ जाएंगे, कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है। तो अच्छा होता है कि वे लोग जो अपने पग चिन्ह बना जाते हैं। जी हाँ, आपका आभार ने स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कायनात जी हमारे साथ हैं, चाह शर्मा जी को मैं देख रहा हूँ, और खुद को जो तनहा महसूस करूँ तो कहाँ जाऊँ, यहाँ हर शख्स इम्तिहाई अकेला है, यहाँ बाजार में खुशियाँ भी नहीं मिलती, फिर भी लोग कहते हैं कि दुनिया एक मेला है। क्या क्या पंक्तियाँ हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी फिर। लेकिन फिलहाल हमारे पास देखिए भाई फोन आ चुका है, और देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: जी,
1: नमस्ते सर।
0: जी नमस्ते बिटिया।
1: सर तन्वी,
0: अरे मतलब बड़ी मुद्दतों के बाद आपसे बातचीत हो रही है
1: जी।
0: ये मतलब कुछ नाराजगी थी क्या हमसे आपकी?
1: नहीं सर, वो गांव पे थे ना तो बहुत।
0: अच्छा ये था, गांव में तो बहुत दूर थे, और आप जानती हैं कि हमने आपको कितने बुधवार और

0: शनिवार को मिस किया। और बिटिया आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसी हैं आप?
1: अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है।
0: आगे चलकर क्या करना है, कुछ सोचा?
1: आगे चलके अभी कुछ सोचा नहीं है सर।
0: फिर भी कुछ तो सोचा होगा कि हाँ ये करेंगे
1: आगे चलके। वही क्या
0: मतलब
1: पॉलिटिक्स वगैरह या फिर
0: जी
1: पॉलिटिक्स
0: में जाना है आपको?
1: हाँ, एमएलए वगैरह ये सब।
0: अच्छा, वही मतलब आप मतलब ये अच्छी बात है कि एक अच्छी शख्सियत हमारी ऐसी भी है, बच्चे ऐसे भी हैं जो अब चाहते हैं कि हाँ राजनीति की दुनिया में कदम रखकर उसको साफ किया जाए।
1: हाँ, या फिर ऐसे सिंगिंग के दुनिया है, फिर मैं सिंगिंग करती।
0: क्या बात है, तो हम चाहते हैं आप दोनों में कामयाब हो जैसे हमारे विजय थलपति जी हो गए। मतलब ऐसे एग्जाम्पल सब होने लगे हैं कि लोग वो और ये दोनों कर सकते हैं। चलिए, तो लता जी के गीत का प्रश्न पूछा है हमने, तो क्या उसका उत्तर देंगे आप?
1: जी सर।
0: हाँ, क्या बात है, तो लता जी का कौन सा गीत गाने वाली हैं आप?
1: सर, आपकी नजरों ने
0: समझा। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या शानदार गीत चुना है आपने। तो शुरुआत करें?
1: जी सर।
0: जी बिल्कुल करें।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, शानदार क्लैपिंग आपके लिए भाई। मैं यहाँ से कर रहा हूँ, क्या मतलब जहाँ पर उतारना है और कहाँ पर स्वर को उठाना है, क्या कितनी खूबसूरती से आपने ये गीत गाया। और वास्तव में आप एक बहुत अच्छी सिंगर हैं, अभी से आपको सिंगर बनने की आवश्यकता नहीं, आप हैं।
0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है, और दोनों चीज़ें भगवान करे आप इन दोनों चीज़ों में कामयाब रहें।
0: थैंक यू सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या मतलब आप जिनकी बेटी हैं उनके पिताजी भी होंगे?
2: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: अरे सर जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बस बस बढ़िया सर, आप कैसे हैं?
1: आशीर्वाद आशीर्वाद भाई। दुनिया के सबसे गहरे सागर अर्थात प्रशांत जी हमसे बात कर रहे हैं इस समय। और भाई देखिए, आपकी बेटी को श्री तेज नारायण शुक्ल जी ने कहा है शानदार आशीर्वाद। देखिए एक आशीर्वाद होता है और एक शानदार आशीर्वाद होता है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। और प्रवल मिश्रा जी भाई, हाँ शुभ संध्या आपको भी जी। तो साहब लता जी का एक गीत तो बेटी ने गा दिया, तो क्या पिताजी क्या करेंगे आप?
2: चलिए हम भी लता जी का ही गाना गा देते हैं।
1: ओहो, क्या बात।
2: उनसे मिली नजर, उनसे मिली

ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर कि मेरे होश उड़ गए उनसे मिली नजर कि मेरे

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है। मतलब लिखने की आपने पूरा नहीं सुना है। अच्छा, तो फिर उदित नारायण का कोई भी एक स्टेंजा हम आपसे जरूर सुनेंगे।
0: उदित नारायण का सुना नहीं सर।
1: हाँ, कोई भी स्टेंजा।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है, जानते हैं प्रशांत जी इस गीत में खास क्या है?
0: क्या है सर?
1: जब से ये गीत आया है तब से यही रिंगटोन मेरी मोबाइल का रिंगटोन बना हुआ है।
0: क्या बात,
1: मतलब
0: है,
1: तब से
0: बात?
1: मैंने इस रिंगटोन को नहीं बदला, वही वायलन पास आओ गले से लगा लो। क्या मतलब, आज आपने मेरी बहुत पसंदीदा पंक्ति गाई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार तरीके से गाई, उसी तरीके से गाई हम मोहब्बतें की दुनिया में पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको।
0: प्रणाम प्रणाम
1: जी। हाँ भाई, तो प्रशांत जी क्या बात है भाई, जितनी तारीफ की जाए कम है। और बिटिया क्या बात है, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के इस काबिल मुझे, ये भी बहुत अच्छा सा गीत। और जितने जो सुनाया वो तो खैर शानदार लाजवाब। जी हमारे साथ मुकेश यादव जी भी जुड़ चुके हैं गोंडा से। गुड इवनिंग सर जी, आई लव यू, आई टू लव यू मुकेश जी। कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। जी हाँ, तो अब चलिए भाई, लता जी हो चुकी हैं, तो लता जी की आवाज़ के बाद अब एक उस आवाज़ की ओर चलते हैं जिस आवाज़ ने मिलकर एक सदी बनाई है। अगर लता जी रही हैं तो लता जी के साथ जिन्होंने सबसे अच्छे डुएट सॉन्ग गाए उनमें कायनाती गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम सबसे पहले आता है। कभी मोहम्मद अजीज़ ने गा भी दिया कि नफन का तुझसा तेरे बाद आया मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। और उन्होंने भी कह दिया था कि मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा, दिल का सूना सास तराना ढूंढेगा। जी हाँ, तो उन्होंने कह दिया था कि लोग मेरे गीतों को चुरा कर ढालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बसेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा। और जो बात उन्होंने कही वो आज भी सच है। मतलब उस गीत की कही गई एक एक पंक्ति, एक एक शब्द अपने आप में सत्यता का प्रमाण है। तो जी हाँ, हमने लता जी को सुन लिया, अब हम चलेंगे रफ़ी जी की किसी भी गीत की ओर जो गीत आपको पसंद हो। और जी हाँ, तो मिसाल देखते हैं भाई आपके शहर में। जी हाँ बिल्कुल, हमारे शहर में आप हैं, बल्कि हम ये कहेंगे कि हम आपके शहर में हैं। तो अब देखते हैं भाई रफ़ी जी का कौन सा गीत हमको कौन सुनाता है, और बड़ी बेसब्री के साथ हम प्रतीक्षा करेंगे कि भाई लता जी हो चुकी हैं और लता जी के दो गीत हो गए और दोनों अपने आप में अनूठे। अब कोई ऐसा गीत हो जाए जो मोहम्मद रफ़ी साहब का हो, और एक से एक बढ़कर गीत उन्होंने गाए, तो अब आपके ऊपर है कि रफ़ी साहब के किस गीत का चुनाव आप करते हैं। जब तक आप चुनाव कीजिए, फिलहाल हम आपको गज़ल सुनाते हैं, कार्यक्रम गज़लें हमारी गीत आपके। अब गज़ल हमारी हो चुकी है साहब, गीत आपके भी हो चुके हैं, अब फिर हमारी एक प्यारी सी गज़ल और इसके बाद फिर आपका एक प्यारा सा गीत। जी हाँ, तो आइए आनंद उठाते हैं मखमली आवाज़ के मालिक। मैंने मखमली आवाज़ जब कभी भी मैंने कही तो सिर्फ एक शख्स के लिए कही, और वो है जगजीत सिंह साहब। आइए उनकी आवाज़ में सुनते हैं एक प्यारी सी गज़ल, और गज़ल के बाद आते हैं आपके गीत की तरफ। गज़लें हमारी और गीत आपके। लेकिन इसके पहले भाई फ़ोन आ चुका है, देखते हैं कौन हमारे साथ। ये फ़ोन आया और स्वतः डिस्कनेक्ट हो गया, हम समझ नहीं पाए भाई, जिसने भी मिलाया हो वो पुनः मिला लें।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार भैया।
0: जी नमस्कार।
1: अरे कोई कोच चल रखा है क्या?
0: दर्द कुमार जी
1: कोई कोच
0: जी?
1: हाँ कोई कोच चल रखा है?
0: रफी जी का कोई भी गीत।
1: अच्छा रफी का कोई भी गीत
0: जी?
1: अच्छा अच्छा तो सुना दे या कोई, मतलब आप कुछ गजल सुनाने जा रहे हैं?
0: नहीं नहीं नहीं आप सुना दीजिए। अरे अब आप आ चुके हैं तो मतलब आपको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे हुजूर। मतलब दर्द कुमार की आवाज में इतना दर्द है कि बाकी क्या बताएं।

कदम है वो तेरी राह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी तो मेरी निगाहों में है, तो जो हम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं तू मेरी निगाह में है, छुपा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, छुपा

है वो कोट जिनकी चाह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह

0: छुपा हुआ था मुझे में के तू कहीं ये दोस्त, छुपा हुआ था मुझे में के तू कहीं ये दोस्त, मेरी हंसी में नहीं है तो मेरी आह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तो मेरी निगाह
1: क्या बात है कि तू मेरी हंसी में नहीं है तू मेरी आह में है। क्या शानदार गीत है, समझने वालों के लिए मौत है साहब।
0: हाँ
1: है कि नहीं
0: दोस्त? हाँ दोस्त,
1: हंसी में नहीं है तू मेरी आह में।
0: हाँ
1: और मतलब मुझको लगता है हाँ कि जो आह में आपका दोस्त होता है वही आपका सच्चा दोस्त होता है।
0: हाँ दोस्त,
1: और मुझे लगता है कि ये शायद दोस्ती फिल्म का गीत भी है।
0: जी हाँ
1: ना।
0: हाँ दोस्ती 1964 मोहम्मद रफी गीतकार अनुवर्ती से।
1: अच्छा इसमें जो दो एक्टर्स होते हैं उनको हमने फिर बाद में कभी नहीं देखा, क्या उनके नाम बता सकते हैं आप हमको?
0: के नाम
1: जो इसमें जो दो दोस्त रहते हैं उनके नाम?
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ, उनका नाम
0: एक का सुशील कुमार नाम लेता है।
1: हाँ?
0: और शायद बताना पड़ेगा,
1: मतलब
0: एक तो कंफर्म है सुशील।
1: मतलब ये लोग फिर दोबारा बहुत कम दिखाई पड़े इसलिए मैंने कहा
0: नहीं आए फिर दोबारा किसी से। ये तो अमर हो गए ना, जो अमर हो जाता है वो कहाँ आता है? तो
1: क्या बात कह रही है,
0: जो अमर हो जाता है वो दोबारा कहाँ आता है? तो
1: क्या बात कही, मतलब एक ही फिल्म बनाई और उसके गीत आज तक लोगों की जुबान पर है।
0: दोस्ती के नाम पर हजारों फिल्म बनी, दोस्ती के नाम पर हजारों फिल्म बनी, मगर दोस्ती क्या होती है दोस्त, दोस्ती जैसी आज तक दोस्ती फिल्म नहीं बनी।
1: क्या बात कही आपने, लाख टके की बात कही आपने। अरे नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं।
0: कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे माँ हो बहन हो बेटी हो, भगवान साक्षात ईश्वर खुद क्यों ना हो, ये उनसे भी आगे हो सकते हैं। मेरा तो जो भी कदम तेरी राह में है आप कहीं भी लाइन जोड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो कहीं भी जोड़ी जा सकती है।
0: हाँ तो ये सही है, जो उम्र हो जाते हैं दोबारा कहाँ आते हैं। अगली जगह ये कम है कि दोस्त के नाम पर न जाने कितनी पिक्चर बनी तो आपने देखा भी। हाँ। मगर ये चीज कहाँ दोस्त, कोई देख रील नहीं बना सकता है, पूरी फिल्म तो बहुत दूर की बात।
1: सही कहा।
0: हाँ तो ऊपर वाला जो चीज बनाता है वो दुनिया में याद रखने के लिए कोई चीज बनाता है कि आप उसे याद कैसे करेंगे?
1: जी जी, जी।
0: अगर आज कोई दोबारा बन जाता है तो उसे कौन याद करता है इसको? है
1: कौन याद करता है? क्या बात कही आपने भाई, बहुत अच्छी बात कही सुरेश जी, और वास्तव में आपने दिल जीत लिया।
0: ठीक है।
1: अच्छा प्रणाम। अच्छा प्रणाम, आप आशीर्वाद दिया करें हमें। ये हमारे दर्द कुमार और सुरेश कुमार जी, जिनकी आवाज़ में भाई अपना एक अलग दर्द है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। जी हाँ, और देखते हैं इसी के साथ हमारे पास फिर कोई फोन आ चुका है, और देखते हैं आपकी बात कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो हेलो, ये क्या हो रहा है भाई, फोन स्वतः आया और फिर स्वतः ही कट गया, ऐसा क्यों हो रहा है भाई?

यह भाई जिन्होंने भी फ़ोन किया है उनसे गुजारिश है कि एक बार पुनः फ़ोन कर लें, क्योंकि फ़ोन आ करके फ़ोन स्वतः कट रहा है, या हम इधर से ही मिला लेते हैं, देखते हैं भाई कौन है हमारे साथ।

0: मेरा तो जो भी कदम है वो तेजा में है। जी हाँ, देखते हैं अब कौन है मेरे साथ। हेलो।
1: हेलो।
0: अरे चरण स्पर्श
1: सर जी, कैसे हैं?
0: नहीं, आपसे थोड़े से नाराज हैं।
1: थोड़े नाराज हैं?
0: हाँ।
1: चलिए, आपका हक है, थोड़ा नाराज रहिए।
0: जा मतलब
1: उसकी भरपाई आज हम कर देंगे।
0: हाँ, मतलब बुधवार को आपकी अनुपस्थिति बहुत खली और हमने आपको एक छोटा सा कार्य दिया था, मतलब कितना उत्सुक था मैं।
1: अगले बुधवार को मैं आपको डेफिनेटली पूरा कर दूंगी। मैं बुधवार को थोड़ा व्यस्त थी। अच्छा। और मैं बहुत लेट में ज्वाइन भी कर पाई थी, मैं सुन भी नहीं पाई थी सबका।
0: अच्छा, ये बात है। नहीं, हम जोक्स अपार्ट, हम आपसे कभी नाराज नहीं।
1: नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता भाई, वो उस कार्य पे मुझे जो आपने दिया है उस पर मैं अमल करूंगी बिल्कुल।
0: हाँ भाई, कुछ कभी कभी छोटे
1: आज मैं सोची कि दादा अभी नहीं जुड़े हैं तो लाओ मैं ही
0: जी
1: रफी साहब का एक गाना गा दूं।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है
1: जी।
0: तो बिल्कुल दादा की भरपाई पूरी की जाए।
1: ठीक है
0: सर,
1: सुनाते हैं
0: जी।
1: खुदा भी आसमां से जब

सबको किसने बनाया, सोचता होगा खुदा भी आसमां से।

बनोगी जिसके तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है, कभी वो जल रहा होगा कभी खुश हो रहा होगा।

सोचता होगा खुदा भी आसमां से।

0: खुदा भी आसमां से। धन्यवाद सर।
1: अरे आपने कभी मिडास का नाम सुना है? मिडास, MIDAS।
0: जी जी,
1: मतलब इटली का एक राजा था वो, और उसने एक वरदान मांगा था कि हम जिस चीज को छू ले वो सोना हो जाए।
0: जी।
1: तो कुछ एक मिडास टच था, मतलब लोग कहते थे महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में मिडास टच है, उन्होंने भारतवर्ष को विश्व कप भी जिताया, तो कहा जाता था कि उनके हाथ में मिडास टच है, मतलब जिस चीज को छू लेते हैं वो सोने का हो जाता है। उसी प्रकार से आपके गले में मिडास टच है, आप जो भी छू लेती हैं वो शानदार हो जाता है, मतलब वो चाहे बहुत बेस हो या बहुत झूम कर हो या बहुत पतली आवाज हो, कैसे कर लेती हैं इतना प्यारा?
0: बस कोशिश करते हैं सर, ऐसा मेरे गुरुदेव जो है, मेरे दादा, सब उनका आशीर्वाद है।
1: हाँ नहीं, मतलब मैंने आपको तेरा गम मेरा गम भी देखा, तो वहाँ पर हरिहरन की आवाज इतनी बेस, और आप उस पर किशोर की आवाज आपने सुनाई तो वही बेस, तो मतलब मैं सोचता हूँ कि आखिर में ऐसा क्या गले में ऐसा कुछ खास है कि जिस गीत को आप छू लेती हैं वो शानदार हो जाता है।
0: एक्चुअली सर क्या है कि बस गाने में इतनी पकड़ हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं रखती हूँ, लेकिन इतनी पकड़ हो कि किसका मतलब कहाँ से स्टैंड, उसका स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है। स्केल पे अगर काम आदमी करे तो हर स्केल का गाना आदमी गा सकता है।
1: तो मतलब ये हुनर आप थोड़ा बहुत हमको भी सिखा दीजिए कि ताकि थोड़ा बहुत हम भी गा सकें।
0: जी अब तो दिखाई रहे सर, कोशिश तो कर ही रहे हैं अपने तरफ से।
1: जी जी हाँ, हम आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कुछ ऐसा ही गाएं।
0: बिल्कुल सर, कभी चलिए साथ में गाया जाएगा ऐसा।
1: जी,
0: ऐसी
1: जी,
0: क्या बात।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बड़ी इच्छा है कि फिल्म जंजीर का एक गीत है, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, और
0: अच्छा अच्छा
1: अगर आप कभी फुर्सत में हो तो बिल्कुल इसको डुएट कर किया जाता है।
0: ठीक ठीक सर, बिल्कुल डेफिनेटली।
1: मतलब गीत सुना होगा आपने?
0: जी हाँ जी, बिल्कुल सुना है।
1: दीवाने हैं दीवानों, बहुत मतलब लता मंगेशकर और
0: हमारे खुला आसमां
1: ऐसे कुछ है। हमारे खुला आसमां
0: जी,
1: और यही वो गीत था जिसमें रफी जी जब गीत गाकर उतरे तो लता जी ने कहा कि एक बार इस गीत को और गा दिया जाए।
0: इसमें हारमोनियम का काम बहुत बढ़िया हुआ है सर।
1: नहीं,
0: बहुत तो खूबसूरत हारमोनियम बजाया।
1: मतलब रफी जी को लगा क्या गलत हो गया, क्योंकि लता जी ने कहा, तो फिर दोबारा फिर गाया रफी जी ने, तो लता जी ने फिर रफी जी से रिक्वेस्ट किया कि भैया एक बार और गा दीजिए। तो फिर उन्होंने पूछ लिया उनसे कि आखिर में बात क्या है, तो उनको सीन समझाया गया, तो असलियत में गुलशन बावरा के ऊपर जो बाहर हारमोनियम है उसके ऊपर फिल्माया जाना था, और रफ़ी साहब जी को लगता था कि अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माया जाना है, तो वो अमिताभ बच्चन को लेकर चल रहे थे, और लता जी को पता था कि ये गाना हारमोनियम वाले के ऊपर है, तो तीसरी बार में रफी ने कहा हो ये ब्लंडर हो गई हमसे, कि हम समझे थे कि ये अमिताभ जी के ऊपर है, और रफी जी जो गीत गाते थे उसी के अंदाज में गाते थे। तो तीसरी बार इस गाने को जब ये हुआ था कि नहीं, गुलशन बावरा जो बाहर है हारमोनियम बजा रहे हैं वो गा रहे हैं, तब रफी जी ने इसको बहुत मस्त होकर गाया था। बहुत ही प्यारा गीत लगता है मुझको ये।
0: जी, कभी बहुत अच्छी जानकारी सर, हम लोग तो पता ही नहीं है, फिलहाल जानकारी आपने बहुत अच्छी दी।
1: हाँ, मतलब इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब उन्होंने तीन बार गाया था तो हम लोग भी मिलकर कभी गाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, अगली बार गाते हैं।
1: हाँ, मतलब
0: बिल्कुल अगली बार गाते हैं।
1: हम थोड़ी सी तैयारी कर लें अपनी, क्योंकि आप तो तैयार रहती हैं 24/7, हमको तैयारी करनी पड़ेगी।
0: ठीक है ठीक है सर, ओके
1: ठीक है। अच्छा अच्छा, स्पर्श
0: धन्यवाद
1: जी, चरण स्पर्श, हाँ आशीर्वाद दिया कीजिए। जी हाँ, तो भाई ये कहते महक आ चुके हैं भाई। सर जी जी भाई शुभ संध्या आपको भी, और अब मुझको लगता है कि घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, और अगर आसमान वाले ने चाहा तो कल रविवार है, आपके पास भी समय है। रेडियो गणेश 89.6 FM, पता है सरस्वती देवी नारी ज्ञान स्थली, निकट दुखनाथ मंदिर, स्टेशन रोड गोंडा। आप जानते हैं और ये फ़ोन नंबर भी आपके पास है, और आप चाहें तो 12:30 बजे आ जाएं और 1 से 2 हम आपको लाइव भी देखें और आप हमें लाइव सुनें। जी हाँ, तो उम्मीद रहेगी कि आप सभी श्रोताओं से कि आप में से कुछ लोगों का साथ हमको कल ओपन माइक में मिलेगा। जी हाँ, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। लेकिन फिलहाल फ़ोन आ चुका है भाई, और उनका आ चुका है जो जिनको हम भूल नहीं सकते। हेलो,
2: हेलो, हाँ नमस्कार।
1: अरे दादा, चरण स्पर्श, मैं सोच रहा था कि 10:29 हो गया है, अब क्या करूँ।
2: एक्चुअल क्या था ना, मैं सो गया तो अभी उठा हूँ तो शिल्पी के गाना सुना, बहुत बढ़िया गया।
1: हाँ, अरे तो आज उन्होंने कहा कि यार दादा आए नहीं रफी के लिए, तो हमने कहा हम आ जाए। हमने कहा ये होता है भाई बहन के रिश्ते का प्यार, मतलब रक्षा बंधन।
2: रक्षा गाना सुना हूँ, चल रहा था गाना
1: जी।
2: एक्चुअली आज थोड़ा मैं ज्यादा बिजी हो गया था।
1: नहीं कोई बात नहीं दादा, लेकिन हम आपसे सुनेंगे
2: तो सुने तो फिर मैं सुनाऊं, मेरे हमदम मेरे दोस्त है।
1: बिल्कुल दादा बिल्कुल,
2: ना जा कहीं ना।
1: क्या बात है,
2: तो मैं सुनाता हूँ
1: जी निसंदेह।
2: ना जा कहे अब न जा, दिल के सिवा ना जा कहे अब न जा, दिल के सिवा यही दिल हो क्या तेरा, मर हम दम मेरे दोस्त न जा कहे अब न जा, दिल के सिवा ना जा कहे अब न जा, दिल के सिवा बेसबब उड़ेगी हर सो तेरे पे हम के खुशबू, बेसबब उड़े दो तेरे पैरन के खुशबू, इधर तो सवार दूँ खुले खुले ये

सिवा यही दिल हो क्या तेरा, मेरे हम दम मेरे दोस्त न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा आके खून दिल मिला के भर दो इन लबों के खाके, आके दून दिल मिला के भर दो इन लबों के खाके, बुझा बुझा बदन।

न जा कहे अब न जा दिल के सिवा, न जा कहे अब न जा दिल के सिवा। आज शहर दिल मचल कर तोड़ते चराग जल कर, आज दिल आज शहर दिल में जल कर तोड़

गजल से दिल पे लिखा न जा कहीं अब न जा के सिवा न जा कहीं अब न जा दिल के दीवा यही दिल हो क्या तेरा अमर हम दम।

0: सर।
1: क्या बात है दादा, क्या बात है भाई। इस अगर आप ना आते तो हमारा ये कार्यक्रम अधूरा ही रहता। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अरे नहीं नहीं, आपको धन्यवाद कि आपने टाइम आपका खत्म हो चुका था, आपने मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया।
1: नहीं नहीं, हमारा सौभाग्य है कि आप सो कर उठे और हमने आपके गीत का आनंद लिया। बहुत बहुत धन्यवाद और चरण स्पर्श आपको।
0: अरे आपको भाई बहुत बहुत धन्यवाद सर, गुड नाइट
1: जी। चरण स्पर्श
0: खुश रहिए सर
1: जी। तो अब भाई घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे हिम्मत लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल 1 बजे आपसे मुलाकात होगी ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
2: पर एक बात हमेशा सीमा को खलती रहती थी, उसका घर मंदिर के बिल्कुल पास होते हुए भी उसके घर वाले उसे दूसरे और लंबे रास्ते से जाने को कहते थे। कई बार उसने अपने घर वालों से उस रास्ते के रहस्य के बारे में पूछना भी चाहा, पर जैसे ही वो इस बारे में पूछती उसके घर वालों के माथे पर एक शिकन सी आ जाती और डर से उन सब के चेहरे फीके पड़ जाते। जवाब में सिर्फ यही सुनने को मिलता कि ज्यादा अंधेरा होने पर उस रास्ते पर जाने के बारे में भी वो ना सोचे, और खासकर नवरात्रा में। सीमा ने भी ज्यादा सवाल जवाब ना किए और जैसा उसके घर वालों ने कहा उसने वैसा ही किया। वो नवरात्रा की हर सुबह लंबे रास्ते से ही अपनी पड़ोस में रहने वाली नीलम के साथ रोज मंदिर जाया करती। नीलम बस कुछ ही दिनों पहले उसके पड़ोस में रहने आई थी और सीमा से उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब वो दोनों सुबह मंदिर जाते तो नीलम हमेशा सीमा से कहती,
3: हम लोग हमेशा लंबे वाले रास्ते से ही मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर तो घर के कितना पास है।
2: जवाब में उसे सीमा से बस यही सुनने को मिलता कि उसके घर वालों ने ऐसा कहा है। खैर, सीमा और नीलम दोनों ही नवरात्रा में सुबह 4 बजे उस लंबे रास्ते से ही रोज मंदिर जाया करती। उस समय रास्ते पर सिवाय अंधेरे के और कुछ भी नहीं होता था, होता था तो बस अंधेरा। लोग कहते हैं कि रोज की रातों और नवरात्रा की रातों में काफी फर्क होता है। कई लोगों का मानना होता है कि नवरात्रा के समय भूत प्रेत और रातों की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि ये 9 दिनों वो आजाद होते हैं, इसलिए इन 9 दुर्गा की 9 रात हमें काफी संभल कर गुजारना होती है। शायद यही वजह थी कि सीमा के घर वाले उसे इन रातों को उस रास्ते से और भी दूर रहने की हिदायत दे रहे थे। वो कहते हैं ना कि होने को कौन टाल सकता है। आखिर वो सुबह आ ही गई जिसने सीमा और उसके घर वालों की आने वाली कई रातों को खौफ और डर से भर दिया। हर रोज की तरह ही सीमा के कमरे का अलार्म सुबह 3:30 बजे बज उठा। दरवाजा खोला। हर देर रात की तरह ही उस रात भी रास्ते पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तेज हवा की आवाज कुछ यूं आ रही थी, मानो वो चीख चीख कर कुछ बोलना चाह रही हो। सीमा मंदिर जाने के लिए तैयार हुई और हर रोज की तरह उसने मां की पूजा की थाली सजाई। सिंदूर, चंदन, चावल, भोग, दिया और ऐसी ही कई सामग्री थाली में लिए वो अपनी पड़ोसन नीलम के दरवाजे पर पहुंची। उसने गौर किया कि शायद आज नीलम देर से सोकर उठी है और वो अभी भी पूजा की तैयारी ही कर रही है। ये जानकर उसने उसका दरवाजा और जोर से पीटना शुरू कर दिया।
4: अरे आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ देगी क्या?
2: नीलम जानती थी कि वैसे तो सीमा बहुत शांत व्यक्तित्व की है, पर सुबह मंदिर के लिए देर हो जाए तो वो बहुत नाराज होती है। और हुआ भी वही। नीलम जब अपने घर से बाहर निकली तो सीमा आग बबूला थी। वो बोली तो कुछ नहीं, पर उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए घर के बाहर ले गई। सुनसान रास्ते पर वो दोनों साथ होने के बावजूद एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे, क्योंकि सीमा के कदम आज देर होने की वजह से दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। सुनसान रास्ते पर उस अंधेरे में सीमा के तेज कदमों के चलने की आवाज हर जगह गूंज रही थी, पर अचानक ही वो रुकी और कुछ सोचने लगी। और उसने जिंदगी में एक ऐसा कदम बढ़ाया जिसने उसकी जिंदगी पलट कर रख दी। आज देर हो जाने की वजह से सीमा ने उस रास्ते से होकर गुजरने का सोचा जिस रास्ते से लोग दिन में गुजरने तक में सहम जाते थे, जिस रास्ते पर रात में जाने से उसके घर वालों ने उसे कई बार मना किया था। सीमा ने देर होने की वजह से एक ऐसा रास्ता पकड़ लिया जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। देर होने की वजह से उसके दिमाग से यह भी निकल चुका था कि क्या उसकी दोस्त उसके पीछे आ भी रही है या नहीं। वो बस चली जा रही थी। उसे किसी की सिसकियों की आवाज सुनाई दी इस घोर रात में। ये किसकी सिसकियां हो सकती हैं? आसपास के जितने भी घर थे वहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर ये रोने की आवाज किसकी थी? इन सभी बातों पर गौर करने की जगह वो मंदिर की ओर और तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही थी। तभी उसे लगा उस सूने रास्ते पर कोई उसके पीछे है। उसने सोचा शायद वो नीलम हो, पर नीलम तो बहुत देर पहले ही उसका पीछा छोड़ चुकी थी। तो आखिर वो कौन थी? इन सभी बातों से बेखबर सीमा को तो यही लग रहा था कि नीलम उसके पीछे है। वो तेज आवाज में बोली,
5: अरे तू कितना धीरे चल रही है, जल्दी चलना मेरे साथ।
2: उसका ये कहना था और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो एक तेज हवा का झोंका उसके अंदर से होकर गुजरा हो। सीमा जैसे ही मंदिर के गेट पर पहुंची उसके कदम अचानक ही जम गए। वो मंदिर के बाहर बुत बनकर खड़ी हो गई। वो मंदिर के दरवाजे के बाहर कुछ यूं खड़ी थी मानो कोई लाश कब्र से निकलकर आ खड़ी हुई हो। जो कदम मंदिर के अंदर जाने के लिए हमेशा उतावले रहते थे वो आज मानो जमीन पर जम गए थे। देखने में ऐसा लगता था मानो सीमा को किसी ने पकड़ कर रखा हो, पर वहां कोई न था। तभी एक आवाज की गूंज ने उस सन्नाटे को तोड़ा। वो नीलम थी, वही नीलम जिसे वो देर होने की वजह से पीछे ही छोड़ाई थी। नीलम सीमा के पास आई और उससे बोली,
4: तुम इसे कितना आगे निकल आए और यहाँ क्यों खड़ी है, अंदर क्यों नहीं गई?
2: पर उसे पलटकर कोई जवाब नहीं मिला। उसे बड़ी हैरत हुई। उसने बहुत बार सीमा को आवाज दी पर हर बार उसे ऐसा लगा मानो वो सीमा से नहीं किसी पत्थर से बात कर रही हो। दो चार बार बुलाने के बाद नीलम ने सीमा का हाथ पकड़ा और दूसरे ही पल उसकी चीख निकल गई। सीमा का हाथ बर्फ की तरह ठंडा पड़ा हुआ था। उसकी चीख सुनकर पुजारी भी दौड़कर मंदिर से बाहर आया। उसे देख बुत की तरह खड़ी सीमा ने अचानक ही एक विकराल रूप धारण कर लिया। उसके लंबे बाल पूरी तरह बिखर गए। उसकी आंखें पहले से ज्यादा बड़ी हो गई। उसके होंठ कपकपा रहे थे और अचानक ही वो जमीन पर बैठकर बहुत जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख में दर्द भरा हुआ था मानो कोई उसे अंदर ही अंदर तड़पा रहा हो। ये सब देखकर नीलम बुरी तरह कांप उठी और वहीं बेहोश हो गई। इस भीषण चीख को सुनकर वहां के आसपास के सभी लोग मंदिर के बाहर जमा हो गए। हर कोई सीमा का ये रूप देखकर बुरी तरह डर गया था। थोड़ी ही देर में सीमा के घर वाले भी आ गए पर सीमा किसी को भी पहचान नहीं रही थी। जब सीमा के पति ने सीमा के पास जाने की कोशिश की तो सीमा ने उसे ऐसा धक्का दिया,
6: छोड़ मुझे,
2: कि वो काफी दूर तक जा गिरा।
6: छोड़ मुझे।
2: सीमा के पति को यूं लगा कि उसको धक्का सीमा ने नहीं चार पांच लोगों ने मिलकर दिया हो। सीमा को पांच लोगों ने मिलकर एक रस्सी से बांधा और गाड़ी में बैठा दिया। गाड़ी में बैठते ही सीमा
6: छोड़ मुझे, छोड़, छोड़ मुझे।
2: और वो गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी भगवान की एक मूर्ति को देखकर कभी जोर से रोती तो कभी बेवजह ही हंसने लगती। बेवजह हंसने और रोने का ये सिलसिला सारे रास्ते यूं ही चलता रहा। फिर ये सभी लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां के पुजारी को शायद पहले इस बात की इत्तला कर दी गई थी। वो एक पेड़ के नीचे हाथ में मोर पंख लिए खड़े हुए थे। सीमा को दो लोगों ने कसकर पकड़ा और उन बाबा के पास ले गए। उनके पास जाकर तो मानो सीमा और भी बुरी तरह चीखने और चिल्लाने लगी।
6: छोड़ मुझे, छोड़, छोड़ मुझे।
2: फिर उस पर कुछ छिड़का गया जिससे वो अचानक ही शांत हो गई। फिर वो खुद ब खुद उस व्यक्ति के पीछे उस मंदिर के अंदर चली गई। आधे घंटे के अनुष्ठान के बाद सीमा लगभग निर्जीव होकर बाहर निकली। फिर उसे आराम से गाड़ी में बैठा दिया गया। उसकी गाड़ी में बैठने के बाद उन पंडित ने

0: मासूम लड़की को उस रात आग की लपटों में जिंदा ध्वस्त कर दिया था और बाद में घर में धोखे से आग लग जाने की अफवाह फैलाकर उसके अगले ही दिन वो गांव छोड़कर चले गए। पर एक और चीज थी जिसे वो छोड़कर जा रहे थे और वो थी उस लड़की की रूह।
1: द हॉन्टेड प्लेस। गुजरात में ऐसी कई जगहें हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। इन्हीं जगहों में से एक जगह है डुमास। डुमास का बीच गुजरात की खूबसूरती का एक महत्वपूर्ण अंग है, पर अपनी खूबसूरती के अलावा एक चीज और है जिसकी वजह से गुजरात के डुमास का नाम हर किसी की जुबान पर होता है, और वो है इस जगह पर भूत प्रेत से जुड़े आए दिन होने वाले हादसे, समुद्र में किसी के डूबने का एहसास, बचाओ बचाओ की चीख, रात में सोते हुए लोगों के कान में किसी का फुसफुसाना, रात में बीच पर टहलते हुए किसी के रोने या उससे भी बुरी तरह हंसने की आवाजें। डुमास घूमने आए कई सैलानियों को इस तरह की शिकायतें करते पाया गया है। कई लोग कहते हैं कि उन लोगों ने रात में कई बार किसी को समुद्र में डूबते हुए देखा है। वो बचाओ बचाओ की आवाज लगाते हैं, पर जब भी कोई उन्हें बचाने के लिए बीच की तरफ भागता है तो वो अचानक ही गायब हो जाते हैं। फिर अचानक ही आधी रात में सुनसान बीच किसी की हंसने की आवाज से गूंजने लगता है। कई सैलानियों का कहना है कि उन्हें रात में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने कहा है उन्हें रात में कोई चेतावनी देता है कि बीच की तरफ ना जाए, और बेवजह ही देर रात लोगों के हंसने और कई बार बेहद बुरी तरह से मातम मनाने की आवाजें लोगों ने यहां सुनी है। डुमास के स्थानीय लोग इन सब घटनाओं की वजह वहां पर होते अंतिम संस्कारों को बताते हैं। लोग कहते हैं कि जिन लोगों को मुक्ति मिल जाती है उनकी आत्मा अंतिम संस्कार के बाद धरती छोड़ देती है, पर जिनको मुक्ति नहीं मिलती वो प्रेत बनकर आज भी इस जगह पर भटक रहे हैं। वजह कोई भी हो, पर एक बात तय है, भूत प्रेत की ऐसी घटनाओं ने इस जगह को जितना डरावना बनाया है उतना ही इस खौफनाक रहस्य की वजह से गुजरात का डुमास लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और बना हुआ है हमारे देश का एक और हॉन्टेड प्लेस, द हॉन्टेड नाइट। डर और खौफ से जुड़ी कुछ कहानियां

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

दोस्तों, इतनी सारी गानों की आवाज सुन के अभी तो आज आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या लेके आई हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं खुद ही आपको बता देती हूँ कि आज मैं जिस शो में आपको लेके आई हूँ और जिस सिंगर की बात करने वाली हूँ वो है क्या। दरअसल हम बात करने वाले हैं जो 2025 में जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। जी हाँ, शो चल रहा है आपका भूले बिसरे गीत और मैं हूँ आपकी आरजे अनोखी। और आज हम उस सिंगर की बात करने वाले हैं जो अपने दौर में बहुत ज्यादा चर्चित रही, कभी अपने गानों को लेके तो कभी उन गानों के तरीकों को लेके, और आज भी वो उतनी ही प्रिय हैं हम सभी के बीच। वो हैं कौन, इनकी क्या कहानी है, बाकी सब क्या है ये जरूर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इनका एक सॉन्ग हो जाना चाहिए। सुन लेते हैं इस गीत को।

तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना, ये खनक वाली आवाज, जी हाँ, है किसकी, आप जानने को बिल्कुल उतावले होंगे और कुछ लोग तो जान भी गए होंगे जिनकी ये फेवरेट रही है। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे भूले बिसरे गीत में पूर्णिमा जी की। जी हाँ, जिनका बचपन का कुछ और ही दौर रहा है, और जब ये अपने जवानी में आई, मतलब जब इनके करियर का दूसरा पड़ाव स्टार्ट हुआ, तो वो दौर कुछ और ही रहा। जी हाँ, 90 के दशक की खोज कही जाने वाली पूर्णिमा जी, 9 साल की उम्र में ही इन्होंने गाना शुरू कर दिया था, फिल्मी सॉन्ग्स, और जैसे कि ये गाना

तेरा वादा। और 70 के दशक में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत ही फेमस रही हैं पूर्णिमा जी, और बचपन में इनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ, जो कि बड़े होकर इन्होंने खुद ही बदल दिया। और इसी तरह से कहीं ना कहीं बहुत सारी गॉसिपिंग भी रही इनकी लाइफ को लेके, क्योंकि जब ये बचपन में चाइल्ड आर्टिस्ट थी तो इनके गाने का तरीका कुछ और था, और जब ये बड़ी हुई तो इनके गाने का तरीका कुछ और ही रहा।

कहा जाता है पूर्णिमा के गाने फिल्मों को हिट करवाने में बहुत हेल्पफुल माने जाते हैं, जो बेहद अपीलिंग और खनकदार माने जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ डबल मीनिंग और अश्लील गानों के लिए इन पर आरोप भी लगे और बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई, जैसे सरकायलो खटिया जाड़ा लगे, कबूतरी बोले कबूतर से, ऐसे ही बहुत सारे गाने इन्होंने गाए, जिसके चलते इनको वो हक और सम्मान नहीं मिला जो बाकी क्लासिक सिंगर्स को मिलना चाहिए था या मिला। और इनके दशक में हमारे पास में हमारे 90s के जो सिंगर्स रही हैं, अलका याग्निक जी हो गई, कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम जैसी बहुत सारी दिग्गज कलाकारा रही हैं, फिर भी इन्होंने अपना मकाम बखूबी हासिल किया। तो आइए बढ़ते हैं इन्हीं के एक और गीत की।

अब हमारी पूर्णिमा जी पूरे 64 साल की हो गई हैं और पिछले ही साल यानी 2025 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। पूर्णिमा जी ने क्षेत्रीय भाषा के अलावा नेपाली, मराठी आदि भाषाओं में भी गीत गाए। ये केवल बॉलीवुड की सिंगर नहीं है बल्कि इन्होंने हर तरह के गानों को गाया है, जैसे कि गजल, भाव गीत या फिर बच्चों के गीत, जो कि फिल्मी दुनिया से अलग होते हैं। और भारत की शान जिसमें ये जज भी रही हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी इनको कोई फिल्म फेयर अवार्ड आज तक नहीं मिला। कारण बस वही गानों की आलोचनाएं और इनका गाने का तरीका। फिलहाल इनके एक पुत्र श्रेष्ठ भी हैं जिनका नाम है निशान चंद्रा, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो चलिए इन्हीं के एक और गाने को सुनते हैं और फिर आते हैं और इनकी कहानी के बारे में जानते हैं।

पूर्णिमा, जिनका असली नाम सुषमा श्रेष्ठ है, एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका यानी प्लेबैक सिंगर है, जिन्होंने 1990 के दशक में बॉलीवुड में कई हिट गाने गाए हैं और सुषमा श्रेष्ठ के नाम से बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें इतनी शक्ति हमें देना दाता और बोल राधा बोल जैसे गानों के लिए जाना जाता है और उन्होंने कई सारी भाषाओं में अलग अलग गाने गाए हैं। इनका जन्म 6 सितंबर 1960 में हुआ और ये नेपाल से बिलोंग करती। शुरुआत इन्होंने बाल कलाकार के रूप में 1971 की फिल्म अंदाज से की, जिसमें है ना बोलो बोलो ये वाला गाना इन्होंने गाया था। 90 का दशक इनके लिए वर्चस्व का दशक रहा, जब इन्होंने बाल कलाकार के रूप में बॉलीवुड में एंट्री ली। 1971 की फिल्म अंदाज से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, जिसमें इन्हें गाना मिला था है ना बोलो बोलो ये वाला गाना। जी हाँ, इनके कई सारे प्रसिद्ध गीत रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस माने गए कुछ गीत हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। बोल राधा बोल, तुतु तु तु तु तारा, जो कि आई थी 1992 में, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मूवी था अंकुश और मूवी आई थी 1986 में। इसके अलावा हीरो नंबर 1 का टाइटल ट्रैक, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, मैंने पैदल से जा रहा था उन्हें मोटर से आ रही थी, शाम है धुआं धुआं, गजब सीटी मारे, सजन रे झूठ मत बोलो, ऐसे बहुत सारे गाने गाए, जिसकी वजह से माना जाता है इन्हीं गानों के कारण कहीं ना कहीं मूवीज भी हिट होती थी उस वक्त, जब पूर्णिमा जी के गाने उन मूवीज में हुआ करते थे। तो चलिए आनंद लेते हैं कुछ और गीतों का, जिसको गाया है पूर्णिमा जी ने।

अब बात करते हैं पूर्णिमा जी के निजी जीवन के बारे में, जिसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है मुझे। कारण है कि इन्होंने अपनी जानकारी आज तक कभी किसी से साझा ही नहीं की। इनकी शादी के उपरांत ये बिल्कुल से अपने करियर पे स्टॉप लगा के बैठ गई थी। माना जाता है कि जब इनकी शादी हुई उसके बाद इन्होंने ना कोई स्टेज परफॉर्मेंस दिया, ना ही किसी गाने से इनका कोई ताल्लुक रहा। लेकिन इनकी अगर निजी जीवन की बात करें तो इनका एक बेटा है जिनका नाम है निशांत चंद्रा, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर है। और बाकी अगर इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने ज्यादा कभी किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी इंटरव्यू में इसके बारे में कोई बात नहीं की। तो चलिए बढ़ते हैं इन्हीं के एक और गीत की ओर और पुनः से आते हैं आज के

दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ जान लिया पूर्णिमा जी के बारे में, लेकिन एक चीज तो रह गई, वो है पुरस्कार। जी हाँ, इनको पुरस्कार की बात करें तो वैसे तो कोई खास पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन जो पिछले वर्ष मिला, जी हाँ, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो उस पुरस्कार ने इनके बाकी पुरस्कारों को छोटा साबित कर दिया। फिलहाल जान लेते हैं फिर भी किन किन पुरस्कारों के लिए इन्हें नामांकित किया गया। सन 1974 में फिल्म फेयर सर्वोत्तम महिला पार्श्व गायिका पुरस्कार, जो की था सॉन्ग तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, आ गले लग जा मूवी से, इसके लिए इन्हें नामांकित किया गया। दूसरा है 1978 में दिया गया पुरस्कार, जो कि है फिल्म फेयर सर्वोत्तम महिला पार्श्व गायिका पुरस्कार, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, जो आया था हम किसी से कम नहीं मूवी के लिए, और इसमें भी ये केवल नामांकित होके रह गई। फिर तीसरा गाना आया जो सन 1998 में इन्हें मिला, पुरस्कार का नाम है जी सिने पुरस्कार, गाना है सोना कितना सोना है, जी हाँ, हीरो नंबर 1 का टाइटल ट्रैक, इसके लिए भी ये केवल नामांकित होकर रह गई। आखिरकार वो दिन आया जब इन्होंने कोई पुरस्कार अपने हाथ में प्राप्त किया, वो था 2017 का वक्त, और इनका पहला पुरस्कार है मोहम्मद रफी पुरस्कार, जो इन्हें भारत के उपराष्ट्रपति जी ने प्रदान किया। फिर 2020 में चित्रपट संगीत महोत्सव पुरस्कार, जो कि जीवन गौरव पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, ये पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर इन्हें मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि इन्हें प्राप्त हुआ सन 2025 में। तो अंततः अपने जीवन के दौर में इतना कुछ करने के उपरांत इनको ये गौरव प्राप्त हुआ। चलिए, इन्हीं के द्वारा गाए गए कुछ फेमस सॉन्ग्स में से एक मैं आपको सुनाती हूँ।

तो दोस्तों, आज हमने जिस सिंगर की बात की वो हमारे बॉलीवुड की पहली बाल कलाकारा के रूप में जानी जाती हैं। इन सभी के बावजूद इनका दौर दो भागों में बटा रहा, मतलब इनका करियर दो भागों में डिवाइड हुआ, एक तो बाल कलाकार के रूप में और दूसरा यूथ की हार्ट टोन मानी जाने वाली, जी हाँ, पूर्णिमा जी। और बचपन में इनका नाम सुषमा श्रेष्ठ रहा, बड़ी होकर इनका नाम पूर्णिमा पड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए, कारण था इनके गाने का सलीका। और आलोचनाओं से काफी घिरी रही हमारी पूर्णिमा जी, पर अंततः बोलते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, अंततः इन्हें वो अवार्ड मिला जो कि बहुत ही कम लोगों को मिलता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 में जो इन्हें प्राप्त हुआ। अब चलते चलते इन्हीं के एक गाने को मैं आपको बतौर तोहफा देती जा रही हूँ, तो एंजॉय करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे किसी और गायक को लेकर या किसी और टॉपिक को लेकर, जिसमें हम आपको वो दौर पूरा का पूरा याद कराने की कोशिश करेंगे आपके अपने शो भूले बिसरे गीत के साथ। बने रहिए आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो गैनेस्ट 89.6 FM के साथ। मुझे अब इजाजत दीजिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।